इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो हैं अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے, روایت ہے بخاری کی.
1: اللہم صلی

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी तो हम सेहतमंद रहेंगे, ये बात बहुत ही आम है, हम कहते भी हैं। और आज हम बात करेंगे कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी के बारे में। कुव्वत मुदाफ़त बहुत सारे जो सेहत के मसाइल हैं उससे बचाव में मदद देती है और हमारे जिस्म को मजबूत बनाती है। क्या आपने कभी ये गौर किया कि आज हम अपनी जो कुव्वत मुदाफ़त है या इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, या क्या खाया है, क्या कौन सी कोई एक्टिविटी जो है वो की है? फिर ये भी सोचना कि आज कौन सा फल खाया है, और हाँ, कितने लोग नींद पूरी करते हैं या रात देर तक जागते हैं। हमें अपनी इम्यूनिटी ज़्यादा करने के लिए खुराक का इस्तेमाल तो करना ही है।

0: और ये भी कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन से वाइटमिन्स हैं और वो हमें लेने हैं, जैसे कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी लेना बेहद ज़रूरी है और विटामिन सी हमें माल्टे में, बनाना और अमरूद में बहुत बड़ी और अच्छी मिकदार में मैसर होता है। विटामिन डी जो है वो भी ज़रूरी है और सूरज की रोशनी से हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आप दूध का इस्तेमाल करते हैं या अंडे के ज़रिए, अंडा अपनी खुराक में शामिल कीजिए और विटामिन डी जो है वो हासिल कीजिए। जिंक और प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतरीन गज़ाए हैं और उनमें अगर हम मछली का इस्तेमाल करें, जो मीट है कोई भी आप मीट हो वो आप लीजिए, दालें लीजिए और क्या है कि अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको एक्टिव बनाइए, यानी रोज़ाना वर्जिश कीजिए। नींद और जहनी सुकून भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाते हैं। एक मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक बच्चा सर्दियों में अक्सर बीमार रहता था। उसके पेरेंट्स ने उसकी खुराक में विटामिन सी वाले फल, दूध और अंडे शामिल किए और सुबह एक्सरसाइज करवाई। एक महीने के बाद बच्चा कम बीमार हुआ और उसका जो एनर्जी लेवल है वो भी ज़्यादा होता चला गया। तो फिर हमें करना ही है अपनी इम्यूनिटी ज़्यादा करने के लिए कि हर रोज़ कम से कम एक फल और एक सब्ज़ी ज़रूर खाइए। हफ्ते में 2 से 3 बार प्रोटीन वाली ग़िज़ा लीजिए और सूरज की रोशनी लें और एक्सरसाइज कीजिए। नींद ज़रूर पूरी करें, कम से कम 6 से 7 घंटे, और अपना जो ज़हनी दबाव है उसे कम रखें। बच्चों और बड़ों की कुव्वत मुदाफ़त के लिए मतवाजन ग़िज़ा और वर्जिश लाजमी करें। और अगर हमारी इम्यूनिटी है और ये कि कुव्वत मुदाफ़त जो है वो बेहतर है तो हम बहुत सारे सेहत के मसाइल से बच सकते हैं और इससे फिर हमारा जो जिस्म है वो सेहतमंद रहेगा। तो आज ही से अपनी कुव्वत मुदाफ़त जो है उसे मजबूत कीजिए। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: Maximum music, maximum fun.
3: On FM 107, Dil Se Desi.

प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। दोस्तों, एक छोटे से शहर के एक बड़े से स्कूल में चार बेहतरीन दोस्त रहा करते थे, जिनका नाम अली, अहमद, सारा और मरियम था। ये सब दोस्त एक ही क्लास में पढ़ते थे और उनका सबसे बड़ा मसला था पढ़ाई से नफरत। स्कूल के काम और इम्तहानात इनके लिए एक बोझ बन चुके थे और वो हमेशा पढ़ाई से बचने के लिए कुछ ना कुछ चक्कर चलाने की कोशिश करते रहते थे। इनके इम्तहानात के दिन बहुत करीब आ रहे थे और इन चारों ने सोचा था कि इस दफा तो कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि जिससे वो इम्तहान से बच जाएं, या कम से कम ये हो कि बगैर मेहनत किए हुए ये अच्छे नंबर ले आएं। एक दिन जब वो साथ बैठे गपशप कर रहे थे तो अहमद ने एक अजीब सा ख्याल पेश किया, दोस्तों हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम दोबारा इम्तिहान दे सकें, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है।

जल्दी से पूछा, लेकिन वो कैसे? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा सुनो, हम सब उस्ताद साहब को ये बताएंगे कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और गाड़ी स्कूल से बहुत दूर थी, इसीलिए हम इम्तिहान तक नहीं पहुंच सके। मरियम ने फौरन कहा, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई भाई, अगर हम ये कह दें तो शायद वो हमें एक और मौका दे दें। और यूं चारों दोस्तों ने ना पढ़ने का फैसला किया। उन्होंने स्कूल के इम्तिहानात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और बस मजे से वक्त गुजारते रहे। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचे तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से उस्ताद साहब को बोला, सर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और गाड़ी बहुत दूर खराब हुई थी, हमने स्कूल टाइम पर पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसीलिए हम वक्त पर इम्तिहान में नहीं पहुंच सके। इनके उस्ताद ने कुछ देर तक सोचा और कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम लोगों को मैं एक और मौका दूंगा। चारों दोस्त बहुत खुश हो गए और उन्होंने सोचा कि अब हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने चंद दिनों में मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। वो जानते थे कि अब इम्तिहान की तैयारी करना जरूरी हो गया है, वरना ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। इम्तिहान का दिन आया और इनके उस्ताद ने इन सबको अलग अलग क्लासों में बिठा दिया। सबसे पहले उन्हें इम्तिहान के कमरे में दाखिल होने की इजाजत दी गई और उसके बाद उन्हें क्वेश्चन पेपर पकड़ाए गए। चारों दोस्तों ने जब क्वेश्चन पेपर खोला तो उन्हें दो सवालात नजर आए। पहला सवाल था, आपका क्या नाम है? दूसरा सवाल था, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था? ऑप्शन ए फ्रंट लेफ्ट, ऑप्शन बी फ्रंट राइट, ऑप्शन सी रेयर लेफ्ट, ऑप्शन डी रेयर राइट। सब दोस्तों के चेहरे पर खौफ आ गया। वो ये बात जानते ही नहीं थे कि इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो झूठ बोला था वो सिर्फ एक ख्याल पर मुबनी था। सबसे पहले अली ने सवाल देखा और फौरन सवाल नंबर एक का जवाब लिखा अली, लेकिन दूसरे सवाल पर वो थोड़ा ठहर गया। उसने दिल में सोचा, मैंने कहा था कि टायर फटा था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा टायर फटा था। इसी दौरान अहमद, सारा और मरियम भी अपनी जगहों पर बैठकर सवालात का जवाब सोच रहे थे। उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि जो झूठ उन्होंने बोला था उसकी वजह से वो एक बहुत बड़े मसले में फंस चुके थे। क्लास के बाहर से उस्ताद साहब की आवाज आई, चलो भाई सबका जवाब लिखने का वक्त खत्म हुआ। सब दोस्तों ने जवाब देना शुरू किया और आखिरकार इम्तिहान खत्म हो गया। सब दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। वो ये भूल गए थे कि चालाकी और झूठ हमेशा कामयाबी की जमानत नहीं होते। आखिरकार उन्हें ये एहसास हुआ कि असल हकीकत और ईमानदारी से ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। उनके उस्ताद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा याद रखो, तुम में से हर एक जहीन हो सकता है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो तुमसे ज्यादा जहीन हो। ये सबक इन चारों दोस्तों के लिए जिंदगी भर का एक तजुर्बा बन गया। चारों दोस्तों ने उस दिन से अपनी पढ़ाई में संजीदगी से दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी और कभी भी झूठ ना बोलने का इरादा कर लिया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हम जितने भी जहीन क्यों ना हों, हमेशा ये याद रखें कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमसे कई ज्यादा जहीन लोग मौजूद हैं।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुताल्लिक जरूरी मालूमात

0: जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाज़िया एफएम 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं एक बड़ी ही कमाल की इकोनॉमिक टर्म जिसका नाम है ग्रोथ। देखो, सुन के ना कितनी पॉजिटिविटी मिल जाती है। चलिए, जब मैं धीरे धीरे इस ग्रोथ टर्म के बारे में आपको बताऊंगी तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स में इस टर्म का इस्तेमाल किस तरह से होता है। वैसे इकोनॉमिक टर्म में ग्रोथ का असल मायने है बढ़त या फिर इजाफा। इसका इस्तेमाल अक्सर किसी मुल्क की इकोनॉमी की हालत को दिखाने के लिए किया जाता है। ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी मुल्क की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, सर्विसेज और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये अक्सर GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जरिए मेजर की जाती है, जो कि एक मुल्क की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का एक अहम इंडिकेटर भी है। GDP तो आपने सुना ही है ना। चलिए, ये आप समझ गए कि ये किसी भी मुल्क की परफॉर्मेंस का एक बेहद अहम इंडिकेटर है। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ के कई अहम एस्पेक्ट्स हैं और ये एस्पेक्ट्स जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट भी हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को समझना। ये तब होती है जब किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की कमोडिटी और सर्विसेज की असली प्रोडक्शन बढ़ती है, यानी इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को मद्देनजर रखा जाए। नॉमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ अपने नाम से ही क्लियर कर रही है कि किसी भी मुल्क की GDP में सिर्फ छोटा सा बढ़ावा दिखता है जिसमें इन्फ्लेशन का असर नजर आता है। ये ग्रोथ असल में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाती। दैट इज व्हाई इट इज नॉमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ। वही इकोनॉमिक ग्रोथ के कई फैक्टर्स भी हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कई फैक्टर्स पर एक्चुअली डिपेंड करती है। तो सबसे पहले और सबसे अहम फैक्टर है इन्वेस्टमेंट। यहाँ जब लोग और बिजनेसेस अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो ये ग्रोथ के जरिए बढ़ता है। ये इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ फिजिकल कैपिटल जैसे कि फैक्ट्रीज और मशीनरी में हो सकती है, बल्कि ह्यूमन कैपिटल जैसे एजुकेशन और ट्रेनिंग में भी हो सकती है। तो इसको इस तरह से भी देखा जाता है। वही एक और फैक्टर जो बेहद इम्पॉर्टेंट है वो है टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रोडक्ट को ज्यादा इफिशियंट बनाता है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इसका सीधा असर इकोनॉमिक ग्रोथ पर होता है। वही एक और फैक्टर जो बेहद इम्पॉर्टेंट है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। जी हाँ, किसी भी मुल्क के पास अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि तेल, मिनरल्स या फिर बहुत ही अच्छी एग्रीकल्चरल लैंड, तो ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मददगार साबित होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज। जी हाँ, अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि टैक्स इंसेंटिव्स, इन्वेस्टमेंट्स, फ्रेंडली रेगुलेशंस मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ावा देने में मदद करते हैं। तो गवर्नमेंट को भी इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए। वहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का सोसाइटी पर भी गहरा असर पड़ता है। सैलरीज और इनकम्स भी मुतासर होती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा असर लोगों की सैलरी और ओवरऑल इनकम पर होता है। जब इकोनॉमी बढ़ती है, जॉब्स बढ़ती हैं, जो जॉब्स की आमदनी में इजाफा होता है उससे कंज्यूमर्स की खरीदने की पावर भी, परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है। वहीं देखा जाए तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लोग मेंटेन करते हैं। जब किसी भी मुल्क की GDP बढ़ती है तो उसका असर क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ता है। ज्यादा रिसोर्सेज और सर्विसेज का फराहम होना लोगों की सेहत, एजुकेशन और बेसिक एमिनिटीज को बेहतर करता है। वहीं इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासर होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के सरप्लस फंड्स निकलते हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि अच्छी रोड्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, बच्चों के लिए स्कूल्स वगैरह। वहीं इससे सोशल स्टेबिलिटी भी आती है। जब इकोनॉमी बढ़ेगी और रोजगार के मौके होंगे तो सोशल स्टेबिलिटी तो आएगी ही आएगी। रोजगार की कमियों से आप देखते हैं कि सोशल स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है और माशरे में क्राइम, गुनाह वगैरह बढ़ जाते हैं और लोगों में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है, जिससे लोग इन्वेस्ट भी ऐसी कंट्रीज में, ऐसी सोसाइटीज में करना छोड़ देते हैं। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वहीं पर अगर कुछ एग्जांपल्स देकर मैं आपको समझाऊं तो बात करते हैं चाइना की। जी हां, 1970s के बाद चाइना ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, जिससे उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज हो गई। जीडीपी में बढ़ावे के साथ साथ पावर्टी यानी गरीबी के लेवल में भी कमी आई और लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ। वहीं एक और बड़ी ही कमाल की इकोनॉमी है इंडिया की। जी हाँ, 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इंडियन इकोनॉमी ने बहुत बेहतरी दिखाई। लिबरलाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडिया की जीडीपी बढ़ती गई, जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में सुधार लाई। वहीं एक और कंट्री है यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी ने 20th century के बेहतरीन दौर में रैपिड ग्रोथ देखी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद प्रोडक्शन और इंडस्ट्री का काम बढ़ गया, जिससे लोगों में जॉब अपॉर्चुनिटीज और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ी और इससे इनकी इकोनॉमी को पुश या फिर बूम या बूस्ट मिला। वही कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, तो उन चैलेंजेस पे भी बात करते हैं। जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैलेंज था पैंडेमिक। सारी जितनी भी कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमी ऑल ऑफ सडन बैठ गई, तो ये तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अनअवॉइडेबल है, जिनके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। वही कई बार इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी जो है वो इकोनॉमी को चैलेंज देते हैं। कई बार रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ अक्सर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज की तरफ जाती है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मसला भी बन जाता है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। वहीं जब इकोनॉमी बढ़ती है तो सब लोग इक्वल तरीके से ग्रोथ का फायदा नहीं उठा सकते, इससे कहीं ना कहीं सोसाइटीज में इनइक्वालिटी को भी बढ़ावा मिलता है, जो अगेन काफी चैलेंजिंग हो जाता है। वहीं इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। अक्सर रैपिड ग्रोथ इन्फ्लेशन का सबब बनती है, जिससे कई बार कंज्यूमर की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक अहम कॉन्सेप्ट है, जो किसी मुल्क की इकोनॉमिक हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। इसका सीधा असर सैलरीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल स्टेबिलिटी पर होता है, लेकिन इसका हुक्म भी है कि सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी का मकसद हासिल कर सकें। यहाँ जब लोग इकोनॉमी बढ़ती है तो लोगों की जिंदगी बेहतर होती है, लेकिन ये जरूरी है कि ये ग्रोथ सबके लिए और सबके भले के लिए हो, और आजकल सस्टेनेबिलिटी को जहन में रखते हुए हो, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। जी, इकोनॉमिक ग्रोथ का समझना हमेशा ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को ऐसे तैयार करें जिससे वो सबके लिए, सारी सोसाइटी के लिए हो और सबकी भलाई इससे हो सके, जो इसका एक्चुअल पर्पस भी है, ग्रोथ। हेंस अगर हम सब मिलकर ग्रो कर रहे हैं, तभी कह सकते हैं कि ये एक पूरी तरह की ओवरऑल ग्रोथ है। वेल दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज मैं काफी हद तक इस टर्म ग्रोथ को आपको समझाने में कामयाब रही हूँ। मिलके हम और आप भी ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी और आपकी मजबूत हो रही है, और यही हमारा मकसद भी है। वेल मैं उम्मीद कर रही हूँ आज के इस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को मैं भरपूर तरीके से आपको समझा पाई होंगी। वेल अभी के लिए दोस्तों मैं आपसे इजाजत लूंगी, नेक्स्ट एपिसोड में एक नए इकोनॉमिक टर्म के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107। दिल से देसी।
0: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
2: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
3: ऑन FM 107। दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मोहम्मद अमीन। हनीफ मोहम्मद ये नाम सिर्फ एक क्रिकेटर का नहीं बल्कि एक मिसाल का है। ये नाम इतना गहरा था कि जब 1994 में वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा ने 501 रन बनाकर उनका रिकॉर्ड तोड़ा तब भी ये नाम दिलों में जिंदा रहा। जनवरी 1959 फर्स्ट क्लास क्रिकेट का वो दिन जब हनीफ मोहम्मद ने तारीख लिखी। भावलपुर के खिलाफ कराची के लिए खेलते हुए कयाद आजम ट्रॉफी के सेमीफाइनल में 499 रन। यहां सर डॉन ब्रैडमैन का 452 रन का रिकॉर्ड भी पीछे रह गया। ये सब कम से कम 11 घंटे की लंबी और सबर आजमा मेहनत का नतीजा था। पहले दिन 230 रन, अगले दिन 244 रन। हनीफ मोहम्मद हमेशा कहते थे मैं ब्लॉकर नहीं हूं, उनकी बैटिंग इस बात का सबूत। पाकिस्तान के इस मारूफ बल्लेबाज सिर्फ पाकिस्तान के पहले अजीम बल्लेबाज नहीं बल्कि क्रिकेट के एक मेंटल जायंट भी थे। विकेट पर घंटों तक जमे रहना और जब मौका मिले शॉट्स खेलना, सबर का दूसरा नाम था हनीफ मोहम्मद। 1947 में पाकिस्तान एक नया मुल्क बना। स्पोर्ट्स खासकर क्रिकेट और हॉकी नए मुल्क की पहचान बने। 1952 में पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला मगर इससे एक साल पहले ही एक 16 साल का लड़का हेडलाइंस बना चुका था। लाहौर 1951 एमसीसी के खिलाफ नॉन टेस्ट मैच हनीफ

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाज़े सामीन किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान का आज का ये हलका, हमारी आज की गुफ्तगू एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो हकीकत में पूरी रूहानी जिंदगी का सेंट्रल इशू है। इंसान अल्लाह को पहचानता हो, उसकी नेमतें देखता हो, उसकी कुदरत और रहमत को मानता हो, फिर भी उससे मोहब्बत न करे, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह की तरफ से पुकार सुनाई दे, अजान बुलंद हो, कुरान नसीहत करे, दिल को तौबा की दावत मिले, लेकिन इंसान जवाब देने में मुसलसल ताखीर करता रहे, ये कैसी महरूमी है? इंसान गुनाह की तलखी, बेचैनी और अंधेरा बार बार महसूस करे, फिर भी इबादत और तौबा में पनाह तलाश न करे, ये अपने दिल के साथ कैसा सलूक है? इमाम इब्न अल-क़य्यिम रहिमहुल्लाह के नहायत गहरे कलिमात का मफहूम ये है कि बड़ी हैरत की बात है कि इंसान अल्लाह को पहचाने फिर उससे मोहब्बत न करे, उसकी पुकार सुने फिर जवाब देने में देर करे, अल्लाह के साथ मामले का फ़ायदा जानता हो मगर दूसरों के साथ दिल लगाए, उसकी नाराज़गी की शिद्दत को जानता हो।

FM 107. Time check. Time check. राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01.

हाँ जी, एक बार वापस आप सबको कहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इस शो में जिसका नाम है समर मॉर्निंग्स। पूरे तीन घंटे आप और मैं साथ रहने वाले हैं। बहुत सारी आज भी बातें मैं लेकर आई हूँ। ऑफ कोर्स हर रोज़ ही हमारे पास कुछ ना कुछ होता है बात करने के लिए, लेकिन हमेशा ही हम शुरुआत करते हैं आपके और अपने हालचाल से और फिर लेटर ऑन मौसम का हालचाल और फिर बहुत सारी बातें। तो बस आप मुझे अपना हालचाल बताइए, किस तरह से आपकी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है, हो चुकी है, नहीं हुई है, होने वाली है, या जिस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं आज के दिन की वो शेयर कीजिए। नंबर है 666-22107 और अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 4434377। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मॉर्निंग्स होती है ना समर्स की, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मुझे बहुत एक्साइट करती है। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि गर्मियों की जो सुबह है वो एक अलग ही फ्रेशनेस के साथ होती है, ब्राइटनेस के साथ होती है। सुबह जल्दी सूरज निकलता है, सब तरफ आप देखिए रोशनी फैली होती है, मतलब आपको बर्ड्स जो है उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगती है, लोग जो है उनकी मॉर्निंग की स्टार्ट भी जल्दी हो जाती है। बहुत सारे लोग मैं देख रही थी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मतलब अपने दिन का आगाज़ जो है वो थोड़ा जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं। वहीं पर गर्मियों की जो सुबह है वो कहीं ना कहीं एक ब्राइटनेस का, एक यू नो, एक पॉजिटिविटी का भी एहसास देती है। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, एक माहौल ऐसा खुशगवार मॉर्निंग्स, सबसे ज़्यादा मॉर्निंग्स, आफ्टरनून्स तक नहीं जाइए, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग की बात हो रही है। मॉर्निंग में वाकई ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो ब्राइटनेस है, कुछ तो यू नो एक मौका है कि आज वही दिन है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था या जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। आज मुझे अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल करना है, सारे पेंडिंग वर्क्स को आज फिनिश करना है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा हो या ना हो, पता नहीं आप में से कोई रिलेट इस बात के साथ करेगा कि नहीं करेगा, बट ऐसा मुझे एटलीस्ट लगता है कि हाँ जो मॉर्निंग की सुबह है, सुबह बहुत प्यारी होती है। हालांकि मैं खुद थोड़ा सा सुबह उतना जल्दी उठती नहीं हूँ, हाँ मतलब उठी सो गई नमाज़ पढ़ के फिर मैं अपना लेट उठती हूँ, लेकिन हाँ अब जब मैं रेगुलरली मॉर्निंग में आ रही हूँ जा रही हूँ तो मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही हूँ कि लोगों की कितनी अर्ली सुबह हो जाती है, कितना जल्दी वो काम पर चले जाते हैं और किस तरह से कुछ लोग जो हैं तैयारी कर रहे होते हैं इस दिन को हमें आज कैसे स्पेंड करना है, वो तैयारी अलग चल रही होती है। मैं अपने घर से निकलती हूँ, मैंने देखा इतने सारे लोग जो हैं वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, लोगों का दिन शुरू हो गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि अरे ये तो मैं ही थी जो सो रही होती होंगी इस टाइम, और देखो कितने सारे लोग जो अपने काम पे निकल गए, कितने सारे लोग जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं आज के दिन की, आज मुझे अपने दिन को किस तरह से फिट और हिट करना है। तो बस इस तरह की चीज़ें जब आपको नज़र आती हैं तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। वैसे कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कितना ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं, सूरज, बादल, बादल से याद आया कि हाँ कल तो बारिश भी होने के चांसेस है, आज भी कई जगह हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, तो मौसम भी देखिए अपने आप में कितना अच्छा हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जुलाई में इस तरह से यहाँ पर कतर और इस रीजन में बारिश हम जो है एक्सपीरियंस करेंगे, बट ये भी हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जहाँ पे थोड़ी बहुत तकलीफ है अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ भी रखी हैं। तो बस अपने आंखें खोलिए, पॉजिटिव रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए, लोगों की मदद कीजिए और एक बहुत ही खूबसूरत से नोट पे एक प्यारी से दुआ के साथ मॉर्निंग का आगाज़ कीजिए।

0: फिलहाल हम भी अपने शो का आगाज करेंगे असकार के साथ. वापस आएंगे तो कुछ और भी बातें आपके साथ शेयर करेंगे. स्टे हुक्ड टू एफएम 107 दिल से देसी.
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीजा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिक बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार एफ एम 107 पर.

الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك

राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग. मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड 6:16 ऑन द क्लॉक. तो चलिए आपकी कुछ हालचाल की तरफ आ जाते हैं. यहां पर हमें मैसेज है रहमत जी का, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग. इसके साथ हमें गुड मॉर्निंग कहा है तौफीक जी ने वक्रा से. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तौफीक जी आपको. एंड ये क्या आपने अपनी पिक्चर भेजी है? ये क्या तौफीक जी हैं क्या, ये फूलों के साथ, ये बताइएगा मुझे. अच्छा, यहाँ गुड मॉर्निंग कहते हैं, सलाम कहते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे. यस यस यस, यूसुफ शमीम जी हैं. थैंक यू सो मच, इतने सही इन्फॉर्मेशन आपने हमारे तक पहुँचा दी. और इसके साथ एमडी बसीर जी हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. एंड यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हुए रहमत जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग. और सऊदी से हमें सुनते हुए, इनका नाम नहीं नज़र आ रहा, बट नंबर जो है सऊदी से सुन रहे हैं, मुश्ताक जी, इन्होंने लिख के भेजा, वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग आपको. और यहाँ गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है नाजिया जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप भी खैरियत से होंगे. और ये हैं सामी. सो आज आपने अपना ब्रेकफास्ट की फ़ोटो नहीं भेजी, चलिए खैर. आपने भी सोचा होगा कि रोज़ रोज़ मैं क्यों भेजूँ, मुझे भी तो अपने आराम से ब्रेकफास्ट को जो है वो डाइजेस्ट करना है. बट एनीवेज, आपका जो ब्रेकफास्ट है ना वो बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ वैरायटी भी है, और मुझे काफ़ी टेम्पटिंग भी लगा. काफ़ी अच्छे से जो है ना अपने ऑर्गेनाइज करके उसको सेट करके उसकी पिक्चर भेजी, इट्स वेरी नाइस. इस तरह का ब्रेकफास्ट मिले और बना बनाया मिल जाए कहीं से, ओह क्या बात है. अच्छा, एक और प्यारा सा मैसेज है, गुड मॉर्निंग कहते हैं, शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेरी गुड मॉर्निंग. एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैडम जी, साजिद हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग साजिद जी, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे. गुड मॉर्निंग, सलाम, मैं आपको अलखोर से सुन रहा हूँ. वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. एंड ये हैं कामरान जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग. इसके अलावा यहाँ पर अली का मैसेज है, गुड मॉर्निंग कहते हुए, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. एंड आरिफ अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सलाम कहते हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, खैर खैरियत हमें पता चली, मैं तो कंटिन्यूसली बोल ही रही हूँ, आपको पता चल ही रहा है. तो खैर, अब जो है मौसम की तरफ

थोड़ी सी गर्मी ज्यादा महसूस हो. अदरवाइज कतर मेट डिपार्टमेंट ने जो है वो ये भी बताया है कि कुछ इलाकों में बादल होंगे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. तो ये आज के लिए भी है और कल के लिए भी प्रेडिक्शन है. तो बहुत ही कमाल की बात है कि यहाँ जुलाई में हल्की फुल्की बारिश हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे. बारिश तो क्या ही कहना चाहिए उसे, लेकिन हाँ बूंदाबांदी व्हाटएवर जो भी है एटलीस्ट कुछ तो है. अच्छा, सूरज की मैं बात करूँ तो सनराइज आज हुआ है 4:59 पे और सनसेट होगा 6:21 पे. यानी आज का दिन ऑल टुगेदर काफ़ी अच्छा है और उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन हाँ गर्मी तो है ही थोड़ी बहुत. और दोपहर के टाइम खास करके वहीं पर दिन के वक्त जो है वो दोहा, उम सईद, अल वखरा और खोर में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. वहीं पर दुखान, रुवेज, बू, सामरा में टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. QMD ने कहा है कि आप अपना खास ख्याल रखिए, गैर जरूरी तौर पर जो है वो बाहर मत निकलिए. फॉर द सेंस कि धूप वूप से बचिए, अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखिए और बाकी चीज़ें तो हम हर रोज़ ही आपको बता रहे हैं कि सनब्लॉक, सनस्क्रीन है, सनग्लासेस हैं. अगर आप निकलते हैं बाहर तो ये सारी चीज़ें कैरी कीजिए, उसमें कोई शर्म नहीं है. कुछ लोग तो मैंने देखा आराम से अम्ब्रेलास भी कैरी करते हैं. पहले ऐसे कहा जाता था कि अपनी स्किन का और अपनी मतलब अपनी अपना ख्याल करना इट्स काइंड ऑफ अ ग्रूमिंग, और वो कहीं ना कहीं वुमेन सेंट्रिक कहलाई जाती थी कि जी औरतें ही करती हैं, वो कैरी करती हैं सारी चीज़ें. बट आई हैव सीन कितने सारे लोग जो है मर्द हजरात भी अब अपनी स्किन को लेकर, अपने हेयर्स को लेकर, अपने लुक को लेकर इतने ज़्यादा कंसर्न हो चुके हैं और वो इन सारी चीज़ों का बाकायदा ख्याल रख रहे होते हैं, जिसमें जो है हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए. दैट्स रियली गुड, अपना ख्याल रखना चाहिए भाई. ऑफ कोर्स आप अपनी सेहत का, अपनी स्किन का, अपने बालों का अपना पूरा अच्छे से ख्याल रखिए, जो कि होना ही चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स के लिए बात है या उन पे एप्लीकेबल है, हम सबको अपना ख्याल रखना चाहिए हर तरीके से. और मैं तो देखती हूँ कुछ जो है मेल अब वो बाकायदा अम्ब्रेलास भी कैरी करते हैं कि धूप से बचे, ऐसा तो नहीं है कि वो यू नो टैन वगैरह हो जाए उनकी स्किन. तो अच्छा है, इट्स गुड. मैं हमेशा सोच रही होती हूँ कि मैं अम्ब्रेला लूँ, बट इट्स लाइक एक बड़ा काम मुझे लगता है अम्ब्रेला लेना, उसे ना फिर चलना थोड़े से डिस्टेंस के लिए. बट थोड़ा बहुत भी अगर आप एहतियात कर रहे हैं ना तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको ही मिलेंगे, आप ही एक्सपीरियंस करोगे. चलिए आज, और जैसे मैंने कहा कि आज 29 जुलाई है, तो कुछ ऑब्जर्वेंसेस भी हैं. जैसे हमें यूसुफ भाई ने बताया कि आज है इंटरनेशनल टाइगर डे. तो बिल्कुल जो शेर हैं उनकी हिफाजत और उनके बारे में बात करना, अवेयरनेस कैंपेन्स आज चलाई जाती हैं. इंटरनेशनल टाइगर डे आज सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये दिन जो है वो टाइगरों की हिफाजत के लिए, माफ़ कीजिएगा मैं शेर बोल गई, टाइगरों की हिफाजत के लिए जो है वो यहाँ कैंपेन्स और भी जितने तरीके की चीज़ें हो सकती हैं उस हवाले से आज दी जाती है. हालांकि बहुत ज़्यादा ताल्लुक 1-to-1 ह्यूमंस का नहीं है, बट या उनके लिए जितने काम हो सकते हैं उन्हें प्रिजर्व करने के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें आज की जाती है. इसके अलावा आज है नेशनल लज़ानिया डे. तो आप में से कितने लोगों को पसंद है, आई डोंट नो, एक बहुत ही फेमस इटालियन डिश है, तो उसे आज सेलिब्रेट किया जाता है. तो यस, आज है नेशनल लज़ानिया डे. इसके अलावा आज है नेशनल लिपस्टिक डे. अच्छा, ये भी होता है दिन, ये पता नहीं क्यों होता होगा लेकिन होता है आज का दिन. तो मेकअप और यू नो खूबसूरती से मुतालिक आज का दिन ये बहुत ही ख़ास दिन है, स्पेशली फॉर फीमेल्स. यहाँ पे तो मेल का कोई काम ही नहीं है. अच्छा, इसके अलावा ये दिन जो है वो सबके लिए हो सकता है इंटरेस्टिंग, स्पेशली बच्चों के लिए. एंड दिस इज़ कॉल्ड नेशनल चिकन विंग डे. तो चिकन विंग्स खाने का जिन्हें शौक है वो लोग आज इस डिश को इंजॉय कर सकते हैं. और इस तरह से एक दो दिन और भी हैं, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है. और रेन डे भी है, पता नहीं, अब देखो रेन डे है तो रेन हो सकती है थोड़ी ही सही, हल्की फुल्की से. बट चलिए, कुछ जगहों पे से रेन डे के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं. बारिश की अहमियत तो हम और सब अच्छे तरीके से जानते ही जानते हैं. तो आज का दिन ऑल टुगेदर है इंटरनेशनल टाइगर डे, लज़ानिया डे, नेशनल लिपस्टिक डे, चिकन विंग डे एंड ऑफ कोर्स रेन डे. तो इस तरह से आज के दिन को ऑब्जर्व किया जाता है. तो चलो जी, अभी ये बात हो गई, अब थोड़ी देर बाद वापस आएंगे तो आज का जो हमारा मुद्दा है उस पर बात करेंगे. आज जो है मैंने कल थोड़ा सा रखा था, ऐसा था जो काफ़ी थॉटफुल था, जहाँ पे लोगों को सोचना पड़ रहा था कि हम इस पर क्या बात करें और क्या नहीं बात करें. बट आज जो है वो बहुत सिंपल रखा है, मैंने एकदम सिंपल सा रखा है कि हर कोई इस पर बात कर सकता है, हर कोई इससे अवेयर भी है और हर किसी के लिए ये फेवरेट भी है और हर कोई इससे जान छुड़ाना भी चाहता है. तो ये मुद्दा क्या है अभी नहीं, वापस आके बताती हूँ. फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक एंड स्टे हुक टू FM 107 दिल से.

0: छोटी सी।
1: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
3: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
4: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ RJ नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।

जेनजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कथा 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

Right guys, welcome back. You're tuned into FM 107. This is Summer Mornings. मैं हूं नाजिया आपके साथ and 6:30 on the clock. और आज का जो मुद्दा है उस पे आने से पहले एक और मुद्दे पे मेरे मतलब एक और न्यूज़ पे बात कर लेते हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने मरीजों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ नई डिजिटल सर्विसेज जो हैं उन्हें शामिल किया है और इसका मकसद है कि जो वेटिंग टाइम है वो कम किया जाए, पेशेंट प्रोसेस को आसान बनाया जाए और साथ ही आउट पेशेंट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जाए. जी हाँ, नए फीचर्स के तहत अब पेशेंट्स जो हैं वो अपने मेडिकल अपॉइंटमेंट को ऐप के जरिए अपॉइंटमेंट से 48 आवर्स पहले कंफर्म कर सकते हैं. जब 48 आवर्स का कंफर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा तो अपॉइंटमेंट को ऐप से कैंसिल या फिर रीशेड्यूल नहीं किया जा सकता. आपको बताएं कि अगर किसी पेशेंट को इस दौरान अपॉइंटमेंट कैंसिल या फिर रीशेड्यूल करना है तो उन्हें जो है हेल्पलाइन नंबर यानी 16060 पे कॉल करना होगा. इस अपडेट के साथ रेजिडेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की सहूलियत भी शुरू कर दी गई है. पहले फेज में ये सर्विस जो है वो हार्ट हॉस्पिटल, अल वक्रा हॉस्पिटल और कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर में जो है वो स्टार्ट की जा रही है. ऐप के नए वर्जन में पेशेंट्स अब अपने जो है वो रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स भी देख सकते हैं. ये रिपोर्ट्स जो है वो HMC के तमाम हॉस्पिटल से मेडिकल फाइल सेक्शंस में अवेलेबल होंगी. जी हाँ, रिपोर्ट्स डॉक्टर के अप्रूवल के बाद ऐप पर जो है वो अपलोड की जाएंगी. आपको बताएं कि HMC का कहना है कि ये डिजिटल सर्विसेज जो हैं वो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सर्विसेज को ज़्यादा आसान बनाएंगी, तेज बनाएंगी, पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी और इस तरह से उनका टाइम भी बचेगा. तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कमाल की जो हमारी कतर गवर्नमेंट लगातार यहाँ करती रहती है. अब आपको पेमेंट का भी झंझट नहीं है, ऑनलाइन हो गया आपका स्केड्यूल. आपको अपने कन्फर्मेशन देखना है अपने अपॉइंटमेंट का तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, रिपोर्ट्स भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं. तो किसी तरह का कोई भी टेंशन नहीं, इट्स ऑल हसल फ्री. तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं हमें और आपको सबको इसकी जो है वो डेफिनेटली अप्रिशिएट करना ही चाहिए. अच्छा, इसके साथ आज फोटो नहीं लिया है सामी जी का कहना है. ऑल राइट, ओके. एंड चाय का मुद्दा होगा. अच्छा, आज जो मुद्दा है हुसैन अहमद जी कह रहे हैं कि आपने जो कहा है तो आज का मुद्दा चाय का मुद्दा नहीं. आज का मुद्दा चाय का मुद्दा तो नहीं है, आज का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सब जो हैं वो हाँ कह के इत्तेफाक तो रखते हैं लेकिन जब बात आती है किसी कॉन्क्रीट सोल्यूशन की तो हम शायद दो स्टेप पीछे चले जाते हैं. हम भी जाते हैं और हमारे बच्चे तो बाकायदा हमसे बहस करने आ जाते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है. मतलब वो इतनी ज़्यादा चीज़ को लेके, इस चीज़ के इतने प्रो हैं कि इसके खिलाफ जा ही नहीं सकते. देखिए, आज का जो दौर है दोस्तों वो है टेलीविज़न का दौर, सोशल मीडिया का दौर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के. आप हर टाइम जो हैं वो इतने एड्स भी देख रहे होते हैं, इतने पॉपअप्स आ रहे होते हैं और कहीं कई बार आपने ऐसा देखा और महसूस किया है कि कोई बहुत ही अच्छा चीज़ी पिज़्ज़ा आपके सामने आ गया, कोई बहुत ही अच्छा सा आपके सामने जो है वो बर्गर का ऐड आ गया, या कभी आपने देखा कोई और बहुत अच्छा सा सॉफ्ट ड्रिंक है उसका ऐड आपके सामने आ गया और आपको देख के एकदम से ऑल ऑफ सडन क्रेविंग हुई. ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसे सबके साथ हुआ होगा. अगर आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया माइन्यूटली तो बात अलग है, वरना हम सब भी बच्चे हैं और हमारे साथ होता है जब हम इस तरह के एड्स देखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारा दिल चाहता है.

0: अगर हम रो में तीन चार बार एक साथ देख लेना उस ऐड को है ना रो, तो फिर ये लगता है कि हाँ चलो लेट्स हैव दिस. तो बस हम इस तरह से जो है वो हमारी क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है. यहाँ जितनी बड़ी कंपनीज हैं विद यू रिस्पेक्ट, उनका पर्पस भी यही है कि आपको इस हद तक टेम्प्ट किया जाए कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी शॉप पे लैंड करें और उस चीज़ को खाएं. तो आज मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि जंक फूड्स के जो एड्स आप देखते हैं, जो एड्स आते रहते हैं, क्या उन्हें बैन कर देना चाहिए? क्या आप इस बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं, या आपको लगता है कि नहीं पूरी तरह से बैन नहीं होने चाहिए, या कुछ और अगर आपकी ओपिनियन है तो वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए. लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहूँगी मैं क्या सोचती हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर बाद. बट बिफोर दैट मेरा ये है कि आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है, ये जो एड्स आपको नज़र आते हैं जंक फूड्स के, इन्हें किस तरह से एक तो मॉनिटर करना तो एक अलग ही चीज़ है, लेकिन आप क्या ही करोगे उसे, बट क्या आप वाकई इस चीज़ के साथ इत्तेफाक रखोगे कि इन्हें बैन ही कर देना चाहिए जब ये हेल्दी नहीं है? डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है, हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो आखिर ये किसके लिए मार्केट में है? तो क्या वाकई इन्हें बैन करने से जो है वो बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा, एंड देन पीपल स्लोली ग्रेजुअली स्विच करेंगे कुछ हेल्दी ऑप्शंस की तरफ? व्हाट डू यू थिंक? चलिए एक फर्स्ट कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं. हेलो. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप?
1: ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अपना सुनाएं.
0: अल्हम्दुलिल्लाह रईस जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. तो पहले तो मुझे बताइए, कभी कोई ऐसा आपको ऐड देखा आपने जंक फूड का, कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई बहुत अच्छा पिज्ज़ा है, या कोई चॉकलेट नज़र आई, या कोई और बर्गर है, या बहुत ही अच्छे चिप्स है, कुछ देख के आपको ऐसे क्रेविंग हुई कि चलो मैं भी जाके खा लूँ या ले लूँ खरीद लूँ?
1: भैया हम तो ऐड से ही तंग हैं सबसे पहले, कोई भी चीज का ऐड हो इतना तंग है खासकर हम तो यार यहाँ पर पता नहीं क्यों इतना, मतलब इस कतर के, मैं इंडिया में रहता हूँ तो इतना ज्यादा हाला वो हर थोड़ी देर में इतना तंग हो कि एड से कि कोई भी चीज अगर अच्छा से ये करना चाहो तो उसके बीच में घुसेड़ दिया जाता है एड को. इतना अल्लाह मैं बोलता हूँ, कभी कभी तो मोबाइल को सोचते कि यार क्यों ये मोबाइल को हम उठा के पटक दें, खाली बात करने के लिए नॉर्मल चाहिए बस मोबाइल, ये बाकी ये ना सरदर्द रहेगा ये इसके ज्यादा ना देखे, मतलब ये करने के लिए ना देखेंगे, बल्कि नॉर्मली बात करने वाला वही रहे वो सबसे बेहतर है. इतना तंग है एड से कि कभी कभी तो अभी हाल में साल दो साल में तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कतर में भी इतना ज्यादा ये कर दिया गया है कि तंग की मतलब कोई भी वेबसाइट कहीं भी जाओ आप उसमें एड को ये करके रखा हुआ है, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा ये एड के मामले में देख के वो तो आदमी के अपने ऊपर डिपेंड करता कि किस चीज को क्या पसंद कर रहा है. हाला हम उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, इसको बैन करने के लिए बिल्कुल करना चाहिए, जो हमारे लिए नुकसानदेह है उन प्रोडक्ट को क्यों ये करके, जो कि मतलब डॉक्टर से लेके सारी चीज उससे मतलब एग्री नहीं है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा सेहत के लिए मुजिर है, बच्चों के लिए खासकर मतलब जितने जंक फूड है और बाकी और लोगों के लिए सेहत के लिए हेल्थली मतलब जो है, तो इसको इतना ज्यादा क्यों एडवर्टाइज किया जा रहा है? इसके ऊपर वाकई इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए कि रोक लगाना चाहिए कि इतना ज्यादा. हाँ उसको नॉर्मल अपने उसके एक जगह पे रखो कि बंदे को हाँ माइंड चाहा तो कभी कभी कभार इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जरूरत से ज्यादा उसको एडवर्टाइज करके और लोगों के माइंड पे एकदम होप देना ये मेरे ख्याल से थोड़ा बेहतर नहीं है.
0: ये बेहतर नहीं है. अच्छा एक चीज और भी है, एड्स जो आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, और ये जो जंक फूड्स हैं वो स्पेशली बच्चों को टारगेट करते हैं. और आप देखेंगे कोई कार्टून कैरेक्टर है वो बर्गर खा रहा है, वो चॉकलेट ले रहा है, या वो और कोई सॉफ्ट ड्रिंक है वो पी रहा है. अब बच्चे देख रहे हैं तो उनके भी दिल में आ रहा है कि ये चीजें मुझे भी खानी है, तो ये भी तो एक तरीका है.
1: मेरा ये कहने का मतलब है कि जो अकलमंद है बड़े लोग हैं उनके ऊपर तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, वो तो समझते हैं, लेकिन ये जो बच्चों के साथ ही बच्चे ही उसको इस्तेमाल करके और रेट कर रहा है ना, वो बच्चे बहुत ज्यादा जिद करने लग जाते हैं. मार्केट में हम बच्चों को कभी कभार लेके निकलते हैं तो बस वो जिद करें, नहीं मुझे चाहिए चाहिए. ये चीजें थोड़ा सा हमारे लिए मनफी के उस पे जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा जो इसके ये है उनको ख्याल करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर या उसका असर ना जाए उनके, क्योंकि बच्चे भी आजकल मोबाइल मतलब गेम से लेकर कोई भी चीज, वो तो कोई कोई इससे मतलब अछूता नहीं है, वो बिल्कुल नहीं
0: सही। हाँ,
1: तो वो बच्चों के माइंड में वो सेट रहता है, फिर वो उस चीज को उस प्रोडक्ट को दुकान पे मार्केट में देखते हैं, फिर उसी की जिद और उसी के ऊपर एकदम लग जाते हैं बिल्कुल कि नहीं मुझे हाँ। चाहिए तो बिल्कुल यही चाहिए,
0: बिल्कुल सही कहा। आपके हिसाब से बैन हो जाना चाहिए,
1: ये करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, बिल्कुल रोक लगाना चाहिए। मान लो मिसाल के तौर पे और बाकी जो अल्कोहल के प्रोडक्ट हैं या मतलब गुटखे, और इसके ऊपर बाकायदा लिखा रहता कि आपके सेहत के लिए और ये सबके लिए नुकसानदेह है, आदमी जो इस्तेमाल कर रहा है भले चाहे सिगरेट हो तो वो जानबूझ उसको ये, लेकिन ये चीजें जो प्रोडक्ट है कि बिल्कुल बाकायदा इसको सेहत के लिए एकदम बता रहे कि यहाँ तक मैंने देखा कि कैंसर के मरीज बच्चे, अब मैं क्या बताऊँ, अल्लाह ताला माफ करे कि मतलब हमारे खास में से एक बच्चा था, स्पेशल बच्चा था, उसका नाश्ते में बर्गर चाहिए चाहिए बिल्कुल, और इतना ज्यादा उसके सेहत पे मतलब मुजिर हुआ कि वो अल्लाह ताला बस रहम करे। अब लोग बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जरिया वही बना कि वो ठंडे पानी का, फ्रीज के ठंडे पानी का और ये बर्गर, ये सब उसका उसके लिए एकदम आम सी बात थी बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत ज्यादा, और आज उनके पेरेंट्स और वो इतने ज्यादा परेशान है इतना ज्यादा दवा करके, बस मतलब अल्लाह ताला रहम करे ज्यादा बेहतर हो गया, लेकिन बताओ उस पे स्टेज पे जाने के बाद में फिर बंदे के ऊपर और उसकी सेहत के ऊपर और उसकी लाइफ के ऊपर कितना बड़ा मतलब ये बन गया, मुसीबत का जरिया बन गया। आप सोचें,
0: सही बात है, सोचिए कितना
1: ये सब चीजें, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा WHO जो इसके ऊपर आगाह करता रहता है, लेकिन अब इसके ऊपर जो जहाँ के गवर्नमेंट है, जहाँ के जो सेहत के ये है जिम्मेदार है, उनको इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए बिल्कुल ये, और आने वाले टाइम में हो सकता है इसके ऊपर ये करें, अभी इसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है बिल्कुल,
0: नहीं,
1: करना
0: नहीं,
1: चाहिए।
0: पता है किया जा रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने बकायदा ये मुद्दा उठाया है, और ये अभी मैं आपको बताऊं कि शायद 3-4 वीक पहले की बात है, इसीलिए मुझे सहन में आया कि मैं ये सवाल लूंगी और मैं जानना चाहूंगी ऑडियंस से भी,
1: मतलब उस पर आपने मतलब इस बात को आगाह किया, और मैं खुद देख रहा हूँ कि वो बच्चा ये एकदम सेहतमंद अच्छा खासा, कभी उसके सर में दर्द नहीं होता था, और अचानक जब उसके अंदर में जब चेकअप हुआ तो उसको मतलब इतना खतरनाक मर्ज का मतलब ये हुआ कि आज 2-3 साल से बेचारे वो लोग दवा से मतलब परेशान है, बस अल्लाह ताला आसानी करे। बस ये तरह तरह के उस पर ये खास कर ये जंक फूड के उससे सबसे ज्यादा उसके सेहत पे मतलब ये असर पड़ा है।
0: देखिए
1: ये सब चीजें
0: बच्चे सॉफ्ट टारगेट है ही, बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया
1: नहीं आ रहा, और खासकर पेरेंट्स भी जो दुलारे होते हैं बच्चे, मान लो एक बच्चे होते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा वो नहीं करो कि यार जान दो बच्चे, मतलब सब लोग खा तो रहे हैं, सब लोग खा तो रहे, कहा उसको क्या हो गया, मिसाल के तौर पे वो भी सिगरेट पी रहा है, कहा उसको कैंसर हो गया। ये चीजें लोगों के जहन में बसा हुआ, लोगों को बेवकूफ बनाया, उनके उनको धोखा दिया जा रहा है, और उनको इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं है कि हर इम्यूनिटी हर बंदे के अंदर उस किस्म की नहीं होती है, और हमेशा फौरी तौर पे उसके अंदर उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। किसी किसी को थोड़ा सा वो बस समझ लो कि स्लो पॉइजन, जिस तरीके से कि स्लोली स्लोली स्लोली आप एक अपने उम्र को पहुंचेंगे तो या तो आपके ऊपर अटैक करेगा, और या तो फिर आप ये मतलब उसपे बच्चों के ही उसपे मतलब ही रहेंगे टीनेजर में ही उस टाइम पे आपके ऊपर अटैक करके, और फिर आपको पूरे उसका सिस्टम को और पूरे घर के और उसको पूरा धर्म भरम बता रहे, इतना खुशहाल फैमिली था और वो लोग बेचारे इतने ज्यादा मतलब उसमें पड़ गए। तो मैं लोगों को, मेरा मकसद था इसमें बयान करना कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना, मैंने
0: नहीं, अच्छा कि आपने ये वाली बात बताई, तो देखिए अब सबको समझ में, वैसे हम सब जानते हैं लेकिन ये एक लाइव एग्जांपल भी होती है,
1: करीब के फैमिली के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये करीब के फैमिली की
0: रियल एक्सपीरियंस शेयर किया
1: जी, मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि मतलब इससे बच्चों को दुलार में जो चीजें उनके लिए सेहत के लिए फायदेमंद है उसी के ऊपर मतलब ये किया जाए। बच्चे हैं भाई, वो तो उनके हाथ में, वो छोटे बच्चे, वो तो चाहते हैं चाकू दे दो, बंदूक दे दो, लेकिन हम अकलमंद है ना, उनको जब इस लायक होंगे फिर उस वक्त उनके हाथ में दिया जाए ना, पर वही बात है। तो बंदों को, हमारे लोगों को, पेरेंट्स को भी उसके ऊपर ख्याल करना चाहिए कि बच्चे का रुझान किस तरफ जा रहा है, तो उस तरफ से ये किया जाए, अवेयर किया जाए हमेशा कि मतलब ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, और वो चीजें उनके सामने जो एडवर्टाइज के ऊपर, तो ये तो बहुत ज्यादा समझ लो कि जुल्म किया जा रहा है उनके ऊपर, तो इसके ऊपर जो गवर्नमेंट के अंदर जो जिम्मेदारान है उसको, उनको भी इसके ऊपर ख्याल करके, और इसको इसको बिल्कुल बैन करना चाहिए मेरे ख्याल से,
0: बैन कर देना चाहिए
1: बिल्कुल।
0: मैं बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे से जो है इस टॉपिक की शुरुआत की है. थैंक यू सो मच जजाकल्लाह आपकी कॉल के लिए और

0: अपना रियल एक्सपीरियंस भी शेयर किया आपने, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम सब चाहते हैं इस टॉपिक पे हमेशा बात हो, हम सब चाहते हैं इस पे किसी तरह का कोई कॉन्क्रीट इसका सोल्यूशन भी निकल के आए, बट हो नहीं पाता है। तो कौन से ऐसे रीजंस हैं जो इसे कम्प्लीटली बैन करने से रोक देते हैं, उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। बट बिफोर दैट एक कॉलर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। कौन है मेरे साथ?
1: अज्जू।
0: ओ हाय अज्जू, हाउज योर मॉर्निंग गोइंग? ग्रेट, आई एम गुड, आई एम गुड।
1: मॉर्निंग इज गोइंग गुड। हार्श वेदर, व्हाट टू डू?
0: हार्श वेदर, या बट अभी अच्छी प्रेडिक्शंस ये हैं कि मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा, दोपहर तक शायद बादल हो और हल्की फुल्की बारिश कल भी हो सकती है। बारिश इन द सेंस यू नो, बहुत हल्की फुल्की
1: बूंदाबांदी।
0: हाँ, ह्यूमिडिटी इज देयर टुडे, या इट इज मोर देन 70,
1: इट इज इंक्रीजिंग इन दुकान फील्ड।
0: हाँ, ह्यूमिडिटी की वजह से गर्मी ज्यादा भी है। सो आज हम पूछ ही रहे हैं कि जंक फूड्स के जो एड्स हैं उन्हें क्या कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए, वो ट्रिगर करते हैं कहीं ना कहीं बच्चों को और हम सबको कि हम जो है वो जाएं
1: फूड एड
0: या
1: एडवर्टाइजमेंट।
0: या
1: advertisement is the purely business. For example, if you want to make one brand, you have to give them up to the down level. So, it should be advertisement is the one of the best choice. तो ये मैं और आप उसको बात करके फायदा नहीं है, क्योंकि this is like a corporate world, you know. So everyone they have to reach out that product up to top to bottom level. So advertisement ko ban karke there is no use. But those advertisement mein add kar raha na, wo log ko thoda sochna chahiye. Ab hum log ko kisko brand mein advertise kar raha hai. For example, मेरा भाई है, मेरा बेटी है, वो विराट कोहली का फैन है। वो विराट कोहली एक चिप्स खा रहा तो वो विराट कोहली खाया, मैं जाके वो खाएगा तो वो रियली वो फूलिश थिंग है। वो जो ये एडवर्टाइजमेंट का, अगर आजकल बहुत आदमी एडवर्टाइजमेंट का ऊपर है, वो जो पर्सनल स्टार्स है, पर्सनल प्लेयर्स है, वो लोग का जस्ट कंपनी ने वो लोग को पैसा दे दिया, आप एडवर्टाइजमेंट करो, उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो लोग को दे दिया होगा, लेकिन उसका बैक इफेक्ट किधर जाएगा? छोटा छोटा बच्चे लोग को जाएगा। एक तो फॉर एग्जांपल, एक तो विराट कोहली का डाई हार्ड फैन होता है। वो एक विराट कोहली एक पानी पीता, वो पानी में मैं पीता हूँ। विराट कोहली पेप्सी पी रहा, मैं पेप्सी पीता हूँ। विराट कोहली
0: एंड नॉट ओनली दिस, वी हैव सीन कार्टून कैरेक्टर्स आल्सो ड्रिंकिंग, नो ईटिंग बर्गर्स एंड ऑल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो बच्चे भी वही चीज जो है वो कॉपी करते हैं।
1: नो, दे सी दिस कार्टून कैरेक्टर इज वेरी रेयर टू प्रमोट वन एड।
0: No, they don't promote ad in the sense directly. मगर वो जो कार्टून्स में बच्चे देख रहे हैं, कार्टून्स में वो चॉकलेट खा रहा है, एक कार्टून कैरेक्टर जो उनका बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर, तो बच्चे खाते हैं।
1: मेरा मदर को बोलते मेरे को भी चाहिए पता। So, I was inspiring that cartoon. लेकिन वो पहले का कार्टून वो अच्छा चीज था, वो स्पेनिश एंड सम गुड थिंग्स दे आर प्रमोटिंग
0: एंड
1: दे आर शोइंग सम गुड थिंग्स, दे आर शोइंग सम गुड थिंग्स इन कार्टून, दे आर शोइंग लाइक पॉपाय द सेलर मैन एंड देयर इज इवन दिस बक्स बनी आल्सो, ही वाज ईटिंग ऑलवेज कैरेट ओनली, नॉट चॉकलेट और नथिंग।
0: बट अभी के कैरेक्टर्स,
1: मेरा ख्याल से वो एडवर्टाइजमेंट में बैन करने के नहीं, क्योंकि हर बिजनेस करने वाला का वो स्ट्रेटजी है हमारा प्रोडक्ट को ऊपर टॉप टू बॉटम पहुंचने के लिए वो एड लाजिम चाहिए, लेकिन वो करने वाला थोड़ा सोचने का हमारा ब्रांड में क्या है, वो लोग को फुल्ली बताने का हमारा ब्रांड में ये है, इसमें ये है बोलने का। खाली फॉर एग्जाम्पल एक बूस्ट का डब्बा है तो उसका उसका नेम प्लेट में देयर वाज प्लेस्ड व्हाट इज इनसाइड, बट ये पूरा आदमी को मालूम नहीं है ये क्या है।
0: सही,
1: तो थोड़ा सोचने का, सोच के आप
0: जो कह रहे हैं कि जो लोग एंडोर्स कर

0: रहे हैं वो खास करके अगर कोई फेमस पर्सनालिटी उसे एंडोर्स कर रहा है तो उनको थोड़ा सा अकाउंटेबल होना चाहिए और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली उन प्रोडक्ट्स को एंडोर्स,
1: थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए क्योंकि ये ब्रांडिंग करने वाला वो ब्रांड कभी भी नहीं पीता है, कभी भी नहीं खाता
0: है,
1: उसका अंदर क्या हार्म चीज है,
0: कितनी शुगर है,
1: इतना शुगर है। अभी ये बहुत आदमी बोला बूस्ट और कॉम्प्लान पियो आपको बॉडी का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है,
0: एंड यू नो है क्या
1: बॉडी ग्रोथ होता है, उसके अंदर क्या है वो, किसी का
0: आपको लगता है कोई सोल्यूशन है इस चीज का, कोई है?
1: देर इज सोल्यूशन मेरा मदर को, मेरा माम को मैं बोलेगा थोड़ा मेरे को ये डिजी, आई फील डिजी, मेरा हेड घूम रहा है बोल रहेगा, तो वो सीधा थोड़ा जिंजर का चाय देता है वो लोग का। हमारा कल्चर में हमारा और फॉर एग्जाम्पल द अर्ली फॉर एग्जाम्पल मेरा मदर का एज में, मेरा ग्रैंडफादर का एज में देर इज एवरीथिंग इज देयर। आपको प्रोटीन हमारा गॉड ने दिया हुआ है हर चीज का,
0: मतलब द सॉल्यूशन इज लाइक कि पेरेंट्स,
1: या
0: मदर्स आर द गुड सॉल्यूशन, द पेरेंट्स आर द गुड सॉल्यूशन, वो किस तरह से बच्चों को रोकें।
1: रुके अभी अभी मेरा बेटी 3 साल हो गया, अभी मेरा कोई बाहर से आने वाला थोड़ा 2-3 चॉकलेट देता है,
0: अच्छा
1: वो भी डर के खाता है।
0: ओह अच्छा नाइस, वो नहीं खाते कोई भी जंक फूड?
1: नहीं मैं अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस किया।
0: चलो दैट्स गुड,
1: वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, करेगा तो फिर उसको आदत हो जाएगा, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस नहीं किया कोई जंक फूड, कोई चॉकलेट वो स्वीट वाला चीज।
0: वेरी गुड।
1: इवन ये बेबी प्रोडक्ट का पाउडर आता ना वो भी मैं नहीं दिया पूरा। मेरा ग्रैंड मदर अभी भी जिंदा है, उसको मैं पूछा, उसको मैं पूछा था वो छोटा बच्चों को क्या क्या फूड देने का, वो बोलता है आपको ब्रेन डेवलपमेंट के लिए रागी एंड आलमंड को दोनों को मिक्स करके वो पानी वो गर्म पानी में थोड़ा गिल के दो, वो बेस्ट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। वो जैसे मैं वो हमारा वो विंटेज वाला आदमी के साथ बहुत सारा आइडिया लिया, उसके हिसाब से मेरा बच्चों को मैं खिलाया, मतलब वो 1950-1960 में आदमी लोग को क्या खाया वो सेम खाना मेरा बच्चों को दे रहा है। उसमें कोई एड ऑन शुगर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है, ओनली नेचुरल थिंग्स को मैं दे रहा है। जस्ट सम आइटम्स आई कैनॉट गेट फ्रॉम नेचुरल, देन आई कैन बाय फ्रॉम सुपर मार्केट,
0: बट
1: अभी तक मैं जंक फूड नहीं दिया। लेकिन ये थोड़ा सोचने का हमारा, कोई आदमी पहले खाने का पहले सोचने का उसका अंदर क्या है।
0: हाँ बच्चे तो खैर मासूम है, वो तो क्या ही सोचेंगे, हमें ही उनका ख्याल रखना है। और जैसे आपने कहा कि आपने आदत नहीं डाली और आपकी कोशिश है कि आदत नहीं पड़े बच्चे की, तो यही एक बड़ा सोल्यूशन है कि आप घर का माहौल इस तरह का सेट रखें कि बच्चों को हेल्दी ईटिंग्स ही जो है वो पसंद आए और उसी की तरफ जाए। और सो हेल्दी ईटिंग को और कितना इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ कोशिश ये करें कि घर में ही ये तरबियत की जाए।
1: घर में कोशिश करने का, आप एक बार दे दिया उसका टेस्ट उसको पसंद आएगा तो फिर वो बार बार पूछेगा। अगर आप नेवर ट्राई किया तो नो प्रॉब्लम, वो माइंड भी नहीं करता।
0: सही दैट्स ट्रू, ये आदत की बात है, दिस इज द हैबिट। किस तरह से आप बच्चे की ग्रूमिंग कर रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं उसको, तो काफ़ी हद तक बच्चे रुक जाते हैं। और कुछ लोग जो है वो नहीं उस तरह से रोक टोक करते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जैसे हमारे पहले कॉलर ने आके बताया। बट थैंक यू सो मच अज्जू, थैंक यू फॉर योर कॉल, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, अपना ख्याल रखिए। ऑलराइट थैंक यू बाय। ऑलराइट तो यहाँ पर अभी तक तो सभी लोग ये हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि हम सब जो है वो चाहते तो है कि कुछ ना कुछ एक कॉन्क्रीट सा सॉलिड सा सोल्यूशन निकल के आए, बट वो सोल्यूशन कौन निकालेगा, कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, ये समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो ही जाता है। अब आप जानते ही हैं कितने सारे एड्स आएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी तो टेम्प्ट होंगे कि चलो मैं ये खा लूँ। और जंक फूड जब हम बात करते हैं तो उनमें कैलरीज हैं, शुगर है, नमक है, बहुत सारा सारा अनहेल्दी फैट है, जो न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए हमारी बॉडी को वो नहीं मिल रहे हैं, और डॉक्टर्स कहते हैं इसकी वजह से बहुत सारी

0: बीमारियां हो रही हैं बच्चों को देखिए, पहले हार्ट का नहीं सुनने में आता तभी होता है. ओबेसिटी इज सो वेरी कॉमन, डायबिटीज भी छोटे छोटे बच्चों में शुरू हो गया, बच्चे हो बड़े हो हम सब. और उसका सीधा लिंक डॉक्टर क्या कहते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स. जब ईटिंग हैबिट्स की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है जंक फूड्स. तो भाई जंक फूड्स जो हैं वो इतना टेम्प्ट कर रहे हैं अगले को, तो कोई क्या करे. यही आज का मेरा सवाल है, और कोई सोल्यूशन अच्छा सा बता सकता है तो प्लीज़ बताइए. एक कॉलर मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नूर जी हैं हमारे साथ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है. सो कैसी जा रही है आपकी सुबह?
1: बहुत अच्छा भी है, इतना खराब भी नहीं है.
0: अच्छा जा रहा है,
1: तो गर्मी बराबर है.
0: हाँ नहीं, गर्मी तो आज रहेगी रहेगी, ह्यूमिडिटी काफी है, बट उम्मीद भी है कि दिन में थोड़े से बादल वादल आए. कहीं कहीं कुछ इलाकों में शायद थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो जाए. लेट्स सी.
1: बारिश का तो काम नहीं है, बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी
0: आज है, ह्यूमिडिटी आज बहुत ज्यादा है, इसीलिए आज गर्मी भी ज्यादा है. हाँ जी, क्या कहेंगे आप?
1: नहीं जी, मैं अजीब भाई जी बोला ना आपका कॉलर.
0: हाँ जी हाँ जी,
1: मैं 100% में एग्री करता हूँ.
0: अच्छा,
1: इसका देखो प्रचार कौन कौन आदमी करता है, ये पूरा मशहूर है.
0: बिल्कुल, हम खाते हैं.
1: तो खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि इंसान यहाँ पे कोई आदमी बुरा काम करता है, कोई गड्ढा खाना हुआ है, हमको मालूम है गड्ढा में जाएंगे तो हम मतलब नुकसानदेह है. तो गड्ढा खनने वाले से ज्यादा गुनहगार तो हम खुद है जो जा रहे
0: हैं.
1: बिल्कुल, प्रचार करना पैसे के लिए, तो कोई भी आदमी अपना कुछ भी करता है. बहुत आदमी, हर आदमी नहीं है, पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं. लेकिन ऐसे बहुत बहुत आदमी जिसके पास जितना पैसा हो उतना पैसे के लिए वो बेकार काम ज्यादा करते हैं. एग्जाम्पल कितने कितने बड़े स्टार है, मैं टीवी मोबाइल में देखता हूँ तो बिमल का प्रचार, पान परख का प्रचार, किंग खान सब करता है, किंग खान सब करता है, मतलब इतने बड़े रईस वो भी पैसे के लिए मतलब जीवन का प्रचार करते हैं दूसरे को खिलाने के लिए. तो इंसान को खुद समझना चाहिए कि हमारा ईश्वर साफ साफ लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें तो हमारा गलती है जो हम खा रहे हैं. बस बात है कि इंसान की अल्लाह तला ने दिमाग दी है, दिमाग का इस्तेमाल कर.
0: बिल्कुल,
1: जैसे एग्जाम्पल मेरे गाँव में कोई आदमी है मतलब शराब बेच रहा था, लेकिन वो कभी लाइफ में पिया नहीं, तो वो तो समझदार है, तो वो नहीं पी रहा है तो फिर तुम क्यों पी रहे हो?
0: जिन जो चीजें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बस हमें खुद को एहतियात रखना और समझना है. जैसा आपने कहा, बहुत ही अच्छी बात की, जबरदस्त नूर जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू फॉर योर कॉल. अपना ख्याल रखिए. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है जंक फूड के एड्स जो आते हैं, क्या उन्हें कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर ज़रूर बात कीजिए. आपके पास कोई राय है देने के लिए ज़रूर शेयर कीजिए. और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि ये क्वेश्चन मेरे जहन में तब आया जब मैंने देखी एक आर्टिकल, बकायदा पढ़ा, WHO और यूनिसेफ इन्होंने मिल के जो है वो एक आर्टिकल पब्लिश इनकी तरफ से हुआ, जहाँ कहा है गवर्नमेंट्स को कि आप जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो जितनी भी मार्केटिंग या एड कंपनीज हैं, उनके लिए एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी और कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगाए जाएँ. यहाँ पर मुद्दा उन्होंने ये रेज किया कि बच्चे जो हैं स्पेशली सॉफ्ट टारगेट हो रहे हैं, और बच्चों के जो एड्स वगैरह आते हैं उसमें स्पेशली इस तरह के कोई जंक फूड से रिलेटेड एड्स या किसी तरह के भी जंक फूड को कोई भी एंडोर्स करता हुआ कोई भी कैरेक्टर या कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए. एटलीस्ट इस पर बात की गई, और गवर्नमेंट्स के साथ मतलब WHO और यूनिसेफ का ये जॉइंट इनिशिएटिव है, और इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को एक टूल किट भी प्रोवाइड की है, गाइडेंस भी दी है कि कैसे कैसे इसको जो है इस रूल्स को रेगुलेशन को किस तरह से तैयार किया जाए. अच्छा, अब इसको लोग चाहते तो है आ जाए, लेकिन जो बड़ी कंपनीज है उनका तो बड़ा लॉस होगा. और उनकी दलील मैं पढ़ रही थी, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मुझे बड़ी हंसी भी आई पढ़ के. उन्होंने कहा कि हम जो है ना ये फास्ट फूड इंडस्ट्री जो है लाखों लोगों को रोज़गार फराहम करती है, बिजनेस हम देते हैं, अगर इन पे एड्स पे पाबंदी लग गई ना तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, लोगों की जॉब्स जाएंगी और जो है बड़ा असर पड़ेगा लोगों की सेहत पर, फिर आप उसका क्या सलूशन दोगे। तो मुझे पढ़ के बड़ी हंसी भी आ रही थी और मैं हैरान भी हो रही थी कि देखिए कुछ हद तक ये बात ठीक है कि भाई इससे ये बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और लेकिन फिर आप जहर बेच के लोगों को जो है वो रोज़गार दे रहे हैं और फिर आप बात ऐसी कर रहे हैं, इस स्ट्रॉन्ग दलील को मतलब बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, स्ट्रांगली रख रहे हैं कि नहीं हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब किस मुंह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इसलिए आवाज़ उठाई क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ एक डेटा भी शेयर करूँगी जहाँ जंक फूड खाने की वजह से कितने सारे बच्चे जो हैं वो जैसे ट्रॉमा या डिसऑर्डर या इस तरह की चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं है, वो और बहुत सारे इश्यूज का शिकार हो रहे हैं और रीजन कहीं ना कहीं डॉक्टर ने एसोसिएट किया है कि उनकी ईटिंग हैबिट्स ही हैं। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन का सवाल है, बच्चों का सवाल है, तो फिर क्या आ जाता है जिम्मेदारी पेरेंट्स की। अब आप स्ट्रिक्टली क्यों नहीं मॉनिटर करते, पेरेंट्स क्यों नहीं देखते भाई ये तो पाबंदी, हम पाबंदी क्यों लगाएं, हर आदमी की एक ओपन चॉइस है, कुछ लोग पसंद करती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जब मार्केट में आ ही जाती हैं और इतना ज़्यादा इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई जाती हैं तो हम टेम्प्ट होते हैं, हम सब इंसान ही टेम्प्ट होते हैं, हमारा दिल चाहता है, हमारा चाहता है तो हमारे बच्चों का कैसे नहीं चाहेगा। आप सोचिए कितने अच्छे अच्छे एड्स होते हैं कि अगर आप चॉकलेट देखें तो आपके खुद के मुँह में पानी आ रहा होता है कि अरे चलो चलो चॉकलेट खाते हैं, चलो हम ये चीज़ खा के आते हैं, मतलब इतने अच्छे क्रिस्पी पिज़्ज़ास नज़र आते हैं कि आप खुद ब खुद अटेम्प्ट होते हैं, आप रोक नहीं पाते अपने आप को, तो बच्चे बेचारे कहाँ से रुकेंगे, इसलिए वो भी सिद्ध करते हैं। तो इन एड्स पर कुछ पार्शियल पाबंदी होनी चाहिए या पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए, पूरी तरह तो पता नहीं कभी होगी नहीं होगी मुझे नहीं लगता, बट या किसी तरह के रूल्स रेगुलेशंस कुछ तो होना ही चाहिए जो कि स्ट्रिक्ट हो, वो गवर्नमेंट की तरफ से आए और स्ट्रिक्ट आए तो कुछ बात बनेगी ऐसा लगता है। बहरहाल आपके लिए ये ओपन है क्वेश्चन, जंक फूड्स के जो एड्स हैं उन्हें कम्प्लीटली बैन करना चाहिए या नहीं चाहिए, व्हाट यू थिंक, डू लेट मी नो ऑन द नंबर 666-22107, 443-443-77 इज द नंबर, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए, हाँ ना भी लिखकर भेजिए, व्हाट्स एवर, एटलीस्ट हाँ तो लिखकर भेजिए जिससे हमें पता चले कितने सारे लोग हैं जो जेन्युइनली ये चाहते हैं कि इस कैंपेन का हम हिस्सा बने और इन जंक फूड्स की एड्स पे पहले पाबंदी। देखिए एकदम लोग कहते अरे एड पे पाबंदी करके क्या होगा, जंक फूड तो है ही मार्केट में, अरे धीरे धीरे स्टेप्स लिए जाते हैं बाबा, एकदम से बड़ा कोई स्टेप नहीं ले सकता, जब एड्स पे पाबंदी होगी मार्केटिंग कम होगी तो हो सकता है डिमांड भी कम हो जाए, जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, जब और सप्लाई कम होगी तो हो सकता है एक स्टेज आ जाए कि वो बिल्कुल ही बंद हो जाए, तो धीरे धीरे हर चीज़ की जो है ना वो शुरुआत होती है, तो एकदम से एकदम कुछ बड़ा करने के चक्कर में कुछ छोटा भी हम नहीं कर पाते है ना। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक ले रही हूँ, वापस आऊँगी तो आपकी कॉल्स भी लूँगी, आपके मैसेजेस भी लूँगी, तब तक आप सोचिए और मुझे बताइए कि जंक फूड्स के एड को कम्प्लीटली कर देना चाहिए या नहीं, हाँ या ना भी आप लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, 666-22107 हमारा नंबर है।

0: के 4 मिनट हो चुके हैं हमारे स्टूडियो क्लॉक में, हम अपने शो के सेकंड आवर में एंट्री ले चुके हैं। यहाँ पर मुद्दा काफ़ी गर्म है, मौसम भी गर्म है, मुद्दा भी गर्म है, और मुद्दा आज का हमारा है कि जो जंक फूड्स हैं उनके एड्स को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको क्या लगता है ज़रा बताइए हमें। एक कॉलर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हेलो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं आरिफ जी आप, खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। एंड हाउ इज योर मॉर्निंग गोइंग, कैसी जा रही है आपकी सुबह, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया अच्छे से?
1: पराठा हो गया है, चाय हो गई है।
0: नाइस, पराठा चाय सुबह हो गई, चलिए अच्छी बात है, आप तो भी हेल्दी की तरफ ही हैं, इसको और हेल्दी बनाइए, हेल्थ के लिए जरा हेल्दी बनाइए। मोबाइल पे देखा और एकदम से आपको क्रेविंग हुई कि चलो लेट्स हैव दिस सॉफ्ट ड्रिंक, या चलो लेट्स हैव दिस चिप्स ले लेता हूँ, या चलो लेट्स गो फॉर चॉकलेट, या कोई बर्गर, या कोई पिज्जा, या कोई और अनहेल्दी जंक फूड आपको देख के बड़ा आपको टेम्प्ट हुए आप और आपने उसे खरीदा और खाया, ऐसा हुआ तो होगा?
1: एक बार मेरे को बहुत ही मतलब मैंने उतना बाहर का जंक फूड खाया नहीं है, मैं ज्यादातर या जो मेन डिनर सेट होता है ना मैं वही खाना पसंद करता हूँ, बाहर भी या घर पे घर का खाना मेरे को अच्छा लगता है।
0: अरे वाह, और जब से छोटे तब से ही आपको पसंद है घर का खाना? बचपन से
1: ज्यादातर नाश्ते में वो तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लेता हूँ, वरना ज्यादातर जो भात हो गई और उसके साथ जो सब्जी या दाल हो गया मैं वही प्रिफर करता हूँ ज्यादा।
0: और दैट्स नाइस,
1: एक मेरे को अभी मैं कतर में आया तो 90 डिश हुआ मेरे खाने में और शॉर्मा वो थोड़ा मैं खाता हूँ कभी कभार।
0: नहीं वो तो ठीक है, वो हेल्दी, वो तो अनहेल्दी में नहीं कहूंगी मैं।
1: और चिप्स मैंने एक बार, मेरे को बहुत ही दिल कर रहा था, 3-4 दिन से मेरे को दिमाग में घूमे जा रहा था किधर से मालूम है, फिर मैंने एक दिन 5 रुपए की इसलिए 5 रुपए की दोस्त के साथ बैठा, दोनों दोस्त
0: 5 में तो बड़ा वाला पैकेट आया, हमने तो बहुत लिया, छोटा लेते हुए अनहेल्दी
1: उन लोगों के पास था ही नहीं, वो उससे छोटा था ही नहीं।
0: ये भी स्ट्रैटेजी है पता है लोगों की, हमें पास छोटा वाला होते ही नहीं है, अब इतना बड़ा लेगा अगला तो खाएगा ही खाएगा उसे।
1: खाना बड़ा दिल में वो घूम रहा था दिमाग में मेरे कि अब मैं बोला कमा रहे हैं, अगर एक ये ना खाता है तो फिर मुसीबत है, मेरे दिमाग में घूमता रहेगा। तो मैंने वही एक बार खाया था खुद खरीद के, और अभी तक मैं आपको बता दूं बर्गर मैंने एक बार खाया, बता दी तक
0: बहुत अच्छी बात है कि अपने लाइफ में गिन चुन के ही बार खाया है बर्गर एंड ऑल दिस, बहुत बड़ी बात है, और इसमें क्रेडिट आपसे ज्यादा पता है किसको जाता है, आपकी मम्मा को जाता है, उन्होंने आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है ना वो बहुत अच्छी रखी शुरू से, तो आपकी अब आदत भी नहीं है खाने की ये सारी चीजें। अब हमारी दादी वगैरह को देख लो, अब उनको अगर बोलो बर्गर नूडल्स जो ये चाउमिन मैगी सेगी तो वो कहते हैं अरे ये सब क्या है, हमने तो कभी खाए नहीं, हमारा तो टेस्ट ही नहीं डेवलप है, वो नहीं खा पाते वो लोग क्योंकि कभी उन्होंने खाए ही नहीं।
1: नूडल्स कभी कभार खुद से बना के खा लेते हैं वो अलग बात है, पर वो बाहर की वो फिर भी प्रेफर उतना नहीं करता ना अपना, बाहर अगर खाना है तो अच्छा से एक बार खाना तो खा,
0: हेल्दी चीजें खाते हैं। नाइस, वेरी गुड, अरे आप तो बड़े अच्छे समझदार इंसान है। अच्छी बात है।
1: एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो ये आज के हवाले से, जो इसमें जो कंटेंट क्रिएटर भी लोग जाते हैं ना जो एडवर्टाइज करते हैं, वो भी तो एक गार्जियन होते हैं, उनका भी कुछ फर्ज बनता है कि हम लोग क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं पैसे लेकर, उनका भी कुछ बनना चाहिए।
0: हाँ ये तो सही बात है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अकाउंटेबल होने चाहिए, और वाकई जब लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं उन्हें इतना एडमायर करते हैं तो उन्हें इस तरह की चीज़ों का ऐड नहीं करना चाहिए, जैसे अभी हमारे दोनों लिसनर्स
1: बहुत असर पड़ता है
0: स्पेशली बच्चों का, अब बच्चे देखेंगे कि मैसी खा रहा है मान लीजिए कोई सॉफ्ट ड्रिंक को एंडोर्स कर रहा है तो बच्चा कैसे रुकेगा।
1: मैंने कल बोला था ना कि वो एक कोला का रोनाल्डो ने हटाया था उसका कितना बिलियन का लॉस हुआ था,
0: नुकसान हुआ, बिल्कुल सही बात है
1: नुकसान हुआ था, अब उतना बड़ा बड़ा आइडल एक स्टेप ले रहा है तो कितना बिलियन का नुकसान हो रहा है।
0: हालांकि बहुत बहुत ही ज्यादा टफ डिसीजन होता है ये रोनाल्डो ने ले लिया, बाकी कोई

0: नहीं ले सकता क्योंकि आप समझते हैं इतना पैसा इन्वॉल्व इन चीजों में।
1: हाँ
0: चलिए अच्छी बात है, कुछ लोग अच्छे हैं
1: खेल के आगे क्योंकि इंसानियत या फिर जो खेल को बनाए रखती है मर्यादा एक पता है।
0: सही बात है, जब आपको रियल हीरोज मान रहे हैं लोग तो आप वाकई दिखाएं भी तो कि आप सच में सच्चे रियल हीरो हैं। तो आपको उनकी अपने फैंस की सेहत का हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, पर चंद पैसों के लिए लोग आसानी से जो है ना वो सौदा कर लेते हैं, ये भी रियलिटी है। बट एनीवेज बहुत ही अच्छी बात और मुझे जान के पर्टिकुलरली खुशी हुई कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कम टाइम्स ऐसे आए कि जब आपने जंक फूड खाया, अदरवाइज यू स्टिक टू हेल्दी फूड एंड दैट्स वेरी नाइस। क्रेडिट आपके पेरेंट्स को, आपकी मॉम को जाता है कि उन्होंने इस तरह की आपकी तरबियत की। एनीवेज ये जिम्मेदारी तो माँ बाप की ही है घुमा फिरा के, बट चलिए फिर भी अच्छी बात ये है कि हम लोग उसको निभा सकें अच्छे से।
1: उसके साथ आलू का हम लोग भुजिया बनाते हैं, आपको क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, भुजिया बोलते हैं। उसके साथ पापड़ ना भी हो तो चले और आलू का भरता हो बस।
0: आलू की भुजिया हो या आलू का भरता भी हो, दो दो बार आलू? अच्छा जी,
1: आलू का भरता हुआ या बैगन का जो मतलब एक कुछ उसमें चाहिए या ना भी चाहिए, बस दाल भात और आलू का भुजिया होना। हम देसी लोग एकदम वो चोर से खाते हैं,
0: बहुत शौक से खाते हैं। मुझे भी आलू का भरता बहुत पसंद है ये सारी चीजें जरा, इवन मुझे बैगन का भरता कितना अच्छा लगता है।
1: बैगन का भरता मैं भी खुद से इधर बना के खाता हूँ, वैसे तो कंपनी खाना देती है पर कभी कभार खाने का दिल करता है तो मैं लेके आके खुद से बनाता हूँ।
0: सही सही, बहुत ही अच्छा, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू आरिफ जी, थैंक यू फॉर योर कॉल। हमेशा ही आपसे बात करके बहुत मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी मॉर्निंग को और अपने रेस्ट ऑफ द डे को अच्छे से इंजॉय कीजिए भरपूर तरीके से। ओके जी, अल्लाह
1: हाफिज़, अल्लाह
0: हाफिज़, टेक केयर। ऑलराइट, यहाँ पर बात चल रही है जंक फूड्स के एड्स को। देखो पूरी तरह से जंक फूड तक तो मैं नहीं पहुंची हूँ, क्यों नहीं बैन कर दीजिए, वो तो बहुत दूर का स्टेप है। लेट्स टॉक अबाउट एड्स, क्या एड्स को आपको लगता है कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए? व्हाट यू थिंक? एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो,
2: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं सैयद खादिम हुसैन जी भाई, खैरियत से?
2: बिल्कुल साहब, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुन रहा था माशाल्लाह हमारे जितने भी कॉलर्स हैं, जितने भी लिसनर्स हैं माशाल्लाह, वो सब ये चीज के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कि सिर्फ एड्स बंद नहीं करना है, ये शुरुआत अपने से करनी चाहिए, अपने घर से करनी चाहिए और खुद से करनी चाहिए।
0: सही, ये भी आपने बहुत सही बात की।
2: चलाएं वो एड्स भी, चलाएं वो मार्केट्स भी, चलाएं वो जो भी है कंपनी जो भी है वो चलाएं, लेकिन अपने से शुरुआत करनी चाहिए कि बिल्कुल मैंने आज ही से ही बंद करना है।
0: एक स्ट्रॉन्ग फैसला।
2: अगर जी, अगर मैं
0: आप तो समझदार है, मान लीजिए आप आपने फैसला ले लिया और आपका बच्चा है वो छोटा है, मासूम है, वो इतना स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं ले पाएगा और उसने ऐड देखा, उसको क्रेविंग हो रही है कि मैं खाऊंगा, मुझे चाहिए, वो जिद कर रहा है, फिर आप क्या करेंगे?
2: बच्चों के सामने तो हम लोगों ने एक वो मिसाल रखा हुआ है कि ये चीज वे ये इस चीज से बनते, मैं वो नाम नहीं लूंगा कि कौन सी चीज से वो बनते, उसमें अच्छा, कौन सी चीज अच्छा, की अच्छा, चर्बी जो है वो इस्तेमाल होती है बहरहाल। लेकिन वो जब आप एक बार बच्चों को अगर छोटा भी है ना और उसके सामने ऐसी बात करें तो मेरे ख्याल में आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, वो ये बात को बहुत जल्दी समझते हैं। अगर घर में एक चीज आप बना सकती है या बना सकते हो तो वो घर में उसके सामने बना के दे दो, जिद अगर ज्यादा जिद करते हैं तो उनको बना के दे दो कि ये सही है और उसमें ये चीज गंदी चीज है इस्तेमाल होती है, तो लिहाजा बच्चे जो है वो बहुत जल्दी समझते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है कि एक हमारे उधर इलाके में से कुछ बच्चे थे, वो एक चिप्स एक पैकेट ले लिया या दो पैकेट थे जितने भी थे उसमें से चिका के वो बेहोश हो गए थे वो बच्चे। क्या हुआ था नहीं मालूम, वो ऐसे कि वो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जो गठिया किस्म के वो चिप्स होते हैं वही, तो वो उससे वो बच्चे बेहोश हो गए थे। फिर वो मीडिया पे भी वो शोर शराबा हो गया बहुत ज्यादा, तो वो कंपनी जो है वो बंद हो गई। तो ये चीजें बच्चों को ये बातें ये सब उनसे शेयर करनी चाहिए कि इससे इतना नुकसान है ये नुकसान है। बहरहाल यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कतर में हम लोग तो ऐसे, मैं खुद अगर आप देखें तो मैं खुद

0: होटल में खाना नहीं खाता। मेरे दोस्त भी अगर मुझे बोले कि चलो चलते हैं किसी होटल, मैं बोला नहीं। तो अक्सर मुझे ये लोग बोलते हैं कि आप कंजूसी करते हो, मैं बोलता कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी ये नहीं मालूम, हम तो किचन के अंदर नहीं जा सकते कि उधर जान के देखे कि वो लोग क्या इस्तेमाल करते और क्या डालते हैं इसमें, बर्तन वॉश करते हैं या नहीं। बहरहाल वो तो सही है, इधर वो बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं और रूल्स बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन फिर भी एक वो दिल में एक वो शक रहता है कि ये लोग खाने में क्या क्या चीज इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात एक मैं आपको बताऊं कि हम लोग फ्रिज में रखा हुआ खाना अगर एक दिन बनाया तो अगले दिन हम लोग ज्यादातर वो नहीं खाते, यानी बच्चे भी नहीं खाते, अक्सर बड़े भी नहीं खाते, बोलते नहीं ये कल का नहीं कहूंगा। लेकिन होटल में जो हम लोग खाते हैं वो हमें ये नहीं मालूम कि वो कब का रखा हुआ है,
1: आराम से
0: वो तो उसी तरह फ्रेश बना के नहीं देते, वो तो सिर्फ गर्म करके ला के देते हैं।
1: सही बात है,
0: इसलिए कि 10 मिनट में कौन आपको मटन कढ़ाई और ये बना सकता है,
1: कोई भी नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात
0: जी। एक और चीज इधर ये जो चिकन है ये आप देखो देसी पुराने हमारे वक्त में, मैं जब ये छोटा था वो टाइम की बात करूं, चिकन ये जो हम लोग अभी खाते हैं ये तकरीबन 30 दिन में बड़ा हो जाता है।
1: अच्छा।
0: और वो 6-6 महीने लगते थे उस पे।
1: अच्छा।
0: जो घर के देसी मुर्गी थी। तो इसमें भी बहुत फर्क है, इसमें क्या इस्तेमाल होता है, उनको क्या खुराक, क्या क्या गजा में वो क्या देते हैं उसमें।
1: बिल्कुल,
0: तो वो इतने जल्दी 2 किलो और 1 किलो और 1.5 किलो तक हो जाते हैं। ये चीजें इस पे खुद अपने से शुरुआत करनी चाहिए कि मैंने ये चीज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी और मैंने अपने बच्चों को इससे बिल्कुल दूर रखना है। वो लोग चलाए, एड चलाए, कंपनी चलाए, जो भी है वो उनके अपने वो है, लेकिन शुरुआत अपने से करनी चाहिए।
1: अपने आप से करें, घर से करें और खुद एज रोल मॉडल दिखें आप बच्चों को, तो बच्चे भी, अगर आप भी खाएंगे तो फिर बच्चे को कहां से रुक पाएंगे।
0: वो वही बात है, अगर बच्चों के सामने मैं काम गलत करूं तो वो बच्चे तो बोलेंगे कि वो कर रहे हैं ना,
1: सही बात
0: बाबा कर रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन होटल का खाना भी मैं बिल्कुल बहुत कम, मैं कहता हूँ कि कभी 99.9% मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ।
1: नहीं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है कि आप घर में भले आप खिचड़ी बना के खा रहे हैं या कुछ और बहुत हल्का फुल्का आपने बना लिया, बट आप घर का ही खा रहे हैं, सो दैट्स लाइक रियली हेल्दी। आपको पता है आपने साफ सुथरे उससे बनाया है।
0: अक्सर लोग मुझे दावत देते हैं, कहते हैं कि चलो चलते हैं।
1: अगर घर में दावत देंगे तो भी आप नहीं जाते, तब तो जाते होंगे।
0: नहीं नहीं, घर में अगर दावत दे दे तो बिल्कुल, घर में दाल जो है दाल उबला, ये सिर्फ वो बॉइल किया हुआ दाल जो है वो भी साथ खाऊंगा, लेकिन होटल में मैं उसको बोलता नहीं, मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता
1: भाई। सच्ची सिर्फ आपको कोई दाल की दावत दे आप चले जाएंगे आराम से कि मैं दाल।
0: नहीं नहीं, मैं मिसाल दे दिया ना मैंने।
1: अगर वैसे ही पूछे कोई, कहे कि भाई आज हमारे दाल बनी है आप आइए साथ में खाइए, तो आप उसे ये तो नहीं कहेंगे सिर्फ दाल बनी है तो मुझे बुला।
0: अगर सिर्फ एक कप चाय भी वो पिलाए, एक कप चाय, तो वो दावत है, लेकिन वो घर में होनी चाहिए, होटल में नहीं।
1: सही बात है, यही ये आपकी लाइन मुझे लगता है कि सरवर मिर्जा ने पकड़ी है। वो एक कप पानी पिलाते हैं, कहते हैं अरे एक कप पानी तो पिलाया मैंने, इसे भी आप दावत समझिए। जितने लोग आते सबको पानी पिलाते रहते, पानी ही पिला रहे हो जिस मिनट से।
0: सरवर भाई से उस दिन बात हुई, मैं बोला सरवर भाई आपका बहुत जिक्र हो रहा है, बोलते हैं ये तो आप लोगों की प्यार है, मोहब्बत है। मैं बोला देखो आपको बहुत मिस कर रहे हैं हम।
1: अच्छा।
0: बोलते हैं वो मुझे मालूम है, बस सबको सलाम कहना। मैं बोला इंशाल्लाह जरूर,
1: माशाल्लाह। अरे पीछे से ये भी कह देते कि झूठ बोल रहे हैं हम।
0: अच्छा नहीं नहीं,
1: उन्हें मुझे मुझे भी कॉल करके पूछे, मुझे तो बहुत लोग मिस कर रहे हैं। मैंने कहा भाई आप किस खुश है, चलिए जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ। नहीं मैं उनका मतलब आपको मैं बता रही हूँ, आपने कहा ना कि दाल पे लोग बुला ले, वो सिर्फ पानी पे बुलाते हैं, और यकीन मानिए पानी ही पिलाते रहते हैं अगला आदमी पूरा पानी।
0: दिल से तो बुलाते हैं ना।
1: अब दिल से क्या ही बुला रहे हैं, जबान से बुलाते हैं, पता नहीं किस दिल से पानी बुलाते हैं। ये भी मुझे नहीं मालूम।
0: ये तो मैं पूछूंगा कि कभी अगर बोले ना वो
1: पानी पूछेगा
0: तो...
1: कि भाई पानी से कब आप आगे बढ़ेंगे, सिर्फ लोगों को पानी बुलाते घर बुला बुला के।
0: वो जब भी बात करते हो तो बोलते हैं चलो बस बोलो कब बुलाने, कब दावत पे बुला रहे हैं आप।
1: बस
0: वो इसी बोलते हैं,
1: बस वो आपसे मांगते रहेंगे, देंगे कभी किसी को कुछ नहीं, ये तो सच है। चलिए लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि खुद को रोकना ये इम्पोर्टेंट है, यही एक सोल्यूशन है। आप बाहर तो रोक नहीं सकते ना लोगों को ऐड करने से, चीजें दिखाने से, तो आपको अपने आप को रोकना।

0: करते हैं अपने लिए।
1: अच्छा है कि घर में ही वो सारी चीजें अच्छी बुरी जो है घर में बना रहे हैं खा रहे हैं, और आपने बाहर का तो विंडो ही बंद कर रखी है कि नहीं बाहर के खाने तो नहीं,
0: मना किया हुआ है। उसकी वजह ये थी कि वो जो बड़ा बेटा है वो जो जिसको कैंसर था वो एक दिन स्कूल में पेप्सी और ये पिया था, ये चिप्स खाए थे, तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ शुरू हुई। जब हॉस्पिटल में लेके गए तो जैसे डॉक्टर के पास लेके गए और अल्ट्रासाउंड उसने किया तो वो बोला ये चिप्स इसने खाए और पेप्सी पिए हुए। बस उस दिन के बाद बिल्कुल पाबंदी लगा दी। मतलब ये कि वो चोरी छुपे उसने,
1: सही बात है। और ऐसे हमारे साथ रईस जी जो जुड़े उन्होंने भी बताया कि एक बच्चा कितना सीवियर कंडीशन से गुजर रहा है अपनी इसी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स के चलते, तो उनके पेरेंट्स आज कितना परेशान है। तो वही है कि हम किस तरह से बच्चों को समझा रहे हैं कर रहे हैं। जैसे अज्जू है उन्होंने बताया कि उनकी बेटी है छोटी, अभी तक उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने घर में जंक फूड, अभी कितना आगे वो रोक पाते हैं वो देखना है, बट चलिए कोशिश तो करनी चाहिए ये चीज।
0: इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बहुत दिन पहले ये पढ़ा था, ऐसे एक मेरे सामने कैसे किसी ने शेयर किया था, बहुत इसमें बहुत नाजेब है, वो नाम नहीं ले सकता, बहुत गंदी चीजें डालते हैं।
1: प्लीज वो है बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही,
0: लेकिन
1: सब चीजें हैं,
0: लेकिन घर से शुरू करना चाहिए। जितने भी लिसनर हमारे बहन भाई हैं सबको ये, मैं ऐसे नहीं कि एक कंपनी के या किसी चीज के खिलाफ नहीं,
1: अब कंपनी के एड्स को बैन करना इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट थिंग, चैलेंजिंग थिंग, लेकिन हाँ अपने तौर पे चीजें अगर हम कम करेंगे नहीं खरीदेंगे तो जाहिर है उसकी डिमांड तो कम होगी मार्केट में, तो सप्लाई पे भी फर्क पड़ेगा कभी ना कभी, तो बस ये एक अच्छा सलूशन।
0: मुमकिन नहीं है हमारे लिए, वो मुमकिन नहीं है कि हम जाके किसी को बोले कि भाई ये चीज ना बनाओ ये चीज नहीं खाओ ये, लेकिन अपने घर से तो हम लोग कम से कम
1: कर सकते हैं वो अपने तौर पे।
0: ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, टाइम ज्यादा ले लिया, बहुत शुक्रिया।
1: बच्चा
0: भी ड्यूटी पे भी जाना है इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। आप जो भी टॉपिक लेकर के आते हो, ये हमारे एक बात ऐड करता हूँ, हमारे पश्तों में हम लोग हुजरा बोलते हैं, हुजरा ऐसे बहुत बड़ा एक उसमें एक दो रूम होते हैं, बड़े कमरे होते हैं पुराने जमाने के गांव के, यानी वो मुश्तरका पे एक जगह बैठने के लिए, और उधर मेहमान आते हैं जो गांव के बुजुर्ग होते हैं वो सब बैठते हैं। हमारे शायद पश्तून लोग जो है पख्तून लोग वो सुन रहे हैं, वो उनको भी मालूम है ये सब चीजें एक रिवायत होती है। तो जब भी ये शो मैं सुनता हूँ तो मुझे वो बात याद आती है, उसमें हर एक अपने बारी बारी अपनी अपनी बात वो शेयर करते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा दिन भर के मालूम, मतलब ये कि पुराने जमाने में तो रेडियो और अखबार और ये चीजें नहीं थी, तो जो जिसने जो सुना वो आके इधर शेयर किया, खेती बाड़ी के बारे में बात है, सियासत के बारे में जो भी था हर हम उधर शेयर करते थे। लेकिन ये शो माशाल्लाह इसमें हम लोग यानी जितने भी हमारे बहन भाई हैं सबकी खैरियत भी पूछ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, और बातें भी हमें मालूम होती है। बहुत शुक्रिया आपका,
1: दोस्तों देखिए 7:30 होने जा रहा है, मुझे लगता है एक छोटा सा मैं ब्रेक लेना चाहिए और म्यूजिकल ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि इतनी देर से हमने कोई भी गाना नहीं प्ले किया, आपको तो पता ही है कि 7 बजे तक हम प्ले नहीं करते, और भी थोड़ा टाइम निकल गया है और बातें बहुत सारी हैं, लोग भी मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे भी आपको बहुत सारी बातें बताना है। ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ अगर मैं भूल ना जाऊँ जल्दी से मैं आपको बता दूँ, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि कुछ एड्स जो है उन्हें बैन कर देना चाहिए, और जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि WHO और यूनिसेफ का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट को जो है वो कहा है, एक पॉलिसी रखी है, एक तरह के रूल्स जो हों स्ट्रिक्ट बने, रेगुलेशंस हों काफ़ी स्ट्रिक्ट, तो एक कंट्री एक नहीं दो चार कंट्रीज़ हैं जिनमें सबसे पहले मैं नाम लूँगी ईरान का। ईरान वो कंट्री है जिसने सॉफ्ट ड्रिंक के एड्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई, और ये बहुत लंबे टाइम तक लगाई गई है और अभी भी इस चीज़ पर काम जाहिर चल ही रहा है। कई अनहेल्दी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग को भी बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया गया, बहुत ही लिमिटेड मार्केटिंग की जा सकती है, और बच्चों को खास करके जो बच्चों के लिए है उन पे तो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा सख्त पाबंदी लगाई गई। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि नॉर्वे भी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर अनहेल्दी फूड्स हैं या शुगरी ड्रिंक्स हैं, इन पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ख़ास तौर से जो बच्चों पर ख़ास तौर से जो एड्स जो बच्चों के लिए होते हैं ना जो उन्हें टारगेट करते हैं उन पर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ही स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ हैं उनकी। यहाँ पर आप देखिए कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी कहा जाता है नॉर्वे में कि वो इस तरह के मार्केटिंग नहीं कर सकते जो बच्चों की सेहत पे गलत असर डाले। और स्वीडन भी एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने बच्चों को टारगेट करने वाले एड्स पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। बच्चों के जो टीवी प्रोग्राम्स हैं उनके दौरान ये ऐड जो हैं वो नहीं प्ले किए जा सकते। तो ये दो तीन चीज़ें थीं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी दो से तीन से चार वीक पहले ही ये बात चल रही थी कि भाई कैसे इन एड्स पर पाबंदी लगाई जाए।

अब प्रोडक्ट्स पे पाबंदी तो बाद में होगी, एड्स पे पाबंदी की पहले बात हो रही है, तो वही आज मैं भी आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है ये जंक फूड्स हैं उनके एड्स को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए कि नहीं चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? अभी के लिए बेनी दयाल की आवाज में चुरा के दिल मेरा खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय कीजिए, स्टे हुक्ड टू FM 107 दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: 107 पर दिल से देसी।
1: राइट गाइज, वेलकम बैक। और आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स। मैं हूँ नासिया आपके साथ 7:32 ऑन द क्लॉक। एंड यस, आज हम जो हैं वो हेल्दी नहीं अनहेल्दी फूड्स के जो एड्स हैं उनके बैन करने की बात कर रहे हैं। पूछ आपसे ये रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि पूरी तरह से कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वॉट्स एवर वट एवर यू थिंक, या कोई और सोल्यूशन आपको समझ में आता है तो वो भी आप हमें बता सकते हो। यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं जिनमें मैसेज है और इन्होंने तो कुछ लिख के डिलीट कर दिया। सिद्रा, व्हाट इज इट, क्या था और क्या आपने डिलीट किया है बताइए। अच्छा, यहाँ हमें सुन रहे हैं मियां बख्श जी एंड हमें सऊदी से सुनते हुए और हमारे दोस्त भी कह रहे हैं प्रोग्राम आपका सुन रहे हैं। सो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपके दोस्तों को भी मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। यहाँ शहजादा जी हैं, सलाम कहते हैं हमारी पूरी टीम को, वालेकुम अस्सलाम। एंड ऑफ कोर्स मकबूल इस्माइल जी का मैसेज है और बिल्कुल हाँ, 100% ये कहते हैं जंक फूड के एड्स को बैन कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो वाकई इस चीज़ से इतने फेड अप है कि उन्हें लगता है कि यस 100% बैन करना चाहिए। गुलाम राशिक जी कहते हैं जो कि या, और अगर हम और आप बात नहीं करेंगे, हम और आप हाँ ना नहीं कहेंगे तो कौन आएगा इस बारे में बात करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम तो कहें और कहने के लिए हम आगे तो बढ़े। मुमताज़ जी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, सलाम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं और आज का टॉपिक लाजवाब है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आजकल के बच्चों को घर का खाना कम पसंद है, ये आपने बिल्कुल सही कहा, और दुकान की कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद आती, शौक से खाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। और एक मेरा बेटा भी है, उसको तो पूरे दिन पैसे चाहिए, अभी 5 साल का है, अपनी माँ को बोलता है पैसे दो तो माँ बोलती है कि पैसे नहीं है, फिर बोलता है कि मेरे अब्बू तुमको पैसे दिए, वो कहाँ हैं, हमको मालूम है कि तुम्हारे पास है। अच्छा देखो, बच्चे कितने समझदार हैं, पैसे ज़रूर दें और मुझे लगता है पैसे से कुछ अच्छा उनको खरीदवाएं। और आज इनके बेटे का जन्मदिन भी है तो एक गाना भी, बेटी का सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि गाना भी लगाइए। तो चलिए हम इस गाने को ज़रूर आपकी बेटी के लिए लगाएंगे, ठीक है, ज़रूर ये गाना हम ज़रूर लगाएंगे। बट उससे पहले हमारे साथ एक यहाँ पे कॉलर जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप? खैरियत से जमाल जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। गर्मी तो बहुत है आज, है ना? आज ही क्या, रोज ही है। हाँ वही ना, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, ये बात तो है। आज थोड़ी ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आप तो खैर बहुत मसरूफ रहते हैं, काम करते हैं।
2: बात खाने की चल रही है तो मुझे सर्वर लाइफ याद आते
1: हैं।
2: खाने के मामले में मैं खुद भी सर्वर लाइफ ही कर रहा हूँ।
1: सिर्फ पानी पिलाते हैं आप भी?
2: नहीं नहीं, पानी नहीं पिलाता हूँ, मतलब जैसे वो खुद अपना खाना पसंद करते हैं ना।
1: अच्छा अच्छा,
2: उस तरह की बात कर रहे हो, मतलब वो खाने में बड़े वो है माशाल्लाह से, किसी चीज का एतबार नहीं रखते, तो मैं खुद भी उसी नजरिए का आदमी हूँ।
1: अच्छा अच्छा,
2: वही मैं कह रहा था कि मैं भी उसी तरह सोचता हूँ। एक शेर किसी ने कहा था, बड़े अच्छे शायर थे, उन्होंने मतलब मुख्तलिफ मौजू पर फिक आता है लेकिन यहाँ भी मुझे लगता है कि सही है। किसी ने कहा था कि अकल कहती है नरक राह उल्फत से कदम, दिल की मर्जी है हर इल्जाम जवाब। बाज लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है
1: जी,
2: मतलब खाने के मामले में तो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाते, इंक्लूडिंग जैसे मैं हूँ।
1: अच्छा, भूख बर्दाश्त ही नहीं है।
2: भूख बर्दाश्त तो एक चीज है, वो चीज भी अगर कहीं मतलब चिकन और मटन नहीं मिले तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मैं खाना नहीं खाने आया हूँ, कुछ और करने आया हूँ।
1: तो मतलब आपको कोई बुलाए तो हमेशा चिकन और मटन ही बनाए।
2: कभी कभी ये लगता है कि मतलब किसी,
1: कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि सब्जियां जो है बेचारी कह रही है कि कभी हमको भी देख लो, हम पे भी ध्यान दो।
2: उनकी बेबसी पे कभी कभी तरस आता है, ऐसा नहीं है। उनकी बेबसी पे मैं तरस खाता हूँ।
1: अच्छा जी,
2: लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि वो कुछ आदत ऐसी बन गई है और इंसान कभी कभी नहीं अक्सर आदत से मजबूर हो जाता है, ये आप जानते हैं।
1: ये बात है,
2: बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं है ना, कह नहीं मैं तो खाने के मामले में बड़ा मोहताज हूँ, लेकिन कभी कभी अगर बैठ जाओ साथ में तो उनके एहतियात का जो दर्जा है वो कितना बुलंद और कितना पक्त है सब नजर आ जाता है। मैं अपने बेटियों से कहता हूँ कि थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं अपने आपको वो ठीक करके रखो जरा, हाँ झगड़े लड़ाई और खाने के लिए आपस में दो तीन महीनों ये सब मत किया करो। तो वो मेरी बेटियां बड़ी होशियार है, वो कहेगी कि अब ये खाते हैं ताकि हम लोगों को देख कर कोई ये नहीं कहे अरे इनके अब्बू तो कसर कमाते हैं, बच्चा कुछ खाते खिलाते पिलाते नहीं है। तो उसमें है ना आपकी जो है ना क्या कहते हैं अरे उसका ख्याल रहता है, मैंने कहा नहीं बेटा मेरा ख्याल नहीं करो, खाने के ऊपर थोड़ा आराम किया करो।
1: बिल्कुल सही कहा। अच्छा एक चीज बताइए, आपकी बच्चे जो हैं वो जंक फूड खाना पसंद करते हैं? क्योंकि आज मेरा सवाल भी ये है कि जंक फूड के जो एड्स हैं उनको क्या कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए? अभी हम एड ही की बात कर रहे हैं, जंक फूड के बैन की बात नहीं कर रहे।
2: जंक फूड भी मतलब मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो जिसके बारे में ये इल्म हो ये काफी हद तक नुकसानदेह है, तो एड सिर्फ नहीं उसको भी बैन कर देना चाहिए। तंदुरुस्ती हजार दिन है, मैं खाना खाता हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हेल्दी हूँ, पता है आपको, मतलब खैर मैं तो आपके सामने बैठ चुका हूँ, आपको
1: जी जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह आप हेल्दी हैं और हेल्दी भी हैं माशाल्लाह।
2: और लेकिन एक चीज जरूर है नजरबंद की, वो जो बाहर की चीजें होती है पैकेट वगैरह की
1: वो आप नहीं खाते,
2: वो बिल्कुल मेरे ना दिमाग में आती है ना, कभी अगर कोई साथी दोस्त खा भी रहा हो तो मैं कभी नहीं उसको टच करता जल्दी।
1: बड़ी बात है भाई, बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका वो है कि मैं नहीं खाऊंगा।
2: तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने मतलब मुझे लगता है कि काफी एक एक साल गुजर जाता है कभी मतलब सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पे मैं जल्दी वो नहीं करता, हाथ भी नहीं लगाता, कब मैंने पिया मुझे याद नहीं, उन सब चीजों से मैं परहेज रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
1: बड़ी बात,
2: खाने पर फोकस रहता है ना, ये है कि
1: मैं फालतू चीजें नहीं खाता। हाँ। बड़ी बात है। अच्छा मैंने देखा लोग जो है हाँ अगर मटन या चिकन वगैरह खाते हैं तो मैंने ये भी देखा ऑब्जर्व किया कि सॉफ्ट ड्रिंक जरूर लेते हैं बाद में, बट आपने बोला कि नहीं, नहीं, नहीं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ

0: चलो ये बहुत अच्छा है कि बाहर के खानों को वो अवॉइड कर रहे हैं, घर में ही ट्राई कर रहे हैं। जो भी है कितना भी होगा अनहेल्दी, फिर भी हेल्दी है घर में खाना, तो ये बात तो है।
1: अभी पिछले महीने की बात है, एक छोटा सा न्यूज सुना मैंने अपने इंडिया का, 13 साल की बच्ची जो शायद आपने भी सुना हो, 13 साल की बच्ची जब वो हॉस्पिटल गई, उसकी घर वाले लेके गए, तो पता ये चला कि वो सिर्फ स्कूल जाती थी तो ओनली बर्गर वगैरह और ये सब सारी चीजें खाती थी, घर पे टिफिन कभी भी नहीं दिए भी तो वो छोड़ के चली जाती थी। अच्छा, घर वाले थोड़े मालदार थे और एक ही बेटी थी तो बड़ा प्यार लाड करते थे, और उस चक्कर में फिर उसकी मौत हो गई।
0: देखिए
1: ऐसी बेबसी उनके वालदैन की मैंने देखी वहां पर बैठकर हॉस्पिटल का जो नजारा देखा,
0: तो मतलब इस तरह का लाड प्यार भी नहीं करना चाहिए। देखिए हाँ, कितना अच्छा हुआ आपने ये वाली बात याद दिलाई और बताई लोगों को कि इतना प्यार आप ना करें कि बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ हो, तो ये प्यार आपका नुकसान दे।
1: बाद में वो जो मतलब रो रही थी जिस तरह से उनके माँ बाप,
0: इससे ज्यादा एक्सट्रीम और क्या ही हो सकता है।
1: तो ऐसा है कि वो सब चीजें बहुत ज्यादा जो एकदम रेगुलर इस्तेमाल करने देते हैं लाडो प्यार के चक्कर में बच्चों के,
0: बहुत
1: वो बच्चों के साथ प्यार नहीं कर रहे होते, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनके साथ बड़ा जुल्म कर रहे
0: हैं। बहुत जुल्म है और वो ये बहुत गलत है। प्यार के चक्कर में आप बच्चे कुछ भी मत दीजिए,
1: कभी भी ऐसी आदत की तरफ उनको मतलब ये है कि पुख्ता ना हो दे, हो लगे अपनी आदतों पर। बच्चे बाहर की चीजें ज्यादा पसंद करते हैं,
0: राइट,
1: उन्हें एहतियात जरूरी है, जिस भी लिहाज से समझाया जा सके उन्हें समझाया जाए, और उनके साथ जो है ना वो ऐसा रवैया रखा जाए कि उनके माँ बाप के हाथ से अपनी जो गर्मी बनी हुई हो उस तरफ फोकस हो। क्योंकि देखिए किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती है तो सबसे ज्यादा झेलना वालदैन को ही पड़ता है,
0: और अफसोस भी और सबसे ज्यादा वो
1: भी। आज का मौजूद रोज का टॉपिक आपका अलग अलग से भरा होता है, ये बड़ी अच्छी बात है।
0: शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़। ऑल राइट, और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द जंक फूड्स। जंक फूड्स के जो एड्स आते हैं, क्या लगता है आपको, उन्हें कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए या कोई और भी सोल्यूशन है? जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो ये भी कहती हैं, जहाँ मैं आपको पर्टिकुलरली बताना चाहूँगी कि ज़्यादा शुगर, ज़्यादा नमक, सैचुरेटेड फैट और प्रोसेस्ड इन्ग्रीडियंट्स का इस्तेमाल, उसके चलते बच्चों में जो ओबेसिटी या जो मोटापा है उसकी बीमारी 83% तक बढ़ी है। कैन यू बिलीव, पिछले साल से अब देखा जाए तो 83% तक इंक्रीज हुई है। वहीं पे टाइप 2 डायबिटीज़ जो बच्चों को बहुत पहले रेयर होता था, अब वो भी 70% तक उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। एंड कैन यू बिलीव, बच्चों में जो है वो हार्ट के इशूज़, हाइपरटेंशन, ये बहुत रेयर था, ये सारी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हो गई। और अगेन रीज़न क्या है, हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो सवाल ये उठता है कि कैसे मिल के इसको रोका जाए, क्योंकि ये हमारी यूथ का, हमारी जनरेशन का सवाल है, तो किस तरह से इस पे पाबंदी लगाई जाए। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस होनी चाहिए, लेकिन हाँ, अब इस पे कितने कंट्रीज इत्तेफाक रखी वो भी मैंने आपको बताया कि ईरान है जिन्होंने बैन और जो रेगुलेशंस हैं वो रखे हैं, इम्पोज की हैं, स्वीडन है, नॉर्वे है, कैनेडा है, इनफैक्ट इन कंट्रीज़ में कुछ जगह पर स्ट्रॉन्ग जो हैं पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस लाए गए हैं, और भी लाने की ज़रूरत है, और भी कंट्रीज़ में होने की ज़रूरत है। चलिए उस बात जारी रहेगी, बट बिफोर दैट वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर, हमारे साथ यहाँ कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं शिमोन?
2: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मॉर्निंग आई होप अच्छी जा रही होगी।
0: जी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह,
2: आई एम श्योर अबाउट दैट।
0: यस यस यस, आप लोगों के साथ बहुत अच्छी जा रही है।
2: जी जी बिल्कुल ऐसा
0: ही है। सो योर टेक ऑन दिस?
2: जी देखिए, मुझे लगता है आपका जो सवाल ना कि अभी इसको बैन कर देना चाहिए, है ना,
0: एड्स को
2: या,
0: हाँ।
2: तो मुझे लगता है बैन तो आप नहीं कर सकते और ना ही मतलब
0: पॉसिबल नहीं है,
2: पॉसिबल भी नहीं हो सकता है, पॉसिबल हो जाए जैसे आपने बताया कि कुछ जगहों पे हो गया है तो हो सकता है कि पॉसिबल हो जाए, लेकिन वो वर्केबल नहीं है लॉन्गर टर्म. किसी भी चीज पे बैन जो है ना वो कभी भी काम नहीं करता है एक लॉन्ग टर्म. आप शॉर्ट टर्म में तो यू कैन स्टिल सी बेनिफिट्स ऑफ दैट यू नो बैन, बट लॉन्गर टर्म में वो काम नहीं करता है कोई भी बैन हो दुनिया में.
0: ये भी है.
2: जी क्योंकि असल में क्या है ना कि आप एक हद तक ही किसी चीज को रोक सकते हैं फितरी चीज को, उसके बाद आप रोक नहीं सकते.
0: ये बात भी है.
2: और होता क्या है, और होता क्या है कि उससे क्या होता है कि फिर जब उसके जब आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं ना तो वो बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं एक्चुअली. जस्ट बिफोर आई गो टू द बैन, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑन दैट, लाइक चाइना हैड अ वन चाइल्ड पॉलिसी, दे हैड अ बैन ऑन इट, राइट? दे आर स्ट्रगलिंग नाउ. अभी उनके बहुत बहुत मेजर इशू है, दुनिया का सबसे बड़ा एक इशू है ये.
0: मुझे लगा ये काफी बैलेंस हो गया, व्हाट दे हैव सेड कि इट्स अ गुड बैलेंस नाउ. जो हम स्ट्रगल कर रहे थे पॉपुलेशन जो थी हमारी, एक तो हम पीछे हो गए, नाउ इंडिया इज लाइक फर्स्ट, और दूसरा ये है कि हम बैलेंस हो गए, हमारे रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल बेहतर हुआ.
2: मैं आई विल नॉट रिग्रेट फ्रॉम दिस टॉपिक बिकॉज दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि बैन डज नेवर वर्क. जो तरीका है वो ये है कि भाई सबसे पहले जो है ना आप मिसलीडिंग बैंस मिसलीडिंग एड्स के ऊपर बैन लगाइए. नंबर वन, अभी क्या है कि आपको बहुत सी, ये तो जंक फूड तो छोड़ दीजिए, आपको बड़ी सारी हेल्दी बच्चों की चीजें आपको ऐसी एडवर्टाइज होती दिखेंगी जो कि बहुत अनहेल्दी होती हैं.
0: सही कहा आपने.
2: तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यू शुड हैव अ बैन ऑन मिसलीडिंग एड्स. आप जो आप खिलाना चाहते हैं आप उसको बता दीजिए यहाँ पे ये है. Don't add, you know, advertise them as a healthy option or a healthy food. बच्चों की तो इतनी चीजें हैं इस टाइम आप मार्केट में जो कि यू नो दे आर बीइंग रॉन्गली एडवर्टाइज्ड एज हेल्दी, वेयर आर दे आर वेरी अनहेल्दी. नंबर एक हो गया ये. नंबर दूसरी चीज ये है कि सी आपको एड्स को रेगुलेट करना होगा, लाइक यू शुड नॉट यू नो यू शुड नॉट शो दोज एड्स ड्यूरिंग किड्स प्रोग्राम या इस तरीके के बच्चों के जो प्रोग्राम्स हैं उसके दौरान आप वो ना दिखाएं. ये रेगुलेट कर सकते हैं आप उसको.
0: बिल्कुल.
2: तो उससे जो है वो उसकी रीच उस टारगेट जनरेशन तक थोड़ी कम हो जाएगी. बच फिर भी नहीं सकते हैं आज की तारीख में. आज की तारीख में आपसे ज्यादा एक्सेसिबल मीडिया जो है बच्चे को है आपको.
0: सही बात है.
2: तो आप बच फिर भी नहीं सकते हैं, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ द एफर्ट्स दैट यू कैन यू नो पुट इन टू रेगुलेट. आप उसको रेगुलेट करें. और तीसरी चीज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि जंक फूड आप सपोज करिए, मिसाल के तौर पे कोई आदमी जो है वो अपने बच्चे को जो है वो घर पे बर्गर पिज्जा और चाउमिन और नूडल्स वगैरह ये नहीं खिलाता है. लेकिन वो शाम को जो है वो चिकन मटन तेल में मसाले में बेहतरीन जबरदस्त थिक ग्रेवी के साथ खिलाता, बड़ा खुश होके साथ बच्चा घर का खा रहा, खाना घर का बना हुआ, तो वो क्या जंक फूड नहीं है क्या? वो भी जंक फूड.
0: हाँ वो भी, लेकिन कंपैरेटिवली व्हाट यू से थोड़ा तो बेहतर है. अभी पाम ऑयल नहीं होगा या
2: नहीं बिल्कुल बेहतर नहीं है. देखिए क्या है कि हमारी बॉडी ना दो तरीके से चीजों को आइडेंटिफाई करती है. एक तो करती है कि हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, राइट? और दूसरा हम जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो कितना हमारा इंटेक हो रहा है, ठीक है? तो आप जंक फूड हटा के सिर्फ उसकी कैलोरीज हटा रहे हैं बस. उसका आपने सब्स्टिट्यूट नहीं दिया है कि वो इज ईटिंग द चाइल्ड इज ईटिंग बेटर न्यूट्रिएंट्स.
0: ये तो है.
2: आपने जो है वो चिकन मटन और ये सारी सब्जियों वगैरह को वो इतना घी तेल में बना के यू ऑलरेडी डाइल्यूटेड द होल पर्पस ऑफ यू नो ईटिंग गुड फूड.
0: ये बड़ा चैलेंज होगा कि बच्चों को इंटरेस्टिंग फूड दिया कैसे जाए, वो कैसे एक्साइट हो. अगर हम उन्हें बिल्कुल स्ट्रिक्टली हेल्दी फूड देंगे तो आई डोंट थिंक बच्चे खाएंगे. अब ये चैलेंज है.
2: जरूरत नहीं है, मैं ये कहती हूँ आपकी बॉडी जो होती है ना, आपकी बॉडी जो है ना वो

0: हो चुकी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स में, ठीक है. आप पहले आप जो है पहले के जो लोग होते थे लेकिन जिस लोग वो सब कुकिंग भी नहीं करते थे, वो तो ऐसे खाते थे लोग. तो आज की तारीख में नहीं हो सकता है वो पॉसिबल. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको एडुकेट करना है बच्चों को भी और खुद को भी, मतलब बच्चों से पहले आपको खुद को भी
1: अवेयरनेस.
0: इस बात के जरिए से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप मतलब एडुकेट करें, बच्चों को भी एडुकेट करें और खुद को भी एडुकेट करें कि भी आप जो है हेल्दी फूड के, आप भी हेल्दी फूड के नाम पे जो है वो बच्चों को अनहेल्दी फूड ना खिलाएं, ये समझ के कि आप घर का खाना खिला रहे हैं.
1: ये तो है.
0: तो हाँ, ये कुछ एक चीजें हैं जिससे कि आप जो है वो थोड़ा बहुत इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं. और चिप्स वगैरह के ताल्लुक से जो है वो भी देखिए, वो भी यही है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते आज की तारीख में, पॉसिबल नहीं.
1: पूरी तरह से
0: या कोई भी चीज, हाँ कोई भी चीज हो, चिप्स. सी द वन थिंग दैट यू नो आई ऑलवेज मतलब मैं अपने लिए अपने कोशिश करता हूँ इस पे कर सकूं पूरा, कि बैलेंस जो है ना वो सिर्फ एक बैलेंस जो है वो सिर्फ एक मेरी जिंदगी में ऐसा लगता है एक वर्ड है जिससे कि आप पूरी अपनी लाइफ बदल सकते हैं. बैलेंस, दैट्स इट.
1: गुड बैलेंस.
0: हम लोग जो है बैलेंस अगर रखेंगे हर चीज के अंदर, चाहे दुनिया का वो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, तो यू विल लीड अ गुड लाइफ इंशाल्लाह. आई मीन इट विल नॉट हैव एन इश्यू.
1: सही बात.
0: बाकी तो ये है कि exceptions are always there, right? But as long as you're balanced in your diet, in your lifestyle, in your you know eating habits, everything, no problem. आप कभी बर्गर भी खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. बर्गर कोई ऐसी मिसाल के तौर पर देखिए, बर्गर में क्या है, बर्गर में क्या है कि वो ब्रेड है और वो आलू की पेटी है या फिर आपका चिकन है, ठीक है. तो वो तो आप वैसे भी खा ही रहे ना घर पर. ब्रेड की जगह आप रोटी खा रहे हैं, चिकन की जगह आप कढ़ाई चिकन खा रहे हैं उसमें.
1: लेकिन कई बार आपने देखा जो पैटीज होती हैं वो काफी प्रोसेस्ड होती हैं, वो स्टोर की हैं, फ्रीज्ड हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है. अब घर में आपने मान लीजिए फ्रेश कुछ बनाया, अगर आप वेजीज की पैटीज बना रहे हैं तो चलो फिर भी एक बेहतर सोल्यूशन है. इंस्टेड आप डीप फ्राई करो, आप उसको ऐसे शेलो फ्राई कर लो, या फिर आप उसको ऐसे हल्के से तवा पे ग्रिल कर लो, समथिंग. मतलब देयर आर हेल्दी वर्जन्स. ऐसा नहीं कि हेल्दी वर्जन्स नहीं है बर्गर्स के या और चीज़ों के, हैं. लेकिन हाँ, उसमें सारे एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है. तो कई बार पेरेंट्स भी लेजी हो जाते हैं कि अरे कौन इतना डाले.
0: हफ्ते के दो चार बर्गर आराम से खा सकते हैं. I'm not favoring them, right?
1: हाँ, मतलब कभी लाइफ में आप कह रहे हैं कि खा लें, it's not that bad.
0: The important thing is कि आप जो है आपकी क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है. वो इम्पोर्टेंट है कि आप दिन में है कि आप दिन में जो है वो छह बर्गर खाए जा रहे हैं, तो इट विल नॉट वर्क, राइट.
1: तो ये
0: छह बर्गर खा लिया आपने, तंदूरी रोटी खा ली, एक दो खा ली, वो एक ही बात हो गई ऑलमोस्ट. जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है अल्हम्दुलिल्लाह.
1: हमने ही मुश्किलों कॉम्प्लिकेट कर लिया,
0: हमने ही मुश्किलों कॉम्प्लिकेट कर रखी है. वो इतना करने की जरूरत नहीं है, और जब जो चीज होनी है वो होगी, ये भी है अपने आप में. बट स्टिल यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, इंक्लूडिंग व्हाट यू ईट, इंक्लूडिंग व्हाट यू ईट. ये इसको मैं तो इसी तरीके से देखता हूँ कि भाई बैन तो कभी भी काम नहीं कर सकता है और करेगा भी नहीं, बिकॉज वी आर लिविंग इनटू यू नो कैपिटलिस्ट सोसाइटी.
1: हाँ, ये तो है, यही रीजन है, दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो अब आपने बोला.
0: जी, तो वो करेगा भी नहीं और नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है. द ओनली थिंग इज यू नो यू नीड टू स्टॉप, यू नीड टू बैन मिसलीडिंग एड्स, यू नीड टू रेगुलेट एड्स, यू नीड टू एडुकेट योरसेल्फ, योर किड्स, यू नो एवरीबॉडी अराउंड यू, योर फैमिली, और उनको बताइए कि भाई अच्छा हेल्दी खाना क्या है. हेल्दी खाना अब आपने जैसे मैंने कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि जंक फूड नहीं खा रहे हैं, लेकिन आपने जो है वो घर पे बढ़िया वाला शोरबा बना लिया और चार रोटी उसके साथ तंदूरी खा ली, वो बात एक ही हो गई ऑलमोस्ट. देयर इज नॉट मच डिफरेंस. थोड़ा बहुत हो सकता है बट ऑल द मोर देयर. हाँ तो ये चीजें थी इसके ताल्लुक से जो मैंने.
1: बहुत ही अच्छी चीजें आपने, और स्पेशली मिसलीडिंग वाली बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी जो मेरे जहन में तो बिल्कुल नहीं थी, जो आपने हम सबका ध्यान उस तरफ लेकर आए. एंड ऑफकोर्स जो किड्स के शोज हैं उसमें भी होना बहुत जरूरी है. एंड दैट्स ट्रू. एंड अगेन हेल्दी चॉइसेस, अब हमें भी पता हो

0: And the best takeaway from your this entire discussion is balance. Balance, mm-hmm. best takeaway hai ki har cheez mein there has to be a good balance. And that's how aap healthy life jo hai wo bita sakte hain aur bachon ko bhi aap motivate kar sakte hain healthy choices ki taraf.
1: Misleading ads zyada aapko parchan karte hain kyunki usme hota kya hai, you are being sugar coated.
0: Yes, yes, yes.
1: Aapko bataya ja raha hai bahut badhiya cheez hai aur wo bilkul unhealthy hai.
0: Haan, that's true. अब हम लोग उसकी तफ्तीश तो कर नहीं रहे ना, वी डोंट नो मच अबाउट इट, राइट?
1: और उसमें जितना जितना पैसा जो है ना ये कंपनीज एड्स में प्रमोट करने में जो है सेलिब्रिटीज और दूसरों को देती हैं, उसका जस्ट अ लिटिल परसेंटेज ऑफ दैट दे शुड बी आस्क्ड टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एड्स अबाउट द न्यूट्रिएंट्स. आप वो प्रोमिनेंट करें आप, क्योंकि आप उन्हें फोटो तो उसकी छाप दी है पूरे पेज की उसके ऊपर, और उसकी जो न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन है वो दो लाइन भी नहीं है उसके बारे में, वो इतना छोटा है कि आपको
0: पढ़ नहीं सकते,
1: वो पढ़ ही नहीं सकते आप.
0: सही बात है.
1: वो दैट शुड वी शुड फोकस मोर ऑन दैट, द सोसाइटी शुड फोकस मोर ऑन दैट, द गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन दैट. आई गेस
0: दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. वेरी वेल सेड. बहुत अच्छी कॉल, बहुत जबरदस्त बात. थैंक यू सो मच कि आप फाइनली जुड़े और इतनी अच्छी बात आपने जो है इस टॉपिक के हवाले से.
1: ऑलवेज अ प्लेजर. आपका कल के टॉपिक के बारे में बात नहीं हो पाई, लेकिन वो कल का एक्चुअली दैट वाज विद यू नो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स.
0: हाँ, कुछ लोग जी जी जी यूबीआई पे कर हम बात कर रहे थे.
1: वो जो है ना एक्चुअली दैट टॉपिक इज बेसिकली अ डिबेट बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, व्हिच इज अगेन.
0: और आपको पता है अभी रिसेंटली एक दो जगह हुआ जहाँ पे न्यूनतम यू नो मजदूरी और उस पर हुई, हाँ दैट वी नो. तो मुझे लगा कि उसको नहीं डायरेक्टली लू मैं, आई विल डिस्कवर दिस टॉपिक इन अनदर वे एंड लेट्स सी लोगों का क्या है. जी जी जी.
1: तो वो दैट बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट टॉक.
0: हाँ, बट कल हो नहीं सकी बात, बट चलिए ग्लैड कि आज हो सके. और हम उन सारे टॉपिक्स को मैं खास करके लाती हूँ जो न्यूज में डिबेट्स में चल रहे होते हैं, शायद हमारा जहन और हमारी निगाहों तक नहीं पहुँचती है, लेकिन ये टॉपिक्स हैं, चल रहे हैं और ये बड़े रीसेंट होते हैं, तो वही हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लेकर आते हैं. एंड आई ऑल्सो जस्ट वॉन्टेड टू सी कि लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स है, उनकी क्या सोच है. बट ग्लैड आप जैसे लोग जुड़ते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन
1: फॉर ब्रिंगिंग अप ऑल दीस टॉपिक्स एंड यू नो डिस्कसिंग देम विद योर लिसनर्स एंड एवरीबॉडी. हम सबको कुछ ना कुछ जरूर एक दूसरे से सीखना
0: चाहिए, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट. हम सबके लिए जरूरी भी हैं चीजें. सो थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. अपना ख्याल रखिए. All right,
1: hello.
0: You too. Take care. Walaikum assalam. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी कॉल और मुझे लगता है बहुत अच्छी लाइन जो उन्होंने हमें दी इज अ बैलेंस. इट्स अ वर्ड जो गुड बैलेंस हमें अपनी डाइट में क्रिएट करना है, अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, और हेल्दी चॉइसेस की तरफ हमें अपने आप को मोटिवेट करना ही करना है. अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है एंड सेल्फ कंट्रोल. ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी है. ये कोई बाहर से इम्पोज नहीं करेगा, ये सब चीज़ें हमें खुद ही डेवलप करनी है, खुद ही इनको अडॉप्ट करना है. जैसे एक हमारे भाई खादिम हुसैन जी जुड़े, तो उन्होंने भी ये कहा था कि घर से शुरुआत होती है, हमसे शुरुआत होती है. तो दैट्स सो ट्रू, हम ही से शुरुआत होगी और हम ही को इस पर काम भी करना है. एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कौन, नूर जी है क्या?
2: समद बोल रहा हूँ मैं, कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. समद आप कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ. क्या मैडम, परसों आप तो एकदम इतना सुपर बिजी गए हैं कि पूछे मत आप.
0: अच्छा,
2: पता है आपको, मैंने बिल्कुल आपको 25 की कॉल की है, 85 कॉल.
0: ओह, इज इट?
2: मैंने कहा कि मतलब आज तो एकदम फुल डिमांड में है मैडम.
0: अरे अरे, मुझे ऐसे
2: वो,
0: में
2: वो वाली टॉपिक चल रही थी आपकी, कौन सी, क्या कहते हैं अपने, टैलेंट वाली कुछ टॉपिक थी.
0: हाँ,
2: मैंने कहा भाई सब ज्ञान फैल रहे हैं, मतलब मजा आ गया सुन के.
0: सब ज्ञान,
2: अरे भाई क्या कहते हैं,
0: बहुत मजेदार था. दैट वाज ऑन संडे,
2: वो मतलब
0: बहुत अच्छा
2: आपने जो चुना था ना, मतलब बैक टू बैक कॉल चल रहे थे. मैंने कहा यार ये तो आज तो मुनासिब हो गई नहीं, आज मैडम थक जाएंगी, जाकर सो जाएंगी.
0: जहाँ कहा पाती हूँ मैं, अभी पूरे 8 घंटे बैठना होता है मुझे.
2: हाँ नहीं, वैसे तो खैर बड़ा अच्छा था, और माशाल्लाह से सबने अपने अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया
0: जो है, बहुत मजा आया था उस दिन. बहुत
2: टैलेंट के, टैलेंट और किस्मत के ताले से कुछ समथिंग कुछ ऐसा था. और मैंने सोचा कि भाई चलो कोशिश करते हैं. मुझे वक्त मिलता है, जो ड्यूरेशन होता है मेरे घर से ऑफिस का, उसी दरमियान में मैं कोशिश कर लेता हूँ कि चलो भाई कुछ सबकी सुन लें और अपने भी कुछ इनपुट्स रखते हैं, बस उतना ही.
0: जब आप कॉल कर रहे हो और आप वाकई बहुत बार कर रहे हो, नहीं मिल रहा है, मैसेज, एक मैसेज आप ड्रॉप कीजिए मुझे कि प्लीज कॉल मी, तो मैं आपको कॉल करूं. वो अच्छा, शायद आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना?
2: ओके, अगली बार मैं ऐसे ही करूंगा।
0: प्लीज
2: कि व्हाट्सएप पे जो है आपका नंबर सेव कर लूंगा, व्हाट्सएप वाली नंबर जो आप देते हो, उसके बाद में फिर मैसेज कर दिया करूंगा।
0: जरूर जरूर।
2: हाँ जी मैडम, तो आज वाली टॉपिक शायद हेल्थ को लेकर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
0: जंक फूड के जो एड्स हैं उनको क्या कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक?
2: अभी देखें आप, ये एक ऐसा सवाल है जो कि यूनिवर्सल है, ये सिर्फ एक ही जगह कोई मोहताज नहीं है। अभी सीन ये हो गया है कि बिजनेस के नाम पर कुछ भी चीज चल रही है, और अब हम इतनी आगे निकल चुके हैं ना कि अब इसे हम रोक नहीं सकते हैं।
0: हाँ ये तो है।
2: एक टाइम हुआ करता था, इफ यू रिमेम्बर, कि पिछले टाइम पर जो हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे, वो ज्यादातर कि हमें घर पर ही बना के खिलाया करते थे। कोई भी चीज होती थी, कुछ भी हम डिमांड करते थे, तो जितना हो सकता है पॉसिबिलिटी घर पर ही बना कर देंगे, ताकि बच्चा हेल्थी रहे। आजकल हमको इतने इजी एक्सेस हो चुके हैं सारी चीजों के, और हमने अपने आप को इतना लेजी बना लिया है, तो वो लेजीनेस भी एक चक्कर हो चुकी है कि हम जो है फॉरन से एप्लीकेशन ओपन किया कोई भी, और उससे फटक से ऑर्डर कर दिया और सारी चीजें आ गई। तो इसमें बेनिफिट्स तो हो रहे हैं जिसको होना है, जो लोगों को जॉब्स भी मिल रही है, और शेफ्स को जॉब्स मिल रही है, डिलीवरी बॉयज को जॉब्स मिल रही है, बिजनेस ओवरऑल रन अवे हो रहा है। बट अभी हम इसको अगर रोकने की बात करेंगे तो ये रुकने से रहा, सीधी बात है। अब यहाँ पर हम इसको अपने आप से इंडिविजुअली कैसा रोक सकते हैं, वो एक चीज होती है कि आप जो है अपने टेस्ट बर्ड्स को तो रोक नहीं पाते। इतने टाइम से आप उसको दे रहे हो, तो आपका डिपोमिन जो है फिर वो एकदम से एंग्री हो जाएगा कि भाई वो चीज जो इतने टाइम से आ रही है वो ऑल ऑफ सडन रुक चुकी है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो वो उससे बेटर है कि आप उसको जो है उसका ऑल्टरनेट स्विच करें। अब जब आप खा ही रहे हो या फिर कुछ उसके एडिक्शन हो चुका है, तो जितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो उसके डबल उसको बर्न करो। सिंपल है कि आप जिम जाओ तो बहुत अच्छी बात है, या जिम नहीं जाते हो तो रनिंग करो। कुछ ना कुछ अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करके रखो। पर डे में एक घंटा आपको आपकी बॉडी के लिए देना ही देना है, और इतनी हार्ड ऑन उसमें एक्सरसाइज करनी होगी कि फॉर एग्जांपल 4,000 to 5,000 आपने कैलोरीज इंटेक किए, तो 10,000 आपको बर्न करनी ही करनी है, टारगेट बना के रखना है। तो ही आप थोड़ा सा हेल्थी रह पाओगे और आपका हार्ट जो है हेल्थी रह पाएगा। एंड टॉप ऑफ इट, अब कमिंग टू द जंक फूड, बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।
0: सही।
2: ये हमको शुरू से बताया गया है कि भाई बच्चे, जैसा कि दूसरे बर्गर्स हो गए, बाकी दूसरे चीजें हो गई है, ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बच्चे घर का खाना नहीं खाते हैं। उसका रीजन भी एक यूं है कि हम जब सराउंडिंग में जब बैठ के बातचीत करते हैं, देखिए दो चीज के जायके होते हैं, एक होते हैं जबान का जायका और दूसरा होता है चुगलियों का जायका। ठीक है, ये बड़े दो गंदे हैं, इसको आप जिंदगी से निकाल दो, लाइफ कुछ है ही नहीं जैसे लगता है। अब जब हम महफिल में बैठते हैं तो आप हम अच्छी बातें करेंगे तो थोड़ी देर तक सुनेंगे, उसके बाद में फिर जब किसी और की चुगली बैठेगी ना तो सब आएगी, चाय भी आएगी, कुरकुरे भी आएंगे, सब आएंगे, तो जबान के भी चटकारे चलेंगे और ये भी चलेगी। तो कहने का मतलब ये कि जब हम बच्चों के साथ में बैठते हैं तो कुछ ऐसे एड्स आते हैं तो वो बंद कर देना चाहिए। और प्लस हमको हमारे घर के खाने की और हमारे माँ के खाने की और जो घर में जो बनता है वो सब चीजों को ना ऐसे चटकारे लेकर उसको ऐसे एंटरटेन करते हुए बात करना चाहिए, ऐसा मजे लेते हुए कि माउथ वाटरिंग ऑटोमेटिकली आ जाने की भाई ये ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में बातचीत हो रही है। हालांकि वो होती वही डिश है, लेकिन हमको ऐसे बताना चाहिए कि देखो हम जब मेरी माँ बनाया करती थी, हमारे दादी, वो इतना मतलब टेस्टी

0: कपसिडी बच्चों में क्रिएट होती है, उनका माइंड डाइवर्ट होता है, फिर वो चीज को देखते हैं तो देखकर और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अंदाज से जो है हम उसको रिप्रेजेंट और प्रेजेंट करें अपने बच्चों के सामने, तो उनके लिए भी थोड़ा सा आसानी हो जाती है वो चीज को अडॉप्ट करने के लिए. कभी कभी आप उनको फॉर ए चेंज जो है बाहर लेकर जाके खिलाए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन साथ में उनको उठाकर सीधा, आजकल जो है ना आप देखें आजकल का माहौल इतना खराब हो गया है कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों के पास में फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर जो है ना कुछ भी नहीं है. वो सिर्फ जो है स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो भी उनकी एक्टिविटी होती होगी उसके बाद में फिर वो घर आ जाते हैं. अब उसके बाद में जरा सा रोया और मोबाइल पकड़ा दिया तो ये भी एक बड़ी गंदी चीज है. तो अब बच्चे जब फिजिकल एक्टिविटी में आएंगे नहीं तो उनका फूड कैसे डाइजेस्ट होगा, उनका जो है इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा, ये सब सारी चीजों के ऊपर में सोचना पड़ता है. तो स्पेशली पेरेंट्स को चाहिए कि जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने हमको ग्रो किया था अलग अलग जो है चीजों को बताकर अलग अलग तरीके से, तो हमको इसी के तो एक्सपीरियंस मिलता है, तजुर्बा मिलता है कि भाई हम आगे कैसे लेकर चले. अभी नाउ अल्फा बीटा का जमाना चल रहा है बच्चों का, तो अब ये जो बच्चे हैं इनका हमारा प्रो वर्जन है, ये प्रो वर्जन को उसी हिसाब से आपको डील और टैक्टिक करना चाहिए. अब हम जो ओल्ड स्कूल वाले थॉट्स लेकर नहीं आ सकते,
1: इफ
0: यू एग्री विथ मी.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो अभी आज के जमाने के हिसाब से क्योंकि इतनी सारी चीजों में हम घिरे पड़े हैं ना, क्योंकि ये दुनिया जो है सीधे सीधे फितनों का घेरा है.
1: exactly.
0: फितनों के घेरों में हम बैठे हुए हैं.
1: बिल्कुल,
0: अब ये फितनों से हम बाहर आना बोले तो हम खुद भी आना और बच्चा भी बाहर आना बहुत डिफिकल्ट है. तो इसी में रहकर हमको साफ सफाई बरकरार रखनी. तो जब हम साफ सफाई रखेंगे अपने जिस्म की भी, अब जिस तरह हम हमारे घर की रखते हैं उसी तरीके से हम ये चीज सोचना शुरू कर दें कि मेरे घर से कोई भी हॉस्पिटल की चक्कर नहीं मारना है, तो उस हिसाब से अगर ये सोचना शुरू कर देंगे तो आप जो है आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं, बट इतना है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें अगर बनी रहेगी तो इंसान जिंदगी में कुछ भी कर पा लेगा. डिसिप्लिन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए.
1: डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है डेफिनेटली, और हम कर सकते हैं. कंसिस्टेंट रहें और थोड़े थोड़े एफर्ट्स पोर इन करते रहें तो डेफिनेटली एक अच्छे रिजल्ट्स हमें नजर आएंगे. फैंटास्टिक, थैंक यू सो वेरी मच. बहुत ही एक्सीलेंट कॉल थी आपकी. ग्लैड कि आप जुड़े मेरे साथ एंड आपने अपनी राय हमारे साथ शेयर की. थैंक यू वंस अगेन. अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज. तो यहाँ पे जितने लोग हैं मैं कहूँगी कि सारे के सारे इंटेलेक्ट हैं भाई, एक से बढ़कर एक. फिलहाल यहाँ पे एक मैंडेटरी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, कुछ और आपसे बातें करेंगे एंड देन हमारा गेम सेगमेंट.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर द टाइम चेक। और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:09।
0: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: हाँ जी, वेलकम वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नाजिया आपके साथ, और मेरे साथ यहाँ पे एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
1: हाँ जी
0: हाय, कैसे हैं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
1: ओके रिपोर्ट मैडम, आपको भी वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग।
0: ऑलराइट, सो कैसी जा रही है आपकी अभी तक की मॉर्निंग? ठीक ठाक तरीके से?
1: जी ऑल गुड मैडम। समर मॉर्निंग साथ में है तो मैडम क्या ही टेंशन।
0: आय हाय, क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने, जबरदस्त। अच्छा, आज हमारा टॉपिक इज अबाउट जंक फूड के एड्स को बैन करना। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर
1: टेक? थोड़ी सी तंबाकू प्रोडक्ट्स पे भी बात हो सकती है।
0: वो तो मेरे ख्याल से हम लोग फिर करेंगे क्या किसी दिन
1: एडवर्टाइजमेंट। ओके ओके ओके ओके,
0: इस वाले पे करेंगे आज। लेट्स स्टिक टू जंक फूड्स, और स्पेशली बच्चों के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ जानना चाह रहे हैं।
1: मैडम देखिए, जो जंक फूड है ना, सपोज मैं सोच रहा हूँ भी मैं अपने बच्चे पे पाबंदी लगा दूँ, ठीक है?
0: अच्छा।
1: मैंने इसको सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं देना, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इसको जंक फूड भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाना।
0: गुड।
1: सपोज मैडम मेरे घर पे रिलेटिव आ गए।
0: अच्छा।
1: या दोस्त आ गए।
0: हाँ।
1: तो मैडम उनके लिए अकेले समोसे से थोड़ा बात बनेगी, उनके लिए तो लाजमी लाके रखना पड़ेगा जंक फूड।
0: क्या कुछ और हेल्दी नहीं उन्हें आप सर्व कर सकते?
1: आप ऐसा? बताओ क्या हेल्दी होगा?
0: फ्रूट सैलेड।
1: फ्रूट सैलेड से मैडम कहाँ बंदे का दिमाग कहाँ टिकता है? ओके, वो अगर एक दिन के लिए आ गया मेहमान, फिर
0: उसको फिर खाना वाना खिलाइए, और क्या दाल है सब्जी है।
1: ठीक है, सुबह से शाम तक मैडम खाना या फ्रूट ये चीज से थोड़ा बात बनेगी। सपोज अगर उनके बच्चे हैं साथ में, फिर
0: तो बच्चों को भी खिलाइए, कभी बनाना दीजिए, कभी उन्हें पाइनएप्पल दीजिए, कभी और अलग अलग फ्रूट्स दीजिए अलग अलग। देखिए वैसे आप सही कह रहे हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीजें उतनी ज्यादा फीसिबल नहीं है, नहीं है चल पाती। कहने को हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आप सोचिए ये अगर आपके बच्चे की सेहत का सवाल है, एंड यू नो कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, फिर भी क्या आप इन ऑप्शंस को नहीं ऑप्ट करोगे?
1: मैडम एक्चुअली आजकल का माहौल ही ऐसा है मैडम, हम लोग बात कर रहे हैं डू एंड डाई की, भाई ये चीजें अच्छी नहीं है। आप मैडम मार्केट में बच्चे को लेके जाओगे, वो दूसरे बच्चों को तो देखेगा ही ना खाते हुए, आप कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो उसके ऊपर।
0: हाँ वही, दूसरे को देख के अटेम्प्ट होगा। फिर स्कूल में बच्चे, हालांकि स्कूल्स में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है हेल्दी टिफिन एंड ऑल दैट, बट फिर भी कुछ बच्चे छुप छुपा के कुछ ना कुछ खा लेते कर लेते हैं तो। लेकिन अगर वाकई बहुत ज़्यादा सेहत का सवाल है और बच्चों की हेल्थ का सवाल है, तो क्या हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की तरफ आ जाना चाहिए? आपको लगता है ठीक रहेगा या
1: नहीं? मैडम हम लोगों ने पता क्या मैडम तरीका निकाला है, देखो
0: क्या
1: मैडम मेरा बच्चा है 2+ इयर्स का, ठीक है,
0: बहुत छोटा है,
1: 2 इयर्स एंड 3 मंथ्स। यस, तो उसको कहीं से मैडम कोल्ड ड्रिंक इंट्रोड्यूस हो गया उसको, ठीक है।
0: अरे इतने छोटे को?
1: मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ, हो गया उसके मुंह को लग गया मैडम।
0: अरे
1: मगर मैडम ये जो चीजें है ना, फास्ट फूड या सॉफ्ट ड्रिंक, मैडम एक नशा हो गया और एक ये चीजें होगी, पहली बार जब बच्चे के जीभ पे टच होगी ना ये चीजें मैडम, बच्चा ऑटोमेटिकली मांगेगा उस चीज को। पता नहीं इसमें मैडम कौन सी चीज होती है।
0: हाँ, ये तो है।
1: एक बार बच्चे को इंट्रोड्यूस होगी मैडम, सवाल ही नहीं पैदा होता भी बच्चा वो दोबारा चीज ना मांगे आपसे।
0: ये तो सही कहा आपने, ये तो फैक्ट है।
1: तो मैडम कभी अगर उसके सामने मेरे को फास्ट फूड खाना भी पड़े और कोल्ड ड्रिंक पीनी भी पड़े उसके सामने, तो मैडम मैंने अपने खुद से एक तरीका इजाद किया है। मैं क्या करता हूँ, स्टील का जो गिलास है ना अपने लिए, उसमें डाल लेता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, 30-40 ml मैं छोड़ देता हूँ कैन में।
0: अच्छा।
1: और उसमें मैं मैडम डालता हूँ 70-80 ml पानी।
0: पानी के साथ?
1: तो मैं जब उसके सामने पीता हूँ, वैसे तो मैं पीता नहीं मैडम, अगर कभी मजबूरी बन जाए पीने की, तो मैं वो गिलास उठाता हूँ और उसके सामने कांच के गिलास में कैन से डालता हूँ, उसको ये लगे भी मेरे को भी कोल्ड ड्रिंक मिल गया।
0: ये भी है अच्छी बात है। बताऊँ आपको, एक बच्चे के पेरेंट्स ऐसे ही करते थे, हमारी उसमें फैमिली फ्रेंड में है। अब वो बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो गया, मतलब बड़ा कह दीजिए 14-15 साल का, लेकिन वो आज भी उसको टेस्ट पता है कैसे, वो पानी डाल के ही पीता है, आज तक पी रहा है पानी डाल
1: है
0: डाल
1: पानी डाल। अच्छी चीज है मैडम,
0: मैडम
1: ये चीजें नहीं छोड़ती, कहने को आसान है मैडम, आप भी अभी देखिए कितने सारे इवेंट्स में प्रोग्राम्स में जाती है, ये चीज सबसे पहले सर्व होती है।

0: होती है मैडम वहाँ पे।
1: ये तो है।
0: अगर हम लोग मैडम इंडिया में किसी के घर पे चले जाएं तो आप देखिए मैडम, अगर हम लोग चाय रख देंगे तो ठीक है, ओके है, ठीक ठाक है। अगर हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक नहीं रखेंगे सामने तो एक बंदे को होता है यार, इन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की।
1: ये भी चीजें हैं, अब थोड़ा सा उस तरह के नॉर्म सेट हो चुके हैं, लेकिन चलिए अच्छी बात क्या है कि लोग अब थोड़े से जो है ना वो जागरूक हुए हैं, अब उन्हें थोड़ा समझ में आने लगा है कि हेल्दी ईटिंग्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे जो अब अगर आप उनको किसी तरह का यू नो सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ ऑफर करो तो मना भी करते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, वील गो फॉर टी, उससे कम जो भी हो सकता है। तो चलिए अच्छा है, थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस तो हो ही रही है, थोड़ा लोग अब जागरूक हो ही रहे हैं, अवेयर हो ही रहे हैं, शायद ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल में तब्दील हो जाए, कन्वर्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है।
0: अवेयरनेस हो रही है, अच्छी बात है, मगर आप अगर इन कंपनियों का बिजनेस उठा के देखोगे ना आज से 50 साल पहले का और अब का मैडम, आपको खुद पता चल जाएगा ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है।
1: रियलिटी ही है क्योंकि वो इतना ज्यादा हमें, हाँ हर किसी के पास वो हमें खुद इतना ज्यादा वो चीजें दे रहे हैं लाके प्लेट में सर्व कर करके कर करके कि आप देखिए कहीं कई जगह आप जाएंगे कि आप ये पूरा प्लेटर लेंगे उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक फ्री, फलाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक फ्री, तो मतलब क्या है कि वो खुद ही आपको इतना ज्यादा एडिक्ट कर रहे हैं कि आप ये चीजें लें, खाएं, यूज करें। पहले फ्री दी जा रही है, फिर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है उससे। लेकिन यही है कि हम वो थोड़े से फ्री के चक्कर में चीज़ें ले रहे हैं, खा रहे हैं और इतने यूज हो गए कि वहाँ से निकल पाना, हट पाना मुश्किल हो गया है। देखिए नामुमकिन तो नहीं, अभी हमारे कॉलर ने कहा कि डिफ़िकल्ट है, इट्स रियली डैम डिफ़िकल्ट, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं, कोशिश करेंगे तो शायद थोड़ा थोड़ा। और मैं ये कहूँगी एकदम अचानक किसी चीज़ को छोड़ना आसान नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, धीरे धीरे। अगर आप रोज़ चिप्स खाते हैं या फिर अगर आप बर्गर है या कोई और एक्स वाई जी अनहेल्दी फूड खाते हैं तो एकदम तो बंद नहीं कर सकते आप, पहले उसकी क्वांटिटी को कम कीजिए धीरे धीरे और फिर शायद कुछ बात बने।
0: सवाल ये आ जाता है ना नाजिया जी, आज के समय में आप किस चीज़ को हेल्दी बोलोगे? इन चीज़ों को तो साइड में रख दो आप।
1: हाँ।
0: आप किस चीज को हेल्दी बोलोगे आज के टाइम में? वेजिटेबल्स को,
1: मिलावट
0: या नॉन वेज आइटम्स को? मैडम हम लोगों के लिए ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है, बस आपको भी आगे पता है सिस्टम का।
1: हाँ, बस जब तक हम प्लास्टिक नहीं खा रहे वो दिन भी दूर नहीं है, प्लास्टिक का चावल खा रहे हैं आज, खा गया है प्लास्टिक का। सही कहा आपने, इतनी मिलावट, इतनी सारी हैं चीज़ें कि हेल्दी तो कोई भी कुछ भी नहीं खा पा रहा। लेकिन चलिए इस डिलेमा में है कि कुछ चीज़ें हम हेल्दी खा रहे हैं और शायद बच्चों को खिला पा रहे हैं शायद।
0: बस बाकी बात तो यही है, जिन लोगों ने बिजनेस करना है ना उन्होंने ये नहीं देखना है भी चीज नाजिया जी के घर पे जा रही है या मेरे घर पे जा रही है या किसी और के घर पे जा रही है। नहीं मैडम, दे आर बिजनेस माइंडेड पीपल।
1: ये तो है, लेकिन वो खुद अपने घर में अपने बच्चों को नहीं देते हैं। अभी एक कंट्री का उसका नाम नहीं लेंगे, वहाँ से सबसे ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप भी जानते हैं, उसका नाम नहीं लेंगे हम लोग उस कंट्री का, और वहाँ पे वो कंट्री में वो प्रोडक्ट्स बैन है, ये आपको भी पता है? अब देखिए
0: बिल्कुल पता है मैडम,
1: कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो उन चीजों से, लेकिन अपनी कंट्री में अपने बच्चों को वहाँ वो चीजें नहीं दे रहे हैं।
0: नहीं दे रहे, बिल्कुल 100% मैडम। खाने पीने वाली चीजें नहीं, अकेली जो बच्चों के बॉडी प्रोडक्ट्स है ना, इवन उस पे भी उन लोगों ने बैन लगा रखा है अपनी कंट्री।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड यू नो दैट, आई थिंक अभी सबको ही पता है, बस क्या कर सकते हैं, हम ही सॉफ्ट टारगेट्स हैं हम लोग। चलिए लेकिन आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही, इट्स नॉट दैट इजी कि हर चीज़ जो है एकदम ख़त्म की जाए, लेकिन शायद धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी शुरुआत करनी चाहिए, हो सकता है हमारी छोटी थोड़ी शुरुआत कोई बड़ा रिजल्ट, कोई अच्छा रिजल्ट, कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन की तरफ हमें लेकर जाए। नॉट दैट कि सभी लोगों की जिम्मेदारी हम उठा पाएं, वो तो मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपनी और अपने घर की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और शायद हम छोटे स्टेप से वो फुलफिल कर पाए। अभी तो
0: जी नाजिया जी देखिए, आप अलीगढ़ से सोचिए, आप लोग जा रहे हैं मुरादाबाद, ठीक है, रास्ता तो हाईवे है मगर कभी कभी ऐसा होता है बंदे को खड्डों वाले रास्ते में भी जाना पड़ता है, ठीक है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो उन खड्डों से गाड़ी को बचाना, अपनी फैमिली को बचाना मैडम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना।
1: बिल्कुल,
0: आप चलो पूरा तो नहीं बच सकते मगर फिर भी जितना हो सके बंदे को बचा जरूर
1: बचाता है आदमी। बिल्कुल सही बात है
0: जी,
1: देखिए कितने शॉकर्स हमारे एब्जॉर्ब कर पाते हैं घंटे ये बड़ी बात है। चलिए मैं थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगता है आपसे, और आप थोड़े से प्रैक्टिकल इंसान है जो मुझे अच्छा लगता है कि प्रैक्टिकल बात ज्यादा करते हैं जो चल रहा है, जो क्लोज टू रियलिटी है, बट स्टिल हम सब एक अच्छी उम्मीद कर रहे हैं. लेट्स होप, लेट्स प्रे.

0: बाकी मैडम एक रिक्वेस्ट और है आपसे।
1: हाँ जी बताइए।
0: ये जो तंबाकू प्रोडक्ट्स है मैडम, इस पे भी अगर हो सके जरूर बात करना। इन्होंने भी बहुत लोगों के घर खराब किए हैं।
1: बिल्कुल सही,
0: मोर देन फास्ट फूड।
1: या या या, ये तो सच्चाई है
0: जी।
1: करेंगे इस पे जरूर। बट फॉर नाउ थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, अपना ख्याल रखिए। So, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहा और मैं आप लोगों से जानना चाहती थी कि आप मुझे बताइए जंक फूड्स के जो एड्स हैं उन्हें कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े, सब ने अपने अपने तरीके से राय रखी। ये तो मैंने माना कि हर किसी का दिल यही चाहता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट अगेन बैन इज नेवर अ सोल्यूशन, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। ये हम और आप जानते ही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पीछे जो हम यहाँ पे मेंशन भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स जो वो मैं पर्टिकुलरली यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगी। जैसे एक बहुत ही अच्छी बात कही थी शिमोन जी ने कि भाई बहुत सारे मिसलीडिंग एड्स भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उन पे कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस जो हैं वो इम्पोज करनी चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होनी चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट जो है फाइंस इम्पोज

ये चीजों की तरफ जो है चाहके ना चाहके भी बढ़ जाते हैं. अब घर में जैसे गाबा जी ने कहा गेस्ट आए, अब घर में बनाना कुछ हेल्दी सर्व करना इट्स ऑल टुगेदर अ टीडियस टास्क. भाई कौन करेगा, है ना? तो फिर ये होता है कि चलो बाहर से कुछ मंगा लो. बाहर से कुछ मंगाना इज अगेन अनहेल्दी. अनहेल्दी चीज़ें आ जाती हैं, फिर वो घर में होती हैं तो बच्चे भी खाते हैं, हर कोई खाता है, फिर आप किसको कहाँ तक रोकेंगे. तो यहाँ पर भी थोड़े से चेक होने चाहिए, मतलब एक सेल्फ कंट्रोल हो, खुद पर एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो. और जैसे खादिम भाई ने कहा कि घर से शुरुआत होती है, दैन दैट्स ट्रू. हम सारी सोसाइटी को एकदम से नहीं सुधार सकते, सब पे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, और सबसे हम जो है वो उम्मीद भी नहीं कर सकते. किससे उम्मीद कर सकते? खुद से, अपने फैमिली मेंबर्स से. तो घर से शुरुआत कीजिए. मुझे याद पड़ता है हमारे साथ अजू जी जुड़े, उन्होंने भी बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज किया था कि बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं या फिर एथलीट्स हैं, यू नो वो एंडोर्स कर रहे होते हैं एक प्रोडक्ट को, तो कहीं ना कहीं बच्चे उन्हें अपना हीरो समझते हैं, या फिर बड़े भी देख लो हम भी उन्हें इतना हीरो अपना मानते हैं, इतना आइडलाइज करते हैं. तो जब वो इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं तो हम जो है हम भी टेम्प्ट हो जाते हैं कि चलो लेते हैं या खाते हैं. तो ये भी एक वजह बनती है. और एक महीने तो बहुत ही जगह चुगली जब हो रही होती, बुराई हो रही होती, तो फिर हम स्नैक्स इस तरह की जो भी मंचिंग है वो सारी चीज़ें करें. तो उस पर भी ज़रा सा कंट्रोल कीजिए भाई, जितना चुगली करेंगे आप. लेकिन हाँ, पाबंदी ज़रूरी है इसलिए क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी इन एड्स से मुतासर होते हैं. और जंक फूड्स में अक्सर बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा नमक या बहुत अनहेल्दी फैट्स होते हैं जो बच्चों की सेहत को ख़राब कर रहे हैं. अनहेल्दी ईटिंग से मैंने आपको बताया, रिपोर्ट्स भी बताएं कि चाहे मोटापा हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट की बीमारियां, ये तेजी से बढ़ रही हैं. ये मैंने ये रिपोर्ट बकायदा पेश की गई WHO की तरफ से, और WHO और यूनिसेफ ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इन्हीं रिपोर्ट्स को जो है वो ग्राउंड बनाते हुए इसी पे कहा है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है अब अपने तौर पर स्टेप्स ले. लेकिन कंप्लीटली बैन कभी हो नहीं पाएगा, जो कि वाकई एक हार्श रियलिटी है, बट देन इट्स ट्रू कि कम्प्लीटली बैन कभी भी नहीं हो पाएगा. एंड दैट वी नो किस तरह की दुनिया है, यू नो एवरीबॉडी वांट्स टू मेक गुड मनी, और इन चीज़ों से आसानी से पैसे बनते भी हैं और बहुत कमाए जाते हैं. तो कंपनीज तो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो एडवर्टाइज़ करने का हक रखती हैं, जो कंपनीज़ कहती हैं, ठीक है. ये कुछ कंट्री, एक कंट्री है जिसका मैं नाम मिस कर रही हूँ, जो मैंने पढ़ा था, उन्होंने बकायदा चैलेंज किया था कोर्ट में जाके, और उसके बाद जो एड कंपनी थी वो जीती थी, क्योंकि उनकी यही दलील थी कि हमारा राइट है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से बेचें. बुरे से बुरा प्रोडक्ट भी बिक रहा है जो सेहत के लिए डायरेक्टली हार्मफुल है, उस एक छोटी सी लाइन के साथ के वार्निंग टू दिस वो करके भी बिक रहा है, तो फिर ये प्रोडक्ट्स क्यों नहीं. तो यहाँ पे कम्प्लीटली बैन कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों को निशाना बनाना और उनके शोज में प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें, हाँ इस पर किया जा सकता है काम. जंक फूड के एड्स पर कभी भी बैन नहीं लग पाएगा, ये तो हम जानते हैं. पार्शली कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपने बच्चों को किस तरह से रेज कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें ईटिंग हैबिट्स की तरफ ला रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग लेट मी एड, वो मैटर करती है बात. तो बस आपको अवेयरनेस, बच्चों को एजुकेट करना प्रॉपर तरीके से, मिथ्स को डिबंक करना, और हेल्दी डाइट है क्या वो हमें खुद सेट करना होगा अपनी हेल्दी डाइट्स को दिखाते हुए, तभी बच्चा उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करेगा और अपनाएगा. मैं तो कह सकती हूँ सेहतमंद ज़िंदगी के लिए रेगुलेशंस, अवेयरनेस और बेहतर बैलेंस डाइट, बैलेंस इज़ ऑल्सो अ वर्ड जो शिमोन जी ने कहा, वो साथ होना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए, वैसे तो कुछ और भी बातें थी बट आई डोंट थिंक आई हैव मच टाइम. अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें अपना गेम भी स्टार्ट करना है, तो यहाँ इस टॉपिक को एंड करते हैं. थैंक यू ईच एंड एवरीवन, जितने लोग मेरे साथ इस टॉपिक पे यहाँ पर जुड़े, आपने बहुत ही कमाल की राय मेरे साथ शेयर की, सो थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप सब कहीं ना कहीं इस टॉपिक से हैं तो परेशान, मेरा मतलब आप चाहते तो हैं कुछ हो जाए बट हो नहीं पाता क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि कैसे होगा. तो बस हम जो हैं वो हथियार डाल देते हैं, तो नहीं हथियार डालने नहीं, उठाने हैं. ओके okay?

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: माशाल्लाह। Start the beat.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: हाँ जी जी तनाशा, आपने एंजॉय किया। और कुछ चीज़ों का ऐसा एडिक्शन हो जाता है कि हम चाहे ना चाहे उन चीज़ों से जो है वो बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: जैसे है डर, कुछ लोगों को इससे बाहर निकलने में बड़ी ही दिक्कत होती है, बड़ी ही प्रॉब्लम होती है। जैसे कि डर सा बैठ गया है कि अगर हम खेलेंगे तो पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अरे आप खेलेंगे तभी तो पता चलेगा कि होगा क्या। अब जब खेलेंगे ही नहीं, ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। खैर, जब तक आप डिसाइड कर रहे हैं कि किसको खेलना है और क्या मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, तो तब तक एक छोटी सी न्यूज़ अगर आप लोग कहें तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ये छोटी सी अपडेट है और ये है कतर में ओबेसिटी यानी मोटापा जो है वो कतर गवर्नमेंट कह रही है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रही बल्कि एक बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज बन चुका है। जी हाँ, इस मसले से निपटने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि वो मिलकर काम करें। आपको बता दें कि नेशनल और ग्लोबल स्टडीज़ के मुताबिक कतर में ओवरवेट की जो प्रॉब्लम है वो तेज़ी से बढ़ रही है और ये मसला सिर्फ अडल्ट तक मौजूद नहीं है, सबसे ज़्यादा टीनेजर्स और बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। आपको बताएं कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोटापे की वजह से क्रॉनिक डिजीज में भी इजाफा हो रहा है और इसमें खास तौर पर डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारियां भी शामिल हैं। आपको ये भी बताऊं कि 2023 नेशनल स्टेप वाइज सर्वे के मुताबिक तकरीबन 70% से ज्यादा कतरी सिटीजन्स जो हैं वो ओबेसिटी या फिर ओवरवेट हो रहे हैं और दूसरी स्टडी ये दिखाती है कि 46% स्कूल एज स्टूडेंट्स में भी ये मसला तेजी से बढ़ रहा है। और इसके नतीजे की बात की जाए तो सबसे पहले निकल के आता है, जिसको आज हमने भी डिस्कस किया, हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो देखा, ये न्यूज़ भी है, ये मसला भी है और इस पर बात भी हो रही है ग्लोबली, बट इसका कोई बहुत ही पावरफुल कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। चलिए, खैर बात होती रहेगी तो शायद कोई सोल्यूशन भी निकल आएगा। बट बिफोर दैट वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर, चलिए हम इनसे बात करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आरिफ जी, कैसे हैं आप? आप तो आप आए हैं तो आप डेफिनेटली खेलेंगे। तो
2: गेम खेलने के लिए मैंने फोन किया था। और एक और जो
0: हाँ
2: बात कर रहे हैं ना,
0: हाँ हाँ,
2: उसमें भी एक ऐड ऑन करने के लिए मैंने फोन किया था। मैंने ट्राई किया पर नहीं लगा।
0: हाँ बताइए।
2: सोचा की मैसेज करूँ पर मैसेज में अपना चप्पा नहीं है।
0: अच्छा चलिए, क्या चीज ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड।
2: ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अभी एक नई फिल्म भी आई है शायद इसमें इंडिया में, अभी हाल ही में रिलीज हुआ था शायद, जो फ्राइडे गया ना उसी फ्राइडे को, द इंडिया स्टोरी, फूड के रिलेटेड, प्रियस तालपड़े और काजल अग्रवाल की, फूड का रिलेटेड ही था। उनके बच्चे को कुछ कैंसर ऐसा हो जाता है, वो लोग फाइट करते हैं, लीगल फाइट है पूरा उसमें।
0: देखिए, फिर आप कितनी भी फाइट कर लें, कुछ भी कर लें, मगर वो बच्चा जो गया वो तो चला ही गया ना।
2: वो तो चला गया पर उन्होंने अच्छा, मैंने टीचर देखा होता, अच्छा लगा मेरे को।
0: आप मुझे भेजिएगा उसका नाम लिखकर, अगर हो सका तो मैं भी इस वीकेंड
2: के लिए। इंडिया स्टोरी है, इंडिया स्टोरी आप
0: देखिए। अच्छा ओके, ठीक है, चलिए नाइस। तो बस अब हम आपके साथ गेम खेलने की तरफ आ जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दूंगी और आपको मूवी गेस करनी है। 30 seconds आपके पास है, ठीक है? कल आपने ठीक ठाक स्कोर किया था, पता है आपको? हाँ, चलो आज कोशिश करते हैं कि 4 से आप ज्यादा करेंगे, ठीक है? चलिए जी, तो आप तैयार हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जादू की झप्पी, सर्किट, एमबीबी, राइट, ऑल इज वेल, रांचो, वायरस is the right answer, Raj, Simran, Europe trip, train scene is the right answer, Geet, Aditya, train, journey, मैं अपनी favorite हूँ, जादू, रोहित, computer, alien is the right answer, चुलबुल पांडे, Robin Hood, belt dance, क्या बात है दबंग। और इसी के साथ क्या जबरदस्त खेले आप, और आपने सिर्फ एक मिस किया एंड आपने स्कोर किया है कल से ज्यादा 5। वाओ नाइस यस यस यस यस देखो आप कितना रोज डे बाय डे यू आर इंप्रूविंग थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके आप हर बार ट्राई भी करते हैं और हमेशा अच्छा स्कोर करते हैं सो वेरी नाइस कोशिश करनी चाहिए दिस इज द स्पिरिट ये मुझे बहुत अच्छी लगती है सो जबरदस्त थैंक यू आरिफ जी थैंक यू वंस अगेन बहुत अच्छा लगता है आपसे हमेशा ही बात करके अपना बहुत ख्याल रखिए टेक केयर बाय ऑलराइट तो यहाँ पर हमारा जो गेम है स्टार्ट हो चुका है और किसी ने बहुत ही डिसेंट स्कोर यहाँ पर सेट किया है और ये स्कोर है 5 लेट्स सी 5 से ज्यादा आज कोई स्कोर कर पाता है कि नहीं एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं हेलो हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो पीछे से किसी की आवाज है मैंने कहा अजान ये कौन से टाइम पे ऐसा लगा मुझे सुन के पीछे
3: ऑफिस में अच्छा कैसी हैं आप ठीक हैं
0: मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं बताइए
3: जी जी वो मैं मैसेजेस किया था डिलीवर नहीं हो रहे हैं व्हाट्सएप के क्या चार्ज नहीं है या मोबाइल कुछ
0: फोन तो चार्ज है
3: नहीं मतलब डिलीवर का टिक एक ही टिक बता रहा है मैंने वो टॉपिक के ताल्लुक से मैसेज किया था कुछ भी मतलब रीड नहीं करे मैसेज
0: आपके हैं डिलीवर अभी मैं उसको अभी मैं पढ़ूंगी थोड़ी देर में आई एम सॉरी
3: मैं जस्ट कंफर्म कर रहा था
0: नहीं नहीं वो है कुछ है आपने लिखा है कि टॉपिक बहुत अच्छा है और सारी चीजें सो यस
3: प्रिंसन को कॉल करना था मैम प्रिंसन इज वेरी गुड चैंपियन एंड राज आल्सो
0: हां हां हां प्रिंसन को आज मैं कॉल करूंगी राज ने मुझे मैसेज कर ही दिया है कि आज मुझे कॉल कीजिए सो मैं उन्हें भी कॉल करूंगी अच्छी बात यह है कि आप खुद भी चैंपियन हैं बट आप दूसरे चैंपियंस को प्रमोट करते हैं दैट्स समथिंग गुड अबाउट यू अच्छी बात है
3: जस्ट आई से उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ दोनों की तरह बहुत अच्छा खेलते हैं वो लोग
0: जैसे मतलब मुझे भी बहुत अच्छी तैयारी करके उनको लेना पड़ेगा कॉल पे हाँ ये तो है चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं अभी का हाईएस्ट इज 5 लेट्स सी आप 5 से ज्यादा स्कोर करते हैं कि नहीं ओके आपका टाइम स्टार्ट होता है ऑल द वेरी बेस्ट अब आपके लिए है रेडियो भोजपुरी भाषा रॉन्ग नंबर नो बनी नैना स्पेन ट्रिप
3: ये जवानी है दीवानी
0: इज द राइट आंसर कबीर खान गर्ल्स हॉकी टीम 70 मिनट
3: ट्रैक डे इंडिया
0: बिल्कुल सही भुवन क्रिकेट मैच अंग्रेज
3: लगान
0: इज द राइट आंसर राहुल अंजलि समर कैंप टीना
3: कुछ कुछ होता है
0: इज द राइट आंसर पू रायचंद फैमिली कौन है जिसने मुझे के थ्री जी इज द राइट आंसर 1 2 3 4 5 5 आपने जवाब दिया है क्या बात है नॉट एट ऑल बैड हां एक आपने चूक की
3: भोजपुरी का
0: भोजपुरी
3: वाला कैन यू रिपीट जस्ट आई वांट टू ट्राई
0: बट देखो रेडियो
3: वी काउंट माय
0: ओके ओके रेडियो भोजपुरी भाषा रॉन्ग नंबर
3: रेडियो भोजपुरी नो
0: आईडिया दोस्तों यहाँ पर आप गेम तो समझ ही गए हैं अभी तक दो कॉलर्स मेरे साथ जुड़े और दोनों के दोनों चैंपियन भाई एकदम एब्सोल्यूट चैंपियन 5-5 का एक बहुत ही डिसेंट सा स्कोर सेट कर चुके हैं अगर आपको लगता है कि हाँ आप भी खेलेंगे और जीत सकते हैं और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं तो हाई हेलो लिखकर मुझे भेजिए 666-22-107 पर या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए 443-443-77 पर एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ कुछ और मूवीज को मैं यहाँ पे उनके हिंट लिख लेती हूँ वापस आते हैं तो इस गेम को जारी रखेंगे स्टे हुक टू FM 107 दिल से देसी

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: राइट गाइस, एक बार वापस आप सबको कहेंगे वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नासिया आपकी साथ। 8:50 ऑन द क्लॉक, कहाँ निकल जाता है वक्त। चलिए, एक हमारे साथ बहुत ही कमाल धमाल के चैंपियन इस वक्त जुड़ गए हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं। हेलो
3: हेलो,
2: हाय, गुड मॉर्निंग चैंपियन,
3: वेलकम।
2: या इट्स बीन रियली अ लॉन्ग टाइम, कहाँ थे आप इतने टाइम से? You were here in
3: यहीं पे और... आपने अच्छा। कभी कॉल ही नहीं किया।
2: अच्छा, सारा इल्जाम मेरे ऊपर, कुछ भी आपके ऊपर नहीं जाएगा। चलिए, खैर आपकी जिम्मे जो है ना वो जीत जाएगी। जो चैंपियन कहा है ना, तो चैंपियन ही।

0: हैं आप। आज का हमारा जो टारगेट है, जो चैलेंज आपको मैं थ्रो कर रही हूँ, इज़ अ फाइव। लेट्स सी, एटलीस्ट पांच से ज़्यादा।
1: That's why I'm nervous now, actually. That's why I wanted.
0: अच्छा, then forget it. Forget that. आप अपना ओरिजिनल जो गेम है वो खेलिए, and just forget, कोई चैलेंज नहीं, nothing, just fun. Okay, let's do it.
1: Okay, fine. Okay, sure. No worries.
0: चलिए, all the very best. 30 seconds का आपके पास टाइम है. Let's see, आज हम कितना स्कोर मिलके करते हैं. So आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. Aditi, Jay, Kabir, Dosti, is the right answer. Bunny, teen dost, Spain jaate hai, Bulra. No. Okay. Safina, Murad, strict father, strict love story, Kashmir mein.
1: Kashmir Haider?
0: No. Jordan, Jordan, rockstar, singer, Heer.
1: Rockstar.
0: Is the right answer. Sanjay Singhania, short-term memory loss and revenge.
1: Gajini.
0: Is the right answer. Yahan pe time up hota hua. Time ne aapko dhoka de diya. Sari galti isme time ki hai. Otherwise, aap to bahut hi acha khel rahe the. Koi nahi, Princeton, hum kal phir try karenge. Aaj ke thode se ye aapke liye tough the. But glad aapne jaane to jaane na pehchan diya. Mujhe laga ki ye tough padne wala hai. But right.
1: नहीं, वो अदिति और that was उस पे सॉन्ग भी था ना.
0: हाँ, yes. तो ये होता है good presence of mind.
1: And Jinija is my favorite actually.
0: Oh really?
1: Yeah. Even she has acted in southern movies also.
0: हाँ, एक दो movie हैं, but अभी तक मैंने ऐसे सुना नहीं कि किसी ने मुझे कहा हो कि Jinija मेरी favorite actress रही हैं. Glad आपको पसंद आती है, but हाँ, वो एक काफी originally acting wise देखो तो बहुत ही original acting करती हैं. तक कोई ऐसी बनावट नहीं है उनकी एक्टिंग में.
1: But सिंपल, और उनकी साउथ की मूवीज भी बहुत अच्छी होती हैं, लाइक तेलुगु और इवन कन्नड़ा मूवीज आल्सो शी हैज एक्टेड वन और टू.
0: नाइस.
1: बट इवन मराठी मूवी आल्सो लेटर विद हर हस्बैंड रितेश.
0: राइट. सो
1: देयर आल्सो शी एक्टेड वेरी नाइस.
0: हां, शी,
1: आई फॉरगॉट द मूवी नेम. या वेट. मराठी मूवी भी
0: है. मराठी मैंने नहीं देखी है, सो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है. बट आई नो हर कि शी इज एक्टिंग वाइज अगर देखे तो बहुत ही अच्छी पॉलिश एक्ट्रेस.
1: मतलब हिंदी में लोगों ने ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन रीजनल मूवीज में बहुत किया उसने.
0: मराठी है ना
1: अपने टाइम में.
0: नहीं, रितेश तो कर रहे हैं काम अभी भी वो बॉलीवुड में. बट हाँ, Jinija ने तो
1: रितेश इज गुड. रितेश का कॉमिक टाइमिंग एंड इज
0: लाइक सुपर सेंस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी नाइस. प्रिंसन बहुत अच्छा लगा.
1: आई लाइक
0: नहीं, बहुत अच्छा हुआ. कुछ नई थी और डिफरेंट थी, डिफिकल्ट थी, बट आपने स्कोर बहुत अच्छा, डिसेंट स्कोर किया है. सो हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा. थैंक यू जी, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए. बाय, हैव अ ग्रेट डे.
1: Yeah,
0: take care. So, दोस्तों, आइडियली अब मेरे पास तो वक्त नहीं बचा है, तो दो लोग जो हैं वो आज बहुत, हालांकि जितने लोग जुड़े वो सभी बहुत अच्छा खेले, बट हाँ, आज का फाइव इज हाईएस्ट. सो आज से ही आपको कल का चैलेंज मैं थ्रो कर देती हूँ. पांच से ज्यादा स्कोर करना है, ठीक है? पक्का करिए एकदम. पांच से आप लोगों को, जितने लोगों ने खेला, अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है. पांच से ज्यादा स्कोर करना है. कल वापस मिलेंगे 6 बजे, गेम स्टार्ट करेंगे 8 बजे. ऐसा दुआ कीजिएगा कि ऐसा हो जाए, 8 बजे हम स्टार्ट कर लें. लेट्स होप, इंशाल्लाह. बट अभी के लिए आपसे इजाजत लूंगी, इंशाल्लाह मुलाकात करूंगी कल सुबह 6 बजे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. और कल वीकेंड है तो कमाल धमाल वीकेंड का भी होगा, और हम और आप तो हैं ही कमाल धमाल के लिए. फिलहाल के लिए इट्स मी सेइंग टाटा बाय बाय. और हाँ, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.

0: कतर चैरिटी ने सोमालिया के लिए साल 2026-2027 के लिए सेहत से मुतालिक अपनी मंसूबा बंदी का ऐलान किया है, जिसके तहत 9 बड़े प्रोग्राम्स में 48 मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वस्ती गजा पट्टी में एक इजरायली हमले के नतीजे में 9 फलस्तीनी जख्मी हो गए। सामीन, इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडियो से हमारी साउंड टेक्नीशियन सारा, सोशल मीडिया से हमारी टीम की युसरा, और न्यूज़ रूम से फुरकान शाहिद, और मुझे यानी सफा सफदर को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

0: करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
1: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
2: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए. इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है. ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है. FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है. क्रिकेट हो
3: and he's hooked that away. That's four runs.
2: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में.
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM.
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की.
5: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे बास्केटबॉल के एक स्टार के बारे में। जी हां दोस्तों, अब्दुल रहमान साद कतर के मशहूर बास्केटबॉल गार्ड में से एक हैं और अल अरबी क्लब की नुमाइंदगी करते हैं। उनकी पैदाइश दोहा में हुई और उन्होंने बहुत ही कम उम्र से ही बास्केटबॉल में अपनी सलाहियतों का इजहार करना शुरू कर दिया था। कोर्ट पर उनकी सबसे बड़ी खूबी है बॉल हैंडलिंग, तेज रफ्तार और प्रेशर के दौरान सही फैसला करना। उन्होंने अपने करियर के आगाज अल अरबी क्लब से किया, बाद में अल गराफा और मिस्र के जमालिक क्लब के लिए भी खेला, जिससे उन्हें बैन अल-अक़वामी तजुर्बा हासिल हुआ। आज वो दोबारा अल अरबी क्लब के अहम खिलाड़ी के तौर पर टीम को मजबूती फराहम कर रहे हैं। साथ ही साथ कतर की कौमी बास्केटबॉल टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं और फीबा एशिया मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उनकी डिफेंसिव एटीट्यूड और बॉल को कंट्रोल करने की जो सलाहियत है वो कोचेज और फैंस दोनों को पसंद आया। और अब्दुल रहमान डिसिप्लिन और टीम स्पिरिट को बहुत अहमियत देते हैं और नौजवान खिलाड़ियों के लिए मिसाल समझे जाते हैं। कतरी बास्केटबॉल लीग में उनका तजुर्बा अल अरबी क्लब के लिए कीमती असासा है और उनसे हर सीजन बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जाती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैन लिसनर्स, हमने पहले बात की कि जो एक्सरसाइज है वो क्यों ज़रूरी है और हमारे जो नौजवान हैं या बच्चे हैं उनके लिए एक्सरसाइज क्या अहमियत रखती है। आज हम एडल्ट अफराद के लिए वर्जिश की अहमियत पर बात करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है या मसरूफ़ ज़िंदगी है उनकी, ऑफिस का काम है, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, और टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने हमारी जो जिस्मानी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कम कर दिया है, जिसके नतीजे में कई सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। बाकायदा एक्सरसाइज दिल के मसाइल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और मोटापे के खतरे को कम करती है। रोज़ाना 30 मिनट की वॉक यानी तेज़ चहलकदमी भी सेहत पर बहुत ही मुस्बत असरात मुरतब करती है। वर्जिश सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जहनी सेहत के लिए बेहद फ़ायदा मंद है। जिस्मानी सरगर्मी के दौरान ऐसे कीमियाई मादे खारिज होते हैं जो हमें खुशी देते हैं और बिल्कुल रिलैक्सेशन और सुकून का एहसास पैदा करते हैं, जिससे जहनी दबाव, बेचैनी और जो अफसुर्दगी है उसमें कमी आ सकती है। वो अफराद जो बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं उनमें तवानाई ज़्यादा होती है और वो रोज़मर्रा काम बेहतर अंदाज में सर अंजाम दे सकते हैं। वर्जिश के लिए ज़रूरी नहीं कि हम जिम जाएं या जिम जाना लाजमी हो। तेज़ वॉक, सीढ़ियाँ चढ़ना, इसी तरह साइकिलिंग करना, गार्डनिंग करना या घर के काम भी हमारी जो जिस्मानी एक्टिविटी है उसी में शुमार होते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज का आगाज़ कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू कीजिए और अपनी जिस्मानी सलाहियत के मुताबिक जो सरगर्मियाँ हैं उन्हें अंजाम दीजिए। किसी भी नई एक्सरसाइज से पहले अगर कोई भी आपको सेहत के हवाले से मसला हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। याद रखिए, उम्र या मसरूफियत एक्सरसाइज ना करने का बहाना नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा वक्त निकालकर जिस्मानी एक्टिविटी अपनाना बेहतर सेहत में सरमायाकारी है।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान, पहचान। सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं आप सबका फेवरेट शो मेरी पहचान। वैसे अक्सर हम मौसम की बात करते हैं, है ना, कि ये मौसम कैसा है, बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस मौसम की, या यूं कहें उन मौसमों की जो हमारे दिलों के अंदर सदियों से ठहरे हुए हैं। आज का एपिसोड मेरा सबसे पर्सनल और शायद सबसे जरूरी एपिसोड है। आज हम बात करेंगे जनरेशनल हीलिंग की। हम बात करेंगे उस साइकिल की जो शायद हमारे दादा दादी या यूं कहें हमारे नाना नानी इनसे शुरू हुई थी, हमारे पेरेंट्स तक आई और अब हमारे सामने एक सवाल बनकर खड़ी है। तो ब्यूटीफुल लेडीज, कभी सोचा है आपने कि हम कतर में, हम दोहा की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी अगर अपने वेस्ट बे या लुसेल के खूबसूरत घर में बैठे हैं, डिनर टेबल पर बच्चों के साथ बैठकर उन्हें किसी बात पर डांट रहे हैं और अचानक ये करते हुए हम खामोश हो जाते हैं। क्यों, क्या हो जाता है ऐसा? क्योंकि हमें लगता है, हमें याद आ जाता है अपना बचपन, वो जुबान से निकले हुए अल्फाज जो हमारे नहीं हमारी अम्मी के थे, वही लहजा, वही गुस्सा, उफ। या शायद जब आप अपने बेटे के आंखों में वो खौफ देखते हैं तो आपको 30 साल पुराना अपना बचपन याद आ जाता है कि भाई वी कैरी आर पेरेंट्स इनसाइड। हाँ, मतलब वो हमारे साथ ही हैं, उनका बेशुमार प्यार हमारे साथ चल रहा है, लेकिन उनके अनहील्ड वोंड्स भी चल रहे हैं भाई, उनके वो जख्म जो कभी भर नहीं पाए वो भी हमारी विरासत का हिस्सा बन गए। हमारे कल्चर में डिसिप्लिन अक्सर डर का दूसरा नाम होता है, इज्जत का मतलब है खामोशी। वेल, सिद्रा मेडिसिन और विश कतर की रिसर्च बताती है कि आज का जो बच्चा है एक ग्लोबल वर्ल्ड में पल रहा है, उसे डर नहीं कनेक्शंस चाहिए। तो सवाल ये है कि हम अपने खूबसूरत ट्रेडिशंस को बचाते हुए उन पुरानी बेड़ियों को कैसे तोड़े। हाँ, तो आज इसी बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन होने वाला है हमारे इस खासम खास शो मेरी पहचान में। तो आपने क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ ऑन एफएम 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन. मैं हूँ अमिता आपके साथ और आप हैं मेरे साथ मेरी पहचान में. वेल, आज की सोचना बड़ी सीधी और बहुत भारी है. हाँ, यू कैन नॉट हील व्हाट यू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज. मतलब जिस जख्म को आप तस्लीम नहीं करते, जिस चोट को आप छुपाते हैं, वो कभी ठीक नहीं होती, वो नासूर बन जाती है. हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ी दीवार है जो हमें सच्चाई दिखाने से या सच्चाई को देखने से रोकती है, और उस दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, लोग क्या कहेंगे. पता है हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो चार लोग जो आज तक किसी ने नहीं देखे, मगर जिनका डर हमारे हर फैसले पर हावी होता रहता है. इस एक जुमले ने कि लोग क्या कहेंगे, हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ से ज्यादा लोगों के दिखावे को अहमियत दे दी है. तसव्वुर कीजिए कि आप हमारे कतर के बड़े ही फेमस मॉल्स में हैं. कोई भी मॉल पकड़ लीजिए, ठीक है, आपका बच्चा किसी बात पर रो रहा है, शायद उसे कोई तकलीफ हो रही है. आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या आप उसे गले लगाकर पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, या आप घबरा कर चारों तरफ देखते हुए कि कोई देख तो नहीं रहा, आप ये सोचते हैं? हम बच्चों को चुप करवाते हैं क्योंकि हमें अपनी इमेज की फिक्र होती है. हम उन्हें खामोश कर देते हैं ताकि कोई हमें बैड पेरेंट ये ना समझ ले. हमने बाउंड्रीज नहीं बनाई क्योंकि हमें लगा था कि नो कहना बदतमीजी है. ओए होए, पर हमारी लेगेसी में रिस्पेक्ट का मतलब अक्सर खामोशी रहा है. अगर बच्चा सवाल पूछे तो वो आर्ग्यू कर रहा है, अगर बच्चा अपनी पसंद बताए तो वो जिद्दी हो गया है. तो जनाब, हीलिंग का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपने माँ बाप की तौहीन या यूं कहें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. उन्होंने वही किया जो उन्हें सिखाया गया था. अब उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं थी, है कि नहीं? बट ब्रेकिंग द साइकिल इज अ गिफ्ट. इट सिंपली मीन्स कि भाई, आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और अगर आप थोड़ा सा कुछ चेंजेस ले आए आज के जमाने को देखते हुए, तो इसमें गलत कुछ नहीं है. आप उन्हें वो माहौल या यूं कहें वो एनवायरनमेंट देना चाहते हैं जहां उनकी आवाज सुनी जाए. इट्स अबाउट चूजिंग कनेक्शन ओवर कंट्रोल. अब आप एक पुल हैं, ठीक है? आपके एक तरफ पुरानी रिवायतें हैं, वो डिसिप्लिन जो डर पर कहते ना बेस्ड था, और दूसरी तरफ एक नया सवेरा है, एक नया तरीका जहां बच्चा महफूज महसूस करे. ब्रेकिंग दिस साइकिल इजंट अ बिट्रेयल. ऐसा नहीं है कि हम अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं, या हम उनकी बात को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं और हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. नो, इट्स अ गिफ्ट जो उन्होंने हमें दिया, लेकिन हम अब उसे थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे. सोचिए आज आप किस दिशा में कदम बढ़ाएंगे. एक ऐसी राह में जहां लोग क्या कहेंगे कि अहमियत खत्म हो जाए, और मेरे बच्चे को क्या चाहिए कि शुरुआत हो. क्या करेंगे तो सोच के बताइए अमिता को. हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग की, ठीक है? और आजकल अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर एक टर्म बड़ा मशहूर है, जेंटल पेरेंटिंग. उफ, इसका जिक्र हर जगह है, चाहे वो सोशल मीडिया की रील्स हो, उसके ब्लॉग्स हो, या फिर स्टोरीज हो, ये हर जगह

पर काफी हिट हो रहा है. सुनने में बड़ा सुकून मिलता है मगर सच बताऊं इट इज एब्सोल्युटली एग्जॉस्टिंग. भाई देखो हमारे कतर में जब हैवी ट्रैफिक होता है तो हम वेस्ट में की गर्मी और ऑफिस के काम के बाद जब थके मांदे घर आते हैं और घर पर बच्चा खाना गिरा दे या रोने लगे या शोर मचाए तो उस वक्त जेंटल रहना वाकई में इट्स अ चैलेंज, किसी इम्तिहान से कम नहीं लगता. गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना आसान है क्योंकि हमने वही देखा है, मगर आपने अपने जज्बात पर काबू पाना है. ये करना बहुत मुश्किल होता है पर किया जा सकता है. वेल, जो बड़े बड़े मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं उनके मुताबिक जब हम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाकर बच्चा पालने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है. इसे हम हाई अलर्ट स्टेट में चले जाते हैं. जी हाँ, आपको पता है कि वो जो आपको अक्सर बैक पेन रहता है ना, या वो माइग्रेन जो हर वीकेंड पर आपको हो ही जाता है, या पेट की तकलीफ, ये सिर्फ थकान नहीं है, ये वो स्ट्रेस है जो आपकी बॉडी स्टोर कर रही है. हम इतना डरते हैं कि हम अपने पेरेंट्स जैसे ना बन जाएं, कि हम हर वक्त परफेक्ट बनने की कोशिश करते रहते हैं और हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट पेरेंट बने, और इसी चक्कर में पैदा होता है मॉम गिल्ट. यस, ये गिल्ट एक दीमक की तरह है जो हमारी खुशी को अंदर से खा जाता है. हम बनते हैं पीपल प्लीजर्स. यस, हम चाहते हैं बच्चा खुश रहे, हस्बैंड खुश रहे, इन लॉज खुश रहे, मगर हम भूल जाते हैं कि भाई हमारा अपना इनर कप भी तो है ना, उसका क्या, क्या वो खाली रह जाएगा? वेल, लिसन टू मी केयरफुली, यू कैन नॉट पोर पीस इनटू योर चाइल्ड. ठीक है, अगर आपका कप भरा नहीं है तो आप प्यार, मोहब्बत और वो कहते हैं ना कि एक पीस अपने बच्चे को नहीं दे सकते. अगर आप अंदर से थके हुए हैं, गुस्से में हैं, तो आप चाहे जितने जेंटल अल्फाज बोल लें, बच्चा आपकी वाइब और आपकी एनर्जी को कैच कर ही लेगा. ठीक है, बैलेंस तब आएगा जब आप ये समझेंगे कि एक कॉन्शियस पेरेंट बनने के लिए पहले एक कॉन्शियस ह्यूमन बनना जरूरी है और हमें वो इंसान बनना पड़ेगा. सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं है, ये एक जरूरत है. ठीक है, तो आज जब आप घर जाएंगे या अगर आप घर पर ही हैं तो एक पल के लिए रुकिए और अपने जिस्म से या अपनी बॉडी से ये पूछिए कि भाई अभी कैसा महसूस कर रही हो, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कोई बोझ फील हो रहा है, या उस बोझ को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो उस बोझ को कम कीजिए. जरूरी नहीं है हर चीज आज ही ठीक हो जाए, हीलिंग एक प्रोसेस है, मंजिल नहीं. अगली बार जब आपको गुस्सा आने लगे ना तो याद रखिए आप थके हुए हैं, आप बुरे इंसान नहीं है, जस्ट ब्रीद. हाँ जी, और अपनी बातों को अभी हम और आगे बढ़ाते हैं. कुछ स्पेशल चीजें हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ आज के हमारे शो में, तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें अपनी अमिता के साथ ऑन FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर, आप हैं मेरे साथ मेरी पहचान पर। तो जनाब इस वक्त अब सबसे पसंदीदा सेगमेंट है जिसका हम जिक्र करेंगे एंड दैट इज छुपी हुई मैं। तो ब्यूटीफुल लेडीज, हम सब एक मास्क पहनकर ना जीते हैं, ये आप बात मानेंगी। आई नो कुछ अग्री करेंगी कुछ नहीं करेंगी, लेकिन एवरेज यही कहेंगी। पर दुनिया के लिए हम एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल है कि नहीं, एक जिम्मेदार माँ है, एक बेटी है, एक बीवी है, लेकिन इन सब के बीच हम कौन है, वो कौन सी शख्सियत है हमारी जो छुप गई है। वल आज की छुपी हुई मैं आपके अंदर की वो नन्ही सी बच्ची है, वो बच्ची जो शायद आज भी वहीं खड़ी है जहां उसे 30 साल पहले छोड़ा गया था। हमारी परवरिश या यूं कहें हमारी अपब्रिंगिंग में अक्सर हमें सिखाया गया कि जज्बात का इजहार करना एक कमजोरी है, रोना नहीं है, गुस्सा दिखाना बदतमीजी है, लोग क्या कहेंगे अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी। इन जुमलों से, इन सेंटेंसेस ने हमारे अंदर की उस लड़की को ना खामोश कर दिया है। वो छुपी हुई मैं आज भी आपके अंदर सांस ले रही है, इंतजार कर रही है कि कोई उसे देखे, कोई उसे समझे। सो ब्यूटीफुल लेडीज, तसव्वुर कीजिए कि शाम का वक्त है, आप अपनी थकान में हैं, लेकिन आप कहीं बाहर से घर लौटी हैं। आपका बच्चा घर में शोर मचा रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है या किसी बात पर एकदम टैंट्रम्स दिखा रहा है। अचानक आपके अंदर एक आग सी लग जाती है, उफ, एक ओवरवेलमिंग अर्ज होती है कि आप चीख पड़े या शायद आपका हाथ उठ जाए। उस पल क्या करेंगे आप? आई शुड से उस पल में रुकिए, पॉज लीजिए। वो गुस्सा आपके बच्चे की वजह से नहीं आया, वो आपके बच्चे का बिहेवियर आपको ट्रिगर नहीं कर रहा है, बल्कि आपके अंदर की उस छोटी बच्ची की चीख है जिसे उसके बचपन में कभी सुना नहीं गया था। जब आपका बच्चा रोता है तो आपके अंदर की वो रिप्रेस्ड बच्ची डर जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि जब वो रोती थी तो उसे डांटा जाता था और ये कहा जाता था कि अरे इस तरह से बिहेव मत करो, रोना बंद करो। एंड अब आपका रिएक्शन उन्हीं सब चीजों को देखकर आगे बढ़ रहा है। वैसे द बर्डन ऑफ परफेक्शन बहुत बड़ा बर्डन है। हम सब परफेक्ट मदर बनने की रेस में ना एकदम दौड़ रही हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो सब बने जो हम नहीं बन पाए, लेकिन इस चक्कर में हमने खुद पर एक भारी बोझ रख दिया है। हमारे कल्चर में माँ का दर्जा खुदा के बाद आता है और इस दर्जे ने हमें इंसान बनने की इजाजत ही नहीं दी है। हमने सोचा कि अगर हम थक गए, अगर हमें गुस्सा आ गया, अगर हम रो पड़े तो हम नाकाम हैं। नहीं ब्यूटीफुल लेडीज, द हिडन यू, आपके अंदर की वो लड़की है, उसे ये बताने की जरूरत है कि इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट।

रोना बंद करो। आज एक एडल्ट माँ के रूप में अपनी उस नन्ही बच्ची के पास जाइए, उसे कहिए, मैं देख रही हूं तुम्हें, परेशान मत हो, मैं तुम्हारा डर समझती हूँ और आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप अपने इनर चाइल्ड को वैलिडेट करती है ना, तो आपका गुस्सा ठंडा होने लगता है। आपके बच्चे का टैंट्रम अब आपको दुश्मनी नहीं बल्कि एक बच्चा लगने लगेगा, जिसे सिर्फ थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हीलिंग का सफर आसान नहीं होता। पुरानी आदतें, ओल्ड हैबिट्स बहुत सख्त होती हैं। मगर याद रखिए कि जब आप खुद को एक परफेक्ट माँ बनने के बोझ से आजाद कर देती हैं, तभी आप अपने बच्चे को एक खुला आसमान दे पाती हैं। हमारी माँओं ने शायद हमें वो नहीं दिया जो हमें चाहिए था, क्योंकि उनके पास भी वो नहीं था। ये एक एवरेज चीज बता रही हूँ जो अक्सर हर एक घर में होती है, इसे गलत ना समझिएगा। उन्हें भी कभी किसी ने नहीं बताया था कि वो काफी है, दे आर इनफ। आज हम इस साइकिल को ना तोड़ रहे हैं। वी आर द जनरेशन दैट हील्स। अपने आप को माफ करना सीखिए। अगर कल आपने बच्चे पर गुस्सा किया था, तो आज खुद को एक मौका और दीजिए कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। भले ही आपको अच्छा नहीं लगता, भले ही आपकी हेल्थ जवाब दे देती है, पर आप अपने ऊपर जब प्राउड फील करेंगे ना कि आप कमाल के पेरेंट हैं, आप कमाल की माँ हैं, तो डेफिनेटली चीजें आसान होंगी। हाँ, तो मेरी पहचान पर कुछ और ऐसी बातें होंगी जो हमारे दिल को सुकून पहुंचाएंगी। हाँ, तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है अपनी अमिता के साथ, मेरी पहचान सुनते हुए। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107। मैं हूं अमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं मेरी पहचान। वेल, आज हमने बात की जनरेशनल हीलिंग की, उस सफर की जो हमारे बचपन से शुरू होकर हमारे बच्चों के फ्यूचर तक जाता है। हमने देखा कि कैसे हमारे पेरेंट्स का डर और उनकी खामोशी हमारे अंदर आज भी ना बोलती है। हमने बात की लोग क्या कहेंगे कि दीवार की और उस छुपी हुई मैं की जो आज भी सिर्फ एक बार गले लगने का इंतजार कर रही है। ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, और अगर हम अपने कतर की बात करें तो कतर फाउंडेशन के फैमिली डेवलपमेंट सेंटर और सिद्रा मेडिसिन के एक्सपर्ट्स जो बातें कहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो ये है कि पेरेंटिंग बच्चों को सुधारने का नाम नहीं है, पेरेंटिंग खुद को संभालने का नाम है। हम अपने बच्चों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर हमारे अंदर सुकून है तो घर में सुकून होगा। अगर हमारे अंदर तूफान है तो हम चाहे जितनी जेंटल पेरेंटिंग की किताबें पढ़ लें, बच्चा उस तूफान को महसूस कर ही लेगा। तो चलिए, अब वक्त है उन प्रैक्टिकल सीड्स ऑफ हीलिंग का जो आज अपने साथ आप घर लेकर जाएंगे। सबसे पहली और सबसे ताकतवर चीज, द पॉज प्रैक्टिस। यस, अगली बार जब आपका बच्चा कोई ऐसी गलती करे जो आपको आग बबूला कर दे, गुस्से मिला दे, शायद उसने आपका महंगा फोन तोड़ दिया हो, उफ, दैट्स अ वेरी बिग एग्जांपल, या स्कूल से कोई शिकायत आई हो, तो रिएक्शन देने से पहले सिर्फ 10 सेकंड रुकिए, जस्ट 10 सेकंड्स। इन 10 सेकंड्स में एक गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये गुस्सा इस वक्त की गलती पर है या ये गुस्सा उस बचपन की याद पर है जब मुझे गलती करने पर मारा गया था। अक्सर हमारा गुस्सा करंट सिचुएशन से ज्यादा हमारे पास्ट से आता है। हम डरते हैं कि अगर हमने आज सख्ती नहीं की तो बच्चा बिगड़ जाएगा। ये डर हमारा है, बच्चे का नहीं। तो इन 10 सेकंड्स में, ये 10 सेकंड्स का पॉज जो मैंने आपको बोला ना लेने के लिए, आपको एक रिएक्टिंग मशीन से एक लविंग पेरेंट बना देता है, और ये आपको एक पावर देता है टू चूज लव ओवर फियर। हाँ जी, दूसरा है कि थोड़ा सा डीप डाइव करें, वैलिडेट डोंट फिक्स। ठीक है, तो ये है कि जो शायद हमारी पूरी जो नस्ल है, जनरेशन है, उसको बदल सकती है। वैलिडेट करें, डोंट फिक्स, यानी कि हमारी परवरिश में हमें सिखाया गया था कि अपने जज्बात को दबा दो, रोते नहीं है, बड़े हो जाओ, ठीक है, इतनी सी बात पर रोना। हमने सीखा कि रोना बुरा है, लेकिन हीलिंग का रास्ता वैलिडेशन से होकर गुजरता है। जब आपका बच्चा दुखी हो, परेशान हो या गुस्से में हो, तो उसे सल्यूशन मत दीजिए, उसे ये मत कहिए इट्स नथिंग, बल्कि उसकी आंखों में देख कर कहिए, मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें दुख हो रहा है, और मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। सो ब्यूटिफुल लेडीज, जब आप ये कहती है ना, तो आप दरअसल ये कह रही होती हैं कि तुम्हारी फीलिंग्स गलत नहीं है, तुम जैसे हो ठीक हो। दिस वन सेंटेंस, आई सी यू एंड आई एम हियर, ब्रेक्स डेकेड्स ऑफ इमोशनल सप्रेशन। हाँ जनाब, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वो सदियों की जो इमोशनल सप्रेशन है वो एक चुटकी में टूट जाती है। ये उन्हें सिखाता है कि उन्हें अपने इमोशन से डरना नहीं है। हाँ जी, तीसरी चीज मुझे लगती है कि करेज टू अपोलोजाइज, यानी कि माफी मांगने की जो क्षमता है, जो हिम्मत है, वो इतनी आसान नहीं है, शायद सबसे मुश्किल है मगर सबसे जरूरी है। एंड द पावर ऑफ एन अपोलॉजी। हमारे कल्चर में एक गलत फहमी है कि अगर माँ बाप ने माफी मांगी तो उनकी अथॉरिटी, उनका रुतबा कम हो जाएगा, इज्जत घट जाएगी। बिल्कुल नहीं, मगर सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जब आप अपने बच्चे से माफी मांगते

हो तो आपकी इज्जत उनकी आंखों में 100 गुना बढ़ जाती है। अगर आपने किसी दिन थकान में बच्चे पर चीख दिया या बेवजह डांट दिया तो बाद में उनके पास जाइए, कहिए बेटा अम्मी ने गलत कर दिया, आई एम सॉरी, मेरा मूड ऑफिस की वजह से खराब था और मैंने तुम पर गुस्सा निकाला, आई एम सॉरी, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। जब आप माफी मांगते हैं तो आप बच्चे को दो बहुत बड़ी बातें सिखाते हैं। पहली कि रिस्पेक्ट एक टू वे स्ट्रीट है और दूसरी कि इंसान से गलती होती है और उसे सुधारा जा सकता है। तो आप ये उसे सिखा रहे हैं कि भाई अकाउंटेबिलिटी बाय मॉडलिंग इट, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बस ये छोटी मोटी चीजें जब हम अपनी लाइफ में वो कहते हैं ना इन्वॉल्व कर लेते हैं तो शायद धीरे धीरे जब हम अपने माइंड में बड़े हो रहे होते हैं हमारे बच्चे हमें देखकर बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। वेल, इसके बाद एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो है विरासत का इंतखाब। अक्सर हमें लगता है कि हीलिंग का मतलब है कि हम अपने पेरेंट्स की हर एक बात को ना इनकार कर दें, मगर ऐसा नहीं है। हीलिंग का मतलब है सिलेक्टिव इनहेरिटेंस। आप एक छलनी लीजिए, ठीक है, अपनी परवरिश की अच्छी चीजें जैसे उनका मेहनती होना, उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनके खानदान को साथ लेकर चलना, उसे अपने पास रखिए, मगर उनका डर, उनकी रिजिडिटी, उनकी शेमिंग वाला तरीका, उसे वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। आस्क योरसेल्फ, मैं अपने पेरेंट्स की कौन सी खूबी अपने बच्चे को देना चाहती हूँ और कौन सी बुराई यही खत्म करना चाहती हूँ। आप अपनी विरासत के मालिक हैं, गुलाम नहीं, तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखने की जरूरत है। एक और चीज है, वो है जज्बात की बारीकी को समझना। हमारी पुरानी जनरेशन में सिर्फ 2 या 3 इमोशंस होते थे, हाँ, गुस्सा, खुशी या खामोशी। हमने कभी नहीं सीखा कि गुस्से के पीछे क्या छुपा है। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो सिर्फ मैं गुस्से में हूँ

वह आप अपने इमोशंस को ना बारीकी से समझती हैं, तो आपका बच्चा भी वही सीखता है। उन्हें सिखाएं कि इट्स ओके टू फील सैड, एंग्री एट समटाइम्स। इमोशंस जो होते हैं ना, वो हमारे दुश्मन नहीं है, बस मैसेज देने का तरीका सही होना चाहिए। और उसके बाद भाई लोग क्या कहेंगे वाली स्क्रिप्ट अपनी कहानी खुद लिखें। लोग क्या कहे को हमको एडिट करना पड़ेगा। हाँ जी, हमने सेगमेंट टू में बात की थी कि मगर इसे तोड़ने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, वो है वैल्यूज और ओपिनियंस। एक पेपर पर लिखिए कि आपके लिए एज अ पेरेंट सबसे जरूरी वैल्यू क्या है, क्या वो काइंडनेस है या ऑनेस्टी। जब आपका बच्चा मॉल में शोर मचाए और लोग आपको देख रहे हों, अरे तो उन लोगों की नजरों से ज्यादा अपनी वैल्यूज पर ध्यान दें। अगर आपकी वैल्यू कंपैशन है, तो आप बच्चे को डांटेंगे नहीं, बल्कि उसे समझाएंगे। लोगों की राय ओपिनियन हर मौसम की तरह बदलती रहती है, मगर आपका बच्चा और आपका साथ उसके साथ, ये रिश्ता उम्र भर का है। तो अपने इस लॉन्ग लाइफ रिलेशन को, उस बॉन्ड को चार लोगों की वजह से चेंज मत होने दें, ठीक है। उसके बाद खेल में शिफा, या यूं कहें खेल में हीलिंग। ट्रेडिशनल एशियन होम्स में पेरेंटिंग बहुत सीरियस होती है। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। डिसिप्लिन का मतलब ये बड़ा ही सीरियस हो जाता है, मतलब कि सीरियस ही रहना। मगर ब्यूटीफुल लेडीज, रिसर्च कहती है कि प्लेइंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हीलिंग। जब आप अपने बच्चे के साथ जमीन पर बैठकर खेलते हैं, तो आप उनके इक्वल बन जाते हैं। खेलने से डर खत्म हो जाता है, सेफ्टी पैदा होती है, और अगर आपने दिन में बच्चों को डांटा है, तो शाम को उनके साथ थोड़ी मस्ती कीजिए, थोड़ा हंसी मजाक कीजिए। ये प्लेफुल रिएक्शन पूरे जख्मों पर मरहम का काम करता है। एंड लाफ्टर इज द साउंड ऑफ हीलिंग एट होम। हाँ जी। एंड देन कम्स सेल्फ कंपैशन। हाँ जी, खुद पर रहम कीजिए। ये सबसे ना गहरी टिप है। हम अक्सर अपने पेरेंट्स को तो माफ कर देते हैं, मगर खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। हम ये मॉम गिल्ट में जी रहे होते हैं। याद रखिए, आप एक ऐसी चीज करने की कोशिश कर रही हैं जो आपके खानदान में किसी ने नहीं की। यू आर ब्रेकिंग अ साइकिल जो कि 100 सालों से चल रहा है। गलतियां तो होंगी ना, कभी आप चीखेंगी, कभी आप फेल होंगी। उस वक्त अपने आप से वही बात कीजिए जो आप अपने सबसे अच्छी दोस्त से कहेंगी। जैसे कि मैं कहूंगी, अमिता तुमने आज एक गलती की, मगर तुम एक बुरी माँ नहीं हो, तुम सीख रही हो और कल एक नया दिन होगा। वेल, जब आप खुद पर रहम करती है ना, तभी आप अपने बच्चों को वैसे ही काबिल बना पाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है जब हम अपने पेरेंटिंग हीलिंग कर रहे हो, अपने माइंड को एकदम रिफ्रेश कर रहे हो, है कि नहीं। वेल, अब वक्त है जाने का, तो मैं कहूंगी जाते जाते एक छोटी सी टिप, और वो ये है, योर चिल्ड्रन डोंट नीड अ हीरो, दे नीड अ ह्यूमन। हाँ जी, हम सबने सुपर मॉम और सुपर डैड बनने की ना कोशिश में अपनी रातों की नींद हराम कर ली है। हम चाहते हैं हम परफेक्ट दिखें, मगर बच्चों को परफेक्शन से डर लगता है। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो कभी कभी हक जाता हो, जो कभी गलती करता हो, कभी उनके साथ बैठ कर कुछ बातें कर ले, कुछ गेम्स खेल ले। यस, बी रियल विद देम, बी वल्नरेबल। जब आप उनके सामने ह्यूमन बनते हो ना, तो आप उन्हें भी ह्यूमन बनना सिखाते हो, वो भी चीजों को समझ पाते हैं। वेल, वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का, तो मुझे जाना होगा, इजाजत दीजिए। और ये जो जनरेशनल हीलिंग की आज हमने बात की थी, इसको सिर्फ आज मेरी पहचान तक सीमित ना रखें। कोई चीज जो आपको अच्छी लगी है, उसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल जरूर करें, और यही बातें, इन्हें हम आगे बढ़ाएंगे हमारे अगले एपिसोड में, जो कि अगले हफ्ते सेम टाइम में लेकर आऊंगी FM 107 पर मेरी पहचान में। ये शो आपको कैसा लगा, आप बेशक मुझसे शेयर कर सकते हैं 666-22107 पर, 666-22107 पर अपने नाम के साथ, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स FM 107 के, उस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। और कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मुद्दा जो आप चाहते हैं कि मेरी पहचान में उठना चाहिए, मेरी पहचान के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो वो भी सजेशन आप दे सकते हैं, ठीक है।
अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। साथियों, अगर एफ एम 107 की घड़ी की तरफ देखूं तो इस वक्त बज रहे हैं 11:01 और आप सुन रहे हैं सफा के साथ। शो का टाइम हो चला है। कौन सा शो है भाई, नाम बता दो। नाम याद है ना? नहीं याद आ रहा, मैं बताती हूँ। सन एंड साउंड सुन रहे हो भाई? सन एंड साउंड
0: आप सुन रहे हैं। सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: तो भाई आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड, और मेरा और आपका साथ रहेगा 11 से लेकर 1 तक। तो भाई 11 से 1 तक आप बुक हो चुके हो मेरे साथ। तो साथियों, अपना शो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि आपको ढेर सारी खुशामदीद। तड़कते भड़कते दिन के साथ आप जो हैं वो जुड़ गए हैं हमसे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखें, एक इंटरैक्टिव शो है, तो आपने करना ये है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कल मुझे मैसेज किए कि अच्छा हम सोशल मीडिया पे, मतलब अभी तक क्या आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है क्या? सोशल मीडिया पे तो फॉलो करो हमें ज़रा। अगर आज भी जानना चाह रहे हो कि सोशल मीडिया पे हमारा क्या हैंडल है, तो @FM107 Qatar पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। और जैसा कि मैं बता रही थी कि ये एक इंटरैक्टिव शो है जहाँ पे हम ऑन अ वेरी लाइट मोड चलते हैं। देखो, जिंदगी में मसला ये चल रहा है कि 90% जिंदगी तो सबकी ऐसी वाली चल रही है कि हम कह सकते हैं कि वाह क्या मस्त बर्बाद हो रही है जिंदगी, क्या मस्त बर्बाद हो रहा हूँ मैं। लेकिन इस शो में आकर ना ऐसा आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी जो लेफ्ट साइड या राइट साइड वाली जो पॉकेट है, जो भी खाली है, अभी हाथ डालो जरा, पॉकेट है मेरे पास है। आज असल में पैंट पहन कर आई हूँ तो मेरे पास पॉकेट है। आपके पास है ना? है, पॉकेट होती है भाई, सबके पास होती है एक पॉकेट, चाहे पर्स की पॉकेट है, चाहे फलानी पॉकेट है, चाहे कोई भी पॉकेट है। उसके किसी एक कोने में ना टेंशन घर नाम की एक चीज होती है, उस पॉकेट के अंदर यूं करके डाल दो उस चीज को, मतलब टेंशन जो है ना अपनी सारी उस पॉकेट के अंदर डाल दो और फिर आओ इस शो को अटेंड करने, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत लाइट मोड पे चलते हैं। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी टेंशन चल रही है, चल रही है, वो तो चलेगी, चाहे हंस के गुजारा करो, चाहे रोकर गुजारा करो, कैसे भी करो, वो तो चलेगी। लेकिन एक चीज है जिसके ऊपर बस चलता है, वो है ये रेडियो शो। तो उसको क्यों ना अच्छे से सुन लिया जाए ऑन अ वेरी लाइट मोड। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, लाइफ में किसी को रुलाना बहुत आसान काम होता है, किसी की दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रखना बहुत आसान काम होता है। जो सबसे मुश्किल काम होता है ना, वो होता है दूसरों को हंसाना, मुस्कुराहट देना। तो भाई उस मुश्किल काम के लिए मैं हूं ना गोभी दया फुल्लों। आ जाओ जरा खुशबू लगा के, अटेंडेंस लगवाओ। 666-22107 पे मैसेज करो, 666-22107 पे मैसेज करो और बताओ भाई आज का दिन किस किस का कैसा गुजर रहा है और फिलहाल हो कहाँ, ये तो बताओ। कतर के कौन से कोने से सुन रहे हो और आज का दिन कैसा शुरू हुआ है? अच्छा शुरू हुआ है। मेरा कैसा शुरू हुआ है? मेरा दिन कैसा शुरू हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रजा में राजी, अल्लाह का शुक्र है। वैसे आमतौर पर होता ही है कि दिल नहीं करता कि जो है ना, देखिए तकिए में मुंह देकर जब सोया जाता है ना, चाहे वो फिर वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेनेसडे हो, थर्सडे हो, आज क्या है भाई? हमारे पास बाहर सारा बैठी, सारा आज वेनेसडे है ना? हाँ आज वेनेसडे है। देखें, असल में मुझे थर्सडे की खुशी इतनी होती है कि मैं बीच में वेनेसडे को भूल जाती हूँ। वेनेसडे को मैं ऐसा ट्रीट करती हूँ जैसे कोई, अल्लाह माफ़ करे, सौतेला बच्चा नहीं होता वैसा। वेनेसडे को मैं भूल जाती हूँ, मिडिल चाइल्ड वाला हिसाब होता है वेनेसडे के साथ, मुझे सिर्फ थर्सडे नज़र आ रहा होता है ना किसी में। तो खैर, आज वेनेसडे है और आज की तारीख है 29 जुलाई। तो हाँ, हम कहाँ थे? हम ये थे कि भाई देखें, अल्लाह की रजा में राजी। वैसे तो जब भी हम सोते हैं तो सुबह उठने को दिल नहीं करता। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। पता नहीं वो कौन से लोग हैं, मैं लोगों को बड़ी हैरानी से देखती हूँ भाई। लोग सुबह 5 उठ जाते हैं भाई, सुबह 5, लोग 4 उठ जाते हैं सुबह को 4, और मेरे लिए आप समझ लें एक बैटल ग्राउंड है नींद से जागना। मुझे अपने आप से रोज एक जंग लड़नी पड़ती है कि भाई उठो उठो, अपने आप को धक्का देना पड़ता है, गुर्बत याद दिलानी पड़ती है अपनी कि भाई सफा देखो 28 तारीख आनी है इस महीने ये आ गई, अगले महीने ये आनी है। तो अपने आप को ऐसे मोटिवेट करते हैं हम गुर्बत की दुनिया में। अपने आप को और कहते हैं उठो काम करना है काम करना है हमने काम करना है पैसा छापना है नोट छापना है भाई मेरे जैसे लोगों की मोटिवेशन का एक जरिया होता है नोट छापना है भाई नोट छापना है मेहनत करके छापना है मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भाई देखो 666-22-107 पर आप कर सकते हो मैसेज 666-22-107 पर फिलहाल के लिए काम ये करना है कि आपने अटेंडेंस लगवानी है थोड़ी बहुत कि भाई हाँ हम हाजिर नाजिर हैं ये जो साइलेंट लिसनर्स बैठे होते हैं ना ये मजे ले लेकर सुन जरूर रहे होते हैं लेकिन भाई क्या ही जाएगा आपका कि अगर आप थोड़ा सा मैसेज करके हेलो हाउ आर अस्सलाम वालेकुम ऐसे मैसेज कर दोगे तो कोई मसला नहीं होगा देखिए मेरे पास भी एक अदद अंगूठा है इससे मैं लोगों को मैसेज करती हूँ मैंने तो पेन से और मार्कर से अपने अंगूठे पे सिक्स पैक बनाए हुए तो मेरे अंगूठे के पास तो सिक्स पैक हैं मेरा अंगूठा दे दरादन मैसेज कर देता है जवाब दे देता है मैसेज का तो आप बताएं आप मैसेज में कितने तेज हैं हेलो हाय तो कर लो अच्छा अगर किसी को बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है बातचीत करने का तो वो भी सहूलत है हमारे पास आप हमें कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर 443-443-77 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपको बता दूं क्योंकि हमने कहा ये एक इंटरैक्टिव शो है तो हम आपके साथ गेम्स भी खेलेंगे हम जो हैं वो आपके साथ ऑन अ वेरी लाइट मोड मुद्दे पर बात भी करेंगे अच्छा मुद्दे से याद आया मुद्दा तो बाद में आएगा पहले ज़रा तड़कती भड़कती खबर हम मौसम की क्यों ना ले लें देखो भाई मौसम जो है ना वो उतना ही बेरहम चल रहा है जितना कल था मतलब महबूब की मोहब्बत में शिद्दत में कोई कमी ना आई धूप हमसे बहुत प्यार करती है कोई और करे ना करे धूप हमसे बहुत प्यार करती है सूरज चाचू हमसे बहुत प्यार करते तो उन्होंने कहा मेरी तपिश की शिद्दत क्यों कम हो तो मैंने कहा ठीक है ओके आज भी वही वेदर रिपोर्ट दे देते हैं लोगों को देखो भाई इस वक्त जो है ना टेम्परेचर चल रहा है फेयर अब वेदर रिपोर्ट ये कहती है फेयर है ये मुझे लगता है गर्म है लेकिन वेदर रिपोर्ट कह रही है फेयर है पता नहीं क्या ही कह रही है तो भाई 41 डिग्री सेल्सियस सनी चमकता धमकता सूरज सर के ऊपर है अच्छा कल का मुझे पता चला कल जो मैंने वेदर रिपोर्ट दी थी मैं पूछ रही थी वो बादल नुमा आया हुआ है और ये वो तो मुझे पता चला कि भाई यूएई में कोई सैंड स्टॉर्म आया था बहुत गहरा किस्म का बहुत गहरा मैंने कल रील्स वगैरह देखी तो उससे मुझे पता चला कि वो इतना गहरा आया हुआ था कि वहाँ पे जीरो विजिबिलिटी हो गई थी वो कौन कौन से एरिया में कुछ मखसूस एरिया होंगे लेकिन जाहिर बात है सैंड स्टॉर्म एक जगह से शुरू होता है तो दूसरी जगह तक चलता जाता है क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं तो हमारे पास भी उसका शायद थोड़ा बहुत अफेक्ट आया था तभी वो थोड़ा सा हेजी हो रहा था मौसम कल और मैं दुआ कर रही थी भाई बारिश हो जाए अल्लाह ताला की रहमत है भाई अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को खैर आज का टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस और फील्स लाइक 46-47 का फील लाइक चल रहा है अच्छा आपकी गाड़ी का टेम्परेचर क्या बता रहा है जरा मुझे मैसेज करके बताओ 666-22-107 मैं अभी स्टूडियो में हूँ 666-22-107 पे आप मैसेज कर सकते हैं मैं स्टूडियो में हूँ तो इसलिए मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी का टेम्परेचर क्या बता रहा है लेकिन आपकी गाड़ी का टेम्परेचर क्या बता रहा है जरा बताओ फिर उसे हम टैली करेंगे अपने वेदर फॉरकास्ट से और वेदर फॉरकास्ट को गलत साबित करेंगे आज हम क्योंकि ये जब भी हमें बताता है कम बताता है हमारी गाड़ी हमें ज़्यादा बता रही होती है ये क्या है ये कैसा सीन पार्ट चल रहा है भाई अच्छा खैर आगे बढ़ें तो ह्यूमिडिटी वही बेरहमी हमारे ऊपर करते हुए 35% पर ह्यूमिडिटी चल रही है कल भी ऐसी ही थी कोई चेंज नहीं आया बिल्कुल भी कोई तरस नहीं आया अरे ये गाना याद आ गया तरस नहीं आया तुझको ये गाना चलाएंगे आज ठीक है ह्यूमिडिटी के नाम पर तरस नहीं आया तुझको चलाएंगे ठीक है और भाई ह्यूमिडिटी जो है वो चल रही है 35% पर जो कि कल थी ठीक है और हमारे पास वेदर तो आपको पता है यूवी रेज एक्सट्रीम ही चल रहे हैं और क्या है ये जो विंड है ना विंड हवा की रफ्तार अरे भाई हवा की रफ्तार कम हो गई है मतलब ये कि गर्मी में और इजाफा हो रहा है हवा की रफ्तार तकरीबन 8-10 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है अच्छा भाई और ज़्यादा गर्मी जो बाहर बेचारे लोग हैं अच्छा मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे कुछ भाई हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो अगर आपके पास इतनी इस्तात है कि आप थोड़ा पानी का क्रेट लेकर या लस्सी वगैरह का क्रेट लेकर ठंडा उनको बांट सकते हैं तो ज़रूर बांटें एक दूसरे का ख्याल करें अल्लाह ताला आपको अजर देगा उसका और वैसे तो हम किसी और चीज़ में मदद कर नहीं सकते लेकिन जिसकी जितनी इस्तात हो उतनी इस्तात रखते हुए आपको आगे हेल्प करनी चाहिए। तो अगर आपको कोई ऐसा मामला नज़र आता है कि कोई आप लस्सी का, पानी का, जूस का क्रेट बांट सकते हैं ठंडा, तो ज़रूर बांटें। अजर का अजर है, एक दूसरे का ख्याल है भाई। अच्छा भाई, और आगे क्या बताया जाए वेदर रिपोर्ट में? वेदर रिपोर्ट में वही बात चल रही है कि जिम में जाना हो तो मेहरबानी करके अपने जिम के टशन जो है ना, इंडोर दिखाना, बाहर नहीं दिखाना, पिघल जाओगे, पिघल जाओगी। वो देखा है वो खट्टी मीठी टॉफियाँ नहीं आती रंग बिरंगी वाली, उनको अगर गर्मी में बाहर रख दो तो कैसे पिघल जाती हैं। या बबल गम होती है ना, बबल गम धूप में दो मिनट के लिए बाहर रख दो तो कैसे यूँ पिघल जाती है, वो वाला हाल हो जाएगा। तो जिम वाले टेंशन बाहर नहीं झाड़ना। ये वर्कशॉप के लिए वेदर ये वाला नहीं है। ये जो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की धूप होती है, मेहरबानी करके रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड अननेसेसरी। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर कोई बहुत एक्सट्रीम ज़रूरत नहीं है, कोई रोज़ी रोटी का चक्कर नहीं है ऐसा, और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि घर के अंदर रहें तो घर के अंदर ही रहें। 3 बजे के बाद भाई निकलना बाहर, जो करना है ज़िंदगी के साथ कर लेना, किसने मना किया है। तो भाई ये थी हमारी वेदर रिपोर्ट, और फिलहाल के लिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। देखो मामला ये है कि वेदर तो हमारे ऊपर तरस खा नहीं रहा, तो हम क्यों ना खुद ही अपने ऊपर तरस खाते हुए एक गाना चला लें। मुझे एकदम से याद आया ना, याद आ रहा है एक गाना, तो मैंने कहा चलो एक ब्रेक लेते हैं और जो ना गाना चला लेते हैं अच्छा सा। तरस नहीं आया तुझको, ये वाला, ठीक है, ये वाला गाना सुनते हैं, ठीक है। और ह्यूमिडिटी को सल्यूट करते हुए, क्योंकि इसने तो हमारी सुननी नहीं है, हम अपने आप को खुद ही थोड़ा सा संभालते हुए, अपना ख्याल, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आकर उस पार हम बात करेंगे कुछ अच्छी सी, मतलब कि आज का, अच्छा कल आप लोगों के मुझे मेरे अपने पर्सनल सोशल मीडिया बड़े मैसेज आए मुझे लोगों के। मैंने कल बात की थी दलूल की, तो लोगों को बड़ी फैसिनेटिंग लगी भाई दलूल की बात, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को दलूल की और कुछ बातें बताती हूँ, क्योंकि इथोपिया ना दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ के बारे में लोग, एटलीस्ट हम लोग जो है ना, वो ज़्यादा नहीं सोचते, ज़्यादा नहीं जानते। इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग प्लेस, और वहाँ पे मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जो कि वाकई में फैसिनेटिंग है। इथोपिया वैसा नहीं है जैसा हमारे दिमागों में कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी गुड प्लेस। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को कुछ जो अच्छे खासे जो फैक्ट्स हम लोग शेयर करते हैं, ट्रिविया जो शेयर करते हैं हम लोग, तो आज मैं आपको कुछ और भी इथोपिया के बारे में फन ट्रिविया बताऊंगी। लेकिन एक काम करते हैं, इस गाने के बाद, इस ब्रेक के बाद आते हैं और फिर एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई सुनते रहे फिर 107 पर सन एंड साउंड विद सफ़ा। हाँ, दम दमादम, दम दमादम, दमादम मस्त कलंदर हो रहा है वो ह्यूमिडिटी और धूप के साथ। चलो भाई सुनते रहो फिर 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: माशाल्लाह। Start the beat.

0: भाई उर्वशी के अलावा अगर ये कहते ना माशाल्लाह सूरज चाचू की मुस्कुराहट तो वाह वाह वाह वाह वाह।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
0: फिलहाल तो मामला ये है कि भाई सूरज चाचू कहा जाए कि भाई टेक इट इजी सूरज चाचू टेक इट इजी। अच्छा आज हमारा 36 का आंकड़ा हो ही गया भाई। पहले तो ये आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा ऑन एफएम 107। 36 का आंकड़ा ऐसे हुआ है भाई, इतने सारे लोगों के मैसेज आ गए। मैंने कहा था देखो मैं 41 डिग्री बता रही हूँ टेम्परेचर, 41 डिग्री सेल्सियस, आपकी गाड़ी क्या बता रही है। अब इतने सारे मैसेजेस आए, इतने सारे मैसेजेस, लेकिन उसमें से सिर्फ एक मैसेज ऐसा है जो कि मेरे टेम्परेचर, मतलब मेरे नहीं, मेरे ये वाले ये जो वेदर फॉरकास्ट होता है इसकी टेम्परेचर की जो काउंटिंग है 41 डिग्री सेल्सियस, जैसे मैंने आपको बताया था वेदर की, तो सिर्फ जसविंदर भाई की गाड़ी है जिसने कहा है 41 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास इतना मैसेज भरा हुआ है भाई, इतना मैसेज भरा हुआ है। ये देखो कौन है, ठीक है हमारे पास मैसेज में कार्स का मेटल भी होगा। धोखा धोखा धोखा, कौन कह रहा है। अच्छा ये जो भाई है ना इनकी गाड़ी में तो 45 डिग्री बता रहा है। और ये कौन है हमारे साथ, राफील, राफील भाई कह रहे हैं इनकी, उन्होंने तस्वीर भेजी भाई 45 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, 5 डिग्री ऊपर चला 4 डिग्री, तो ये कह रहे हैं धोखा है धोखा। मैंने कहा हाँ भाई। अच्छा रोहेल भाई है, रोहेल भाई वाकई में धोखा चल रहा है, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ, अदील भाई हैं कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम अदील भाई। अरे अदील भाई का भी गाड़ी का टेम्परेचर 45 ही बता रहा है, ये भी सेट है भाई, सबका 45 बता रहा है। और कौन है भाई, ये कौन से भाई हैं जो मुकर्रर मांग रहे हैं उनसे, मोहम्मद ईसा कह रहे हैं एक बार फिर बोलो। अरे भाई क्या बोलूँ, क्या किसी मुशायरे में आए हो क्या, मुकर्रर मैं फिर से एक और शेर पढ़ूँ वापस से, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, जाओ ये इतने पैसों में इतना एंटरटेनमेंट मिलेगा इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। अच्छा ये कौन है हमारे साथ, हसन खान है कह रहे हैं 44 डिग्री सेल्सियस इन माई कार। और कौन है, सैयद हेयर शोइंग 43 डिग्री सेल्सियस इन माई कार। अरे भाई 43 भी है लोगों के पास, ओ हो आउटसाइड टेम्परेचर 44। अस्सलाम वालेकुम,

से ही ना हम कहीं गुम हो जाते हैं. आगे का मैसेज ही धुंधला हो गया. सलमान खान और आए बंदे का अपना और सलमान खान क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 43 डिग्री सेल्सियस गाड़ी इनकी बता रही है. और हेलो हाय ए हेलो हाउ आर खाना खा के जाना. हाँ इनकी इनकी गाड़ी भी 45 डिग्री. आकिब अब्बासी अब्बासी आकिब अब्बासी कह रहे हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस. ओ भाई और कौन है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू. हाउ आर यू. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा में राजी. भाई जो अल्लाह की रजा में राजी होता है ना वो मुझे खुश होता है. हैदर अली ने मैसेज किया. और कौन है और कौन. तौफीक भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू. वाकरा से तौफीक भाई. तौफीक भाई वाकरा वालों के पास टेम्परेचर क्या वाकई में ये 45-40 तक का टेम्परेचर पहुंचा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वाकरा वालों के पास कुछ टेम्परेचर हमसे बनिस्बत कम होना चाहिए. रात के टाइम तो ऑलरेडी टेम्परेचर कम होता है क्योंकि इनके पास खुली खुली खुली जगह होती है ना. तो पता नहीं दिन के टाइम का टेम्परेचर कैसा चल रहा होगा इलाके का. अच्छा कैसी हैं आप सिस्टर सफा नूर. भाई ये सफा नूर क्यों भाई, ये सफा नूर नहीं है मेरा नाम. मेरा नाम सफा है, सफा सफदर. इसका जवाब किसने देना है. मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. रीनेम कर दिया गया है मुझे और मुझे ये बात पता ही नहीं. क्या सफा को पता है कि सफा का नया नाम मार्केट में आ गया है. भाई मैं अपग्रेड नहीं होती, मैं मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे ही नाम है. तो अब बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से ही चलेंगे. अब आप मुझे अगर नया नाम दे देंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट चेंज कराना बड़ा मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है. मुझे नहीं पढ़ना झंझट में. मैं इसी नाम के साथ खुश हूँ. कल को मुझे आवाज़ दे पीछे सफा नूर, मैं तो पहचान भी ना पाऊँ. तो बड़ा मुश्किल काम होता है. बर्थ सर्टिफिकेट तो ऐसे तैसे करके चेंज कर लोगे, अपने आप अपने दिमाग को कैसे सेट करोगे भाई. बहुत अरसा हो गया, अब नाम चेंज करने की उम्र नहीं रही. मोहम्मद यूसुफ भाई क्या कह रहे हैं. भाई सफा जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हैप्पी वेडनेसडे मॉर्निंग. आपको भी हैप्पी वाली वेडनेसडे मॉर्निंग. सफा जी गर्मी थोड़ी बर्दाश्त हो सकती है मगर ह्यूमिडिटी नेवर. और ये वाकई में एक बात है. अच्छा ह्यूमिडिटी का ये हिसाब है कि कतर में ना ह्यूमिडिटी का मसला ये है कि अगर 50 तक पहुंचे ना ह्यूमिडिटी 50% तक तो फौरन हर चीज़ शट डाउन कर दी जाती है. जो खासतौर पर जो बाहर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको ब्लैक फ्लैग दे दिया जाता है कि आप लोग अब काम बंद कर दो, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाकई में बर्दाश्त नहीं होती. ह्यूमिडिटी इंसान को पिघला कर रख देती है भाई. हम लोग बहुत ही ठंड में ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह बाहर बेहद ह्यूमिडिटी है. अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम करे जो मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, जो अपनी हक हलाल की कमाई कमा के खा रहे हैं. अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. 42 डिग्री सेल्सियस किसकी गाड़ी भाई. मोहम्मद खुर्शीद इनकी गाड़ी का टेम्परेचर 42 बता रहा है. फिर भी चले एक दो नंबर आगे पीछे चलेगा चलेगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अब्दुल रहमान वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप. 45 डिग्री सेल्सियस किसकी गाड़ी बता रही है भाई. ये 45 अहमद भाई देखो 45 वाले जो है ना ये अलग ही दुनिया में रहते हैं. कौन से एरिया में हो जो 45 दिखा रहा है भाई. ये एरिया का भी मेरे ख्याल से फ़र्क होता है. अच्छा भाई गुड मॉर्निंग मिस, होप यू आर डूइंग वेल टुडे. करंटली स्टेटस क्या है. करंटली 43. और हेलो एनी अपडेट भाई. मेरे देखें आप जो अपडेट मांग रहे हैं ना कौन है भाई. ये अली भाई हैं. अली भाई और जितने भी अली भाई के साथ जितने भी लोग हैं वो जो अपने प्राइसेस के ऊपर अपडेट मांग रहे हैं जिन्होंने जीते थे. मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि बजटिंग ऊपर से आती है तो वो अभी तक प्रोसेस में. आपका इनाम कहीं नहीं गया, वो हमारी जेब से कहीं नहीं जाना, वो आना है बैक ऑफिस से. तो वो बैक ऑफिस से आप लोग जितने इनाम जीते हैं, सिर्फ आप नहीं हैं आपके साथ और भी बहुत मुतादिद लोग हैं, उनका भी इनाम आपकी तरह वेटिंग में है. तो इस बात को समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें. हमारे पास से कोई मसला नहीं है, आने में टाइम लग रहा है. ठीक है आपका इनाम. और कौन है एहतराम खान है कह रहे हैं अगर आपके घर का एरिया का गर्मी इतनी है अबू हमूर. अच्छा भाई मेरे एहतराम भाई मैं अबू हमूर से मूव आउट हो गई हूँ. क्या है अबू हमूर में कितना टेम्परेचर चल रहा है. 44 हो रहे भाई, 44-45 चल रहा है टेम्परेचर. देखा तभी मैंने बोरिया बिस्तर पैक किया और मैं अबू हमूर से शिफ्ट हो गई हूँ. अच्छा भाई आप लोगों के और भी मैसेजेस आते चले जा रहे हैं. मेरी कार का टेम्परेचर 42 है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मानी साहब ने मैसेज किया है अलखिस्सा एरिया में 45. कौन है भाई ये, कौन है अलखिस्सा एरिया में कौन बैठा हुआ है. अहमद अजहर. अच्छा ये हैं अहमद अजहर. ठीक है अलरयान वाले एरिया में क्या चल रहा है. अलरयान वाला भी एरिया 45-44 का चल रहा है. ठीक है

तो भाई देख लो, इन एरियाज में नहीं जाना. 44 नाउ इकराम हसन, ठीक है. सब वेदर रिपोर्ट देखो, मैं बता रही हूँ, वेदर रिपोर्ट में ना आप लोग अच्छा खासा काम कर सकते हो. फॉरकास्ट रिपोर्टर बन जाओ. सबने मैसेज किए भाई, पता नहीं क्या ही ट्रिगर कर दिया मैंने, जो इतने सारे लोगों ने मैसेज किए कि बाकियों की तरफ मैं आती हूँ. शो तो शुरू करूँ. देखो फन ट्रिविया की तरफ चलते हैं. कल मैंने आप लोगों से बात की थी दलूल के बारे में. जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने कल नहीं सुना, मैं उनको थोड़ा सा एक रिकैप दे देती हूँ. दलूल एक एरिया है एथोपिया में, ठीक है. उसके बारे में कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट गर्म तरीन, हीट से भरा हुआ वो एक एरिया है एथोपिया में. अच्छा, बाज़ाहिर अगर से देखा जाए ना, अगर आप हेलीकॉप्टर से देख लें या वहाँ पर जाकर भी, अगर आपकी आंखें खूबसूरती पसंद करती हैं, हुसन पसंद करती हैं, रंगों को पसंद करती हैं, या आप अगर सर्च भी करें तो आपको इमेजेस में नज़र आएगा कि ये जगह देखने में आउट ऑफ द वर्ल्ड लगती है. इस जगह को देख, अगर आप पिक्चर देखें ना सिर्फ, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये अर्थ नहीं है, ये कोई और सैयारा है, ये कोई और प्लैनेट है. इतनी खूबसूरत तरीन दिखाई देती है ये जगह. कहीं पे पीला नजर आएगा, कहीं पे हरा नजर आएगा, कहीं पे नारंगी नजर आएगा, मतलब कि ऑरेंज नजर आएगा. मतलब ये कि इतना ऐसा लगता है जैसे किसी आर्टिस्ट ने ना वो यूं करके कलर छिड़क दिए. अल्लाह ताला की खूबसूरती, सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला भी एक, अल्लाह ताला हुसन पसंद है, और ये चीज वहां के रंगों में दिखाई देती है. लेकिन देयर इज मोर, व्हिच मींस द आई. अब मामला ये है कि यहां पर दलूल में एक एरिया है जिसको कहा जाता है दनाकिल डिप्रेशन. मेरे और आपका वाला डिप्रेशन नहीं, पैसे वाला डिप्रेशन नहीं, हालात ज़िंदगी का डिप्रेशन नहीं. डिप्रेशन का मतलब ये कि ये जो एरिया है ना, ये असल में समंदरी सतह से, ये समंदर की सतह से भी नीचे है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी बेइंतहा महसूस होती है. दिन के टाइम लोगों का निकलना मुहाल होता है यहाँ पर, अगर कोई यहाँ पे हो तो. लेकिन सवाल ये है कि आखिर दलूल इतना कलरफुल है क्यों? अच्छा, मजे की बात है, यहाँ पानी भी है. अगर आप इसकी पिक्चर सर्च करो ना, तो आपको पानी भी है, फिर भी इतना गर्म क्यों है? मसला ये है, इसका जवाब छुपा है जमीन के अंदर. दलूल के नीचे जो थर्मल एक्टिविटी, यानी जमीन के अंदर की जो हीट है ना, वो बहुत ज्यादा है भाई, बेइंतहा है. क्योंकि इसके नीचे वॉल्केनिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं. गर्म पानी जब मिनरल्स के साथ मिलता है ना, तो वो एक अजीब गरीब रंग पैदा करता है, बड़े इंटरेस्टिंग से. आप लिटरली वो नियॉन कलर्स होते हैं ना, जिनको देखकर हमारी आंखों को बड़ा मजा आता है, वो लगेगा. सल्फर, आयरन और दूसरे तीसरे जो मिनरल्स होते हैं ना, वो मिलकर ऐसे पूल्स, पानी के पूल्स जैसा लगेगा आपको, छोटे छोटे ना पूल्स क्रिएट हुए हैं. वो बड़े अजीब गरीब से रंग बनाते हैं. अगर आप कहीं पीला रंग देखें तो इसका मतलब ये है कि भाई वो सल्फर से भरा हुआ है. अगर आप कहीं उन पूल्स के अंदर हरा रंग देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई मिनरल्स की केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पर. अगर आप कहीं वहां पे ऑरेंज या रेडिश कलर देखें तो आपको चलेगा अच्छा भाई ये आयरन कंपाउंड्स की वजह से पैदा हो रहा है. लेकिन यहाँ की खूबसूरती के पीछे ना बहुत कुछ छुपा हुआ है और बहुत हार्श रियलिटी छुपी हुई है. ये पूल्स देखने में जितने दिलकश लगते हैं ना, उतने ही डबल ट्रिपल खतरनाक भी हैं. ये बहुत ज्यादा एसिडिक है भाई, बहुत ज्यादा एसिडिक. अच्छा, एक मामला ये जो कि आज मैं इसकी इंफॉर्मेशन में आपको इजाफा करना चाहूंगी कि दलूल को ना गोस्ट टाउन कहा जाता है. एक तरह का गोस्ट टाउन एक एरिया यहां पर, जिसको गोस्ट टाउन भी कहा जाता है. उसकी भी एक वजह है. एक वक्त था जब यहाँ पर माइनिंग हुआ करती थी. लोग ना क्या करते थे कि वो, क्योंकि जाहिर बात है मिनरल्स और ये वो इससे रिच है ना ये, तो एक वक्त में यहाँ पर लोग मिनरल्स निकालने के लिए रहा करते थे. लेकिन जैसे जैसे मौसम, जाहिर बात है, बढ़ता चला गया, अर्थ अपना चेंज कर रही है, तो वक्त के साथ साथ यहाँ का मौसम बड़ा शदीद होता चला गया. पानी की कमी और मुश्किल जिंदगी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका खाली होता चला गया. खाली मतलब खाली. आज यहाँ पुरानी माइनिंग की निशानियां और वीरान स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं और कुछ नजर नहीं आता. अच्छा, साइंस के लिए ना दलूल बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंट साइंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. वो पता है क्या करते हैं? वो यहाँ पर जाकर, जो थोड़े बहुत अरसे के लिए जाते हैं, इक्का दुक्का जो लोग जाते हैं छोटी मोटी टीम बनाकर, वो यहाँ पर रिसर्च करते हैं, एग्जामिन करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस को, कि ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा एसिडिटी और ज़्यादा मिनरल से ये जो भरा हुआ एनवायरमेंट है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं. रिसर्चर्स यहाँ ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई ऐसे हालात अगर दूसरे प्लैनेट्स पर हों तो,
इंसान को तजस्सुस रहता है ना भाई कि दूसरे पेरेंट्स में क्या चल रहा है. इंसान कहीं मार्स में पहुंचा हुआ है, कहीं जुपिटर पे पहुंचा हुआ है, कहीं कहां पहुंचा हुआ है, कहीं कहां पहुंचा हुआ है. तो रिसर्चर्स यहां ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसे हालात अगर दूसरे प्लैनेट्स में हों, जैसा कि मार्स हो गया, मार्स पर भी ऐसे हालात हो सकते हैं, वहां जिंदगी के इनकामात कैसे समझे जा सकते हैं, वहां जिंदगी को कैसे समझा जा सकता है. एज अ सैंपल यूज करती हूँ उसे. और अगर इसके बारे इस जगह के बारे में आपको कुछ और मजे की बात बताऊँ ना, दलूल के आसपास का इलाका दुनिया के सबसे लो लाइंग वॉल्केनिक रीजन्स में से एक है. यहाँ जमीन के नीचे से गर्म गैसेस और मिनरल रिच पानी जो है ना वो निकलता रहता है. आप मतलब आप हर रोज जाएंगे और आपको हर रोज पानी का कलर चेंज मिलेगा. इस जगह के रंग रोज बदलते हुए महसूस हो सकते हैं आपको, आप देखेंगे, क्योंकि मिनरल्स और पानी की केमिकल रिएक्शंस लगातार होते रहते हैं भाई, दिन रात लगातार. दलूल का लैंडस्केप इतना अनयूजुअल है कि कई फोटोग्राफर्स और एक्सप्लोरर्स इसे अर्थ का एलियन लैंडस्केप कहते हैं. तो भाई साथियों, दलूल हमें ये बताता है कि देखो, कुदरत सिर्फ फलों फूलों और समंदर तक महदूद नहीं है. कुदरत बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला हुसन पसंद है. अगर आप बज़ाहिर देखें तो ऐसी जगह में इतनी खूबसूरती नज़र आती है बज़ाहिर. कभी कभी मामला ये है कि अगर आप और ज़्यादा गहराई में जाकर देखें तो गर्म है, ख़तरनाक है, इंटरेस्टिंग अजीबोगरीब जगहों पर ऐसा लगता है जैसे यूनिक पेंटिंग्स हुई हैं. बस एक बात याद रखिएगा, अगर आप दलूल की तस्वीरें देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाए ना और आपका वहां जाने का दिल करे तो अपने साथ स्विमिंग सूट ना लेकर जाइएगा मेहरबानी करके. ना ना ना ना भाई, ये कलरफुल पूल आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, ये दिखने में कलरफुल हैं, जाओगे फिर वापस नहीं आओगे, बता रही हूँ. चलो भाई, इंफॉर्मेशन का पिटारा बहुत हो गया. अगर इस आपको गोस्ट टाउन जाने का शौक पड़ रहा है ना, नेक्स्ट डेस्टिनेशन एडवेंचरस, तो अगर यहाँ पे जाने का आपके अंदर हिम्मत है, आपकी एडवेंचर वाली रूह कहती है कि हाँ भाई यहाँ जाऊँगा. मैंने कुछ लोगों को देखा है, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो कुछ लोगों की तस्वीरें वो गोस्ट टाउन वाली ना, तो मैंने कहा भाई हिम्मत है, ये लोग कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पर. भाई जहाँ पे 60-70 का टेम्परेचर चल रहा हो वहाँ पे क्या ही कोई इंसान बैठ सकता है, लेकिन है लोग, रिसर्चर्स जाते हैं. तो भाई अपने अपने खर्चे पे खुश रहो, और अभी के लिए थोड़ा सा ब्रेक दो मुझे, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गई हूँ. गोस्ट टाउन, हीट, केमिकल रिएक्शन, बहुत कुछ है भाई दुनिया में. ऐसी जगहों को देख कर ना सिर्फ एक ही चीज़ मुँह से निकलती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला दिखा देता है इंसान को कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम कभी क्रिएट कर ही नहीं सकते, तुम सिर्फ इनके बारे में सोच रह जाओगे कि ये कैसे, हाउ, सुभान अल्लाह. तो भाई छोटा सा ब्रेक लेते हुए, मैं आपसे थोड़ा सा इधर उधर हो रही हूँ, थोड़ा मुझे नदियों पार जो है ना, ये जो नदी के उस पार है ना, हमारा मुद्दा इंतजार कर रहा है, तो जरा नदी के पार जाओ, ब्रेक लेकर वापस आओ, मुद्दे पे बात करते हैं. फिलहाल तो 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज करो, बताओ कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है. सुनते रहो FM 107 पर सन एंड साउंड विद सफा, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जेन जी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: हर मंडे सुबह 10 से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ।

0: आ जाओ वापस आ जाओ जी आप सुन रहे हो सन एंड साउंड विद सफा ऑन एफएम 107 नहीं नहीं ये वाला नहीं था सफा ये वाला था
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
0: देखो तभी जी मैं ब्रेक पे नहीं जाती जब ब्रेक पे जाती हूँ तो वैसे ही बौखला भी वापस आती हूँ तो भाई देखिए आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा ऑन एफएम 107 और आप लोगों के मैसेजेस जारी हैं 666-22-107 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर क्या कर सकते हैं मैसेज और चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर गेम भी खेलेंगे मुद्दे के बारे में बात करेंगे और फिलहाल मैसेजेस की तरफ चलें तो भाई हमें इमरान खान साहब ने मैसेज किया है देखिए इमरान भाई आपका नाम जो है ना नाम ही काफ़ी है बस समझ जाओ नाम ही इतना भारी रखा हुआ है आपने तो इमरान फ्रॉम दफना ठीक है इमरान लिसनिंग फ्रॉम दफना ठीक है नाम बड़ा ज़बरदस्त है इमरान भाई आपका और आपने जो तस्वीर भेजी है ना बिल्डिंगों की भाई मसला पता क्या दफना साइड पर ना मैं बड़ा अवॉइड करती हूँ दफना साइड पर जाने के लिए क्यों क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बड़े बड़े डायनासोर खड़े में अच्छा मैं जो ना वो कंट्री साइड वाला माहौल मुझे पसंद है मुझे बिल्डिंग्स से बड़ी आई डू गेट फैसिनेटेड फ्रॉम स्काई स्क्रेपर्स एंड थिंग्स लाइक दिस मुझे अच्छा लगता है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं लगता है कि उनके बीच में खड़ी हो सकूँ कुछ लोगों को होता है मुझे एनजाइटी होती है थोड़ी सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में खड़े होकर देखें छोटे छोटे लोग हैं इतनी छोटी सी तो मैं 5 फुट 3 इंच की तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में खड़ी हुई ऐसा लग रहा होता है जैसे अभी मेरे ऊपर ही आएंगी ये तभी तो अभी तक जापान नहीं पहुँच पा रही मैं फिर जो है और कौन है हमारे साथ हमें मैसेज किया था महफूज भाई ने भी हाँ महफूज भाई का मैसेज पढ़ लिया था अच्छा चलिए बाकी लोगों का मैसेज मैंने पढ़ लिया था तो भाई अब मुद्दे पर आते हैं देखो मैंने कहा था दरिया के उस पार हमारा मुद्दा इंतज़ार कर रहा है बात तो आपसे करनी है ना 443-443-77 इज़ द नंबर टू कॉल 443-443-77 इज़ द नंबर टू कॉल लेकिन बात किस पे करेंगे पहले ये तो बता दूँ कॉलें तो कर रहे हो ज़रा इनिशिएट तो करें ना मुद्दे को रुको ज़रा सब्र करो रुको तो सही अच्छा हाँ ठीक है अच्छा कल पता है क्या हुआ अब जिन लोगों के लंबे बाल लाजमी नहीं है खातीन के साथ ये मसला हो कुछ लड़के भी लंबे बाल रखना पसंद करते हैं शानों तक बाल रखते हैं हैंडसम लगते हैं उसके अंदर तो जो जितने लोगों के यूं कंधों तक शानों तक बाल होते हैं या खातीन के होते हैं और ज़्यादा लंबे बाल होते हैं माशाल्लाह से खूबसूरत दिखने वाले तो उनका ह्यूमिडिटी में ना बड़ा बुरा हाल होता है अगर वो बाल खुले छोड़ दें तो कल मेरे साथ ऐसा ही कुछ एडवेंचर हुआ बाल अब मेरे तो इतने लंबे बाल है नहीं लेकिन कंधों तक तो है ना अब उसका तो लुत्फ अंदोज से तो इंसान हो सकता है अब एकदम से मैं जा रही थी बाहर घूम फिर रही हूँ तो एकदम से ना एक मिरर में मेरी अपनी अक्स होता है अपना रिफ्लेक्शन मुझे नज़र आया तो मैं खुद डर गई अपने आप को देखकर भाई मैंने तो अपने बाल ऐसे ही खुले छोड़े हुए थे मुझे क्या पता मैं साबरी का बाल लग रही होंगी तो मैं अपने आप को देखकर खुद डर गई मैंने कहा भाई ये क्या हुआ मेरे बालों को बम फट गया ऐसा लग रहा जैसे बालों के अंदर ना कोई बहुत वो अजीब से वो ऐसा होता है ना आप किसी कवाल की नुमा दिखना शुरू हो जाते हो बाल आपके यूँ बुश बने हुए होते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही दिख रही मैंने कहा यार सारा फैशन ख़राब कर देता है मेरा तो भाई उस टाइम मुझे याद आई पोनी या हेयर बैंड मैंने कहा भाई कोई हेयर बैंड होता कोई पोनी शोनी कोई रबर बैंड होता बाल यूँ करके आप समेटते और यूँ करके बंद कर देते मतलब कितनी छोटी सी चीज़ होती है रबर बैंड लेकिन वो एक इतनी छोटी सी चीज़ हमारा हम लोग कभी उसकी कदर ही नहीं करते मामला इंसान की ज़िंदगी का पता है क्या है इंसान की ज़िंदगी का मामला ये गोविंदा फुल्लों कि इंसान को जब तक कोई चीज़ गले में आके फंस ना जाए ना जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े तब तक वो उसका थैंकफुल होता ही नहीं चाहे वो कितनी बड़ी चीज़ की ना हो क्यों ना हो चाहे वो कितनी छोटी चीज़ की ना हो बड़ी चीज़ नज़र नहीं आती तो छोटी चीज़ का हम क्या ही शुक्र अदा करेंगे हम ऐसे चल रहे हैं लाइफ में बिजी तो ज़रा सोचिए जब भी हम दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेंशंस के बारे में सोचते हैं कभी हमें अगर फुर्सत मिल जाए अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी से तो हमारे दिमाग में क्या आती है बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं ना बड़ी बड़ी चीज़ें तो हमारे दिमाग में आता है भाई स्मार्टफोन हो गया अच्छी बात है इंसान की ज़िंदगी को बड़ा जो है ना अच्छा कर दिया इसने कन्वीनियंट कर दिया इंटरनेट हो गया हाय हाय हाय क्या तो मज़े पूरी दुनिया की रिपोर्ट इंटरनेट हमें दे देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई भाई इससे कुछ भी पूछ लो हर मसले का हल इसके पास निकलेगा लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है थोड़ा सा अपने आपको टाइम दें बिजी स्केड्यूल में से क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ इन्वेंशन ऐसी होती हैं जो इतनी सिंपल हैं जिनके ऊपर हम कभी तवज्जो देते ही नहीं भाई हमें वो बोरिंग लगती हैं हमारी डेली की ज़िंदगी का वो ऐसा हिस्सा है कि उसके बगैर हमारे आप कहते हैं ना भाई मैं इसके बगैर रुल जाऊँगा लेकिन वो इतनी छोटी हैं कि हम उसको तवज्जो ही नहीं देते मिसाल के तौर पर अभी अभी अभी अभी की बात बताती हूँ मैं ऑफिस में बैठी हुई ना मुझे लगती है ज्यादा सर्दी, एनेमिक बंदा हूं तो क्या ही होना है मेरे साथ, तो मैं पहनती हूँ जैकेट। अब वो जैकेट जब तक जिप से बंद ना हो तब तक मतलब आपको टेम्परेचर गर्म नहीं लगता ना, तो मैंने सोचा भाई जिप कितनी छोटी सी चीज है, और अगर ये ना होती तो मैं तो सर्दी में वैसे ही ठहरा रही होती। तो जिप कितनी छोटी सी चीज है जिसका हमें थैंकफुल होना चाहिए, हाय जिप बनाने वाला अल्लाह ताला ने क्या तो दिमाग दिया इस बंदे को। मैं तो रोज बोलती हूँ भाई ये जिसने जिप बनाई है ना वो तो जा चुका होगा अभी तक, लेकिन मेरी तरफ से दुआएं उसे भरपूर मिलती हैं। अब जैसे एक छोटी सी चीज़ है, क्या हुआ कि वो ये बच्चों के खिलौने विलौने होते हैं ना उनके, आप बैटरी शैटरी डालते हो तो उसके लिए आपको एक स्क्रू उन्होंने लगाया हुआ होता है छोटा सा। अब भाई उस स्क्रू को आप स्क्रू ड्राइवर के बगैर खोल नहीं सकते, मतलब छुरी कांटा हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हो आप किसी तरीके से कि भाई ये स्क्रू मुझसे खुल जाए, और मैं बच्चा जो बिलक रहा है रो रहा है अपने खिलौने के लिए कि उसकी बैटरी ख़त्म हो गई इसको चेंज करके उसके हाथ में पकड़ा दूं ताकि मेरी जान छोड़े। लेकिन वो स्क्रू ड्राइवर जो कि इतनी छोटी सी जरूरी सी चीज़ है, बड़ी बेसिक सा टूल है, वो अगर वो आपको ना मिले तो ज़िंदगी में तबाही आ जाती है, ऐसे जैसे सुनामी आ गया हो कोई। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन हम नहीं होते, और नहीं होते इसी की वजह से हम उन छोटी छोटी चीज़ों को नोट ही नहीं करते, और हम ज़िंदगी में खुश रहने की हमें वो हो ही नहीं होती, चाह नहीं हो रही होती। हम कहते हैं भाई ज़िंदगी बड़े मसले में चल रही है, ज़िंदगी बड़े मसले में चल रही है। अरे भाई छोटी छोटी चीज़ों को याद करो ना, गोभी दें फूलों खुशबू लगा कर आओ। और आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि वो कोई एक छोटी सी चीज़ मुझे बताओ जो कि मतलब साइज़ में छोटी नहीं, मतलब बड़ी बेसिक सी लगती है ना, बेसिक सी चीज़ है, लेकिन आपको लगता है कि ये बेसिक सी चीज़ जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है, इसके बगैर ज़िंदगी भाई मसले में पड़ जाती। बेसिक सी चीज़ है ना, जिप हो गई, स्क्रू हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया। मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मेरे लिए सबसे बेहतरीन तरीन चीज़ पता है क्या भाई, वो जो पीलर होता है ना, पीलर, वो जिससे हम आलू छीलते हैं गाजर छीलते हैं, ओ भाई ज़िंदगी का मज़ा तो उस वक्त है जब आपके किचन में पीलर हो। जिसके किचन में पीलर नहीं, मैं बता रही हूँ, वो एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम है। तो भाई ऐसी बेसिक चीज़ें ज़रा सोचो, ऐसी कोई बेसिक चीज़ आपके दिमाग में आती है जिसके बारे में आप सोचते हो भाई इसको तो मैंने अपने पाँव की छोटी उंगली की तरह ट्रीट किया है, मतलब ये तो इसको तो मैंने इतना नज़रअंदाज किया है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट। आज मुझे आपने कॉल करके या मैसेज करके बताना है उस छोटी सी चीज़ के बारे में जो कि बेजरर सी लगती है, जो कि आपको लगता है कि ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन असल में वो अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। 443-443-77 इज़ द नंबर टू कॉल, 443-443-77 इज़ द नंबर टू कॉल, और 666-22-107 इज़ द नंबर टू मैसेज, 666-22-107 इज़ द नंबर टू मैसेज। ये बस आप लोगों की कॉलें आ रही हैं, लेकिन देखो टाइम क्लॉक को भी थोड़ा सेट करना पड़ता है। ये दो मिनट में गई आपकी बहन और यूं करके आई। आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड एफ एम 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: वेलकम बैक जी, वादे के मुताबिक दो मिनट के अंदर अंदर वापस आ गई हूँ गोविंदा फुल्लो। इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है 12:02 और आप सुन रहे हैं सफा के साथ।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: हाँ जी को भी दें भूल लो, आ जाओ लाइन लगा लो 4434377 इज द नंबर टू कॉल, 4434377 इज द नंबर टू कॉल। और मैसेज के लिए नंबर है 6662107, मैसेज के लिए 6662107। और जाने से पहले मैंने आप लोगों को एक सवाल, एक मुद्दा पेश किया था और वो ये था कि जरा अपनी जिंदगी, अपनी इस बिजी सी जिंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने दिमाग के जो बैटरी है उसको डबल ट्रिपल मोड पे लगाएं और उसका यूटिलाइज करते हुए ये सोचें कि जिंदगी में कितनी छोटी सी कोई चीज़ है जो कि बड़ी मामूली सी दिखती है, समझ में आती है, लेकिन है हमारे बड़े काम की। ज़रा बताएं आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपको लगता है कि ये बड़ी बड़ी शानदार चीज़ है, भाई है बड़ी बेजरर सी चीज़, बेसिक सी, लेकिन इसके बगैर मामला तय नहीं हो पाता भाई। तो भाई चलते हैं कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
2: अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। कौन है हमारे साथ?
3: आरिफ अंसारी।
2: आरिफ भाई कैसे हैं भाई, ये तो बता दें, पहले तो आप ये बताएं कि आप हैं कैसे?
3: अभी गर्मी से बेहाल पर अल्हम्दुलिल्लाह।
2: अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई देखो, अब तो हम जो है ना, वो आतिफ असलम का वो गाना याद आ रहा है, अब तो आदत सी है मुझको,
3: हाँ
2: ये वाला। मैं और आप गाएंगे ना तो लोग रेडियो बंद करके भाग कर निकल जाएंगे, कट लेकर बता रही हूँ। तो ये काम तो हमने बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ तो भाई देखो, कंपटीशन ना उसके साथ करना चाहिए जो अपने लेवल का हो। हम आतिफ असलम के कंपटीशन के हैं ना तो मसला हो जाएगा, लोगों के कानों से खून ना निकलना शुरू हो जाए।
3: हम लोग ऊपर
2: है उससे। ओ ये देखा, ये वाला कॉन्फिडेंस मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसे वाला कॉन्फिडेंस चाहिए जो आपके पास है।
3: एक बात है, अपने आप को कभी कम नहीं आना चाहिए।
2: वाह वाह, दिल ले लिया आपने मेरा। लेकिन पता है मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं बड़ी ही रियलिस्टिक होकर चलती हूँ। अरे भाई मैं बहुत रियलिस्टिक होकर चलती हूँ, मुझसे मैं झूठ उतना बोलती हूँ जितना मैं बर्दाश्त कर सकूँ। हजम देखिए, मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया, अब मुझे ब्रेक लेकर पेट में दर्द संभालना पड़ेगा अपना। अच्छा भाई, आरिफ भाई ये बताएं, आरिफ भाई ये ना है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैंने कहा मैं फिर ना कहीं इधर उधर दिमाग मेरा माइंड फॉग।
3: अच्छा तो वो गजनी का चूरन दे रखा है ना?
2: हाँ देखिए हम बोलते सच है, अब वो लोगों गजनी लग जाए तो हम क्या करें। अच्छा अरे भाई
3: अच्छा क्या है गजनी वाला,
2: क्या करूं मेरा? देखिए मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मेरा ये मामला है, आप यकीन जाने मेरा दिमाग या तो फिर आप कह लें इतना मल्टीटास्किंग करता है, या मेरे दिमाग ने अपने आप को रिकवर करने का एक तरीका ये बनाया हुआ है कि आप यकीन करें, आप अभी मुझसे फोन पे बात करेंगे ना, मतलब आपने एक घंटा बात की होगी मेरे साथ। मैं जैसे ही फोन रखूंगी ना, सामने वाला मुझसे पूछाएगा अच्छा किसकी कॉल थी और क्या बात हुई, मैं बिल्कुल माइंड फॉग, मैं शक्ल देख रही हूँ सामने वाले की, याद करने की कोशिश कर रही हूँ किसकी कॉल थी और बात क्या की एक घंटे तक, मतलब एक घंटा बंदे ने कोई तो बात की होगी ना। और जब मैं लोगों को आगे से कहती हूँ ना भाई मुझे एक मिनट दो, मुझे याद करने दो मैंने क्या बात की, तो लोग या तो फिर हंसते हैं या तो फिर मानते नहीं है, कहते हैं ये हमें टाल रही है। मैं कहा भाई ये कौन सी बात हो गई,
3: आप लोग काम भी मसाला बहुत करते हैं, इतने कॉलर से बात करना, फिर कुछ भी बात
2: भाई मेरी कोई बात इस बात के ऊपर यकीन नहीं करता कि मुझे वाकई में याद नहीं रहती चीजें। विटामिन B12 के कैप्सूल पे चलने वाली हूँ मैं। वो भी काम नहीं कर रहे
3: मेरे को।
2: अच्छा अरे भाई देखे आज का सवाल पता है क्या है, आज का सवाल ये है कि मुझे कोई एक ऐसी बेसिक सी चीज बताएं जिसका सुनकर आपको लगेगा बड़ी बेसिक सी, अरे भाई क्या ही कोई बड़ी बात है, लेकिन आपको ये भी पता है दिल के अंदर कहीं ना कहीं कि भाई ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकती है। सेफ्टी पिन, अरे भाई हाँ हाँ सेफ्टी पिन बड़ी भाई, ये बड़ी बड़ी काम की चीज है, बहुत काम की चीज है ये, मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ भाई, सेफ्टी पिन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
3: उसका काम बहुत ही आला है,
2: हुकअप कर जाती है बस, हर चीज को बचा लेती है इंसान को। नाइस नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक इट, ये बड़ा बड़ा बहुत बेसिक। लेकिन
3: पेपर क्लिप हो गया, पेपर क्लिप,
2: अच्छा पेपर पेपर क्लिप का आजकल इस्तेमाल बड़ा बड़ा कम हो गया है, लेकिन एक दौर में पेपर क्लिप ने अपनी बड़ी शहाना लाइफ जी है। हाँ एक टाइम पर ना वो स्टेपलर बड़े महंगे आते थे, बहुत महंगे आते थे भाई, स्टेपलर था एक टाइम जहाँ स्टेपलर लोग बड़ा वो समझते थे कि बहुत महंगी चीज है स्टेपलर, अब तो स्टेपलर नॉर्मल मिलता है।
3: पीडीएफ का जमाना हो गया, व्हाट्सएप, ऑनलाइन, ईमेल,
2: हाँ अब तो सब कुछ वो सॉफ्ट कॉपीज में आ गया ना, तो वो लेकिन लेकिन एक हकीकत बात है, ये जो आपने बताया कि आप पेपर क्लिप, पेपर क्लिप भाई अभी भी लाइफ सेवर है, सेफ्टी पिन और पेपर क्लिप, आई लाइक इट। अच्छा चलें, आपने इतना कुछ बता ही दिया है तो अब आपके साथ गेम भी खेल ही लेते हैं, क्या कहते हैं? अब हम देंगे आपको एक रैंडम सा टॉपिक और आपने करनी है एक मिनट तक उसके ऊपर बात, गुफ्तगु
3: उसके ऊपर, हमारे लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं पर ऐसा बात करना है,
2: ठीक है?
3: हाँ ठीक है।
2: चले भाई, और ये रहा मेरा टाइमर, आपने बात करनी है पांडा के सीक्रेट मिशन पर, कहानी बनानी है आपने, कहानी, ठीक है? पांडा का सीक्रेट मिशन, एक मिनट जब खत्म होगा, एक मिनट जब खत्म होगा तो मैं आपको खुद बता दूंगी कि एक मिनट खत्म हो गया है। कुछ मजे का कंटेंट दें, यूं समझें कि आप एक स्टोरी राइटर हैं, फिल्म बनेगी आपकी लिखी हुई स्टोरी के ऊपर,
3: और मेरे को लात मार के निकाले।
2: नहीं नहीं, लिखना थोड़ी है भाई, बोलना है ना, जरा टैलेंट दिखाओ ना। पांडा का सीक्रेट मिशन, 007 वाला पांडा का सीक्रेट मिशन, ठीक है?
3: ओके,
2: 1 2 3 आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
3: ओके, तो कहानी शुरू होती है बहुत साल पहले, एक बहुत ही घने जंगल में एक बहुत सारे जानवर रहते थे, पर उसमें से एक था पांडा,
2: हाँ।
3: नाम था 007,
2: ठीक है?
3: ओके, वो एकदम वो इंसानों की नकल कर सकता था, पूरा चतुर चलाक बहुत था,
2: हाँ ठीक है।
3: ओके, और उसका वो एक पूरा रोमांटिक एंगल में लेके जाओ,
2: देखें ऐसा वाला बताना है जो रेडियो के लायक हो भाई, कहीं और ना निकल जाना, सीक्रेट मिशन था उसका 007।
3: तो उसको एक एक लेडी पांडा से प्यार हुआ, उसका बाबा बीच में आया लेडी पांडा का, बॉलीवुड से निकाल के लेकर
2: आऊ मैं, लो बॉलीवुड चले गए ये पांडा को लेकर बॉलीवुड, बस सही है,
3: बॉलीवुड से मैंने कहानी ली है,
2: हाँ,
3: मेरे
2: हाँ।
3: तो उसके बाद पांडा ने पूरा अपना दोस्तों का ग्रुप बना के फिर वो पांडा,
2: बस कहानी खत्म हो गई, आपका टाइम खत्म हो गया। नहीं नहीं खत्म हो गया नहीं, आपने जितनी कोशिश करनी थी आपने कर ली, टाइम अप हो गया आपका, मतलब चोरी भी ढंग की ना कर पाएगी, मतलब अरे भाई चोरी तो ढंग की कर लेते, मतलब अगर कोई कॉपी कर रहे हो तो उसको किसी सीक्वेंस में तो ढालते ना, ये क्या हो गया? नहीं आपने टाइम ओवर हो गया ना भाई, देखो आपने टाइम वेस्ट किया, एक मिनट की बात थी, यही तो सारा टैलेंट है। कहा देखिए, आप राइटर हैं, आप अगर किसी को अपनी स्टोरी सुनाने जाते हैं, आपके पास एक मिनट का टाइम है, क्या करोगे उसके अंदर भाई, कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, कल फिर ट्राई मारेंगे, बॉलीवुड की अच्छी वाली कहानी चोरी करेंगे, ठीक है? चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। आरिफ भाई से तो चोरी भी ढंग की ना की गई। आरिफ भाई धूम पार्ट 5 में आपको तो वो नहीं, 6 है कि 5 है, उसमें तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने वाले, बिल्कुल भी नहीं लेने वाले, मैं बता रही हूँ आपसे, चोरी एक चोरी आपसे सही से ना हुई, वो भी बॉलीवुड की स्टोरी की, बहुत ही शानदार तरीके से अंडा लेकर गए, बहुत शानदार तरीके से अवार्ड मिलेगा इनको इसके ऊपर, वर्स्ट स्टोरी टेलर के ऊपर। नॉमिनीज आर आरिफ भाई. चलो भाई 4434377 इज द नंबर टू कॉल. 4434377 इज द नंबर टू कॉल. और 666221107 इज द नंबर टू मैसेज. 666221107. देखो मुझे कोई भी एक आधी इन्वेंशन बताओ जो आपको लगता है बड़ी बेसिक है, लाइफ की बड़ी बेसिक नीड से रिलेटेड है ये, और इतनी बेसिक है कि आप उसे याद ही नहीं रखते. लेकिन आज मैं आपको मौका दे रही हूँ कि आप इसके बारे में सोचो कि ऐसी बेसिक चीज़ क्या हो सकती है ताकि उसको याद करके आपको थोड़ी सी खुशी होगी. भाई मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम थैंकफुल फॉर इट. ग्रैटिट्यूड शो करो भाई कुछ. देखो अब कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अरे हमारे कॉलर कहाँ चले गए? अरे ये क्या कर रहे हो भाई, ये कौन सी आड़ियाँ जाड़ियाँ चल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम सलाम मैडम
2: जी. कौन है हमारे साथ?
4: अली रजा.
2: अली रजा. अरे ये अली रजा नाम सुना सुना क्यों लग रहा है?
4: जी बहुत पुराना नाम है ना, सुना सुना.
2: अली रजा किसी
4: के साथ कॉल कर रहा
2: था. नहीं नहीं नहीं नहीं, किसी और उसका भी नाम है अली रजा. किस फेमस पर्सनल का नाम है अभी याद नहीं आ रहा, कुछ खटक रहा है दिमाग में, कुछ अली रजा के से याद आ रहा है. लेकिन अली रजा भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे. ये बताएं गर्मी एंजॉय कर रहे हैं?
4: गर्मी एंजॉय कर रहे हैं. फाइव के ऑफिस में पड़े हैं, रिपोर्ट कर रहा.
2: अच्छा ऑफिस में पड़े हैं? अच्छा फहस बोल रहे हैं गाड़ी का. अरे अली भाई आपने मुझे याद दिला दिया, मेरी गाड़ी का फहस रहता है भाई. मेरी गाड़ी का मैं अभी ऑयल फिल्टर चेंज कराऊंगी आज जाकर, और फिर परसों तरसों मेरी भी गाड़ी का फहस है, मुझे याद आ गया. चले आपकी गाड़ी पास हो गई?
4: अभी लाइन ही खत्म
2: का हुई है. अरे भाई अच्छा मुझे जो सबसे बेस्ट टाइम लगता है ना गाड़ी का लाइसेंसिंग करवाने का, ये रिन्यूअल का, वो सुबह सुबह के टाइम भाई. सुबह सुबह 6 बजे से पहले आप पहुंचे हुए हो. और मज़े की बात ये कि मुझे ऐसा लगता है मैं जितने भी फास्ट वालों के पास गई हूँ तो मुझे जो सबसे फास्ट ट्रैक वाला लगता है ना, सबसे उनकी जो फास्ट ट्रैक वाली ब्रांच है वो शुमाल वाली ब्रांच लगती है. हाँ दूर है नो डाउट दूर है, लेकिन आप यूं जाओ और विद इन 15 मिनट्स आपके हाथ में रिजल्ट होता है, गाड़ी पास हुई फेल हुई जो भी है, विद इन 15 मिनट्स आपकी गाड़ी. 15 मिनट्स में ज्यादा बोल रही हूँ.
4: इंडस्ट्रियल एरिया है मैडम.
2: इंडस्ट्रियल एरिया में हमेशा आपको रश मिलेगा,
4: बहुत
2: रश है. अगली दफा ट्राई कीजिएगा कि अबू हमूर वाली साइड पर जाएं या तो फिर शुमाल वाली साइड पर जाएं. वहां पे
4: एक साल के बाद.
2: लेकिन मैंने कहा मैं आपको सजेशन दे दूंगी जहाँ पे टाइम कम लगता है. इंडस्ट्रियल एरिया में हमेशा रश मिलता है. मैं पहले जाती थी, इंडस्ट्रियल एरिया का मसला ये है कि वहाँ पे हमेशा रश मिलता है. शुमाल वाली साइड पे अबू हमूर की साइड पर यहाँ पे बड़ा आसानी से हो जाता है. और अबू हमूर वाली साइड का ये भी है कि शाम तक खुला रहता है, तो वो आप दिन में जाएं शाम में जाएं आप कन्वीनियंट हो जाता है वो. अच्छा भाई हम फहस की बातें करते करते कहाँ निकल गए. हम वो लोग हैं जिन्हें अपनी गाड़ियों से प्यार है तो हम ऐसी बातें करते हैं. अच्छा भाई ये बताएं कि गर्मी तो एंजॉय हो रही है, सोचते सोचते गर्मी एंजॉय करते करते ज़रा मुझे बताएं. मैंने एक सवाल किया था कि ज़िंदगी में एक बड़ी बेसिक सी चीज़ होती है जो जिसको हम अक्सर औकात क्या हमेशा ही नज़रअंदाज कर देते हैं. जैसे अभी आरिफ भाई ने बताया सेफ्टी पिन हो गई, या वो पेपर क्लिप होते हैं वो हो गए, जो इतनी बेसिक होती हैं कि आमतौर पर हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं. लेकिन उनके बगैर ना, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है ना तो उनके बगैर काम नहीं इंसान कर सकता. जैसे मैंने बोला था कि भाई बाल अगर आपने अपने समेटने हो तो एक रबर बैंड होता है. तो आपको क्या लगता है ऐसी कोई चीज आपके दिमाग में आती है कि
4: मेरे लिए मैडम इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं चावल खा रहा हूँ तो चम्मच होते हैं.
2: स्पून
4: होना लाजमी है.
2: स्पून होना
4: मैं नहीं खा सकता. कल मेरे दोस्त ने चावल मंगाए, हाथ से खिला रहा मुझे, मैं नहीं खा सकता. दोनों हाथ भी उधर है, मैं इतना शर्मिंदा हो रहा हूँ. मेरे दोनों हाथ ही उधर है, एक हाथ से मैं खाने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं इतना शर्मिंदा हो रहा हूँ, बैठ के करूँ क्या? नेक्स्ट टाइम मंगाऊँ तो चम्मच भाई लाजमी मंगाना, मैं नहीं कर सकता.
2: अरे भाई अच्छा ये चावलों वाला जो सीन है ना, ये मोस्टली लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है. मैंने बड़ी मुश्किल से चावल खाना सीखे हैं हाथ से. हाँ ये और बात है कि मुझे चावल हाथ से ही खाना पसंद है. मैं तो बड़ी बड़ी 5-स्टार होटल की दावतों में भी जाकर ना, मैं कहती हूँ चावल में चम्मच से नहीं खा सकती, मुझे चमचे से नहीं खाना. मुझे खास तौर पे अगर बिरयानी मिल जाए ना तो तौहीन है बिरयानी की. मैं उन लोगों को बड़ी हैरानी से देखती हूँ कि जो बिरयानी चमचे से खाते हैं। अब सामने वाला मेरे बारे में कुछ भी सोचे मुझे कोई परवाह नहीं। चम्मच बहुत यूजफुल चीज है, लेकिन भाई बिरयानी के आगे आकर ना
4: 334
2: खत्म
4: 11 815।
2: लो जी नंबर ही बता रहे। वाह आपका नंबर अभी मशहूर हो जाएगा ऑन एयर।
4: मैडम किसने कॉल कर
2: हाय बड़े ही बेजारियत से इन्होंने कहा अली भाई आपने बड़ी बेजारियत से मुझे किसने ही कॉल कर लेने मैं कौन सा
4: कॉल।
2: अरे कोई बात नहीं अली भाई हम बात कर रहे हैं ना। अच्छा चमचा हो गया और क्या चीज हो गई?
4: एक चम्मच ये दूसरा काटा हो गया जो वो नहीं होता फॉर्क मैगी खाते के टाइम पे वो होना चाहिए।
2: फॉर्क। आपने कभी चमचे से नूडल्स खाने की कोशिश की है?
4: हाँ मैडम खाइए परसों खाइए
2: भाई ये है ना मैं भी यही बोलने लगी थी मतलब आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे आप कहेंगे कि हाथ तो आया नूडल लेकिन मुंह ना लगा।
4: हाँ यही समझते हैं वो मुंह में जाने से पहले ही गिर जाए
2: पता नहीं कहाँ। ऐसा लगता है आपको किसी को पनिशमेंट देनी हो ना जब तो उसको नूडल्स के साथ चमचा दे दो ये पनिशमेंट होती है। या आपने कभी डाइट करनी हो ना तो नूडल के साथ नूडल को चमचे के साथ खाने की कोशिश करना बहुत मजा आएगा बहुत तफरी होगी। कभी बोर हो रहे हो
4: मैडम मेरा वेट भी बहुत गिर गया है गर्मी की वजह से मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ बहुत गर्मी है स्टमक बहुत हीट अप रहता है मेरा
2: भाई। मैं बता रही हूँ मैं हमेशा शो के शुरू में बात करती हूँ कि बेसिक पर आ जाए। गर्मियों के दिनों में ना बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे आप गाँव में रहते हैं किसी लस्सी पिए वो भी पतली वाली लस्सी जो हमें डब्बे में लस्सी मिलती है ना उसके अंदर भी और पानी डालकर पिए उसका टेस्ट अलग होगा। वो थिक वाली लस्सी नहीं उसको और पानी डालकर उसको हल्का कर लें। हमारी पंजाब की साइड पर ना लोग यही करते हैं जो लस्सी होती है ना उसको और पतला करें गाढ़ी लस्सी नहीं पतला करके उसको और पिए। दूसरी चीज़ ये कि फ्रूट्स के अंदर कुदरती तौर पर ये एक खासियत होती है कि 80-90% जो है ना वो पानी होता है वो खाएं। अपने खाने को हल्का फुल्का रखें बिल्कुल हल्का फुल्का। हमारे देसी लोगों के साथ मसला ये है कि भाई वो उनका ना रोटी चावल के बगैर दिमाग काम नहीं करता उनको समझ में नहीं आती बात। रोटी चावल आप खाएं लेकिन उसके साथ कुछ सेहतमंद चीज़ें भी खाएं। सैलेड हो गया सैलेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसीलिए नहीं कि वो आप कहेंगे भाई मैंने स्टाइलिश रहना है या मैंने जो है ना पतला दुबला पतला रहना ऐसे नहीं है। उसके अंदर वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है हमारी 60% बॉडी वाटर से बनी हुई है और आपको पता है 60% से ऊपर हमारी बॉडी जो वाटर इनटेक करती है ना वो हमारे पानी पीने से नहीं करती वो हमारे खाने से लेती है बॉडी हमारा पानी रिसर्च ये बताती है। तो अपना खाना पीना हल्का फुल्का रखें फ्रूट्स का ये क्यूकम्बर हो गया कैरेट्स हो गई ऐसे वाले वेजिटेबल्स का खाना पीना ऐसा लाइट मोड वाला खाना पीना रखें।
4: आजकल लाइट मोड पे चल रहा है ऐसा लग रहा है मैं डाइटिंग पे आ जाऊंगा डाइटिंग पसंद नहीं
2: अल्लाह ताला खैर आफियत वाला मामला रखे। इस्बगोल पिए पानी में डालकर दही खाएं ऐसी चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें। ये चीज़ें वो हो गया अपना चिया सीड्स हो गए ये अपना हम लोग कहते हैं कि ये अल्लाह भला करे ये क्या हो जाते हैं बेसल सीड्स होते हैं जिन्हें हम उर्दू में क्या कहते हैं बेसल सीड्स को तुख मलंगा।
4: ये याद दिलाया आपने
2: ये बहुत और ये ओमेगा 3 में भी बहुत रिच होता है ये बहुत काम की चीज़ है। तो चलें हमारा हेल्थ गाइड ख़त्म हुआ यहाँ पर। अब एक बात बताएं कि आपने क्या क्या क्या चीज़ बताई थी मुझे
4: चम्मच
2: स्पून हाँ स्पून नूडल्स के बारे में बात की। चले अब एक और काम करते हैं आपके साथ गेम खेलते हैं ठीक है करना आपने ये है भाई जिंदगी गेम खेल देखे भाई जिंदगी गेम खेल रही है एक गेम हमारे साथ भी खेल ले क्या ही जाएगा गेम ही चल रहा है। देखिए हमारी वाली गेम में लॉस नहीं है भाई हमारी वाली गेम में मस्ती है मजा है क्या कहते हैं।
4: मतलब इससे पहले वाले जिस बंदे जिन भाई से आपने बात की थी उनका नाम क्या था?
2: आरिफ भाई नहीं आरिफ भाई थे ना
4: हाँ। मेरे को याद नहीं रहता अभी मेरे को ये था अभी आपको सारे नाम याद हैं
2: क्योंकि लिखा हुआ है ना देखो छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा है छोटा अच्छा भाई आरिफ भाई का नाम लिख कर रखा है मैंने जो मुझे कॉलर्स कॉल करती है ना मैं उसको कहीं लिख लेती हूँ ताकि मुझे एम्बैरेसमेंट ना फेस करनी देखें ये हमारी देखें ये किसी को बताइएगा नहीं ये राज की बात है लिख कर रख लेती हूँ मैं कॉलर के नाम। तो भाई आरिफ भाई ने कॉल की थी इससे पहले अच्छा चले मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ ठीक है आपने उसके ऊपर एक अच्छी सी कहानी गढ़नी है कोई भी एक मिनट के लिए, ठीक है? तो आपका टॉपिक है मेंढक, नाचता हुआ मेंढक नाचता हुआ मेंढक, ठीक है?
4: मेरे को नाचते हुए मेंढक से पता है क्या याद आ गया, मेरे घर में भाई है, भाई का जो छोटा बेटा है ना, वो मुझे नाचता मेंढक ही लगता।
2: चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है? आपको एक मिनट दिया जाएगा, जैसे एक मिनट खत्म होगा मैं आपको बता दूंगी। कोशिश तो करें ना, फन फन फन, मजा मस्ती, ठीक है? आपका एक मिनट स्टार्ट होता है नाउ।
4: मैडम मैं जा रहा था एक टाइम पे अपने घर, मुझे रास्ते में दिखा एक मेंढक,
2: हाँ जी,
4: और वो नाचने की कोशिश कर रहा था,
2: ठीक है,
4: और उसके साथ बैठा था मेरा भाई जो उसको नचाने की कोशिश कर रहा था। मैं दोनों को देख के पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
2: हाँ।
4: उन्होंने बोला हम घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये यंगे यहाँ नाच रहा है। मैंने कहा यहाँ क्यों नाच रहा है?

0: नहीं तो भाई ने यहीं से जो है ना वो सुपर लिटर घुमाना था।
1: मेरा भाई बहुत अच्छे उनके बच्चे बहुत।
0: हाय ये तो बहन भाई। अच्छा ये एक मजे की बात है कि बहन भाइयों के बच्चों का जितना मजाक उड़ा लो ना भाई मैं बुरा नहीं मानता, उनको बताता ये ऐसी टांग खींच रहा है। खैर है। अच्छा
1: भाई भाई के ठीक बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, एक उनमें से गोरे एक उसमें से थोड़ा सा सांवला है, तो हम कहते हैं कि तुम रात में पैदा हुए थे।
0: और पता है क्या बात, मैं एक बात आती हूँ मुझे आपकी बात से एक बात याद है मज़े की। मैं मेरे जितने बहन भाई हैं ना माशाल्लाह से सब फेयर कलर, वो उनको देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये किसी गोरे के बच्चे हैं। वो बिल्कुल मतलब मेरा बड़ा भाई जो है उसके तो बाल भी ऐसे हैं गोल्डनिश से कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई वेस्टर्न बंदा है। ठीक है, अब मैं उनमें से थोड़ा सा सबसे जो हमारे घर में जिसका थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन सांवला कलर है वो मैं हूँ। तो मैं बचपन में रोया करती थी कि भाई मैं गोरी क्यों नहीं हूँ। तो मुझे पता है क्या रीजन देते थे, कहते थे जब ये पैदा हुए थे ना तुम्हारे बहन भाई तो ये गलती से हमारे हाथों से दूध की देगची में गिर गए थे। और ये कौन सी बात हुई, फिर मेरा रोना अलग ही होता था। मैं कहती थी दूध की देगची में मुझे क्यों ना गिराया। दूध खत्म हो गया था, ये कौन सी बात हुई। तो ये भी एक फन चीज है। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की कुदरत है भाई, हम अपने रंग के ऊपर भरपूर फखर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
1: मोहब्बत
0: है भाई, अपने देखें अपनी फेवरेट हूँ मैं, अपनी मैं फुल ऑन फेवरेट हूँ, फिर चाहे कोई किसी भी रंग का हो। चले भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और चमचे का आपने बताया तो चमचा वाकई में, लेकिन अगर कभी बिरयानी खाएं तो उसको साइड पे कर दीजिएगा प्लीज प्लीज।
1: नहीं खा सकता मैडम, बिल्कुल नहीं खा सकता, बहुत कुछ दोनों हाथ यूज होते हैं, बड़ी एम्बैरेसमेंट होता है
0: दोनों हाथों से खा रहा
1: बंदा। देखते अच्छा नहीं लगता,
0: लोग देखकर कहेंगे भाई कितने सदी के भूखे हो तुम जो दोनों हाथों से खा रहे हो।
1: दोनों हाथ, एक हाथ बचाने में लगा होता दूसरा खाने में लगा होता, दोनों हाथ बोलते हैं भाई करें क्या।
0: चले आप फिर उन्हीं लोगों की लिस्ट में आते हैं जिनको मैं कभी अगर मिली तो गौर से देखूंगी कि भाई ये चमचे से बिरयानी क्यों ही खा रहे हैं, इनकी जिंदगी कितनी उदास है कि ये चमचे से बिरयानी खा रहे हैं। चले अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अल्लाह हाफिज। और हाँ भाई मेंढक जो है ना वो सर्दियों में नहीं निकलते, मेंढक गर्मियों के दिनों में निकलते हैं, सर्दियों में वो हाइबरनेटिंग पे चले जाते हैं जमीन के अंदर। ठीक है, साइंस फिक्शन वाली कहानी। चले अल्लाह हाफिज। लेकिन 50 सेकंड गुड, नॉट अ बैड स्कोर। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, आपको याद दिलाती चलूं कि आप कॉल कर सकते हैं 4434377 पर और मैसेज कर सकते हैं 6622107 पर। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अच्छा जी कौन है हमारे साथ।
2: मैं मुबशर मुबीन बात कर रहा हूं आपको, तो मैं पहली बार कॉल कर रहा हूं। मैं
0: मुबशर भाई आपका नाम सुना लग रहा है।
2: सुना हुआ तो होगा आपने शायद।
0: आज पता नहीं क्यों सबके नाम सुने क्यों लग रहे हैं
2: जी। मैं कॉल वैसे तो कबीर भाई से वरन सबसे तो बात होती रहती है आपसे, बस कभी मैंने कॉल नहीं की। मैंने
0: डिस्क्रिमिनेशन चल रही है मतलब, कबीर भाई से बात कर लेते हैं हमसे नहीं करते। ठीक है ठीक है,
2: याद कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है,
0: ये गजनी याद रखेगा।
2: ये चीज याद रखने का, ये चीज अगर आप याद रखे तो फिर तो चले ठीक है।
0: चले मुबशर भाई
2: कुछ तो याद रहेगा,
0: कुछ तो याद। देखा ऐसी ऐसी पॉजिटिव वाइब चाहिए लोगों के अंदर मुझे, कि नेगेटिव बात भी की जाए तो वो ऐसी पॉजिटिविटी फेंक के मारें कि बस सारी नेगेटिविटी ना फिर यूं किनारों पे लग जाए, दीवार से लगा दी नेगेटिविटी आपने। अच्छा ये गुड हो गया। मुबशर भाई ये बताएं कि एक कोई ऐसी इन्वेंशन बताएं जो आपको लगता है कि बड़ी बेसिक है लेकिन है बड़ी फैसिनेटिंग भाई।
2: जो कि बहुत बेसिक है और
0: है बड़ी मतलब काम की चीज है, इतनी बेसिक है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको इस्तेमाल करते हुए भूल जाते हैं कि इस चीज का भी शुक्र अदा करना है भाई, इतनी बेसिक है।
2: पानी की बोतलें।
0: अरे हाँ हाँ हाँ हाँ, वो
2: सबसे काम की चीज है। एक तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं और दूसरा शायद ऐसे ही किसी ने जिस तरह बल्ब बन गए और रेडियो बन गए, बैठे बैठे ये भी ऐसे ही बन गई होगी।
0: क्या चीज
2: तो मुझे मैं कह रहा हूँ जिस तरह ये बैठे बैठे ये ट्यूबलाइट और बल्ब और रेडियो ये सारी जिस तरह बैठे बैठे ये चीजें बन गई, ये भी इसी तरह बन गई होनी है बैठे बैठे, तो काम की बहुत चीज है।
0: अच्छा आपकी बात से ना वो मुझे याद आ रहा है, पुराने जमाने में मशकें इस्तेमाल होती, मशक होती थी वो।
2: जी बिल्कुल
0: हाँ वो इस्तेमाल होती। लेकिन उससे भी ज्यादा बेसिक चीज जो आपकी बात सुनकर मुझे मेरे दिमाग में खटक रही है ना,

0: वो है कैप, ढक्कन।
1: हाँ ये भी है।
0: अरे भाई इतनी बेसिक सी चीज है, लेकिन अगर ये ना होती तो बड़े मसले मसाइल होते भाई, बड़े मसले मसाइल होते। हाँ एक और चीज, मेरा दिमाग की बत्ती जली हो ना, ढक्कन कैप बहुत काम, कीमती चीज है, कीमती। तो अच्छा जी, जी, ये तो एक चीज हो गई, दूसरी कोई चीज दिमाग में आ रही है?
1: दूसरी कोई चीज इस टाइम पे तो फौरन से तो नहीं आ रही।
0: चलें एक चीज तो हो गई,
1: क्योंकि क्योंकि क्योंकि इस टाइम पे 2026 में बेसिक तो कुछ है ही नहीं, एडवांस लेवल पे चल रहे।
0: नहीं ना, मसला यही है ना, हम इतनी ज्यादा एडवांस चीजों में फंस गए कि हम वो जो बेसिक होती है ना, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी की खुशी जो होती है ना इंसान की, वो होती है बड़ी बेसिक चीजों में। जब इंसान बेसिक चीजों का शुक्र अदा करना छोड़ देता है ना, तो उसको उसकी नजर फिर वो आप कहते हैं ना, वो आसमान तो फिर आसमान है ना, वो तो वसी है, तो आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप पीछे मुड़कर ना देखो और कहो कि अच्छा ये चीज ना होती तो इट वुड हैव बीन डिजास्ट्रस, मतलब मसले की बात हो जाती
1: है। हम ये चीज सोचते नहीं है, हालांकि वो सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में यूज जरूर हो गई है, लेकिन बस ऊपर मैड में ये नहीं गया कि बेसिक चीज और इसकी हमारी लाइफ में वैल्यू की चीज है।
0: बेसिक चीजों की शुक्रगुजारी नहीं होती इंसान के, तभी तो इंसान नाशुकरा हो जाता है, तभी तो उसको ये लगता है कि नहीं और लालच लालच लालच। चले ये भी एक अच्छी चीज है कि हमें थोड़ा बहुत वक्त मिल रहा है कि हम याद कर रहे हैं चीजें।
1: जी जी बिल्कुल, तो ये पहले भी याद कर रहे थे मेरे से स्टार्ट हुआ ये।
0: नहीं नहीं ये पहले भी याद कर रहे थे हम, हमें एक भाई ने बोला, कौन से वाले भाई ने, रुकें जरा मैंने नाम लिखे थे अभी, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। हाँ अली भाई ने कहा स्पून, आरिफ भाई ने कहा वो सेफ्टी पिन होती है ना, सेफ्टी पिन और पेपर क्लिप।
1: ये सेफ्टी पिन इतनी बेसिक बनी है, अगले दिन कबीर भाई ने एक स्टोरी सुनाई, वो तो भाई साहब मिलियनर बंदा बन गया एक सेफ्टी पिन से, ये जितने सुन रहे हैं सबको तो पता ही होगा।
0: अच्छा ये सेफ्टी पिन
1: बेसिक नहीं है, सेफ्टी पिन।
0: हाँ सेफ्टी पिन से हटकर अगर आप वो देखें अपना ये पीलर होता है ना, पीलर ये जिससे सब्जियां छीलते हैं हम,
1: जी जी जी जी जी,
0: वो भी बिल्कुल सेफ्टी पिन वाला हाल है। वो बंदा भी जो जिसने इंट्रोड्यूस कराया था, ही इज अ नोन पर्सन नाउ, मतलब वो भी एक बड़े बेसिक से आइडियाज होते हैं लोगों के, लेकिन वो देखा जाए तो बहुत बेसिक से होते हैं लेकिन लोगों को फॉर्च्यून दे जाते हैं वो। इट इज अ थिंग,
1: ये बेसिक तो यही देखना है, ये जिस तरह है अभी मैं नाम नहीं लेता, ये जिस तरह एक माचिस के डब्बी से आज पूरा वो शोरूम खड़ा हुआ है इसका, कितना चीज पहुंच
0: गई है, ये है ये बात है। तो मामला ये होता है कि इंसान अगर बेसिक नीड्स को किसी की पूरा कर देता है ना, मार्केट अगर बिजनेस मार्केट में देखा जाए तो बिजनेस के बारे में कहा यही जाता है कि आप मार्केट का गैप ढूंढते हो कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। लाजमी नहीं कि वो बहुत बड़ी चीज़ हो, लाजमी नहीं है कि वो गाड़ी हो, लाजमी नहीं कि वो जहाज़ हो, लाजमी नहीं है कि वो उड़न तश्तरी हो, लाजमी नहीं है। वो एक बड़ी बेसिक सी नीड होती है, आप उसको देखते हो, समझते हो, सोचते हो और फिर उसी के हिसाब से बड़ी बेसिक सी एक चीज़ बनाते हो और फिर वहीं से आप फॉर्च्यून खड़ा करते हो। ये भी बिजनेस माइंड लोग होते हैं, वो करते हैं ये हरकतें। खैर मैं तो उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ।
1: नहीं आप भी हैं, जिस तरह बता रही है ना सारी चीजें, कहीं पे जाके तो वो चीज क्लिक होती है।
0: भाई ये जो लोग फॉर्च्यून बनाते हैं ना बिजनेस में, इनकी उम्रें लगती हैं, ये हर चीज से कदा ताल्लुक हो जाते हैं, ये इतनी गहरी सोच और इतनी गहरी नजर रखते हैं ना कि मुझे नहीं लगता मेरे जैसा इंसान जो ना इतना गहरा सोच पाएगा। मैं कहूंगी हाँ ये हो सकता है और मैं बीच में छोड़ दूंगी, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ते, बड़े कंसिस्टेंट होते हैं ये लोग।
1: असल में बस वो उनको एक चीज होती है ना कि हमने बस ये चीज शुरू करनी है, मेन चीज ये होती है कि भाई अगर हम एक चीज शुरू कर रहे हैं और हम अगर वो चीज छोड़ देते हैं तो सिर्फ उसके लिए रीजन होता है कि हमें उसको रिजल्ट नहीं नजर आ रहे होते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम चेक कर रहे होते छोड़ देते यार इसमें तो फायदा नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप किसी और तरफ शिफ्ट हो जाओ। तो जब कोई बंदा इसमें जब उसको कुछ रिजल्ट मिलता है, चाहे वो एक 1% रिजल्ट है, तो वो उसमें लगा रहता है और वो करते करते 1% को तब कन्वर्ट कर लेता है कि उसमें उसकी जिंदगी सुधर से रुक जाती है, लेकिन बस वो एक एम्पायर जरूर खड़ा कर लेते हैं कि हाँ ये
0: हाँ ये बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी गेम की तरफ आते हैं। देखिए मैंने देना है आपको एक मिनट, अरे भाई खेल लो इतना मजा आएगा ना, कुछ भी रैंडम बोलो।
1: असल में यही तो मसला है, कुछ भी रैंडम बोला ना तो सुनने वाले बोलेंगे क्या।
0: अरे हमें वही तो मजाक चाहिए, वही तो फन चाहिए। देखो भाई सीधी सी बात है, सीरियस बातें

0: करने वाले 50,000 मिलेंगे, ज्ञान छापने वाले 50,000 मिलेंगे, किताबें मार्केट में फिलोसफी की 10,000 पड़ी हुई हैं। मजा तो तब आए ना जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आओ ऐसी रैंडम बात से, कोई भी एक रैंडम बात फेंकते हैं मार्केट में।
1: वो अभी वो भाई ने भी एक मेंढक वाली वो भाई ना मैं ये सोच रहा था कि वो अपन नाम कब लेंगे, उन्होंने कर दिया उन्होंने, वो 50 सेकंड में अगर ले लेते हैं तो वो अगले 10 सेकंड पूरे जरूर हो जाते हैं।
0: लेकिन आप भी ट्राई करें।

0: करते हैं ना, ट्राई करते हैं। अरे क्या ही जा रहा है, कौन सा, ना मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं ना आपकी जेब से खर्चा जा रहा।
1: असल में सर ये मसला नहीं है, सर ये मसला नहीं है ना, मेरे से बहुत सारे मसले हैं। तो मेरे हो सकता है अभी 3-4 दोस्त मुझे सुन रहे हो और वो बस वो बात जरूर पकड़ेंगे कि भाई मुबशर आपने तो ये बात रेडियो पे की थी और ये तो इस तरह नहीं है, इस तरह ये क्या है, तो फिर वो समझा करें जरा।
0: मतलब इतना तो कोई सेंसिटिव चल रहे हैं आप मुबशर भाई, इतने सेंसिटिव। हाय हाय हाय हाय, ये उम्मीद ना थी मुझे अपने कॉलर से, दिल तोड़ देता है मेरा गोभी दिया फूलों।
1: इस तरह सेंसिटिव नहीं है, लेकिन ये है कि भाई कुछ इंसान की तनाही निकल जाए।
0: भाई इंसान को ना ऐसा मस्त होना चाहिए कि अगर 4 लोग मजाक उड़ा रहे हो ना, तो उन्हीं दोस्तों के बीच में बैठकर आप खुद भी अपना मजाक उड़ा लो। कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: मैं आपको कल की बात करता हूँ, हम लोग जिम से वापस आ रहे थे तो वो उसके मेरे दोस्त के पास थी, मेरी गाड़ी की चाबी थी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मेरे भाई की चाबी दे दो, जो फिर उसने पकड़ा मुझे, ये मेरे से अपनी गाड़ी मेरे से ड्राइव नहीं हो रही थी यार, मैं अपने घर वापस।
0: चलें कोई नहीं, आपके लिए इजी कर देते हैं। सोचें मेरी कितनी क्लास लगती होगी, मैं तो पता नहीं रैंडम ही बोल जाती हूँ कभी कभी, तो मैं तो इतना रैंडम बोल जाती हूँ कि मैं खुद सोच रही थी कि मैंने मेरे मुंह से क्या निकल गया। अच्छा खैर आपके लिए इजी कर देते हैं ना, आपके लिए इजी कर देते हैं,
1: ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करते हैं।
0: अच्छा
1: हो सकता है किसी का फायदा ही हो जाए मेरी बात।
0: कछुआ द रेसिंग चैंपियन, ठीक है, 1 मिनट आपने कछुए के बारे में बात करनी है।
1: इसमें तो बंदा पूरी स्टोरी सुना सकता है, इसमें ये तो
0: थोड़ा हटके सुनाए ना, थोड़ा हटके कछुए के बारे में कुछ हटके, वो वाली बचपन वाली नहीं कि एक कछुआ था तो एक रैबिट के साथ उसने रेस लगाई। भाई कछुए का कुछ और किया जाए, कुछ मामला, कुछ रेसिपी चेंज की जाए।
1: वो तो बात ठीक है, सही है, जितना भी आपने वो कछुए का नाम लेना तो हमारे माइंड में सबसे पहले वही चीज क्लिक करेगी कि यार हाँ ये चीज आई है,
0: कुछ डिफरेंट करेंगे। चले 1 मिनट, ठीक है, आपको दिया था कछुए के ऊपर 1 मिनट। कछुआ
1: बहुत मुश्किल है भाई, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा है, एक मिनट का 30 सेकंड के लिए नहीं आ रहा माइंड।
0: बंदा कहता भाई एक था कछुआ, फिर आगे स्टोरी लेकर जाता है।
1: आप सुनाए, चले आप सुनाए, चले आप कहती है ना कि हमारी जॉब नहीं है, आप सुनाए।
0: देखिए एक दफा एक कछुआ था, वो बहुत ही निराला सा था। उसका मामला ये था कि वो किसी की सुनता नहीं था, उसे जब उसकी अम्मा कहा करती थी कि बेटा घर से बाहर नहीं जाना, क्योंकि वो छोटा सा कछुआ था, तो उसकी अम्मा हमेशा उसे डांटा करती थी घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन वो इतना आहिस्ता आहिस्ता करके घर से बाहर निकल जाया करता था, उसकी अम्मा को पता ही ना चलता था कि वो घर से बाहर निकल गया। एक दिन वो चलते चलते रोड पर जा पहुँचा, रोड पर जब वो गया तो गाड़ियों के हुजूम ने उसे घेर लिया, क्योंकि वो छोटा सा कछुआ था, तो उसको हड़बड़ा कर समझ में ना आया कि वो क्या करे। फिर वो भागता भागाता इधर उधर डोल मोल होता हुआ, छुपता हुआ, किसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके उसने एक मिनट पूरा हो गया ना, तो कुछ ना कुछ करके हम कुछ तो करते। अब मैंने उसके अंदर रेस की बात नहीं की, उसके अंदर मैंने रैबिट के बारे में बात नहीं की, इट वाज समथिंग डिफरेंट। लो इन्होंने मेरी गेम मुझे से खिलवा दी, वाह वाह, तालियां मेरे लिए, मेरे लिए तालियां। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। देखो मेरे शो में मुझी को ये हेलमेट पहना के चले गए, वाह वाह वाह शैम्पी, वाह गोभी दिया फूलों, वाह। चलो अब मैं जो ना एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, थक गई मैं अपनी कहानी में कहानी सुनाकर। इस गाने को मैं जब भी सुनती हूँ ना, मैं मजाक के अलावा मुझे वही वाली स्टोरी याद आती है कि एक लड़की थी, उसको एक जो है ना कोई शख्स पसंद आया, वो अंधी थी। हुआ ये कि जब उसकी आंखें वापस आईं और उसे बचा रहा कि मुझे इस शख्स से मोहब्बत हुई थी, तो उसने उस बंदे को उड़ा दिया। जब मैंने मूवी नहीं देखी थी ना, और मुझे इस मूवी को देखने का शौक था एक ज़माने में, तो मेरे कज़न ने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी। असल स्टोरी नहीं सुनाई उसने मुझे, मतलब वो मैं क्या बोलूँ, क्या ही बोला जाए, ऐसे होते हैं कज़न्स। चले भाई सुनते रहे FM 107 पर, सन एंड साउंड ऑन FM 107 विद सफा।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड। और भाई मैं आज बात कर रही हूँ आप लोगों से किसके बारे में, बेसिक से बेसिक बेसिक बेसिक चीजों के बारे में। मतलब ये कि कुछ ऐसी इन्वेंशंस, बड़ी ये रॉकेट साइंस वाली इन्वेंशन नहीं, बेसिक इन्वेंशंस के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब जैसे कि अगर आप देखें ना कि कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स वो जो जहाज़ में कंटेनर्स होते हैं, खाली कंटेनर्स जिसके अंदर दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो सप्लाई होती हैं वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, जिसके अंदर आपके ऑनलाइन ऑर्डर्स चाइना से लेकर जापान से लेकर जहाँ से भी आप मंगवाते हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचते हैं। कितनी बेसिक चीज़ है, खाली डब्बा है एक। लेकिन सोचें कि इतनी बेसिक चीज़ अगर ना होती तो इंसान को कितनी दुश्वारी का सामना होता। तो भाई मैं आप लोगों से आइडिया ये ले रही हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो इतने अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग्स के। अपने आप को थोड़ा सा झिझोड़ो, लाइफ सबकी बिजी चलती है, लेकिन याद रखो कि छोटी छोटी चीज़ों का अगर शुक्रगुजारी नहीं करोगे ना तो फंसते चले जाओगे। तो भाई आज मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि मुझे ज़रा बताएं आपके दिमाग में एक छोटी सी इन्वेंशन क्या आती है कि जिसके बारे में आप ये सोचो कि भाई ये इतनी छोटी सी, इतनी बेसिक सी, इतनी सिंपल सी इन्वेंशन है लेकिन ये लोगों के लिए फॉर्च्यून बना गई। ये लोगों को चाहे बिजनेस में हो या डेली लाइफ की फैसिलिटीज में हो, ये लोगों को इजी कर गई भाई। अच्छा, मेरे दिमाग में बीइंग अ किचन पर्सन, मेरे दिमाग में जैसा मैं हमेशा कहती हूँ एक पीलर को देखकर मैं बड़ी फैसिनेट होती हूँ भाई। पीलर जो होता है ना, वेजिटेबल पीलर, जरा सोचिए आप रोज किचन में एक ऐसी चीज यूज करते हैं जो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, आप कुछ सेकंड के अंदर अंदर आपका आलू गाजर जो भी आप सब्जी छील रहे होते हैं वो आपके लिए आसान बना देती है। एक छोटी सी चीज जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रखती है, हिस्ट्री में अपना पार्ट है उसका। जी हाँ, बात हो रही है वेजिटेबल पीलर की। अगर अभी मैं आपको बताऊं जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ, एक ऐसी इन्वेंशन जो किचन का काम बहुत आसान से आसान तरीन कर देती है भाई। देखिए पुराने जमाने में ना लोग सब्जियों को कैसे छीला करते थे। अब पुराना जमाना भी मैं इतना पुराना नहीं कह रही, ये जो इतना ज्यादा इन हुआ है ना मॉडर्न वेजिटेबल पीलर जो है ये 19th to 20th century के अंदर अंदर हमारे किचन में भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा। उससे पहले इतना भी पुराना जमाना नहीं था 19th or 20th century। तो इससे पहले जो ना लोग क्या करते थे, वो छुरी से सब्जियां छीला करते थे। अब छुरी से सब्जियां छीलने का मामला ये है कि भाई उससे सब्जी छीली कम जाती थी और जाया ज्यादा होती थी, समझ रहे ना बात को। तो फिर लोगों ने सोचना शुरू किया भाई कोई ऐसा टूल है जो सिर्फ छिलका उतारे ना ऊपर का, ये पूरी पूरी सब्जी। अब सोचो 1 kg आलू छील रहे हो, एक तो हाथ भी थक रहा है, दूसरा 1 kg में से आधा kg तो सिर्फ छीलने में ही चला जा रहा है। तो भाई लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा कोई टूल हो सकता है जो सिर्फ हल्का सा छिलका उतारे सब्जी का, पूरी पूरी सब्जी ही ना खा जाए। तो भाई किसी ने किया भरपूर इन्वेंशन और 19th और 20th सेंचुरी के दरमियान डेवलप हुआ पीलर। और मोस्टली ना ये यूरोप और अमेरिका के बीच में ये एक इन्वेंशन थी जिसके अलग अलग डिजाइन्स चलते रहे। ऐसा नहीं था कि एक पीलर आया और वही मार्केट में इन हो गया। जाहिर बात है कोई नई चीज़ आती है तो उसके मुख्तलिफ जो है ना वो डिज़ाइन निकलते हैं, मुख्तलिफ वराइटीज़ निकलती हैं। तो एक डिज़ाइन था, विक्टर पॉल्सन ने डिज़ाइन किया था उसे, और वो थे विक्टर पॉल्सन जो है ना वो डेनमार्क के इन्वेंटर थे। ये मैं बात कर रही हूँ 20th century की। तो उनका सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट जिसे कहा जाता है ना डिज़ाइन, वो विक्टर पॉल्सन का बना था जो कि डेनमार्क से थे। सबसे ज़्यादा आज भी जो हमारे वो जो वी शेप पीलर यूज़ होता है ना हमारे किचन्स में, वो इनका डिज़ाइन था। पीलर की दुनिया में एक रेवोल्यूशन था 1950s के बाद, किचन टूल में मॉडर्न डिज़ाइन आने लगे। और फिर हुआ ये कि लोगों ने स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स लाना शुरू कर दिए, कंफर्टेबल हैंडलर्स लाना शुरू कर दिए, मुख्तलिफ डिज़ाइन आते चले गए ना। लेकिन ये सब कुछ 1950s के बाद हुआ। आज जिस टाइप के पीलर्स हम मार्केट में देखते हैं ना, स्ट्रेट पीलर होता है वो जो कॉमनली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, एक वी शेप पीलर होता है जो कि आज की दुनिया में भी बहुत मशहूर है क्योंकि उसकी हैंडलिंग आसान होती है. और एक जूलियन पीलर भी होता है, पता है वो क्या करता है? वो जैसे छोटी छोटी पत्ती पत्ती पट्टियाँ काटता है ना, जैसे वो हम लोग अदरक की पट्टियाँ काटते हैं, वैसे जूलियन पीलर भी एक होता है. वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में आया था. तो भाई ऐसी देखिए बड़ी बेसिक सी चीज़ है, और मज़े की बात अगर बिजनेस परस्पेक्टिव से बताऊँ ना आपको, तो बड़ी कमाल की चीज़ है पीलर. अगर मैं आपको बताऊँ तो दुनिया भर में किचन टूल्स का बिजनेस टेंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स का है, जिसमें पीलर की मार्केट अभी बहुत छोटी है, लेकिन वो स्टेबल हिस्सा है, बहुत बड़ा स्टेबल हिस्सा है. इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक वेजिटेबल पीलर मार्केट की वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंची हुई है, और आगे आने वाले सालों में इससे भी ज्यादा होगी. समझ रहे हैं आप, इतनी छोटी सी इन्वेंशन है, बिजनेस लेवल पर भी इतनी धमाकेदार, और लोगों के डेली लाइफ में भी इतनी सहूलत देने वाली चीज. एक नॉर्मल पीलर फैक्ट्री में जब बनता है ना, तो उसकी कॉस्ट बड़ी कम होती है. जब वो होलसेल मार्केट में आता है तो थोड़ी सी अच्छे खासे डॉलर्स में उसे बेचा जाता है, और अगर प्रीमियम ब्रांड अगर उसे कोई बना ले ना, तो भाई वो अच्छा खासा आपको हाई क्वालिटी मटेरियल में जो बनता है उसकी प्राइस अच्छी खासी होती है. तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, चाहे शेफ हो, चाहे घर में जो है ना हमारे इस्तेमाल हो रहा हो नॉर्मल, चाहे प्रोफेशनल मार्केट में हो, चाहे ऑनलाइन मार्केट में, उसकी अच्छी खासी वैल्यू है भाई. तो बड़ी बेसिक सी चीज, लेकिन एक बहुत अच्छा बिजनेस लेवल पर भी, और बहुत अच्छा अपना आप कह लें कि डेली लाइफ यूज में भी बहुत अच्छी होती है ये चीज. तो आज हमने इसी के बारे में बात की कि भाई देखें कि ऐसी कोई चीज जो बड़ी बेसिक लगती हो लाइफ में, जिसको हम ध्यान ही ना दे रहे हो, लेकिन इट क्रिएट्स वंडर इन आवर लाइफ. साथियों जाने का मेरा वक्त हो गया. जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी कि आज हमने ये जाना कि हर हीरो का ना बिल्डिंगों पे लटकना ज़रूरी नहीं होता. लाजमी नहीं है कि हीरो वो

जिसके हाथों से जो है ना स्पाइडर वेब्स निकल रहे हो। कुछ हीरोज हमारी अपनी जेब में होते हैं, कुछ हीरोज हमारे किचन में होते हैं, कुछ हीरोज हमारे घर की ड्रॉर्स के अंदर छुपे हुए होते हैं। एक छोटी सी जिब, एक सिंपल सा स्क्रू ड्राइवर, एक छोटा सा पेपर क्लिप, एक छोटा सा रबर बैंड, ये सब देखने में आम सी चीजें लगते हैं, लेकिन इन्होंने हमारी जिंदगी बहुत आसान बना दी होती है और ये हमारी जिंदगी के अंदर एक बड़ा खास हिस्सा रखते हैं। कभी कभी हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज के पीछे भाग रहे होते हैं, हाँ भाई ये वाला मोबाइल, हाँ भाई ये वाला चीज़, ये वाला गैजेट, लेकिन असल जीनियस वो भी होते हैं जो रोज हमारे काम आया करते हैं। तो भाई अगली बार जब आप अपनी जैकेट की जिप खोलें या वाटर बॉटल का ढक्कन खोलें ना, तो एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, एक सेकंड के लिए जरूर सोचिएगा कि वाओ किसी ने कभी एक छोटा सा आइडिया मार्केट में फेंका था और वो काम कर गया, और क्या पता आपके अपने दिमाग में भी ऐसा कोई आइडिया हो, क्या पता। इंसानों का भी यही हाल है कि इंसान अगर देखा जाए तो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, हर इंसान का दिमाग बिल्कुल मुख्तलिफ चल रहा होता है। क्या पता आपके दिमाग में जो आइडिया चल रहा हो वो आपको बड़ा बेसिक लग रहा हो, लेकिन वो आने वाले दौर का बेसिक लेकिन वायरल चीज बन जाए कोई एक। अपने आइडियाज को ना अपने दिमाग में ऐसे दबा के ना रखा करें, क्या पता समबडी हैड अ थॉट। बोतल का ढक्कन कितनी मामूली सी चीज है, काम कर गया भाई। तो भाई कभी कभी एक छोटा सा आइडिया, एक छोटी सी सोच डेली लाइफ का हीरो बन जाती है, क्योंकि दुनिया सिर्फ रॉकेट्स और रोबोट्स पे नहीं चलती भाई, कभी कभी एक छोटी सी इन्वेंशन एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। तो भाई अपने दिमाग को प्रोसेसिंग मोड में रखो और अपने आइडियाज को छोटा मत समझो। इसी नोट के साथ कि अपने आप को प्रेज करें, अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करें, अपने आइडियाज को छोटा मोटा ना समझें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, एक और नई सोच पे, एक और नए मुद्दे पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं, ऑफ एयर होती हूँ मैं, ठीक है, मैं बोल के थक गई भाई, आज मैं थक गई हूँ। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, और जाने से पहले ये बात कहना चाहूँगी कि अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जो इंसान अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का क्या ही ख्याल रखेगा भाई। तो भाई आप सुन रहे थे सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड और वो प्रोग्राम जहां हम खेलों की दुनिया के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स और उनके पीछे छुपी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे टेनिस की तारीख के एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिनका नाम लीडरशिप, कंसिस्टेंसी और कामयाबी की मिसाल बन चुका है। यहाँ दोस्तों आज का रिकॉर्ड है राफेल नडाल के ऊपर। राफेल नडाल का 14th फ्रेंच ओपन टाइटल्स, ये एक यूनिक रिकॉर्ड है और टेनिस की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। क्या दोस्तों, टेनिस की दुनिया में कई अजीम खिलाड़ी आए और गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए तारीख में बस जाते हैं और राफेल नडाल उन्हीं चंद खिलाड़ियों में से एक हैं। जब भी फ्रेंच ओपन या रोला गारो का जिक्र होता है, सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो राफेल नडाल का होता है। स्पेन के इस लेजेंडरी खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन में 14 टाइटल्स जीतकर ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जिसे तोड़ना फिलहाल तो नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी अब मौजूद हैं वो ज़्यादातर नए खिलाड़ी हैं और एक ही जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं वो जोकोविच हैं, लेकिन जोकोविच भी हमेशा से इतना ज़्यादा चुस्त नज़र नहीं आ रहे इन दिनों, और पिछले फ्रेंच ओपन में वो नाकामयाब रहे और सेकेंड राउंड से ही बाहर हो गए थे। राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है, बहुत मशहूर, और इस टाइटल के पीछे उनकी बेमिसाल कामयाबियां हैं। जहां पर भी क्ले कोर्ट हो, स्पेशली फ्रेंच ओपन तो क्ले कोर्ट में ही खेला जाता है।

0: जाता है और फ्रेंच ओपन के टूर्नामेंट में राफेल नडाल को रोकना मुश्किल ही लगता था हमेशा हर खिलाड़ी के लिए बिकॉज ही वॉज अनडिफिटेड ही वॉज इनवेंसिबल। क्ले कोर्ट पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही है कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी भी उनके सामने अक्सर बेबस नजर आए, चाहे वो रॉजर फेडरर क्यों ना हो, चाहे वो जोकोविच क्यों ना हो। फ्रेंच ओपन के 14 खिताब सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं दोस्तों, बल्कि टेनिस की तारीख का एक ऐसा चैप्टर है जो शायद कभी दोबारा ना लिखा जा सके। बात कर रहा हूं मैं 2005 की। अच्छा, उस टाइम पहली मर्तबा राफेल नडाल फ्रेंच ओपन जीता और उस वक्त नडाल सिर्फ 19 साल के थे और दुनिया को अपनी सलाहियतों का अंदाजा दिलाना शुरू ही किया था। अपने डेब्यू फ्रेंच ओपन में ही टाइटल जीतना किसी भी प्लेयर के लिए गैर मामूली बात होती है। नडाल ने फाइनल में मारियानो पुएर्टा को हराकर पहला रोलर गारो टाइटल अपने नाम किया और इस जीत के बाद नडाल ने जो सिलसिला शुरू किया दोस्तों वो कई सालों तक जारी रहा। उन्होंने 2006, 2007 और 2008 में मुसलसल फ्रेंच ओपन जीत कर दुनिया को बता दिया कि क्ले कोर्ट पर उनका मुकाबला करना कितना मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पर लेजेंडरी एक राइवलरी की भी बात कर लूँ रॉजर फेडरर के साथ राफेल नडाल की, और फ्रेंच ओपन की तारीख नडाल और रॉजर फेडरर की राइवलरी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। रॉजर फेडरर को टेनिस की तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है, लेकिन रोलर गारो में उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल नडाल की वजह से ही पेश आई। ग्रास में रॉजर फेडरर वॉज अनबीटेबल, ग्रास कोर्ट में रॉजर फेडरर को हराना बड़ा मुश्किल होता था, वेरी क्लासी प्लेयर। 2006, 2007, 2008 के फ्रेंच ओपन फाइनल्स में नडाल ने फेडरर को शिकस्त दी। फेडरर हर सरफेस पर कामयाब थे, लेकिन क्ले कोर्ट पर नडाल की डोमिनेंस उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट बनी रही। आखिरकार फेडरर ने 2009 में फ्रेंच ओपन टाइटल जीता जब नडाल टूर्नामेंट से पहले ही एलिमिनेट हो गए थे। दैट वाज एन इजी वे आउट फॉर रॉजर फेडरर द स्विस माइस्ट्रो। एक ही टूर्नामेंट में बेमिसाल डोमिनेंस। अच्छा, यहाँ पे स्पोर्ट्स की दुनिया में अगर बात करूँ, स्पोर्ट्स की दुनिया में किसी एक टूर्नामेंट पर इतनी लंबी मुद्दत तक हुक्मरानी करना बहुत मुश्किल होता है। गोल्फ, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस, किसी भी खेल को देख लिया जाए इतनी कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती। नडाल ने फ्रेंच ओपन के टाइटल्स 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 19, 2020 और 2022 में जीते। ये 14 टाइटल्स किसी भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में किसी भी प्लेयर के सबसे ज्यादा टाइटल्स हैं और आज ये रिकॉर्ड स्टिल अनब्रोकन है। इससे पहले किसी ने भी किसी एक ग्रैंड स्लैम इवेंट में इतनी कामयाबी हासिल नहीं की थी। नडाल ने इस रिकॉर्ड को इतनी बुलंदी पर पहुंचा दिया कि दूसरे प्लेयर्स के लिए उस तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल नजर आता है। और यकीनन नडाल को क्ले कोर्ट का बादशाह हम कहते हैं। क्ले कोर्ट सरफेस पर पॉइंट्स लंबी रैलीज के जरिए जीते जाते हैं और प्लेयर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिटनेस, पेशेंस और स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। राफेल नडाल की गेम क्ले कोर्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। उनका हेवी टॉप स्पिन फोरहैंड, बेहतरीन मूवमेंट और कभी हार ना मानने वाली सोच उन्हें दूसरे प्लेयर से अलग बनाती थी। अच्छा, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि नडाल क्ले कोर्ट पर शायद टेनिस हिस्ट्री के सबसे डोमिनेंट एथलीट रहे हैं। उनका विनिंग परसेंटेज रोलर गारो में 97% के करीब रहा, जो किसी भी मेजर स्पोर्टिंग इवेंट के लिए हैरतअंगेज है। जब नडाल की डोमिनेंस की बात होती है दोस्तों, तो नोवाक जोकोविच का नाम भी जरूर आता है। सर्बियन सुपरस्टार उन चंद खिलाड़ियों में से एक हैं जो नडाल को फ्रेंच ओपन में हरा सके। ये जो त्रॉयका है, ये जो ट्रायंगल है सुपरस्टार्स के, जो ट्रायंगल उस टाइम में आज से 15 साल पहले ये तीनों खिलाड़ियों के दरमियान ही था और ये जितने भी कॉम्पिटिशन टेनिस कॉम्पिटिशन होते थे उसमें या तो नडाल वर्सेस रॉजर फेडरर या तो रॉजर फेडरर वर्सेस जोकोविच है जोकोविच वर्सेस नडाल, तो इन तीनों खिलाड़ियों ने डोमिनेट किया है। जोकोविच ने नडाल को 2015 और 2021 के फ्रेंच ओपन में शिकस्त दी। खास तौर पर 2021 का सेमीफाइनल टेनिस हिस्ट्री के बेहतरीन मैचेस में शुमार किया जाता है। इसके बावजूद नडाल की ओवरऑल डोमिनेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास 14 टाइटल्स का बेमिसाल रिकॉर्ड मौजूद है। इक्का दुक्का हार तो चलता है लेकिन उस डोमिनेंस को तोड़ने वाली बात होती है ना, वो किसी भी खिलाड़ी में नहीं, इतना दम नहीं था कि रफाल नडाल को तोड़ सके। एंड रफाल नडाल चट्टान की तरह हमेशा फ्रेंच ओपन के क्ले कोर्ट में हमेशा खड़ा रहा और यू नो ही अलॉटेड द ट्रॉफीज एवरी टाइम 14 टाइम्स, एवरी टाइम मतलब 14 टाइम्स। वो भी सोच लीजिए कि आज की तारीख में मुश्किल है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया किसी भी टूर्नामेंट को मुसलसल जीतना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, नडाल के साथ ये भी था कि इंजरी प्रोन तो थे ही। नडाल के करियर का सबसे इंप्रेसिव पहलू ये है कि उन्होंने इतनी इंजरीज के बावजूद इतनी कामयाबी हासिल की। उनके घुटनों, पाँव और दूसरे जिस्मानी मसाइल ने कई मरतबा उनका करियर खतरे में डाला। कई दफ़ा एक्सपर्ट्स ने कहा कि नडाल शायद दोबारा अपनी बेहतरीन फॉर्म में वापस ना आ सकें, लेकिन हर मरतबा नडाल ने वापसी की और दुनिया को हैरान कर दिया। एंड दैट्स द हॉलमार्क ऑफ अ चैम्पियन। कितने स्ट्रगल्स झेलने पड़ते हैं लोगों को शायद पता ना हो, मतलब देयर इज अ सक्सेस स्टोरी के पीछे एक स्ट्रगल स्टोरी भी हमेशा रहती है। ये दोस्तों, ये आप लोगों को भी याद होना है और आप लोगों को पता भी है कि सक्सेस इतनी इजीली कभी नहीं मिलता, कभी नहीं। मैंने उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है, मुसलसल हार्ड ट्रेनिंग, क्या क्या नहीं करना पड़ता है किसी भी खिलाड़ी और इंडिविजुअल की बात कर लें। 2022 का फ्रेंच ओपन टाइटल इसका बेहतरीन सबूत था। इस टूर्नामेंट के दौरान भी नडाल फिटनेस इश्यूज का सामना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी टाइटल जीतकर साबित किया कि चैंपियंस कभी हार नहीं मानते। या दोस्तों, नडाल के फ्रेंच ओपन रिकॉर्ड्स देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उन्होंने रोला गारो में 110 से ज्यादा मैचेस जीते और सिर्फ चंद मुकाबलों में शिकस्त खाई। उनका विनिंग परसेंटेज टेनिस हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड्स में से एक है। कई सीजन में नडाल ने पूरा टूर्नामेंट बिना सेट हारे जीता। ये नंबर्स उनकी डोमिनेंस को बयां करने के लिए काफी हैं। अच्छा, दुनिया भर के टेनिस फैंस नडाल को सिर्फ उनकी जीतों की वजह से पसंद नहीं करते बल्कि उनकी फाइटिंग स्पिरिट की वजह से भी उनका एहतराम करते हैं। हर पॉइंट पर पूरी जान लगा देना, कभी हिम्मत ना हारना और हमेशा ओपोनेंट्स के एहतराम करना नडाल की पहचान बनी। रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और कई दूसरे लेजेंड्स भी नडाल की क्ले कोर्ट अचीवमेंट्स को टेनिस हिस्ट्री की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार करते हैं। रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्लेयर टू प्लेयर, फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हों, आप अपने छोटे खिलाड़ी यानी जो आप कम उम्र वाले होते हैं उनको आप डिसरेस्पेक्ट नहीं शो कर सकते। और यहाँ पे तो ये बात हो रही है कंटेम्प्रेरी खिलाड़ियों के बारे में बात हो रही है। रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, इन्होंने हमेशा तारीफ ही की है ऑफ रफाल नडाल, स्पैनिश आर्माडा मैं यहाँ पे अगर कहूँगा तो मैं गलत नहीं हूँ। तो क्या ये रिकॉर्ड कभी टूट सकता है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। ये सवाल ये भी है कि क्या ये, हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि नडाल का 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स का रिकॉर्ड कभी टूट सकेगा या नहीं। मौजूदा टेनिस जनरेशन को देखते हुए ये बहुत मुश्किल लगता है, दैट्स माय ओपिनियन। किसी प्लेयर को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए कम से कम 15 फ्रेंच ओपन जीतने होंगे। इसका मतलब है कि उसे लगभग 2/3 तक एक ही टूर्नामेंट में लगातार टॉप लेवल परफॉर्मेंस देनी होगी। और आज के टेनिस में कॉम्पिटिशन पहले से ज्यादा सख्त है और प्लेयर्स के लिए इंजरीज से बचना भी मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए अक्सर एक्सपर्ट्स का मानना है कि नडाल का ये रिकॉर्ड कई सालों तक कायम रहेगा। और यहाँ पर ही है नडाल की लेगेसी। नडाल ने सिर्फ टाइटल्स नहीं जीते बल्कि टेनिस को नए स्टैंडर्ड्स दिए। उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और डेडिकेशन नए प्लेयर्स के लिए मिसाल बन चुकी है। फ्रेंच ओपन के 14 टाइटल्स उनकी लेगेसी का सबसे रोशन हिस्सा हैं। जब भी टेनिस हिस्ट्री लिखी जाएगी, रोलर गारो और रफाल नडाल का नाम एक साथ लिया जाएगा। नडाल ने साबित किया कि टैलेंट के साथ मेहनत और जज्बा भी जरूरी होता है। उनका करियर हमें ये दर्श देता है कि मुश्किलात और इंजरीज के बावजूद अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है इंशाल्लाह। नतीजा, रफाल नडाल के 14 फ्रेंच ओपन टाइटल सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड नहीं बल्कि एक्सेलेंस, डिटर्मिनेशन और ग्रेटनेस की मिसाल हैं। उन्होंने रोला गारो को अपना फोर्ट बना दिया और लगभग 2/3 तक उस पर हुक्मरानी की। टेनिस की तारीख में कई अजीम चैंपियंस आए, लेकिन फ्रेंच ओपन पर नडाल जैसी डोमिनेंस किसी ने नहीं दिखाई, इसीलिए उन्हें किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। उनका 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे अजीम रिकॉर्ड्स में शुमार होते हैं और मुमकिन है कि ये रिकॉर्ड आने वाले जनरेशन तक कायम रहे। रफाल नडाल का नाम दोस्तों हमेशा फ्रेंच ओपन के साथ जुड़ा रहेगा और उनके 14 टाइटल्स दुनिया भर के स्पोर्ट्स फैंस के लिए ग्रेटनेस की एक बेमिसाल एग्जाम्पल बने रहेंगे। लेते हैं कि छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
0: वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। और ब्रेक से जाने से पहले हमने जिक्र किया अबाउट रफाल नडाल्स वर्ल्ड रिकॉर्ड 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स। अब दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एथलेटिक्स में आज थोड़ा सा हम रोशनी डालते हैं और एथलेटिक्स के जो रिकॉर्ड है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि किन के नाम है। फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर का 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या दोस्तों, एथलेटिक्स की तारीख में सबसे मशहूर रिकॉर्ड में से एक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर का 100 मीटर स्प्रिंट वर्ल्ड रिकॉर्ड है और अमेरिकन स्प्रिंटर ने उन्होंने ये 1988 में 10.49 सेकेंड्स का वक्त रिकॉर्ड कायम किया था। हैरत की बात यह है कि 35 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद कोई भी फीमेल एथलीट इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकी। फ्लोजो के नाम से मशहूर ग्रिफिथ जॉइनर अपनी रफ्तार और यूनिक स्टाइल की वजह से दुनिया भर में मकबूल हुई। आज भी उनका नाम विमेन स्प्रिंटिंग की तारीख में एक लेजेंड के तौर पर याद किया जाता है और उनका रिकॉर्ड एथलेटिक्स का सबसे मुश्किल चैलेंज माना जाता है। और लेट्स मूव ऑन टू द फुटबॉल पिच एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड गोल स्कोरिंग का जो फीट है वो किसके नाम है। फिलहाल मिरोस्लाव क्लोजे के नाम है और मिरोस्लाव क्लोजे को अभी हाल ही में लियोनेल मेसी ने उनको इक्वल किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज ने सबसे ज्यादा गोल्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। क्लोजे ने 4 वर्ल्ड कप्स में शिरकत करते हुए कुल 16 गोल स्कोर किए। उन्होंने 2014 वर्ल्ड कप के दौरान ब्राजील के रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ा और टूर्नामेंट के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन गए। क्लोजे अपनी पोजीशनिंग, हेडिंग और फिनिशिंग के लिए मशहूर थे। उनका ये रिकॉर्ड वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में एक खास मकाम रखता है। हर नई जनरेशन के स्ट्राइकर्स के लिए 16 वर्ल्ड कप गोल्स का रिकॉर्ड एक बड़ा चैलेंज हमेशा से बना हुआ है। दोस्तों फुटबॉल के बारे में बात तो हो गई थी, एक रिकॉर्ड जो ही है पहले मिरोस्लाव क्लोजे के बारे में जिक्र किया था। अब एक और एक थ्रिलिंग एक एक्साइटिंग फुटबॉलर के बारे में अगर मैं बात ना करूं तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर ये शो जो है अधूरा ही रह जाएगा। तो बात हो रही है लामिन यामाल के बारे में। या दोस्तों लामिन यामाल इस बहुत ही होनहार टैलेंटेड हुनरमंद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सब कोई कह रहे हैं कि ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स जो आने वाले टाइम में He is going to emulate कई records. लामिन यामाल सिर्फ 18 साल के और इसी 18 साल की एज में उन्होंने बार्सिलोना के लिए खेलते हुए कई ऐसे records तोड़े, कई ऐसे performances का मुजाहरा किया और इससे लोगों को साफ लग गया, स्पोर्ट्स फैंस एंड फुटबॉल फैंस को लगने लग गया कि मे बी ही इज़ द नेक्स्ट मेसी। वेल अभी नेक्स्ट मेसी है या नेक्स्ट रोनाल्डो है ये तो कहना मुश्किल है। हाँ, बार्सिलोना में नंबर 10 शर्ट जो है उनको उन्हें दिया गया था आफ्टर मेसी के बाद एंड दैट्स हाउ लामिन यामाल हैज़ बिकम यू नो ऑब्वियसली एट दिस यंग एज लार्जर देन लाइफ पिक्चर एट बार्सिलोना फुटबॉल टीम। अच्छा, अभी हाल ही में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान एक ग्रुप मैच में लामिन यामाल ने स्पेन के लिए खेलते हुए उन्होंने एक गोल स्कोर किया एंड लामिन यामाल का ये फर्स्ट मेडन वर्ल्ड कप में मेडन गोल, यानी पहली मर्तबा उन्होंने वर्ल्ड कप के मैदान पर वर्ल्ड कप के प्लेटफॉर्म पर एक गोल किया। दैट इज़ अ हिस्ट्री, एक तरह से एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ, एक तरह से एक तारीखी गोल रहा है अगेंस्ट सऊदी अरब। उसका रीज़न, उसकी वजह ये है कि सबसे यंगेस्ट, अगर पेले के बाद अगर बात करूं, पेले एट द एज ऑफ 17 प्लस 1958 के वर्ल्ड कप में पेले ने यंगेस्ट गोल स्कोरर का रिकॉर्ड जो है वो पेले के नाम है। लेकिन अगर पेले के बाद अगर कोई सेकेंड यंगेस्ट गोल स्कोरर अगर कोई रहा है या बना है तो ये लामिन यामाल है। लामिन यामाल का ये पहला मैच था क्योंकि फर्स्ट मैच जो है इंजरी की वजह से वो स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं थे, तो ये उन्होंने स्टार्टिंग लाइनअप में थे और उन्होंने मैदान में उतरते ही एक्चुअली सऊदी अरब के केस में 10th मिनट में गोल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। और ये रिकॉर्ड ये है कि यंगेस्ट गोल स्कोरर फॉर हिम और फॉर द स्पेन टीम एंड फॉर द वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, सेकेंड यंगेस्ट स्कोरर आफ्टर पेले। पेले ने 1958 में, जैसे मैंने बताया 1958 में जब स्वीडन में वर्ल्ड कप मुनाकिद हुआ था तो तब पेले साहब ने गोल करके ही बिकेम द यंगेस्ट गोल स्कोरर और आज भी वो रिकॉर्ड है। और यहाँ पे लामिन यामाल इन द मॉडर्न फुटबॉल की बात करूँ तो फुटबॉल वर्ल्ड कप में लामिन यामाल बिकम्स द सेकेंड यंगेस्ट फुटबॉलर टू स्कोर अ गोल फॉर हिज कंट्री। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द गोल्फ कोर्स एंड जहाँ पर आज हम देखेंगे जैक निकलॉस के 18 मेजर टाइटल्स का रिकॉर्ड कैसे हुआ। गोल्फ की दुनिया में जैक निकलॉस का 18 मेजर चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड आज भी सबसे बड़ा बेंचमार्क माना जाता है। अमेरिकन गोल्फर ने अपने करियर के दौरान मास्टर्स, यूएस ओपन, द ओपन चैंपियनशिप और पीजे चैंपियनशिप मिलाकर 18 मेजर टाइटल्स हासिल किए। उनकी कंसिस्टेंसी और प्रेशर में परफॉर्मेंस करने की सलाहियत ने उन्हें गोल्फ हिस्ट्री का अजीम तरीन प्लेयर बना दिया। कई मॉडर्न गोल्फर्स ने इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचने की कोशिश तो की लेकिन अब तक कोई भी उन्हें पार नहीं कर सका और इसी वजह से जैक निकलॉस को गोल्फ का गोल्डन बेयर और एक लेजेंड तस्लीम किया जाता है। Now moving on to the racing track और बात होगी मोटर स्पोर्ट्स की और मोटर स्पोर्ट्स में वैलेंटिनो रॉसी के 89 प्रीमियर क्लास विंस के बारे में आज हम बात करेंगे। मोटर स्पोर्ट्स में वैलेंटिनो रॉसी का मोटो जीपी प्रीमियर क्लास में 89 रेस विंस का रिकॉर्ड बहुत अहमियत रखता है। इस इटालियन राइडर ने अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल्स और कंसिस्टेंसी के जरिए सालों तक मोटो जीपी पर हुक्मरानी की डोमिनेंट। रॉसी ने दुनिया भर में मोटरस्पोर्ट को मकबूल बनाने में भी बड़ा किरदार अदा किया। उनकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी और थ्रिलिंग रेसेस ने लाखों फैंस को मुतासिर किया। 89 प्रीमियर क्लास विक्ट्रीज के साथ रॉसी मोटो जीपी हिस्ट्री के सबसे कामयाब राइडर्स में शुमार होते हैं और उनका नाम मोटरस्पोर्ट्स की तारीख में हमेशा एक लेजेंड के तौर पर याद रखा जाएगा। यहाँ दोस्तों क्रिकेट को लेकर आप सभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो मैंने सोचा कि आज क्रिकेट के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें इंक्लूड कर लूँ, शामिल कर लूँ और ब्रायन लारा को कौन भूल सकता। वेस्ट इंडीज के मशहूर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ब्रायन चार्ल्स लारा और ब्रायन चार्ल्स लारा का 400 नॉट आउट वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी अनब्रोकन है। क्रिकेट की तारीख में वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा का 400 नॉट आउट का टेस्ट रिकॉर्ड सबसे मशहूर बैटिंग रिकॉर्ड में से एक है। लारा ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगा में ये बेमिसाल इनिंग्स खेली थी। उन्होंने पूरे मैच में विकेट ना गवाकर 400 रन स्कोर किए जो आज भी टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन है। इस इनिंग्स में लारा ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसंट्रेशन, टेक्निक और पेशेंस का मुजाहरा किया। कई अजीम बल्लेबाज इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचे लेकिन अब तक कोई भी इसे तोड़ नहीं सका। ब्रायन लारा का 400 नॉट आउट क्रिकेट हिस्ट्री का एक बेमिसाल वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू कैमल रेसिंग। कैमल रेसिंग अरब दुनिया की सबसे पुरानी और मकबूल स्पोर्ट्स में से एक है और इस खेल में कई अजीम कैमल्स ने अपना नाम तारीख में दर्ज करवाया लेकिन बशायर को सबसे मशहूर रेसिंग कैमल्स में शुमार किया जाता है। दोस्तों बशायर ने गल्फ रीजन के कई बड़े मुकाबले जीतकर अपनी गैर मामूली रफ्तार और कंसिस्टेंसी का मुजाहरा किया। कैमल रेसिंग में रिकॉर्ड्स अक्सर मुख्तलिफ फासलों और ट्रैक्स के मुताबिक होते हैं लेकिन एलीट रेसिंग कैमल्स की परफॉर्मेंसेस की स्पोर्ट्स की पहचान बन चुकी हैं। आज कैमल रेसिंग कतर, यूएई और सऊदी अरब में बहुत मकबूल है और नए कैमल्स पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड ऑफ द सेगमेंट जिसमें हम कतर के बारे में बात करते हैं। कतर में जो स्टेडियम है, जो खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम है, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं।

0: है कि भाई ये है क्या चीज। अच्छा जब फंक्शनिंग मतलब जब उसको स्विच ऑन कर दिया गया एसी डक्ट से एसी को स्विच ऑन कर दिया गया तो इट गेव अ कूलिंग सेंसेशन इनसाइड द स्टेडियम। स्टेडियम के कूलिंग सिस्टम ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया बेंचमार्क सेट किया और दुनिया भर के स्टेडियम डिजाइनर्स की तवज्जो हासिल की। सब ने सोचा अरे यार ऐसे ही हमें करनी चाहिए। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम इस इनोवेशन की वजह से मॉडर्न स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग की एक मिसाल माना जाता है और इसने ग्लोबल स्पोर्टिंग वेन्यूज के लिए नए स्टैंडर्ड्स मुकर्रर किए। दोस्तों ये स्टेडियम दुनिया का पहला एयर कंडीशन ट्रैक एंड फील्ड वेन्यू माना जाता है और खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम को देखते ही इसी रीजन में स्पेशली सऊदी अरब में 2034 वर्ल्ड कप होने जा रहा है एंड इसी इन टेक्नोलॉजी को देखते हुए कतर ने वेल अहेड ऑफ द रेस्ट उन्होंने ये टेक्नोलॉजी को बनाया इनबिल्ड किया था इस स्टेडियम में। बिकॉज पहला जो आइडिया था दैट वाज 2022 का वर्ल्ड कप जून में होना बिकॉज मिड जून एंड मिड जुलाई आर द इन ऑटोमेटिक डेट्स फॉर द वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो हमेशा से यही होता रहा है। 2022 में भी ऐसा होना था जून जुलाई में और कतर ने इस तरह के स्टेडियम्स कई एक यू नो एग्जांपल्स सेट किए थे कि इनके पास अलसद स्टेडियम है जहाँ पे एसी फिटेड है थ्रू आउट द फील्ड्स लोगों को या खिलाड़ियों को कुछ भी महसूस नहीं होने वाला है और वहीं खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में भी ये एक मौजूद है जहाँ पर यू नो इट विल गिव यू अ कूलिंग सेंसेशन। आजकल तो कतर में बहुत सारे ऐसे पार्क्स भी हैं जहाँ पे यू फील दैट कूलिंग सेंसेशन। इवन सुक वकीफ में भी है उस दिन में चलते चलते आई वाज फीलिंग इट कि ये ठंड क्यों है यहाँ पे ठंड क्यों है यानी यू फील द रिलैक्सेशन द कूलिंग सेंसेशन। तो देयर इज अ डक्ट एसी डक्ट जो कि ऑन द यू नो ऑन द फ्लोर पर ही लगाया गया है एंड आई थिंक कटारा में भी है एक वन ऑफ द मॉल्स के बाहर जब आप चलते हैं तो यू विल फील दैट ठंडक यू नो यू फील दैट कूलिंग सेंसेशन। सो कतर के पास इस तरह के इंतजाम बहुत हैं टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने स्पोर्ट्स को स्पेशली कहीं लेवल तक जहाँ तक पहुँचाया। आई थिंक दैट हैज़ बिकम अ बेंच मार्क फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज स्पेशली जैसे मैंने बताया इस खत्ते में बहुत सारे इवेंट्स जून जुलाई में किए जाते हैं। इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना समर टाइम में बड़ा ही मुश्किल होता है स्पेशली ट्रैक एंड फील्ड की बात कर रहा हूँ फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। ट्रैक एंड फील्ड और फुटबॉल ये दोनों इवेंट जो है दिन के टाइम में या शाम के टाइम में होता है तो इसको थोड़ा सा प्लेयर्स बेनिफिट या फैंस के लिए बेनिफिट थोड़ा फराहम करने के लिए कतर ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया एंड खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ने सबको चौंका दिया एंड आई बिलीव दैट कतर बिलीव्स इन द बेस्ट इन स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों आज के स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने जाना कि किस तरह राफेल नडाल ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए स्पेन का नाम रोशन किया और ये रिकॉर्ड दोस्तों सिर्फ नंबर्स का नहीं ये लीडरशिप कॉन्फिडेंस और एक्सेलेंस का रिकॉर्ड है। राफेल नडाल 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स अनबीटेबल अनब्रेकेबल। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। अगले किस्त में हम किसी और अजीम स्पोर्ट्स रिकॉर्ड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: अरे मौसी जी कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107 दिल से देसी।
3: दोस्तों लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। विदारत दाखला का कहना है स्टे सेफ ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक, टाइम
2: चेक, चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं 1:30। मैं हूँ आपकी फरमीत, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन द शो।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमीता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है। हाँ जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूँ आपकी फरमीता और एस्केप रूम में आज क्या चैलेंज होने वाला है भाई साहब। वैसे जब पहले के ज़माने में इमरजेंसी लाइट्स वगैरह नहीं होती थी और एकदम से जब बिजली चली जाती थी तो कैसी फीलिंग आती थी ना, हाय सब कुछ डार्क हो गया, समझ नहीं आ रहा, और रात के वक्त बड़ी जान निकलती थी। फिर कोई कैंडल ढूंढ रहा है, कोई टॉर्च ढूंढ रहा है, एंड देन जाके जब वो एक हल्की सी रोशनी हमें दिखाई देती थी ना, बड़ा सुकून आता था। लेकिन आज ये रोशनी आपको तभी दिखेगी एक पूरे डार्कनेस में जब आप क्लूज को सॉल्व करेंगे, समझ गए। तो आज आप कैद होने वाले हैं एक डार्क रूम में, तो थोड़ा सा लंबी गहरी सांस लो, अपने आप को प्रिपेयर करो क्योंकि एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद उफ चैलेंज बड़ा कमाल का होने वाला है। सो 666-22-107 666-22-107 इज आर नंबर, इसके जरिए हमारी बातचीत कंटिन्यूसली रहने वाली है। सो बी प्रिपेयर, चाहे जूस पिए, पानी पिए या फिर करक पिए, कॉफ़ी पिए, जो भी करना है अभी कर लो क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ है जो तेज़ी से चलेगी और वो है सिर्फ आपका दिमाग। और यहाँ हिट हिट गानों का सिलसिला भी जारी रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: यस माय देसी ऑडियंस, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप। और भाई सीरियस म्यूजिक शुरू हो चुकी है, यानी टाइम है आज के एस्केप रूम के चैलेंज का। तो आप बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे, एंड जब आपकी आंखें खुली तो अपने आप को आपने घर में नहीं किसी ऐसी जगह में पाया जहां पर लाइट का या यूं कहें बिजली का नामो निशान नहीं है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। यस, इस जगह पर आपकी आंखें आपको धोखा देंगी, मगर याद रखिए इस अंधेरे में आपका ब्रेन ही है जो आपकी फ्लैशलाइट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर ना आपको अब पैर नज़र आ रहे हैं, हाथ नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। वेल, हेल्थ लाइन के मुताबिक आपकी जो आंखें हैं इस वक्त रॉड्स का इस्तेमाल करके रोशनी की एक नन्ही सी किरण तलाशने की जद्दोजहद कर रही है, मगर अफसोस यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। अगर आप पार को ऑन करके लाइट्स लगाना चाहते हैं, मतलब रोशनी लाना चाहते हैं और यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सिर्फ लॉजिक ही है जो आपका सहारा होने वाला है। वेल, आप अपना हाथ इस खालीपन में, इस वॉइड में आगे बढ़ाते हैं और हवा आपको महसूस होती है जो कि बड़ी भारी है, बोझिली है, और इस अनजाने खौफ पर जीत हासिल करने के लिए आपको पहले उसका नाम बताना होगा जिसने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। सो आर यू रेडी? क्लू नंबर 1 आपके लिए आ चुका है। मैं कोई चीज नहीं हूं, फिर भी मैं इस कमरे में भरा हूं। मैं कोई वजन नहीं हूं, लेकिन मैं दुनिया को बोझिला बना सकता हूं। मैं जितना ज्यादा हूंगा आप उतना ही कम देख पाएंगे। बताइए मैं क्या हूँ? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्लू। कम ऑन गाइस, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अपना नाम लिखिए, 666-22-107, 666-22-107 पर जवाब दीजिए। मैं क्लू नंबर 1 फिर से दोहराती हूँ कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, फिर भी मैं इस कमरे में भरा हूँ। मेरा कोई वजन नहीं है, लेकिन मैं दुनिया का बोझ भी उठा सकता हूँ, या यूँ कहें दुनिया को एक बोझ की तरह एहसास दिला देता हूँ। मैं जितना ज़्यादा होऊंगा आप उतना ही कम देख पाएंगे। बताइए मैं क्या हूँ? जनाब, आप आज एक डार्क रूम में, या यूँ कहें एक ऐसी जगह में बंद हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, और इस क्लू पर गौर फरमाइए और सही जवाब हमें दीजिए। और जवाब देने के लिए, सोचने के लिए मैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक में ले जाती हूँ, तो एंजॉय कीजिए। स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हाँ जी, तो मेरी देसी ऑडियंस क्या हाल चाल है। आई एम श्योर कि आपने इस म्यूजिकल ब्रेक को खूब एंजॉय किया होगा। अब इस मुस्कुराहट को थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि अब चैलेंज का वक्त हो चुका है। तो एस्केप रूम का आज का चैलेंज बड़ा ही डार्कनेस से भरा हुआ है। हाँ जी, आप सो रहे थे, आपकी आंख खुली तो आपने अपने आप को एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में पाया। एक ऐसी अंधेरी जगह जहां पर आपको ना आपके हाथ दिखाई दे रहे हैं, ना पैर दिखाई दे रहा है, रोशनी की किरण भी नहीं है। आपकी जो आंखें हैं वो रोशनी की तलाश कर रही हैं, जद्दोजहद कर रही हैं। आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया, खालीपन है इस वॉइड में, आगे बढ़ते गए और हवा में भी एक भारीपन महसूस हो रहा है। इस अनजाने से खौफ पर अगर हमें जीत हासिल करनी है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे क्लूज मिले आप उसे सॉल्व करते जाएं। तो क्लू नंबर वन कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, फिर भी मैं इस कमरे में भरा हूँ। मेरा कोई वजन नहीं है लेकिन मैं दुनिया को बोझिला बना सकता हूँ। मैं जितना ज़्यादा होऊंगा आप उतना ही कम देख पाएंगे। बताइए क्या है। कुछ लोगों ने रोशनी लिखा है, मेरे ख्याल से लोग कंफ्यूज हो गए। कुछ ने लिखा है अंधेरा, कुछ ने लिखा है डार्कनेस। सो जनाब, अगर आपने लिखा है रोशनी तो भाई देखो रोशनी की तलाश करनी है, लेकिन इस वक्त सही जवाब इज अंधेरा एंड डार्कनेस। जोरदार तालियां उनके लिए जिन्होंने सही जवाब दे दिया है। क्या बात है, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। क्लू नंबर वन सॉल्व कर लिया है। आइए जरा देखें जिन्होंने हमें सही जवाब दिए उनके नाम क्या है। उनके नाम है खलील, मोहम्मद, आकाश, रौनक, और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिए हैं। आइए जरा उनके नाम भी हम यहाँ देख लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ खान, वन ऑफ आर रेगुलर लिसनर, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। आफ्ताब पठान, मोहम्मद याकूब अली, और कौन है, फहद ने भी हमें सही जवाब दिया है, और ये है मोहम्मद अब्दुल कोरिम। ठीक है भाई, आप सभी ने सही जवाब दिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई देखिए जब भी आप जवाब दें अपना नाम ज़रूर साथ में लिखें। ओके, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अंधेरा डार्कनेस। अब जब आपने इसे पहचान लिया तो आप थोड़ा और बेहतर महसूस कर रहे हैं। अब आप थोड़े फैमिलियर हो गए अंधेरे से और अंधेरे ने आपको अपना लिया, मतलब आपको जो डर लग रहा था वो ख़त्म हो गया है। देखो ये थॉट आना बहुत ज़रूरी है अगर हमें एस्केप रूम के इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ठीक है, अब क्या हुआ आगे। अब आप आगे बढ़े, आप अपना हाथ अपनी जेब में डालते हैं। ठीक है, आपने बेसिकली लोअर्स पहने हुए हैं जिसमें जेबें हैं, तो आप जब अपना हाथ जेब में डालते हैं और वहाँ आपको एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलता है, उसके अंदर लकड़ी की कुछ पतली पतली सी तीलियाँ हैं। पेश है आपका क्लू नंबर टू। मैं एक लकड़ी की छोटी सी तीली हूँ जो एक कार्डबोर्ड के डिब्बे में रहती है। अगर आप मेरे केमिकल वाले सर को मेरे घर की खुरदरी दीवार पर रगड़ोगे तो मैं एक झटके में जल उठूंगी और एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ सूरज बन जाऊंगी। बताएं मैं क्या हूँ। देखिए, आई कैन सी कि मेरे जो व्हाट्सएप है उस पे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, पर मैं कहूँगी इतनी जल्दबाजी ना करें, पहले क्लू नंबर टू को ध्यान से सुने। आप जवाब सही दे रहे हैं और कुछ जवाब में उलझ रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक लकड़ी की छोटी सी तीली हूँ जो एक कार्डबोर्ड के डिब्बे में रहती हूँ। अगर आप मेरे केमिकल वाले सर को मेरे घर की खुरदरी दीवार पर रगड़ेंगे तो मैं एक झटके में जल उठूंगी और एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ सूरज बन जाऊंगी। मैं क्या हूँ। ठीक है, तो चीज़ क्या है उसके बारे में सही बताओ, नाम लिखो अपने नाम के साथ 6622107 पर 6622107, एंड लेट मी सी कि आप में से कितने लोग आज क्लू नंबर टू सॉल्व कर पाते हैं। और अभी वॉल्यूम बढ़ाओ यार, थोड़ी एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए। कमाल के गाने आपके लिए लाइंड अप है, सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जनाब, एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हो रहे हैं 2:03।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देखिए।
2: हाँ जी माय देसी ऑडियंस, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप। हमारे लिसनर्स हैं हमारे मोहम्मद यूसुफ खान, लिख रहे हैं कि अमीदा आपकी आवाज़ में अभी भी वो सर्दी एहसास हो रही है, सर्दी का एहसास हो रहा है। भाई देखो, अभी जुकाम और ये जो फ्लू होता है ना, ये टाइम लेता है।

0: इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कुछ भी हो जाए अपना ख्याल जरूर रखें। और इस वक्त चैलेंज का टाइम भाई, एस्केप रूम चैलेंज चल रहा है। और आज जब हमारी आंखें खुली तो हमने अपने आप को एक बड़े से अंधेरे कमरे में पाया। अब यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ यही रास्ता है कि एक से बढ़कर एक हमें जो क्लूज मिलते जाएंगे उसे सॉल्व करना है। पहले क्लू का सही जवाब आपने दिया, अंधेरा, डार्कनेस। दूसरे क्लू में हमारे लिसनर्स हो रहे थोड़े कंफ्यूज। दूसरा क्लू ये है कि मैं एक लकड़ी की छोटी सी तीली हूँ जो एक कार्डबोर्ड के डिब्बे में रहती है, ठीक है। अगर आप मेरे केमिकल वाले सर को घर की खुरदरी दीवार पर, मतलब उसके घर की खुरदरी दीवार पर रगड़ेंगे ना, तो मैं एक झटके में चल उठूंगी और एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ सूरज बन जाऊंगी। मेरा नाम क्या है? तो हमारे लिसनर्स लिख रहे हैं, कुछ ने लिखा है मैच बॉक्स, कुछ ने लिखा है माचिस का डिब्बा, कुछ ने लिखा है फायर बॉक्स, कुछ ने लिखा है मैच स्टिक, कुछ ने लिखा है मैच, और कुछ ने लिखा है माचिस की तीली। भाई सही जवाब यही है, मैच, मैच स्टिक, माचिस की तीली, माचिस का डिब्बा नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया, जोरदार तालियां आपके लिए। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मैंने कहा था जरा गौर से सुनिए हमारा क्लू नंबर टू, कि इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो गई तो चलो कोई नहीं, बनता है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा तो फिर एस्केप रूम में मज़ा कैसे आएगा, है कि नहीं। तो जिन्होंने सही जवाब दिया, आइए ज़रा उनके नाम एक एक करके हम देख लेते हैं कौन कौन है जिन्होंने सही जवाब देने की हमें कोशिश की है। मोहम्मद अब्दुल, इन्होंने सही जवाब दिया है, और रमेश ने सही जवाब दिया है, मुकुल ने भी हमें सही जवाब दिया है, और कौन कौन है, अहमद, अहमद ने भी हमें सही जवाब दिया है। यहाँ मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जब आप आंसर दें अपने नाम भी साथ में लिखें। काजिम ने भी सही जवाब दिया है, और कौन है, और कौन है जिन्होंने सही जवाब देने की कोशिश की है, मोहम्मद मुशीर आलम ने भी हमें सही जवाब दिया है, रौनक ने भी सही जवाब दिया है, खलील आकाश ने भी सही जवाब दिया है। सो गुड जॉब गाइस। और अब आगे बढ़ने का वक्त। तो जैसे ही आपने ये सही जवाब दिया, अब आपके हाथ में माचिस का जो डिब्बा है वो आ गया, माचिस की तीलियाँ आ गई, तो वो नन्ही सी जो तीली है उसे आपने जला ली, ठीक है। अब ये जो छोटी सी फ्लेम है ये आपके हाथ में नाच रही है, एंड यू कैन सी उस कमरे में एक नज़र आपको आ गई कि कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। आप देखते हैं कि छत के बीच से एक तार लटक रहा है और उसके आखिर में एक गोल कांच की चीज़ है। वो अभी ठंडी है लेकिन उसके अंदर सूरज की ताकत छुपी है। एंड हियर कम्स योर क्लू नंबर थ्री। मैं एक ग्लास बल्ब हूँ जो तब चमकता है जब मेरे फिलामेंट से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। मैंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है और मशहूर इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने मुझे हर घर तक पहुंचाया है। बताओ मैं क्या हूँ? चलें बताएं, सही जवाब दें 6662107 पर, 6662107 पर अपने नाम के साथ। एंड लेट मी सी आप में से कितने लोग इस तीसरे पड़ाव को पार कर पाते हैं। सो गिव मी द राइट आंसर, और अभी कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।
1: Mixing in the house.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: हाँ जी, वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता, एस्केप रूम चैलेंजेस ऑन। और आज फंसे हैं हम एक अंधेरे कमरे में जनाब, मतलब एक ऐसा अंधेरा जो हमने कभी महसूस नहीं किया। हमेशा हम कम रोशनी वाली जगहों में रहे, लेकिन जब टोटल अंधेरा हो जाता है तो थोड़ी सी जान निकल जाती है कि नहीं। लेकिन अब इस घनघोर अंधेरे वाले कमरे से अगर हमें बाहर निकलना है तो एक एक करके हमें क्लूज सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पहले क्लू का सही जवाब था डार्कनेस, मैचस्टिक, माचिस की तीली। हमने सब ने अच्छे से जवाब दे दिया, मतलब पहले और ये दूसरे क्लू का सही जवाब। अब आया तीसरा क्लू, जहाँ पर हमारे लिसनर्स टोटली अटक रहे हैं। भाई देखो, बहुत सिंपल है, ठीक है। जो आप जवाब दे रहे हैं ना, वो खाली जवाब ना दें, उसका नाम बताएं। हाँ, यस। तो क्लू नंबर 3 एक आखिरी पड़ाव है, इसके बाद आप सीधा इस कमरे से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, गले की खराश के लिए थोड़ी माजरा चाहूंगी। सो क्लू नंबर 3 इज, मैं एक ग्लास बल्ब हूँ जो तब चमकता है जब मेरे फिलामेंट से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। मैंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है और मशहूर इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने मुझे हर घर तक पहुँचाया है, ठीक है। इस क्लू में ऑलरेडी ग्लास बल्ब का जिक्र है, अब आपको मैं कहूँगी उस बल्ब का नाम क्या है, ठीक है। सो बल्ब का नाम बताएं, सिर्फ बल्ब लिखकर जवाब ना दें, ठीक है। सो 666-22-107, 666-22-107 इज आवर नंबर, इस पर अपने नाम के साथ सही जवाब दें और आखिरी पड़ाव इसे पार कीजिए। और अभी एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ हम रुक करते हैं। स्टे ट्यून टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: देसी ऑडियंस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और एस्केप रूम का बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है भाई। देखो, एक अंधेरे कमरे में हम कैद हो गए थे, वहाँ से निकलने के लिए हमें 3 क्लूज सॉल्व करने थे। पहले क्लू का हमने सही जवाब दिया अंधेरा, डार्कनेस। दूसरे क्लू का भी हमने सही जवाब दिया मैच स्टिक, माचिस की तीली। तीसरे क्लू में हमारे लिसनर्स बड़े मज़ेदार जवाब भी दे रहे हैं। चलिए तीसरा क्लू मैं दोहराऊंगी और इसके बाद हम सीधा यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ओके? तो मैं एक ग्लास बल्ब हूँ जो तब चमकता है जब मेरे फिलामेंट से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। मैंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है और मशहूर इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने मुझे हर घर तक पहुँचाया है। तो मेरा नाम क्या है? अधिकतर हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने लिखा है बल्ब। देखिए, मैंने कहा था सिर्फ बल्ब लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको नाम बताना पड़ेगा। फिर हमारे लिसनर्स ने लिखा लाइट बल्ब, कुछ ने लिखा इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि सही जवाब है। और एक और चीज़ है, हमारे एक लिसनर्स हैं, कुछ लिसनर हैं जिन्होंने लिखा है, ये नाम लिख के दिया है, दैट इज इनकैंडेसेंट बल्ब। ठीक है, देखिए ये जो पर्टिकुलर बल्ब है ना, ये किसी एक शख्स ने नहीं बनाया, थॉमस एडिसन के साथ कई सारे क्रिएटर्स थे, हर किसी ने अपना अपना एक वर्जन बनाया और उसके बाद ये इनकैंडेसेंट लैंप या इनकैंडेसेंट बल्ब जो है वो सामने आए। तो सही जवाब इज लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। और जिन्होंने सही जवाब दिया, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, क्या बात है। आइए एक एक करके उनके नाम भी आपको बताएं। मोहम्मद यकूब अली, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। यहाँ पर कुछ बड़े मज़ेदार जवाब आ रहे हैं। किसी ने उजाला लिखा है, किसी ने बैम्बू लिखा है। भाई कौन से जवाब दे रहे हैं आप लोग? सरताज ने सही जवाब दिया है। यहाँ पर असलम ने भी हमें सही जवाब दिया है। देखिए, जिन्होंने इनकैंडेसेंट कहा था ना, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जवाब भी हम शामिल करेंगे, बिकॉज इनकैंडेसेंट का फर्स्ट वर्जन थॉमस एडिसन ने बनाया और साथ में और क्रिएटर्स ने भी बनाया। तो चलो यहाँ पर एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट दे देती हूँ मैं आपको। अब रौनक, आकाश, मोहम्मद, खलील सब ने सही जवाब दिया। और जब आपने सही जवाब दिया तो एकदम से ये जो लाइट बल्ब था ये तेज़ी के साथ जला और उसके बाद एक तेज़ रोशनी से पूरा कमरा भर गया। तो भाई मुबारकबाद। और जैसे ही ऐसा हुआ, आपको उस अंधेरे कमरे के कोने में एक छोटा सा एग्जिट डोर दिखा, आप सीधा वहां से बाहर निकले, रोशनी की दुनिया में आ गए। एंड नाउ यू फीलिंग जस्ट अमेजिंग। हाँ जी, तो आज हमारी इस अंधेर नगरी से जो बाहर निकले हैं हमारे आज के ब्राइट स्पार्क ऑफ द डे, क्या नाम है उनका, जो बने हैं आज के हमारे लकी विनर, उनका नाम है खलील। हाँ भाई, मुबारकबाद है जनाब आपको, कमाल कर दिया आपने, लगातार सही जवाब देते रहे, लगातार हमारे साथ बने रहे और आज इस अंधेर नगरी से बाहर निकल गए। गुड जॉब। बोल हमारे सारे लिसनर्स जिन्होंने आज एस्केप रूम को बिल्कुल शानदार बनाया, उस हमारे शो में जान डाली, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। और बस अब वक्त है मेरे जाने का, आपकी मेरी मुलाकात कल होगी दोपहर 1:30 बजे एस्केप रूम में, तो ज़रूर मिलिएगा। और अगर इस दौरान आपको हमारी याद आ जाए तो FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाए और अपनी आर जमीता को भी सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं। फिलहाल मैं जाती हूँ, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीती हूँ, क्या है ना, सर्दी जुकाम से बचने के लिए बेस्ट चीज़ है। और आप भी अपना ख्याल रखिए और जाते जाते ये कहना तो बनता है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।
1: Welcome to the world of DMNCM, बड़े मियां।
0: Stay tuned to FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ इको स्विच ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन एवरीडे चॉइसेस की जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। भाई हमारा आज का टॉपिक है इको फ्रेंडली ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यानी ऐसे स्किन केयर, मेकअप और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स, सस्टेनेबल पैकेजिंग और लो वेस्ट प्रोडक्शन के साथ बनाए जाते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम सब यूज करते हैं साथियों, लेकिन कभी आपने सोचा है कि भाई एक फेस वॉश, शैम्पू बॉटल या लिपस्टिक, इनका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या होता होगा? इको स्विच हमें याद दिलाता है कि रियल ब्यूटी सिर्फ आउटर ग्लो नहीं होता, बल्कि रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस में भी होता है। साथियों जरा सोचिए ना, आपका बाथरूम का शेल्फ फुल है, यानी कि शैम्पू बॉटल्स, बॉडी वॉश, फेस क्रीम हो गई, स्क्रब्स हो गए, सब कलरफुल प्लास्टिक पैकेजिंग में अच्छे अच्छे लगते हैं पड़े हुए ना। हर मंथ या आप कह लें कि हर 2 मंथ्स में न्यू बॉटल्स ऐड होती रहती हैं। आप इमेजिन करें कि वही प्रोडक्ट्स अगर सॉलिड शैम्पू बार्स, रिफिल पैक्स या ग्लास कंटेनर्स में हो, तो कितना प्लास्टिक का वेस्ट कम हो सकता है ना, है कि नहीं? देखिए इको स्विच पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, अगर हम देखें तो सिर्फ 3 से 4 प्रोडक्ट्स की स्विचिंग से आप अपना एनुअल प्लास्टिक वेस्ट सिग्निफिकेंटली, उसका पोर्शन आप रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा चलिए मैं आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ ब्यूटी इंडस्ट्री के हिडन फुटप्रिंट का, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। साथियों ग्लोबल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हर साल बिलियंस ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर बॉटल्स का एनुअल प्लास्टिक वेस्ट मिलियंस ऑफ टन्स तक एस्टिमेट किया जाता है। एक एवरेज ब्यूटी प्रोडक्ट पैकेजिंग को डिग्रेड होने में आप कह लें कि 100 से 500 साल तो लगभग लग ही जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्यूटी इंडस्ट्री का कार्बन प्रिंट एविएशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ कंपेयर किया जाता है ड्यू टू मास प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड ग्लोबल शिपिंग। अच्छा इको स्विच का यहाँ आइडिया बड़ा सिंपल है, ब्यूटी को सस्टेनेबल बनाना। देखिए जब हम इको फ्रेंडली ब्यूटी प्रोडक्ट्स चूज करते हैं ना, तो हम प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल पोल्यूशन और वाटर कॉन्टेमिनेशन रिड्यूस करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर 25% कंज्यूमर इको ब्यूटी प्रोडक्ट्स अडॉप्ट करें तो ग्लोबल पैकेजिंग वेस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है, और वो भी स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक ट्यूब्स और बॉटल्स में। अच्छा अगर एक रिलेटेबल एग्जांपल लेना डेली लाइफ की, तो जरा सोचिए सुबह आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, ठीक है, फेस वॉश किया, मॉइस्चराइजर यूज किया, सनस्क्रीन यूज की वगैरह वगैरह, अल्लम गल्लम, ठीक है। हर प्रोडक्ट एक प्लास्टिक कंटेनर में आता है कि नहीं, जो कुछ महीनों बाद जब वो खत्म हो जाता है प्रोडक्ट, तो आप उस कंटेनर के साथ क्या करते हैं, लेकर घूमेंगे तो नहीं, आप उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। अब इको स्विच अप्रोच ये कहती है कि अगर आप सेम रूटीन इको फ्रेंडली फॉर्मेट में शिफ्ट करें ना, जैसे रिफिलेबल कंटेनर्स या सॉलिड बार्स, तो भाई सेम रूटीन का एनवायरमेंटल इंपैक्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। चलिए अब कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हम सब फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज ये, सॉलिड ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करें, जैसे सॉलिड शैम्पू बार्स और सोप्स। दूसरा, रिफिलेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स चूज करें जहां पॉसिबल हो। तीसरा, ग्लास या रिसाइक्लेबल पैकेजिंग वाले ब्रांड्स प्रेफर करें। चौथा, मल्टीपल पर्पस प्रोडक्ट्स यूज करें ताकि ओवर कंजम्पशन कम हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रुएल्टी फ्री और नेचुरल इंग्रेडिएंट लेबल्स चेक करें। साथियों देखें इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि ब्यूटी का मतलब ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करना नहीं, बल्कि स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट चूज करना है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग मिनिमलिस्ट स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, उनका वेस्ट आउटपुट और स्पेंडिंग दोनों कम हो जाती है और

0: की रूटीन ज्यादा कंसिस्टेंट होती है। तो भाई आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है कि भाई ब्यूटी सिर्फ मिरर में नहीं बल्कि हमारी चॉइसेस में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। हर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो हम चूज करते हैं वो प्लेनेट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप होता है। तो भाई अगली बार जब आप ब्यूटी प्रोडक्ट चूज करें तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। इज दिस प्रोडक्ट गुड फॉर मी एंड द प्लेनेट? इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर ग्लो सिर्फ स्किन का नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी का भी होता है। बने रहिए हमारे साथ ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है बच्चों के साथ हुस्न सलूक। बच्चे सोसाइटी का मुस्तकबिल होते हैं, उनके साथ प्यार, सब्र और रहमत का रवैया अख्तियार करना बहुत जरूरी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि बच्चों के साथ नरमी से पेश आएं और उनकी तरबियत प्यार के साथ करें। अक्सर लोग बच्चों की गलतियों पर सख्ती करते हैं, लेकिन असल में उन्हें समझाना और उनका हौसला बढ़ाना ज्यादा जरूरी होता है। प्यार भरा रवैया बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करता है और उनकी शख्सियत को बेहतर बनाता है। जब हम बच्चों के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो हम एक मजबूत और मेहरबान माशरा कायम करते हैं। आज का अमल ये है कि किसी बच्चे के साथ वक्त गुजारें, उसकी बात सुनें और उसे अप्रिशिएट करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
3: दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें। ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से ना सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: फ्यूचर में पेमेंट इतनी सीमलेसली हो सकेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अभी आप किसी भी राइड पे जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कितना आसान होता है आपके लिए खटाक से पेमेंट करना। तो भाई यही कुछ दौर आने वाले वक्त में भी एक्सपीरियंस करेंगे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है सवाल कि क्या कैश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जवाब है कि कुछ कंट्रीज में कैश ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन ग्लोबली अभी भी बहुत लोग जो हैं वो कैश प्रेफर करते हैं। रियलिटी ये है कि पूरी दुनिया एक जैसी तो नहीं है। कुछ जगह टेक्नोलॉजी फास्ट अडॉप्ट हो रही है और कुछ कंट्रीज में थोड़ा स्लो। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर कैशलेस होगा, लेकिन नो कैश शायद हर जगह पॉसिबल नहीं। डेली लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। वॉलेट्स की जगह फोन इम्पोर्टेंट होंगे, बैंक ब्रांच की जगह मोबाइल एप्स इम्पोर्टेंट होंगी, लाइन में खड़े होने की जरूरत कम हो जाएगी, स्मॉल वेंडर्स भी डिजिटल पेमेंट यूज करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोसाइटी को बैलेंस मेंटेन करना होगा, टेक्नोलॉजी भी यूज हो और ट्रेडिशनल मेथड्स भी अवेलेबल हो, क्योंकि हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता ना। जी हाँ, कैशलेस सोसाइटी के एक्साइटिंग फ्यूचर का पार्ट तो है। ये हमें स्पीड, कन्वीनियंस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी हैं, चाहे प्राइवेसी का हो, एक्सेस का हो, सिक्योरिटी का हो। इसीलिए कहना सही होगा कि फ्यूचर कैशलेस की तरफ जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से कैश खत्म हो शायद ये कॉन्सेप्ट अभी दूर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम टेक्नोलॉजी को समझें और उसे स्मार्टली अडॉप्ट करें। आखिर में सवाल ये नहीं करें कि कैश खत्म होगा या नहीं, सवाल ये है कि हम नए सिस्टम के लिए कितने रेडी हैं या नहीं। फिलहाल इसी हाना पर मैं आपसे इजाजत लूंगी। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो संतरी FM 107, दिल से देसी। One step to 2020.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

था, फिर अचानक एक और मंजर उनकी आंखों के सामने आ गया। वो थे मुसअब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु। मुसअब इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के के सबसे खुशहाल नौजवानों में शुमार होते थे। कीमती लिबास, खुशबू, आराम व आसाइश, हर नेमत उन्हें हासिल थी। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके वालिदैन ने उन्हें घर से निकाल दिया। नेमतें छिन गईं मगर ईमान न छूटा। फिर मदीना हिजरत की, इस्लाम की दावत दी और ग़ज़वा उहुद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा उठाते हुए शहादत का अजीम मकाम पाया। शहादत के बाद जब उन्हें कफन देने का वक्त आया तो सिर्फ एक चादर मुयस्सर थी। अगर उसे उनका सर ढांपा जाता तो पांव खुल जाते और अगर पांव ढांपे जाते तो सर नजर आने लगता। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर को चादर से ढांप दो और पांव पर इज़खिर घास रख दो। सहाबी किराम जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सब याद किया तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने फरमाया, मुसअब इब्ने उमैर मुझसे बेहतर थे मगर उनके कफन के लिए भी पूरा कपड़ा न था। पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुनिया को बहुत कुशादा कर दिया। मुझे डर है कि कहीं हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया ही में तो नहीं दे दिया गया। ये कहते कहते वो रोने लगे, इतना रोए कि सामने रखा हुआ खाना भी न खा सके। समझ कराम, ये दुनिया से नफरत का खौफ नहीं था, ये अल्लाह ताला से मोहब्बत का खौफ था। उन्हें डर था कि कहीं दुनिया की आसाइशें हमें आखिरत से गाफिल न कर दें। यही वजह है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नेमत मिलने पर खुश जरूर होते थे लेकिन उसके साथ अल्लाह के सामने जवाबदही को भी याद रखते थे। सामने किराम, ये हदीस हमसे ये सवाल करती है, क्या हम खाना खाते वक्त कभी अहले गज़ा को भी याद करते हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं? क्या नए कपड़े पहनते वक्त हमें उन लोगों की याद आती है जिनके पास पहनने को मुनासिब लिबास भी नहीं? अगर ये एहसास जिंदा रहे तो नेमत इंसान को अल्लाह से दूर नहीं बल्कि अल्लाह के करीब कर देती है। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मअ अस्सलामा।

कोर्डोबो उस वक्त अंडलुसिया का एक बहुत बड़ा और इल्म का मरकज था। अल-ज़हरावी का इल्म और उनकी तिब्बी खोजें न सिर्फ अपने दौर के लोगों की मदद के लिए आगे आईं, बल्कि उनके कामों का असर आज तक हमारे लिए जिंदा है। समाइन, अल-ज़हरावी ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सर्जरी और इल्मी तहकीकात में गुजारा। उन्होंने सर्जरी के बहुत से ऐसे तरीके डेवलप किए जो उस वक्त के लिए बिल्कुल नए थे। उनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि उन्होंने सर्जरी के एक बहुत बड़े तरीके को पहचाना, जिसमें जख्मों का इलाज, छोटी और बड़ी सर्जरीज और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स शामिल थीं। उन्होंने जो काम किया उसने ना सिर्फ उस वक्त में इल्म का दायरा बढ़ाया, बल्कि आज तक हम उसी इल्म से फायदा उठा रहे हैं। समईन, अबू अल कासिम अल-ज़हरावी की जिंदगी एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। उन्होंने अपनी तालीम शुरू करने के बाद सबसे पहले बेसिक मेडिसिन को समझना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे जैसे उनका इल्म बढ़ता गया, उन्होंने सर्जरी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। आप सोच सकते हैं कि इस दौर में सर्जरी करना कितना मुश्किल था। मशीन्स का तो कोई सवाल ही नहीं था और मेडिकल नॉलेज भी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, लेकिन अल-ज़हरावी ने अपने तजुर्बात और टेक्निक्स को रिफाइन किया जो उन्हें एक बेमिसाल सर्जन बना देती हैं। ज़हरावी ने सर्जरी की बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हुए टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को भी तैयार किया। आज अगर हम सर्जन्स के इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, भाई जैसे कि स्कैल्पल्स, फोरसेप्स या स्यूचर्स, तो हम इन्हें बहुत कॉमन समझते हैं, लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने का शौक और काम उन्हीं का था। उन्होंने अपने इल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी सबसे मशहूर किताब किताब अल तसरीफ में लिखा, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड थी सर्जरी और मेडिसिन के बारे में। ये किताब उस वक्त के बहुत से डॉक्टर्स और सर्जन्स के लिए एक बेसिक रेफरेंस बन गई थी। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने सर्जरी को एक साइंटिफिक अप्रोच दी। उन्होंने सर्जरी के कई तरीके समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स का यूज किया। जैसे अगर किसी पेशेंट का हाथ या टांग काटना पड़ता है, तो उन्होंने इस प्रोसेस को इतना रिफाइंड बनाया कि आज हम उसे मॉडर्न एम्प्यूटेशन टेक्निक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए FM 107। दोस्तों, आपकी सेफ्टी के लिए रोड सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें और ट्रैफिक सिग्नल्स का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें ना सिर्फ पेडेस्ट्रियन बल्कि ड्राइवर्स और अथॉरिटीज भी शामिल हैं। हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखें और सिग्नल का इंतजार करें। अगर आपको क्रॉसिंग का वक्त मिल रहा हो तो उसका फायदा उठाएं और सेफली रोड क्रॉस करें। ट्रैफिक रूल्स का तायुन कर सबकी जिम्मेदारी है। जब भी आप रोड पार कर रहे हों, अपने सफर को इंतहाई एहतियात और आराम के साथ पूरा करें। कभी भी जे वॉकिंग ना करें और हमेशा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। ड्राइवर्स को भी ये जरूरी है कि वो पेडेस्ट्रियन का ख्याल रखें और उन्हें क्रॉस करने का मौका दें। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखें और रोड पर हर वक्त एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। वेलकम बैक, अहलन व सहलन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। समीन, अगर हम अल-ज़हरावी के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, तो उन्होंने सर्जरी के बहुत से एरियाज में इनकलाब ला दिया था। उन्होंने पहली बार सर्जिकल प्रोसीजर्स में असेप्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जो आज की मॉडर्न सर्जरी का

इंटीग्रल हिस्सा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने इन्फेक्शन से बचाव के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करना स्टार्ट किया और सर्जरी के दौरान सफाई को इंश्योर करना उनकी इनोवेशंस में शामिल था। दोस्तों, ज़हरावी ने अपनी किताब अल तसरीफ में न सिर्फ सर्जिकल टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया बल्कि उन्होंने बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर भी डिटेल्ड रिसर्च की। उन्होंने ह्यूमन बॉडी का बहुत गहरा जायजा लिया और हर एक ऑर्गन और सिस्टम का एनालिसिस किया। इस डिटेल्ड एनालिसिस से उन्होंने बहुत सी सर्जरी टेक्निक्स को रिफाइन किया, जैसे कि आई सर्जरी और डेंटल सर्जरी। आज भी जब हम डेंटल सर्जरी की बात करते हैं तो ज़हरावी के नाम को रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। उन्होंने डेंटल टूल्स को भी तैयार किया था और उनके मेथड्स ने दांतों की सर्जरी और उसका इलाज एक नई डायरेक्शन में डाल दिया। दोस्तों, उनकी सर्जरी टेक्निक्स का असर इस कदर गहरा था कि उनका इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका तक फैल गया। उनके इल्मी कामों को यूरोपियन डॉक्टर्स ने भी अपनाया और उनके काम को रेफर किया। उनका इन्फ्लुएंस इतना गहरा था कि एक लंबे वक्त तक उनका नाम उनके कामों के साथ जोड़ा गया। उनका काम 16th सेंचुरी तक यूरोपियन मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में भी शामिल था। आइए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं ज़हरावी की सोच और उसका असर। अबू अल कासिम अल ज़हरावी की सोच और उनका इल्मी सफर सर्जरी तक महदूद नहीं था, बल्कि उन्होंने तिब और सर्जरी को एक होलिस्टिक नजर से देखा। वो समझते थे कि पेशेंट की हेल्थ को सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से नहीं बल्कि उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के प्रेस्पेक्टिव से भी ट्रीट करना जरूरी है। दोस्तों, आज भी जब हम सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं तो उनका इम्पैक्ट सिर्फ पेशेंट की बॉडी पे ही नहीं बल्कि उनकी फिजीक पे भी होता है। ज़हरावी ने इस बात को समझा और अपने पेशेंट्स की केयर को होलिस्टिक बनाया। उनकी मेडिकल प्रैक्टिसेस से हम ये सीखते हैं कि डॉक्टर का रोल सिर्फ बॉडी का इलाज करना नहीं बल्कि उनके ओवरऑल वेलबींग को मद्देनजर रखना है। ज़हरावी का इल्म सिर्फ सर्जरी तक महदूद नहीं था बल्कि उन्होंने फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी और ऑर्थोपेडिक्स में भी काफी काम किया। उन्होंने ना सिर्फ अपने वक्त के लिए इल्म दिया बल्कि उनकी रिसर्च आज भी मेडिकल स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। दोस्तों, बात करें अगर मॉडर्न साइंस और ज़हरावी का असर जो उस पे हुआ, तो आज अगर हम मॉडर्न सर्जरी को देखते हैं तो उसमें जो टेक्निक्स यूज होती हैं उनमें से काफी ज़हरावी के कामों से इन्फ्लुएंस्ड हैं। आज हम जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उनका डिजाइन और डेवलपमेंट ज़हरावी के कामों के असर से ही हुआ है। उन्होंने जो टूल्स बनाए थे उनका इस्तेमाल आज भी होता है। जब हम सर्जरी के रिस्क को समझते हैं या पेशेंट की सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं तो उसके पीछे जो इल्म है वो ज़हरावी के टाइम से आता है। उन्होंने अपने वक्त में सर्जरी को एक नई सोच और प्रोस्पेक्ट दिया जो आज भी रेलेवेंट है। दोस्तों, बात करें अगर अल ज़हरावी के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के हवाले से तो उन्होंने काफी कुछ इसमें बयान किया, जिनमें हेडेक इंजरीज, स्कल फ्रैक्चर्स, स्पाइनल इंजरीज और डिसलोकेशंस, हाइड्रोसेफ्यूलस, सबड्यूरल इफ्यूजन्स, हेडेक और कई दूसरे हालात का इलाज शामिल है। उन्होंने हाइड्रोसेफ्यूलस का एक केस वाजे तौर पर बयान किया जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ड्रेनेज के जेंटल डिफेक्ट की वजह से था और उन्होंने कहा, मैंने एक बच्चे को देखा जिसका सर अजीब तौर पर बड़ा हो गया।

धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। वेलकम बैक, अहलन व सहलन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। दोस्तों, अल जहरावी को ऑपरेशन सर्जरी का बाप माना जाता है। उन्हें पहली थायरॉइडिक टॉमी करने का क्रेडिट दिया जाता है। उनकी मुकम्मल किताब जो ऑन सर्जरी के नाम से मशहूर है का आखिरी बाब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डेडिकेट किया जाता था। उन्होंने 200 से ज्यादा सर्जिकल टूल्स इंट्रोड्यूस किए जो अपने जमाने के हिसाब से एक हैरत अंगेज नंबर था। उन्होंने प्रोब्स, सर्जिकल नाइफ्स, स्कैल्पल्स और हुक्स के इस्तेमाल के लिए तफसीली वजाहत दी। उन्होंने सर्जिकल सिजर्स, ग्रेस्पिंग फोर्सेप्स और ऑब्स्टेट्रिकल फोर्सेप्स भी तैयार किए और उन्हें इन्वेंट किया। उनके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इलस्ट्रेशंस पहली मर्तबा टीचिंग और मैन्युफैक्चरिंग के तरीकों के लिए बनाए गए थे। आखिरकार उन्होंने बच्चों की तालीम और रवैये, स्कूल का सिलेबस और इल्मी तहकीकात पर जोर दिया। उन्होंने मशवरा दिया कि गिफ्टेड और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को प्राइमरी तालीम मुकम्मल करने के बाद तिब की तरफ रुझान दिलाया जाए, जिसमें जबान, ग्रामर, हिसाब, फलक शिनासी और फलसफा शामिल हों। यह मकाला सिर्फ आंदुलस के इस अजीम अरब तिब्बी और जराही शख्सियत की दुनिया के लिए किए गए अहम कॉन्ट्रीब्यूशंस की एक झलक है। दोस्तों, उनकी तिब्बी लिखाइयां वेस्ट में बहुत मकबूल हुई, खासतौर पर जेरार्ड ऑफ सेरेमोना, रोड्रिगस फ्रुगार्डी, रोनाल्डस परमेंसिस और दूसरे लोगों के जरिए तर्जुमा होने के बाद। उनकी सर्जरी तालीमात मिडिल एजेस में तीसरी सदी तक सबसे तरक्की याफ्ता समझी गई। दोस्तों, एल्ब्यूकेसिस ने न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी के मैदानों में इंट्रैक्टेबल माइग्रेन का इलाज करने के लिए एक गरम लोहे का टुकड़ा इस्तेमाल करने की तजवीज दी थी। उसने एपिलेप्सी और एपिलेप्सी के लिए भी कॉटरी का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर पैरालिसिस का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने सर की चोटों और खोपड़ी के फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी की चोटों और डिसलोकेशंस का सर्जिकल इलाज भी बयान किया। उन्होंने दर्द को एक सिम्टम के तौर पर वाजे किया जो खोपड़ी और दिमाग की सर्जिकल एनाटॉमी का भी वाजे बयान है। दोस्तों, अल जहरावी ने न्यूरोसर्जरी और न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस में इनकलाबी काम किए और वो पहला डॉक्टर था जिसने एक ऐसी बीमारी जो खून के क्लॉट होने की सलाहियत को मुतासिर करती है के वरीसे होने का पता लगाया और पहली दफा एब्डोमिनल प्रेगनेंसी का वाजे तौर पर इलाज किया। उनके काम से पहले ये नहीं मालूम था कि पैरालिसिस का सबब क्या हो सकता है। अल जहरावी पहले थे जिन्होंने ये समझाया कि स्पाइन का फ्रैक्चर इसका सबब हो सकता है। दोस्तों, उन्होंने कई इनकलाबी मेडिकल तरीके दरियाफ्त किए जो बाद में दूसरे डॉक्टर्स को असरदार मिले, लेकिन अल जहरावी को उनका कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। क्या आपको ये मालूम था कि ये तमाम काम उन्होंने ही किए थे जो बाद में कोशर्स मेथड के नाम से जाना गया। वो डिसलोकेटेड शोल्डर के इलाज के लिए था। दोस्तों, आज हमने अबू अल कासिम अल जहरावी के बारे में जाना, उनकी जिंदगी और कामों को समझा, उनका इल्म और उनके काम की वजह से

0: ना सिर्फ उस वक्त के डॉक्टर्स को मदद मिली बल्कि उनका असर आज भी हमारी मेडिकल प्रैक्टिसेस में दिखाई देता है। आज हम जिसे मॉडर्न सर्जरी कहते हैं वो उन्हीं के कामों का नतीजा है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़िए और जानिए कि क्या क्या साइंटिस्ट की कहानियां हैं। इसी के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मजीद दूसरे साइंटिस्ट और उनकी दिलचस्प तारीख को तलाश करेंगे जो हमारी नॉलेज में मजीद इजाफा करेगी। अगर आपने हमें सोशल मीडिया में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो अगली मुलाकात तक के लिए साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107। दिल से देसी।
1: हम भी वो हैं जो कभी

0: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
0: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप,
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
0: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. दिल से देसी. दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो. कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें. सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें. किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें. स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके. दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों. दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो. स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें. ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं. स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है. स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे. एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है. हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए. इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं. सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें. FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है.
2: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए.
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है. और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं. इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा शो जहां पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो.
4: द रिक्वेस्ट शो
3: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ.
4: फजील के साथ
3: संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
4: दिल से देसी.
5: Hits music station. Anytime, anywhere.
6: Yes, anytime, anywhere.
5: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.

0: FM 107. Time check.
1: हाँ जी हबीबी, टाइम फॉर द टाइम चेक एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 4:01 एग्जैक्ट और आप सुन रहे हैं शो,
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: तो दोस्तों इस्तकबाल है आप सभी का एफएम 107 पे, ये शो द रिक्वेस्ट शो जहां पर 5 बजे तक हमारा और आपका साथ बहता है और आपके अपने मर्जी के गाने चलते हैं, लेकिन बगैर थीम के गाने नहीं प्ले हो सकते। और हर हफ्ते एक रीजन, एक टॉपिक समझ ले, या एक सिंगर या फिर कोई हीरो या फिर कोई यू नो बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने हिट गाने दिए हो, तो वैसे ही गाने हम यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी के प्ले करते हैं। आपकी मर्जी होगी ऑब्वियसली, लेकिन उसमें एक ऑप्शन मेरा भी है, एक मर्जी कह सकते हैं मेरी भी है, और बस इतनी सी है कि यार गाना जो भी हो वो थीम पर हो, और थीम सेलेक्ट करते हैं पज्जू बाय। तो आज की थीम क्या है, तो चलो डिसाइड कर लेते हैं यार आज की थीम क्या रखी जाए। आज की थीम मैंने उस भाई की रिक्वेस्ट पे रखी है जिन्होंने एक दिन कोई रेंडम गाना कहा था प्ले करने को, और मैंने जब चेक किया तो वो संजय दत्त का गाना था, तो मैंने कहा क्यों नहीं बाबा को अपने शो में एंट्री दिलाई जाए, बाबा के गाने,
3: अरे बाबा
1: इनके गाने चलने चाहिए। सो आज की थीम या कहें आज का जो शो है वो पूरी तरह से बेस्ड होगा, पूरी तरह से जो सॉन्ग प्ले होंगे जिस गाने में संजय दत्त हो, जिस मूवी में संजय दत्त हो, उस गाने में अपन मजे ढूंढेंगे और उसी गाने को प्ले किया जाएगा एफएम 107 पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 666-22107 666-22107। आज संजय दत्त के गाने चलेंगे, मजे आएंगे, और बस एक ये है कि संजय दत्त के हाल ही के गाने थोड़े से कम हैं, बाकी अगर आप सिंगर को देखें तो सिंगर कहीं ना कहीं 2020, 22, 25 में दे चुके हैं, और जो नए सिंगर हैं वो 2010 या 12 की बात से लगातार एक्टिव हैं। उसके अलावा कई एक्टर जो अभी तक हमने, जैसे कि सलमान हो गए, शाहरुख हो गए, कृति सैनन हो गए, है ना, तो बहुत से ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस रहे हैं जिनके गाने हमने प्ले किए, आलिया भट्ट हो गई, तो करीना, तो इन सब के जो गाने अभी तक हमने प्ले किए हैं वो एक्टिव रही हैं सिनेमा में इन कुछ दशक में, एक दो दशक में अगर देखा जाए तो वो ऑब्वियसली एक्टिव रही हैं। अब मसला ये है कि संजय भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे, एक्टिव रहे लेकिन बहुत ज़्यादा ही नहीं। अब KGF में वो थे, फिर संजू मूवी में थे, तो उनके जो टोटल मूवीज रही हैं वो इस 5-7 साल में थोड़ी सी कम रही हैं। ऑल्दो और भी बहुत सी ऐसी मूवीज़ हैं जो हिट भले ना हो पाई हों लेकिन वो रहे हैं। एक और संजय दत्त की भी एक मूवी आई धुरंधर, उसमें वो थे, तो एक गैप रहा है। तो फिलहाल अगर आपके जहन में कोई गाना है जिसमें संजय दत्त हो या उनकी मूवी के गाने अगर आपको याद आ रहे हैं तो हमें बताएं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 666-22107 666-22107। शुरू करते हैं।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107।

0: से डेजी।
1: तो कोड़ा मैन तैयार हो गया है, सामने खड़ा हुआ है, हम उसको एक भी दिन मौका दिए नहीं अपन, लेकिन आप भी मौका मत देना मेरा भाई, गाने ऐसी रिक्वेस्ट करना जो लगे कि हाँ संजय भाई के गाने हैं अपने, ठीक है। लोगों की रिक्वेस्ट आना शुरू हो गए, लोगों अच्छा फ़ैन हैं यार संजय भाई के हैं। मैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। सलाम है खादिम भाई का सबसे पहले, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई कैसे हैं, गुड इवनिंग लिखा है, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं मुबीन भाई, उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। फिर महफूज रॉबिन का मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, मुमताज़ कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम, और क्या ये सॉन्ग लगा दो जय विक्रांता, ऐसे डेंजर गाने नहीं कर लिए मुमताज भाई तुमने कुछ ज्यादा ही थोड़ा रिस्क थोड़ा कम करो। अच्छा हुआ मैंने पढ़ा नहीं, मोहम्मद बिलाल खलनायक से, नायक नहीं खलनायक देख रहे वही है कि जिन मर्दों की जिंदगी में ज्यादा मोहब्बत प्यार नहीं आ पाया तो खलनायक ही सही। अरे यार ऐसे गाने आप रिक्वेस्ट करो, थोड़े मोहब्बत प्यार वाले भी गाने हैं संजय भाई के यार, बताओ मतलब एकदम ही रॉ गाना, एकदम ही ऐसा लग रहा पत्थर लाठी चल जाएगा अभी। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, विनोद का और कविता का ये गाना है, ठीक है अपन देखेंगे इस पर क्या किया जा सकता है। बाकी यूसुफ भाई का है, बहुत खूबसूरत हो सॉन्ग खूबसूरत मूवी से, ठीक है ये भी ज़रा हम देख लेंगे अभी कुछ देर में। नसीम भाई क्या कहते हैं, नसीम भाई का क्या रिक्वेस्ट, तो आशिक है मैं तेरी, ये गाना अच्छा है भाई, तो आशिक है मैं तेरी आशिकी, ये गाना अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम फजील, वालेकुम अस्सलाम, रिक्वेस्ट है साजन गाना और सॉन्ग है तू शायर है मैं तेरी शायरी, ये वही वाला गाना है ना, तू आशिक मैं तेरी आशिकी, सेम ही लाइन है इसमें बस अलग अलग है। क्या यही प्यार है फ्रॉम द मूवी रॉकी, और ये गाना कहा है खादिम भाई ने, ठीक है खादिम भाई आपकी रिक्वेस्ट पर भी अभी नज़र पड़ेगी। फिर उसके बाद लाल परी सॉन्ग लगा दें, उसमें संजय दत्त साहब हैं, लाल परी सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, पहले तो ये बताओ हमजा भाई कि ये जो लाल परी गाना आपने गाया किस मूवी का, मैं थोड़ा डिटेल इसमें डालो ज़रा, लाल परी में डाल दूंगा वैसे तो आ जाएगा, मुझे याद है लाल परी का कोई तो गाना है, लाल परी लाल परी लाल परी वो तो नहीं। चलो तो अभी शुरू करते हैं नायक नहीं खलनायक, तो क्योंकि यार देखो है तो ये इनका आइकॉनिक सॉन्ग ना, तो इस गाने से शुरू करते हैं, फिर बाकी सॉन्ग भी धीरे धीरे हम लेकर आएंगे। सबसे पहले नायक नहीं खलनायक, फिर उसके बाद ये रिक्वेस्ट है यूसुफ भाई की, यूसुफ भाई क्या कहते हैं, बहुत खूबसूरत हो खूबसूरत मूवी का ट्रैक, फिर नसीम भाई कह रहे तू आशिक है मैं तेरी आशिक, आओ पहले इस गाने का मजा लेते हैं। अरे जल्लाद भाई तुम पर सूट कर रहा है ये वाला, कोड़ा रख दो नीचे डांस कर लो, नहीं कोड़ा कह रहा हूं, कोड़ा नीचे रख लो, नायक नहीं कोड़े वाला खलनायक है हमारा।

विनोद और कविता की आवाज में खलनायक हूं मैं, ये गाना आपने सुना। संजय दत्त के बारे में बात हो रही है, 29 जुलाई आज है उनका जन्मदिन, तो हम जन्मदिन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं संजय दत्त का। आज पूरे 67 साल के हो गए हैं, एक से बढ़कर एक हिट मूवी उन्होंने दी है और उन्हीं के गाने आज हम प्ले कर रहे हैं। तो संजय दत्त की ऐसी मूवीज रही हैं जो आज भी हमारे जहन में है, मतलब हाल ही की अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो KGF जैसी लाजवाब उन्होंने मूवी दी है, जिसमें ज़बरदस्त नेगेटिव रोल किया है उन्होंने, और उसके अलावा धुरंधर में भी गजब का काम, हाउसफुल 5, बागी 4 में क्या लगे हैं, वेलकम टू द जंगल अभी हाल ही में आई है, कॉमेडी मूवी थी, इतनी ज़्यादा हिट नहीं गई है, बट खलनायक रिटर्न्स भी आ रही है वैसे, बाय द वे, हाँ ये तो बताना भूल ही गया। तो अब उनकी लगातार फिल्म आएगी 2026 में, वेलकम टू द जंगल आई, बहुत ज़्यादा हिट नहीं, लेकिन रेंजर आ रही है दिसंबर में, खलनायक रिटर्न्स भी आएगी, और 90 के दशक के अगर बारे में बात करें तो अगला जो गाना है वो भी साजन मूवी से आएगा, फिर खलनायक ऑब्वियसली, ये तो अभी हमने गाना भी प्ले कर दिया, नाम वास्तव, ये क्या ही ज़बरदस्त गाना था, फिर मुन्ना भाई MBBS क्या ही गाने दिया इसमें, और फिर मूवी भी बड़ी फनी। तो आमतौर पे जो संजय की इमेज थी वो थी कि यार इनको यू नो हाइट वाला आदमी है, पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनको एकदम नेगेटिव और तगड़ा रोल दें अगर तो बहुत अच्छा करेंगे, है ना, एक्शन मूवीज़ बहुत अच्छी करेंगे। लेकिन फिर मुन्ना भाई MBBS के लिए जब चुना गया तो बड़ा शक हुआ, पता नहीं मूवी यार हिट रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन इनकी कॉमिक टाइमिंग भी बड़ी लाजवाब थी, उसमें बहुत अच्छा काम किया। मुन्ना भाई MBBS हो चाहे लगे रहो मुन्ना भाई हो, फिर KGF ये तो हाल ही की हिट मूवी भी रही है। सो आज हम संजय दत्त का ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं 29 जुलाई, और आज का दिन सिर्फ संजय दत्त को दिया है। अभी जो अगला गाना आ रहा है वो है बहुत खूबसूरत हो, ये है यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट पे, फिर उसके बाद गाना आएगा क्या यही प्यार है। अच्छा, ये दो लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, एक तो जफर इकबाल हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है क्या यही प्यार है, और फिर एक और भाई थे क्या यही प्यार, हाँ खादिम भाई, इन्होंने भी ये गाना रिक्वेस्ट किया है। फिर तू वो जो कहा था, तू आशिक मैं तेरी आशिकी, ये गाना है एक्चुअली तू शायर है, अलका अलका जी का ये गाना है, ये भी

0: गाना नसीम भाई की रिक्वेस्ट पे अपन लगा चुके हैं। फिर एक और गाना है, ये किस मूवी का बताया है, हाउसफुल 4। ओके, हाउसफुल 4 का भी गाना अपन प्ले करेंगे। हमजा भाई थोड़ा सा रुक के थोड़ा अगर सब्र करेंगे तो सारा मिल जाएगा आज। गोइंग होम प्लीज प्ले इट। ऐसे समझ ना होता, ऐसा समा ना होता, ऐसा समा ना होता। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ अगर ये गाना अभी मिल जाता है तो प्ले करते हैं। कभी कभार ये भी होता है ना कि यार जिस नाम से अपन सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई, आज एनर्जी लो है काफ़ी। खैरियत खैरियत है भाई। क्या कभी कभार खाना पानी कम हो जाए तो भाई हो जाता है इंसान की आवाज़ में थोड़ा लीलावन, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, हो सकता है बाहर ऐसा लग रहा हो। मुमताज़ भाई का मैसेज है, फजल भाई कोई भी सॉन्ग जल्दी लगा दो, सब हिट है। आए हाय क्या बात है। फिर उसके बाद सलाम फजल भाई, कोई मूवी का सुना, ल्यूक मूवी का सुना दो भाई। थोड़ा स्पेलिंग एरर हो गया, मेरे को समझने में मुश्किल हो रहा है थोड़ा। और गनी भाई क्या कहते हैं, सलाम अलैकुम फजल भाई, क्या हाल? मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। और संजय दत्त मूवी का आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। अच्छा ये गाना दो लोगों ने रिक्वेस्ट कर लिया है। आखिर तुम्हें आना है, और कौन सुनेगा ये वाला? एक और भाई हैं जिन्होंने इस गाने को कहा है रिक्वेस्ट करने को, ये कौन प्ले करने को कहा है? मोहम्मद शेख। तो ये गाना भी अपन ढूंढेंगे और फिर प्ले करेंगे। फिलहाल क्या यही प्यार है, फिर बहुत खूबसूरत हो, उसके बाद तू शायरी है, नसीम भाई के रिक्वेस्ट पे इस तीन गानों को एंजॉय करें।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: तो वापस आते हैं और फिर बाकी लोगों के रिक्वेस्ट भी प्ले की जाएंगी। बहुत खूबसूरत हो अभिजीत नीरज पंडित की आवाज में ये ट्रैक आपके लिए, दिल से देसी।

0: अलका जी की आवाज कहीं पर भी कैसे भी गाने में ला दो यार, वो गाना हिट हो ही जाता है। FM 107 पे अलका याग्निक की आवाज में गाना सुना आपने।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: हाँ जी अभी भी दिल से देसी। और जिस तरह के गाने आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे कोड़े मैन ने मैं कोड़ा अंदर रख लिया है, बेचारे का कोड़ा जो है ड्राई हो गया है, तेल का खर्चा बढ़ गया है क्योंकि एक भी दिन इस्तेमाल हुआ नहीं। मैं बच बच के चल रहा था, लेकिन आज जो आपने गाने की रिक्वेस्ट की है संजय दत्त की मूवी से, तो आज बेचारा वो कुर्सी पर बैठ गया, वरना डेली वो खड़ा रहता था। सही कर रहे हो भाई, ऐसा ही है, तेल का खर्चा बच जाएगा, वरना वो रेगुलर बेसिस पे कोड़ों में कड़वा तेल लगा रिया था भाई। 4:27 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। जल्दी से बाकी गाने भी देख लेते हैं लोगों ने क्या रिक्वेस्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे बताया था गनी भाई ने कहा है आखिर तुम्हें आना है, ये गाना प्ले करवा दो भाई। बिल्कुल ये गाना प्ले होगा। और बहुत दिनों बाद उस्मान ने एक ऐसा गाना रिक्वेस्ट किया जो असल में थीम पर बेस्ड है, और गाना है ऐसा समा ना होता, और ये लता जी ने गाया है, तो ऑब्वियसली ये गाना भी बड़ा खूबसूरत होगा। और फिर गाना है आ देखे जरा किस में कितना है दम, किस भाई ने रिक्वेस्ट किया था, कहीं तो निकल गया इनका नाम जो है, हाँ मिला, ये है अरशाद अंसारी, इन्होंने ये कहा है गाना प्ले करने को आ देखे जरा। अफसर लिखा है नीचे, बट प्रोफाइल पे तो अरशाद अंसारी लिखा है, ठीक है कोई नहीं, जो भी है दोनों तो नाम अपन बोल चुके हैं, लेकिन बाकी रिक्वेस्ट किसकी किसकी है वो भी जरा देख लेते हैं। साजन मूवी से प्ले करो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार कर, ये प्ले नहीं किया, अच्छा ये बहुत खूबसूरत हो ये वाला प्ले किया है, और ठीक है ये वाला गाना भी अपन ढूंढते हैं। एहसान अली की रिक्वेस्ट पे है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। देखो यार संजय भाई का ये जो थीम आज हमने डिसाइड किया, ये किसी दिन फिर से रखेंगे क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट है, कहीं ना कहीं छूट जाएगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट मेरे ख्याल से 20-25-30 पता नहीं कहाँ कहाँ है चली गई नीचे बहुत, तो माजरत मेरा भाई। हाउसफुल 5 का लाल परी गाना नहीं है, तो इसको रिक्वेस्ट ना करें। करीम शाह कहते हैं संजय दत्त का सॉन्ग काश तुम मुझसे एक बार कहो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। करीम शाह बहुत ज़्यादा गाना बहुत पुराना नहीं हो गया, देखते हैं अगर ये मिल जाता है तो क्यों नहीं, बिल्कुल आपका गाना जो है वो प्ले किया जाएगा। उसके अलावा एक और ये मैसेज है, लक मूवी का कोई, अरे यार लक मूवी तो बहुत ही उम्दा थी यार, रुको तो अभी लाइव आपके सामने कीपैड की आवाज़ आएगी और लक मूवी का गाना अपन निकालेंगे। मिल जाओ भाई, लकी मिल जा रहा, लक बाई चांस, लक 2009 वाली ना, आजमा लक आजमा, लगा ले कितना कितनी हसीन जिंदगी, ये तो दूसरा है सॉरी। फिर खुदाया वे लो सॉन्ग के, ठीक है मेरे को मिल गया, मेरे को पता कौन सा प्ले करना है, लक आजमा और लगा ले, ये दो में से गाना अपन प्ले कर सकते हैं, मैंने निकाल लिया। अब आपको एकदम से पता चलेगा अच्छा कौन सा फजील भाई ने गाना निकाला है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ये रिक्वेस्ट किसने किया है नाम देखना पड़ेगा एक बार फिर से, गायब हो जाते इतने मैसेज इतनी देर में चले आते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज जो है वो नीचे चला आता है। कांग गया, कांग गया, कांग गया, ठीक है ये मैसेज अपन को मिल गया है।

0: है, नाम इन्होंने अभी नहीं लिखा है, आसिफ है। हटी गया, हमने इनको ऊपर ढूंढ लिया, आसिफ इनका नाम है। तो आसिफ भाई का भी ये सॉन्ग अपन प्ले करेंगे। उसके अलावा एक और ये मैसेज है किस भाई का, अदनान अनीस, आपका आना दिल धड़काना, ये वाला यार, ये वाला भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखो, इतना तो फ़ायदा है यहाँ पर बैठने का, इतने में से जो मेरे को अच्छा लगता है वो अपन प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो कीपैड की आवाज़ में आपका आना दिल धड़क, मैं नाक से गाया करता था भाई ये वाला गाना बहुत मज़ा आता था, ठीक है। आपका आना ये गाना ज़रूर प्ले होगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा किस मूवी का है, अलाना फलाना ढिमकाना, वो करते हैं। लेकिन तब तक अमित मिश्रा की आवाज़ में आपको ये गाना सुना रहा हूँ, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बहुत ही आला दर्जे का सॉन्ग है, और इस गाने को तो मैं कहता हूँ वॉल्यूम थोड़ा ऊपर कर लो भाई, कर लो, खींच दो, देखी जाएगी फिर, ठीक है। बस इतना तेज़ मत करना कि बाहर परेशानी हो जाए किसी को, ये बहुत आला गाना है, है?
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: अच्छा एक करें, जो अभी मैंने प्ले किया था ना वो गाना अमित मिश्रा का, मैंने बताया ना वो इंडियन पॉप 2024 का है, वही मैं कहूँ यार ये म्यूजिक थोड़ा मेरे गले उतरना नहीं, कान में उतरा नहीं, उधर भाई ने तेल निकाल लिया था कोड़ा मैंने अपना मतलब धार लगाने लग गया था भाई कोड़े में यलगार मूवी का एक ट्रैक है आखिर तुम्हें आना है, ठीक है। 1992 का ये मूवी है जिसे उदित और सपना मुखर्जी ने गाया है।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हाँ जी, अभी भी दिल से देसी एफएम 107 पे फजील के साथ हैं। वेल, अभी दो गाने बचे हैं, लकाजमा और आपका आना दिल धड़काना। ये दो गाने प्ले करने का दिल था बहुत ज्यादा, लेकिन अभी वक्त हो चुका है पहचान कौन गेम खेलने का। अगर वक्त बचा तो ये दो गानों में से एक तो एटलीस्ट

प्ले हो ही जाएगा। एक है सुखविंदर सत्या का गाया हुआ अलक आजमा और एक है अलका और कुमार सानू का गाया हुआ आपका आना दिल धड़काना। लेकिन सारा मूड ना ये गाने ने खराब किया है। मुझे लग रहा था यार अच्छा खासा टाइम, 2 मिनट तो म्यूजिक ही प्ले होता रहा यार आपके आने में, सॉरी आ देखे जरा में, मूड खराब हो गया यार मेरा। मैं मुझे लगा अब आएगा, 50 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, खून उबल गया था भाई। उधर बेचारा हमारा कोड़े मैन भी परेशान हो गया था। चलो अब गेम की तरफ बढ़ लेते हैं, जल्दी से गेम खेलेंगे तो चांसेस हैं कि अपन ये 2 में से 1 गाना प्ले कर दे, वरना फिर संजय के जब बाकी गाने की बारे में या बाकी दिन थीम हम रखेंगे तब हम ये गाना भी प्ले कर सकते हैं, जो अगर छूट जाएगा तो। फिलहाल क्योंकि आज संजय दत्त का बर्थडे है और हम उन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके मूवी के गाने को चलाकर, और इस वक्त 3 गाने मेरे पास रेडी हैं, इन 3 गानों को मैं प्ले करूंगा, बीच से कहीं से प्ले करेंगे और आपको बताना है गाने का नाम। वेल, मुझे पता है संजय के बहुत भारी फैन हमें सुन रहे हैं और देखते हैं कि क्या ऐसे फैन हैं जो उनके गाने को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और पसंद तो पसंद, गाने की जो बीच के लिरिक्स हैं उनको भी सुनते हैं गौर से और याद रखते हैं गाने का नाम, ये तो अभी कुछ मिनटों में पता चल जाएगा। तो सबसे पहला पहचान कौन का जो गाना आ रहा है संजय दत्त की मूवी से, वो है ये।

समझ। हाँ बताएं ये कौन से मूवी का गाना है, आपको बताना है 666-2107 666-2107 पे आपको बताना है। और अनुज ने बताया है मूवी का नाम, नहीं आपको गाने का नाम बताना है मेरा भाई। फिर मकसूद भाई ने सही जवाब बताया, मकसूद भाई आप ही हैं ना ये प्रोफाइल पर, हाँ मकसूद भाई है। बाकी सलाम वालेकुम अस्सलाम, आपका तो गाना खलनायक मैं प्ले कर चुका हूँ, बहुत देर कर दी, पता नहीं आपने सुना या नहीं। फिर एक और ये जवाब है, फलक ने बिल्कुल सही जवाब दिया है मेरा चलाया हुआ जो गाना है उन्होंने मेरा चलाया हुआ गाना। एक और आदिल भाई हैं, उन्होंने सही जवाब दिया है अभी सैयद भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, और एक और शख्स है इनका नाम है, हाँ अनुज भाई इन्होंने सही दिया है, नसीम भाई ने भी बिल्कुल जवाब दिया है, शहजादा सलीम ने सही जवाब दिया है, फिर उसके बाद अजहर हुसैनी ने सही जवाब दिया। बहुत ही उम्दा है तो यार, गाढ़े फैन है, मतलब वो घोट के पिला देने वाले हैं ना। जस खान बिल्कुल सही जवाब दिया है सबसे पहले आपने, फिर उसके बाद यूसुफ भाई ने भी सही जवाब दिया है, कहा है कि मैं फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन कैसर साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और मुमताज़ भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। गाने का नाम है

0: कितना।
1: जिन्होंने भी सही जवाब दिया है आप संजय दत्त की लिस्ट में टिक पर आ गए कि हाँ यार ये तो फैन है अच्छा वाला। एक और गाना आ रहा है और इस गाने को मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अभी तक समझ रहा था बिल्कुल गलत, यानी कि इसके जो लिरिक्स हैं मैं उसको समझ नहीं पा रहा था। अब आप सुनिए फिर हम डिटेल में बताएंगे कि क्या समझ नहीं पा रहे थे।

जानता। संजय दत्त है इस गाने में, मतलब गाया है उन्होंने, शान की आवाज है, जुबिन भी है, जुबिन वो जुबिन वाले नहीं, जुबिन अलग थे। ये किस मूवी का है अगर आपको पता है तो बता सकते हैं, ऑल दो मेरे सामने है तो मुझे पता है, लेकिन इसके लिरिक्स भी मैं गलत समझता था। आज मुझे पता चला है असल में इस गाने का नाम क्या है। केसर भाई ने बिल्कुल सही बताया है मूवी का नाम और गाने का नाम, बहुत ही उम्दा। डॉलर भी चाहिए, पाउंड भी चाहिए। फलक ने बिल्कुल सही बताया, क्या बताऊँ है तो यार गाड़े वाले फ़ैन है। खलील बारजा ने पिछले सॉन्ग का बिल्कुल सही जवाब दिया है, और फिर यूसुफ भाई को सलाम कहा है, किसने, एमके भाई ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम कह दो यूसुफ भाई, इधर से मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम ले लो। मियाँ फज्जू, आज बेलन से ज़्यादा प्यार मिला है बहुत दूर की बात हो गई, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है इस इन इन बातों से दूर रहो यार। फिर एक और ये जवाब है शेख मसूद का,

और पहले गाने का बिल्कुल सही जवाब बताया है, पहले गाने का एक और शख्स ने, फहीम ने बिल्कुल सही जवाब बताया है। फिर हमारे पास यूसुफ भाई का सलाम, उन भाई का रिप्लाई है, एमके भाई का, वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई नहीं पहचान पाए इस गाने को। आई एम फैन ऑफ फजील भाई नॉट संजय। अजहर भाई सोचो अपने मर्जी के गाने चलवाने के लिए रिक्वेस्ट शो में क्या क्या करना पड़ता है। अजहर भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ओके आगे, बाकी मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा दिल कितना पागल है ये सुनने के लिए, आपको पता है। मेरा मन कर रहा है मैं भी गाना गा दूं आपके लिए, मेरा दिल भी कितना पागल है। आगे बिल्कुल सही जवाब दिया है श्याम भाई ने। राशिद ने खाकी लिखा है, गलत जवाब है। सैयद ने भी बिल्कुल सही जवाब लिखा है। अच्छा अब जब लोग सही जवाब लिख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस गाने को क्या समझता था यार, इसके इसके जो असल वर्ड है ना, मैं गलत समझता था। नसीम भाई ने पहले गाने का बिल्कुल सही जवाब दिया। फरहत ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम फरहत भाई। यूसुफ ने कहा है लक का सॉन्ग है लेकिन बोल याद नहीं आ रहे, कोई बात नहीं भी आपको पता चल जाएगा। मुमताज़ कहते हैं ये गाना किधर से लाए हो भाई, अरे बहुत ही फेमस गाना है भाई, सुनो और फिर मैं बताता हूँ इसकी कहानी फिर।

तो संजय शान जुबिन ने मिलकर गाया है जाने क्या होगा रामा रे, और मेरे को लगता था ये गाना है जाने क्या होगा ना माने। आज तक मैं ना माने समझ रहा था भाई, क्योंकि इस गाने में आप पीछे जो वर्डिंग्स है ना, तो ऐसा लग रहा है कि किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उलझुलुल बातें कर रहे हैं, तो आखिर में ये बता रहे हैं कि जाने क्या होगा इसका, ये मानता ही नहीं है, ना माने। अब मेरे को समझ में आ रहा है ये एक्चुअली में रामा रे, और लोग सही जवाब बता रहे हैं, रामा रे ही लिख रहे हैं, और मुझे शर्म आ रही है कि हैं मैं ही गलत था समझ रहा।

हाँ जी, तो आज मैंने अपनी गलती को सुधार लिया है। ये फिल्म काटे का है, यूसुफ भाई ने लिखा है, बिल्कुल सही जवाब है। फिर दो ऑडियो है, मेरे को समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी अपन प्ले नहीं कर सकते, सुनेंगे। क्या बात है फजील भाई, अजहर साहब बात क्या ही है यार, अजहर भाई इतना क्या यार, अपने मर्जी गाने प्ले करवाने के लिए फैन वाली बात बोल दी खलील। ये क्या है, मैं नाच मानता जन क्या रामर पारशा भाई क्या लिख रहे हैं खलील साहब, थोड़ा मेरा एक दोस्त है खलील भाई, क्रिकेट हम साथ में खेलते हैं, हम उनको खल्लू भाई कहते हैं, अब से हम खलील भाई को खल्लू भी कहेंगे, ठीक है खल्लू भाई। मैंने रिक्वेस्ट किया था भाई ने प्ले नहीं किया, यार माजरत के साथ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कैसर साहब, इसलिए कहीं ना कहीं गाना जो है वो छूट जाता है। काटे मूवी का ट्रैक बताया है फरहत ने, ठीक है अब तीसरे गाने पर पहुँचते हैं। ये तीसरा गाना पहचान लो तो मैं मानूँ, है आसान है ऑब्वियसली, मतलब मानूँ क्या, ये आसान है तो नहीं मानूंगा। बहुत ईजी है, सुरेश ने गाया है इस गाने को और एक और बहुत फेमस सिंगर उन्होंने गाया, वो बता दूंगा तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, जो कि मैं इजी करना नहीं चाहता। आसान गाना, गाने का नाम बताओ इस बीच के लिरिक्स को सुनने के बाद।

चलो बताओ कि ये किस गाने का नाम है। सुरेश की आवाज है इसमें, वो फेमस सिंगर की आवाज नहीं है जिसके बारे में मैंने बताया नहीं ऑब्वियसली, लेकिन मुझे पूरा यकीन है लोगों को पता होगा। शुरू करते हैं। बिल्कुल सही जवाब सबसे पहले किसने दिया है, अच्छा मूवी का नाम बता दिया है, बहुत ही उम्दा, क्या बात है। सबसे पहले बहुत नीचे चला जाता, माचिस लिखा है लेकिन ये गलत जवाब है। ये इमरान साहब ने लिखा है अंगामी, ये भी गलत जवाब है। यूसुफ भाई का सही जवाब है, बहुत ही उम्दा। सबसे पहले यूसुफ भाई से ही शुरुआत हुई है, फिर ईमानदार मूवी का ट्रैक बताया है। ओके मुमताज़ ने कहा है और बिल्कुल सही जवाब दिया मुमताज़ भाई ने, बहुत ही उम्दा। कबूतर जा, संजय कबूतर को भेज रहे हैं आदिल भाई, क्या हो गया आपको। फलक ने बिल्कुल सही जवाब बताया, बहुत ही उम्दा। फिर उसके बाद एक और जवाब है अनवर साहब का, बहुत ही उम्दा। अनवर भाई भी इस गेम में आ गए हैं और सही जवाब बताया। फिर उसके बाद ये जवाब है हिशाम साहब का, बिल्कुल सही। ये किस भाई का जवाब है, नाम नहीं लिखा है। हमज़ा बिन आरिफ, इन्होंने सही जवाब बताया है। एक और शख्स हैं जस खान ने भी ये रिपोर्ट कर दिया है कि वो फ़ैन हैं संजय दत्त के। सुरेश और आशा भोसले हैं इस गाने में, बिल्कुल सही जवाब बताया कैसर भाई ने। बिल्कुल कबूतर जा प्ले ही कर दो अब तो। नहीं यार फरद भाई ऐसे कैसे, फिर कबूतर गया। लोग मजे लेने लगते हैं, कबूतर गया। फिर एक और ये मैसेज है, यूसुफ भाई जिंदाबाद, आज जीत हमारी है। चलो तो मोस्टली लोगों ने सही जवाब बताया है, सुरेश वादकर और आशा भोसले का गाया हुआ ये फेमस ट्रैक है, एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड

लोगों के लिए तालियां तो बजनी चाहिए। क्या खेला है, मुझे पता चल गया संजय बाबा के बहुत तगड़े वाले फैन है यार। और ये भी एहसास हुआ कि सलमान और शाहरुख से ज्यादा तगड़े फैन संजय के हैं, जेन्युइन वाले। एक तो होता है कि एकदम ब्लाइंड आंख बंद करके मैं फॉलो करूंगा और हमारे बेहतरीन सलमान और शाहरुख हमारे करीबी हैं, हम उनके फैन हैं। लेकिन संजय के जो फैन है वो एकदम गाढ़े वाले है ना, वो ओरिजिनल दूध पानी मिक्स नहीं है, संजय वाले फैन जो हैं वो गाढ़े हैं। फिलहाल लक आजमा जिस भाई की रिक्वेस्ट थी वो गाना मैं प्ले कर रहा हूँ सुखविंदर और सत्या हिन्नोजा की आवाज़ में। इस गाने को एंजॉय करें और मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाज़त। जिनका मैसेज नहीं ले पाए माजरत मेरा भाई, इंशाल्लाह आपके रिक्वेस्ट किए हुए गाने हम प्ले करेंगे नेक्स्ट शो में, कल इंशाल्लाह या फिर संजय की जब अगली थीम आएगी तब। फिलहाल एंजॉय करें सुखविंदर और सत्या का ये लाजवाब गाना, मुझे इजाजत दीजिए दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: बस बस बस बस रोते नहीं आगे कभी रंगल आ गए। हाँ बस अभी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी जी जी जी जी बस बस बस आप लोगों ने रुला दे, देखो इसको व्हाट्सएप पे मैसेज क्यों नहीं कर रहे आप। बस बस कर रहे हैं अभी अंकल कह रहे हैं, अभी अंकल कह रहे कर रहे हैं बस कर रहे हैं। हाँ जी जी जी जी चलो बस

0: हाँ जी पार्टी पिक्चर कैसी भी हो क्लाइमेक्स तो हम ही करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। 5:02 मैं दो वाला कबीर F107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया चल रहा है सब। और मैं कह रहा था ये मैसेज मुझे कर दिया करो यार, क्यों बच्चे को आपने परेशान कर रखा है? यहाँ बेचारा बच्चा परेशान है। आप व्हाट्सएप बस अंकल कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ले ले ले ले कर दो मैसेज कर दो यार, बच्चे का ख्याल रखो थोड़ा सा। 666-22107 हद दुखी यार आप लोग, यार मेरे नहीं बच्चे का सोचो यार, कमाल कर दिया आप लोगों ने। मैं ये एक और चीज़ से बड़ा परेशान हूँ, वो है मेरे रात के सोशल मीडिया के जो पोस्ट आते हैं, ये मेरे सामने क्यों आता है भाई? देखो दो पोस्ट आते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं थ्रिलर्स और ये सब सुनाता रहता हूँ आपको, तो लास्ट में मुझे पोस्ट आते हैं रात के 2:30 बजे। एक इंसान की बॉडी को कैसे छुपाएं, ये मुझे क्यों दिखा रहा है सोशल मीडिया? पता नहीं क्या क्या आते रहते, या तो ये आते हैं या दूसरे पोस्ट मेरे सामने आते हैं, घर पे बैठ के साबुन कैसे बनाएं। अरे यार कुछ अच्छा पोस्ट आता ही नहीं मेरी फीड पे, पता नहीं क्यों। और ऐसा नहीं मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ कि हाउ टू मेक सोप एट होम, लेकिन फिर भी मेरे सामने आता है ये, पता नहीं क्या चक्कर है। खैर आप जरा व्हाट्सएप मैसेज कर दें, 666-22107 नंबर है और मैसेज का इंतजार रहेगा। एक मैसेज इरफान भाई का, इरफान भाई वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं भाई जबरदस्त, भाई को बहुत सारा प्यार। मुमताज भाई वालेकुम अस्सलाम, कबीर भाई की एंट्री लाजवाब होती है, भाई को बहुत सारा प्यार। क्या मुमताज भाई, इनके बाद ख्याल भाई ने वालेकुम अस्सलाम, ख्याल भाई मैम के साहब वालेकुम अस्सलाम, और वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हो ब्रो? फैयाज भाई मैं एकदम बढ़िया, फैयाज भाई मैं शानदार। अम्मार यासर साहब वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद भाई लिखा है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और एक सेकंड भाई, कई सारे मैसेज आएगा इस स्वाति के साथ ही, क्या बात है। सईद खादिम हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग टू यू एज वेल। एक मैसेज है जावेद साहब का, वालेकुम अस्सलाम, देन वालेकुम अस्सलाम, ये अस्सलाम वालेकुम चाचू, चाचू बना देते हैं आते के साथ ही। मिस्टर खान साहब जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। और भाई बच्चा चुप कर लो, ये देखो बच्चे को ऐसे बोलो कि आप, ये कोई तमीज़ है आपकी। एक और मैसेज है यूसुफ भाई, वालेकुम अस्सलाम। और एक वॉइस नोट है, अभी मुझे सुनना पड़ेगा पहले, मिस्टर फैज़ भाई का। मिस्टर फैज़ आपने अपने आप को ही मिस्टर कहला रखा, बहुत बढ़िया। मकसूद भाई वालेकुम अस्सलाम, भाई मकसूद। और एक और मैसेज आया है ईशाम साहब का, ईशाम साहब वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और हमजा साहब क्या कह रहे हैं, सैयद हमजा भाई लिखते हैं गुड इवनिंग कबीर ब्रो, कल से हम इंशाल्लाह अपनी सऊदी अरब की जर्नी स्टार्ट करेंगे और उमरा भी करेंगे, आपकी न्यू स्टोरीज़ का मुंतजर रहेंगे। मेरा भाई बहुत सारा प्यार, अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे, दुआएँ कीजिएगा, बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा मेरी जान, और अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ख्वाजा मोहम्मद इरफान भाई मैं बढ़िया भाई आप सुनाएं। फरद भाई लिखा है वालेकुम अस्सलाम, फरद भाई क्या हाल है भाई की। एक मैसेज कबीर भाई सलाम, आसिफ भाई वालेकुम अस्सलाम, एंड देन लिखा है कबीर भाई वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज किया है मुझे रहूब रैन साहब ने। और हो गए सबके मैसेज, चलो पढ़ लिए मैंने, ठीक है। कॉल तो भी लूंगा नहीं, कॉल कुछ देर में ली जाएगी, 11:02 के बाद शाम के अधिकार, उसके बाद मुलाकात होगी। आज की कहानी के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में आ रहा किस तरीके से बेचूं आपको ये मैं कहानी, पर इतना कहूँगा ऐसा वाक्य आपने सुना नहीं होगा, कुछ अलग ही है भाई, कुछ अलग ही है। कल वाली तो कहानी मुझे याद है, उसका इम्पैक्ट तो बहुत गहरा रहा है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए अल्हम्दुलिल्लाह। एंड पहली मर्तबा लगा कि खुद की थोड़ी तारीफ़ कर लूँ, क्योंकि मुझे वो कहानी मिल गई, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज भाई कुछ अलग है, आज बड़ा हटके है, क्योंकि जैसे जैसे वीकेंड आता चला जाता है कहानियों की इंटेंसिटी और नेचर हम बदलते चले जाते हैं। सो 666-22107 नंबर मैसेज जरूर कीजिएगा, 11:02 के बाद आपसे होगी मुलाकात। जाना नहीं है इधर, आप बेस्ट बेस्ट जगह पर हैं, सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे आएगा सबसे ज़्यादा मज़ा आपको, जाना नहीं किधर भी। हाँ मैं तो खुद कबीर को सुनता हूँ।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: शाबाश, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, चैनल से कहने कबीर आ गया आ। तो मैं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है। भाई साहब लट लेके तैयार हैं, एंटरटेनमेंट को किधर भी जाने नहीं देंगे। बाकी 5:18 हो चुके हैं, कहानी के बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, बहुत देर से मैं उठा नहीं पाया था उस वक्त, अभी उठा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हाँ जी, आपका नाम?
2: हाँ जी, आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम?
1: हम तो तेरे आशिक है सदिया पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने।
0: ओहो हो हो, रेडियो की वॉल्यूम अगर कम कर लेते तो और अच्छी से बात हो जाती, क्योंकि वो डबल ट्रिपल आवाज आएगी वरना मुझे अपनी।
1: लो भाई बंद कर दिया।
0: हाँ जी, बताइए आप, बताइए मेरे जान।
1: आपकी आपकी फरमाइश के तो हम हाजिर है।
0: अरे बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आपका नाम तो बता दीजिए।
1: नाम बता दिया, पहचान बुरी मान जाएगी बंटा है।
0: अरे भाई साहब, ये कोई बात होती है? ये अचानक से ऐसे आज धमके हो, छुट्टी पे थे ना
1: जी? बस याद से आ गई, बस तुम्हारी और कुछ नहीं।
0: अरे रे रे, याद से नहीं आ गए, वापस लौट के आना ही पड़ा। ये सीन
1: भगा दिए मेरे को बम्बई से भाई,
0: भगा दिया ना, नहीं रुकने दिया, कोई बात है। कब तक लोकल ट्रेन को ये आदमी पोस्ट किए जा रहा था सोशल मीडिया पे बार बार?
1: भगा दिए भाई मेरे को, बोले जा जाओ भाई उधर जाओ उधर, कबीर भाई परेशान हो रहे तुम्हारे।
0: अब तो हो नहीं रहा होगा ना, अब लोकल ट्रेन में चढ़ा नहीं जा रहा होगा, बड़ी अजीब सी आ रही
1: होगी। अभी तो क्रूजर में चढ़ा जा रहा है सिर्फ।
0: हाँ, अब आदत बिगाड़ दी ना कतर ने, सारी आदत बिगाड़ दी, अब नहीं चढ़ा जाता।
1: अभी नहीं चढ़ाया था भाई,
0: नवाबी ना घटे। और बताइए क्या लेके आए वहाँ से,
1: क्या चाहिए भाई तुमको? दिल जिगर जान।
0: अरे रे रे रे, ये कुछ नहीं चाहिए भाई, आप आ जाओ बस। आ गए क्या, नहीं आए हो? ये नंबर तो मुझे लग रहा है आ गए ना।
1: हाँ,
0: तो फिर क्यों पूछे क्या लेकर आऊँ, आ तो चुके हो। वाह, डबल क्रॉस खेल रहे हो मेरे साथ। कब आना हुआ वैसे, कौन कब आए?
1: बस मैं आया था, मेरे को हो गया 25 तारीख को आया था मैं।
0: चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम वेलकम बैक, वेलकम बैक मेरे भाई।
1: आपसे मिलता हूँ भाई मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल मेरा जान, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके भाई,
0: ओके
1: भाई,
0: डन है मेरा भाई, डन डन डन डन डन, थैंक यू सो मच। और भाई के बाद जो है एक मैसेज आया मेरे पास कि एक बार लाइव गाओ ये रहा। भाई मैं गा नहीं सकता रहा लाइव, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे नहीं है अलाउड, पर मैं इसलिए अपना प्रोमो चला दिया मैंने आपको। पहले मैं करता था लाइव रैप, बहुत सारे लाइव रैप गाए हैं मैंने,

0: हुसैन अहमद भाई। और एक मैसेज है, हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कह रहे हैं कि जस्ट हियरिंग योर वॉइस रिफ्रेशेस माय मूड। वन रीजन इज दैट लिसनिंग टू द कार ब्रिंग्स पीस टू माय हार्ट, एंड द अदर इज दैट लिसनिंग टू यू वॉशेस अवे ऑल द टायर्डनेस ऑफ माय डे। योर वर्ड्स आर ऑलवेज कंफर्टिंग एंड इंस्पायरिंग मी। आई लव ब्लेस यू एंड रिवॉर्ड यू विद स्प्रेडिंग सच ब्यूटीफुल रिमाइंडर्स। भाई दिस इज सच अ क्यूट मैसेज। अब्दुल वाह भाई, वाह भाई को बहुत सारा प्यार भर भर के वाह भाई, चार दिल भेज रहा हूँ, मेरी तरफ से कबूल करो। एक और कॉल आ रही है। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। लो जी फोन ही कट गया। और ये भाई कह रहे हैं कि ढोल बजा दो। एक सेकंड रुको। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई, कैसा है?
0: बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आपके क्या हाल है?
1: मैं ठीक हूँ
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: आप कैसे? ठीक है,
0: एकदम टनाटन भाई, एकदम टनाटन, टिप टॉप।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: मैं तो अभी रेडियो ऑन किया, अभी तुम्हारा शो सुन रहा हूँ।
0: बस अभी स्टार्ट ही किया था, अभी मतलब दुकान का शटर खोला ही था मेरे जान, बस अभी अभी दुकानदारी शुरू ही कर रहा हूँ मैं। आप दूसरे ग्राहक है। सब सब सब बढ़िया भाई, सब शानदार। अच्छा आप ही तो नहीं है वो?
1: हाँ?
0: आप ही तो नहीं है वो?
1: मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आप वो ये फैन कबीर चाचू
0: का पता नहीं, पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं। कभी कोई मुझे मुबारकबाद दे के चला जाता है, कभी कोई चाचू के निकल जाता है। ज्यादा फ्री हो रही है पब्लिक। पता नहीं क्यों बोलते भाई, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है। अच्छा वो उसी वजह से अब समझ में आया, सर्वर भाई का किया धरा है, अब समझ में आया। अब मैं समझा, ठीक है, इसका हिसाब होगा, इसका हिसाब होगा, इसी धरती पे होगा, बख्शा नहीं जाएगा इनको। देखता हूँ इनको क्या कर सकता हूँ मैं। अच्छा वो आपने क्लियर कर दिया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। स्टोरी बस शुरू होने वाली है कुछ देर में, 7-8 मिनट बाद। ओके मेरा भाई, ख्याल रखिए। और भाई के बाद मैसेज अब्दुल नवीद साहब का, गुड इवनिंग ब्रो, गुड इवनिंग मेरे भाई। और मैसेज क्या है यार, बास भाई लिखते हैं हमेशा, अस्सलाम वालेकुम कारी मौलाना कबीर साहब, मैं सबक सुनाओ पहले तो बदतमीजी। अरबाज भाई एक और मैसेज, राशिद साहब वालेकुम अस्सलाम। और एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, अरे हमारा भी सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कृष्णा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और फरद भाई थैंक यू सो मच। और भाई एक और मैसेज आया था बीच में छूट गया, ये कह रहे हैं ढोल बजा दो, बिना मतलब के फ्री फंड के ढोल अशफाक भाई के लिए बज रहे हैं। अशफाक भाई पता नहीं क्यों बजा रहा हूं मैं, लेकिन मुबारकबाद, पता नहीं क्यों। अशफाक भाई आर यू हैप्पी? थैंक यू सो मच। एक और कॉल आ रही है, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, एकदम मीटर में बोला है आपने। क्या चल रहा है भाई?
2: कैसा मेरा भाई?
0: एकदम भला चंगा भाई, एकदम भला चंगा। आप सुनाए।
2: चल ये रहा है कि अभी भी सो के उठा भाई।
0: अच्छा अभी भी सो के उठे हैं ये? आज शहजादे साहब ये क्या हुआ, आज कैसे हुआ ये हादसा?
2: ये बस गाड़ी में बैठे बैठे कुछ ऐसा चल रहा था कि नींद आ गई
0: है। ये मुझे पता नहीं क्यों सरकैज़म क्यों लग रहा है, मुझे पता नहीं।
2: मेरे को नींद आई है तुम्हारे शो के, मैं मेट में उठाऊं जिस तरह तो शाम के अस्कार चल रहे थे।
0: अच्छा ओके, तो नींद पूरी नहीं हुई है?
2: हाँ हो गई भाई,
0: लग नहीं रहा मुझे। मुझे लग रहा रात में भी आपके पास वाली रीले आ रही हैं कि घर पे बैठ के साबुन कैसे बनाए। इस वजह से जाग रहे हो?
2: रात नहीं, नहीं रात जाग नहीं रहा था, नींद वगैरह वैसे पूरी है।
0: हाँ हाँ,
2: बस वो मामला ऐसे होता है ना, कभी कभी कुछ सुन के नींद आ जाती है।
0: अच्छा ओके,
2: काम चल
0: रहा। मुझे लग रहा है कि रात का टॉक टाइम ज्यादा हो रहा है मेरे भाई।
2: कैसे हो? ठीक हो?
0: मैं ठीक हूँ भाई, एकदम शानदार।
2: भाई वो पूछना ये था कि आपने शटर खोला तो आपके पास सूजी है?
0: भाई सूजी मांग रहे हैं ये, वो देंगे भी आपको आगे। आगे बात कर लेंगे आपसे, आपस से बात कर लेंगे। ये मैंने रखे हुए दो तीन लड़के, ये बताएंगे आपको, ठीक है?
2: एक दो किसको बात नहीं
0: है?
2: आप यकीन करो मुझे हंसी तो नहीं आ रही है।
0: हाँ
2: कल बाद में निकल के, ये एक बड़ी पुरानी वीडियो है कि आपके वो इंडिया की बनी है।
0: हाँ, वो कानपुर की वीडियो है। यस।
2: हाँ,
0: हाँ, हाँ, हाँ,

अरे कौन पापा बन गया, मैं नहीं बना यार अरबाज भाई, मैं नहीं बना हूँ, और कोई मसला नहीं है, आपको मुबारक हो। अरे क्यों मुबारक हो रे भाई, किसने अफवाह फैलाई है? मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अरबाज भाई, जिस दिन बनूंगा इंशाल्लाह ताला मैं चौड़े में बताऊंगा रेडियो पे। भाई खादिम भाई कह रहे अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह नवंबर में पाकिस्तान जाकर रेलगाड़ी में सफ़र करूंगा। कर लो थोड़ा सा खादिम भाई, कर लो थोड़ा सा, ये देसी चीज़ें कर लेनी चाहिए। मैं तो लोगों से अर्ज करता हूँ, जिन लोगों को यहाँ की हवा लग गई है, जो वहाँ पर जाके क्योंकि कतर ने बिगाड़ दिया ना लग्जरी, देखिए थोड़ा सा बसों बसों में घूमो भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं भाई? ओके ये मैसेज क्या है यासिन मुल्ला भाई ने, यासिन मुल्ला भाई वो मैं मैसेज कर देता हूँ आपको। ओके तो एक और मैसेज है भाई, कि क्या कबीर मामू शटर खोले हो इनाम का, ये अच्छा इसका क्या लिखा है एप्लीकेशन। सरताज भाई थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, जिनसे बात हो रही है आपकी उनसे बात करते रहें, बाकी मैं उनका मैसेज आपको बता दूंगा। वालेकुम सलाम। अरे सुमुल बहन नहीं हुआ है ऐसा कुछ, ये मेरा भाई क्या करूं मैं पब्लिक अरे कुछ नहीं हुआ ऐसे जो मुबारकबाद दे रहे लोग, मैं नहीं बना हूं पापा भी, इंशाल्लाह जब बन जाऊंगा तो आपको बता दूंगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है काम का लोग मुबारकबाद दी जा रहे। अरे अफवाह मेरे इतना बड़ा बन गया मैं। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है? मैं बढ़िया भाई शानदार। मुझे नहीं बताया, अरे जब या तो मैं ढंग से बता नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम भाई, लव योर वॉइस, वांट टू मीट यू, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत सारा प्यार भाई को। कामरान भाई बिल्कुल, और कामरान भाई क्या डीपी लगाया हुआ है, एकदम शानदार क्या। और इनके बाद जो मैसेज आया है, इरादा तो करो, इरादा पूरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ करें मोहम्मद भाई दुआ करें। और समूल बहन कह रही हैं कि मामू तो बने हैं, मैं मामू बनाऊँ कैसे? मुबारकबाद भी दे रही हैं उसकी आप, मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम अशफाक भाई थैंक यू। खादिम भाई ने मैसेज किया है, खादिम भाई शायद मेरी बात लोगों ने सुननी, अभी क्या है, एक भाई ने मैसेज किया है क्या हाल है भाई? मैं बढ़िया भाई, एकदम टना टन शानदार बढ़िया आला। और मैसेज और है, पता नहीं कैसे भाई हैं आप, अरे मेरे बच्चों की माँ, अरे हाँ वो तो ठीक है, वो तो मैं मान रहा हूँ सुम्बुल बहन, लेकिन आप मेरी बात को नहीं समझी, वो तो ऑब्वियस सा है ना, मुझे लगा कि मैं अभी लेटेस्ट बनाऊँ इसलिए पूछा मैं। और बाकी मैसेज भाई कुछ तो होगा तभी तो अफवाह उड़ी है, अरे कुछ भी नहीं है, वही तो परेशानी है बहन सितरा बहन, मेरी बात को समझिए, ये पता नहीं कहाँ से निकली है हवा, ये कमाल हो गया। एक मैसेज है, अल्लाह ताला आपको एक नेक औलाद अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन। एक मैसेज, चाचू क्या हाल है? मैं बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह एकदम शानदार मिस्टर खान साहब। और एक मैसेज है, कबीर भाई जो आपने कल कहानी सुनाई थी वो मैंने अपने मेडिकल स्टूडेंट्स अपने मेडिकल बैच में सुनाई, एंड लोग बड़े हैरान थे कि उनको कैसे इस बारे में पता नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच स्टोरीज एंड रिमाइंडिंग अस कि स्टोरी टेलिंग इज स्टिल एन आर्ट दैट एग्जिस्ट, एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर्स इन कतर, एंड आई मीन द बेस्ट स्टोरी टेलर सो फार, थैंक यू सो मच, दैट इज सच अ स्वीट जेस्चर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साद साहब। डॉक्टर साद जो हैं वो जुड़े हुए हैं यहाँ पे, डॉक्टर हैं, उन्होंने मैसेज किया इतना स्वीट कल की कहानी के बाद, थैंक यू सो मच सर, रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एक मैसेज है, अरे भैया यार ये मुबारकबाद बंद नहीं हो रही है, कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ नहीं है गड़बड़ यार बहुत तेज हो रही है पब्लिक, जबकि कोई ज़रूरत भी नहीं है इसमें तेज़ी दिखाने की। अच्छा एक और मैसेज है, कहानी से जुड़ा हुआ ये, देखो मैं आज की कहानी पहले ही मैं थोड़ा सा शीर्षक बता देता हूँ, एक टीज़र दे देता हूँ। तो ऐसी स्टोरी आपने शायद इससे पहले नहीं सुनी होगी, आई मीन इस कैटेगरी की मैंने बहुत सारी सुनाई है, पर आज जो मैं सुनाने आला हूँ अलग चीज़ है भाई। कल तो मैंने बहुत ही अकलमंदी की सुना दी, आज थोड़ी और एक मैसेज है, कैन यू शेयर मी यस्टरडे स्टोरी? ओके एक और मैसेज, कबीर भाई कोई इंडिया से आ रहा हो तो आगरा से पेठा मंगा दो भाई इंडिया से कोई आ रहा होगा तो सबसे पहले मैं पेठा मंगाऊंगा, फिक्र ना करो, आगरा की तरफ से कोई आ नहीं रहा ना भाई। क्या है आपकी हालत मुबारकबाद की बात थैंक यू मोहम्मद भाई। और मैं अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू, व्हाट इज योर फेवरेट हिंदी सॉन्ग? माइन इज उड़ी उड़ी, आई हैव लिसन टू ऑल योर स्टोरीज इन दिस वीक। अलीना स्वीट हार्ट थैंक यू सो मच, आई मिस्ड योर मैसेज, पता है मॉर्निंग में हर रोज अलीना का मैसेज मेरे पास आ जाता था, शी इज सच अ स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच। एंड हिंदी सॉन्ग बाबू, हिंदी सॉन्ग तो ऐसा कुछ अभी जहन में नहीं आ रहा, मैं हिप हॉप ही सुनता हूँ मेनली, तो अभी तो आवारापन के चल रहे हैं मेरे जहन में गाने बस, बट थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। क्या चल रहा है मामला, ये दिल्ली से कुछ चाहिए तो बताइए, बिल्कुल चाहिए, कौन है ये

0: अभी बताता हूँ, अभी लिस्ट भेजता हूँ। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है? कुछ तो है दया। अरे कुछ नहीं है दया, कामा कहाँ, कुछ भी नहीं है। और क्या लिखा है, क्या लिखा है, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ सेंड। अरे रे रे रे, कुछ लोगों को कहानी मिली ही नहीं थी। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, फिक्र ना करो। और एक और मैसेज है, मुबारक ले ले मुबारक। खाम खाम खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। एहसान उम्मीद कुरेशी भाई, ये है ना, मज़े ले रहे हैं ये, बात खाम खाम है। और एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहानी शुरू कर रहा हूँ मैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 5:32। बहुत मज़े ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। मैं ही मिलता हूँ, मुझे लगता है पब्लिक भरी बैठी होती है, सुबह से इंतज़ार रहता है जब ये शाम में आएगा। एक मुबारकबाद का मैसेज डाल देंगे इसे, अपना काम हो गया। एक प्रोमो के बाद मिल रहे हैं, एंड देन द स्टोरी विल बिगिन। आज की स्टोरी अगर आपने मिस कर दी लाइव तो मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप ये कहानी लाइव सुनने वाले हैं आज की, तो मुझे बताइएगा, मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, इन केस यू लिसनिंग टू मी लाइव राइट नाउ। भाई पता होना चाहिए ना कि सामने कितनी पब्लिक है, तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो एक डॉट या मैसेज, एक इशारा कि आप आज की कहानी लाइव सुन रहे हैं। जस्ट वॉन्टेड टू नो, ओके। एक छोटा सा प्रोमो, 33 सेकंड्स, बस 33 सेकंड्स।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, है सबसे बड़ी दौलत।
0: ओके, तो भैया कल तो मतलब एक कल की अच्छी कहानी की वजह से प्रेशर बिल्डअप हो गया है। कल डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने इतनी तारीफ करी, छोटे छोटे बच्चों ने मैसेज किया, आज बहुत प्रेशर है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। एक मैसेज है, भाई बच्चा तो बड़ा क्यूट है माशाल्लाह, किस पे गया? अरे कौन सा बच्चा है यार, परेशान कर दे। और मैसेज है, भाई वो ड्राइवर हूँ, कोशिश करूँगा लाइव। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम मेरी जान, मैं आपका समझ सकता हूँ। ये हुसैन अहमद भाई भी छिड़े जा रहे हैं, देख रहे हो ना। ओके लेट्स बिगिन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड का बटन मैं भी ऑन कर लूँ। सबसे पहले, इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं। कहानी किसी किसी मुझे एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती। FM 107 किसी भी किसी को सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता हूँ, ना ही कभी देगा। लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है, एंड इसलिए सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज है, एंड यू विल बी शॉक्ड टू हियर टुडेज़ स्टोरी। सो जस्ट रेज द वॉल्यूम। तो मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, और आज का जो किस्सा है ना, उसे सुनाने के लिए तो मैं आपको 2005 में ले जाना चाहता हूं। लेकिन 2005 में ले जाने का मकसद है इस साल में कि कुछ चीजें मुझे पहले बतानी पड़ेंगी, क्योंकि कहानी का सेटअप वैसा है, ठीक है। तो मैं एक एक करके चीजें बता रहा हूं, अपने दिमाग में इस जगह को इमेजिन करना शुरू कर दीजिएगा, कैसी जगह मैं पेंट करता हूं। सो ये जो जगह थी, दिस वॉज एंटवर्प डायमंड डिस्ट्रिक्ट। ये ऐसी जगह थी जहां पे 3 सड़कें एक सामने से दो साइड से आती हैं और एक जगह पे आके रुकती हैं, जहां पर साइड में स्ट्रीट्स के जो आप देखते हैं ना फुटपाथ्स होते हैं, वहां पे स्टील के बोलार्ड लगे हैं, बड़े बड़े स्टील के, ताकि गाड़ी वहां से जा ना पाए, फुटपाथ पे कोई ना चढ़ा पाए गाड़ी। हर एक कोने में कैमरा है इस स्ट्रीट के, हर एक कोने में कवरिंग एवरी टाइल, और दो कोनों में इन तीनों सड़कों के दो हिस्सों में पुलिस तैनाती है, पुलिस यूनिट 24/7 नजर रखती है। और यहां पर एक डायमंड ऑफिस, जहां से बेल्जियम डायमंड ट्रेडिंग होती है, मतलब बेल्जियम की मोस्टली सारी डायमंड ट्रेडिंग यहीं से होती है, और काफी लेयर्ड और काफी कंट्रोल। इनफैक्ट सिर्फ बेल्जियम की नहीं, दुनिया की आधे से ज्यादा, माइंड यू इस बात पे ध्यान दीजिएगा, दुनिया की आधे से ज्यादा जो डायमंड की ट्रेडिंग है पूरी धरती पे, इस पूरे अर्थ पे, यहीं से होकर गुजरती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी यहां पर होगी। $23 बिलियन हर साल का ट्रांजेक्शन है इस जगह से, एकदम टाइटली निटेड नेटवर्क। इनफैक्ट जो इनका सिक्योरिटी सिस्टम है इतना अपग्रेडेड है कि 7 डिजिट, 60 डिजिट का सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब कि

अगर कोई पास ऑन करना चाहे तो हलवा नहीं है भाई। गाड़ी के लिए भी व्हीकल स्कैनिंग्स लगी हुई हैं गेटवेज पर, अलार्म पोल्स सड़कों के बाहर हैं, ऑफिसेज के अंदर हैं, साइड में हैं, एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार बंद सिक्योरिटी वाले हैं जो हर जगह तैनात रहते हैं। सो अब आप समझ लीजिए इस जगह पे किस किस्म की सिक्योरिटी है। और इसके सेंटर में क्या है, एक बैंक। ये कोई आम बैंक नहीं है, आप सिक्योरिटी से समझ गए होंगे। इसे 1960 में बनाया गया था और ये एक डायमंड बैंक है। इट्स नॉट अ नॉर्मल बैंक, ये डायमंड बैंक है। ये आगे जाकर दुनिया का लार्जेस्ट डायमंड इंडस्ट्री फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बन चुका था। एंड माइंड यू, ये कोई ब्रांच नहीं है इस बैंक की। नो नो नो नो, दिस इज नॉट अ ब्रांच, दिस इज द बैंक। इसकी वोल्ट में अंदर बैंक के अगर आप जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे रिसेप्शन है, और अंदर जाके राइट हैंड साइड पे सिक्योरिटी को क्रॉस करने के बाद एक वोल्ट आता है जहां पे डायमंड्स हैं, और इतने खूबसूरत इतने सारे डायमंड्स हैं कि लोन कोलेटरल के लिए यूज करती हैं 8 दुनिया की बड़ी फर्म्स, 8 दुनिया की बड़ी कंपनीज इसे यूज करती हैं। मैं अगर इस तरह से रखूं कि पूरे यूरोप में अगर कोई एक जगह एक कमरा अनटचेबल है तो वो ये है। इन्होंने दुनिया जहां की हर बड़ी बड़ी बड़ी को स्टडी किया और उसके हिसाब से अपने सिक्योरिटी में सारी चीजों को चेंज करते आए हैं। मतलब चोर अगर कोई सवाल पैदा कर रहे हैं, खतरनाक चोरियां कर रही हैं, तो उनका जवाब इनके पास है क्योंकि हर कॉर्नर में कैमरा और स्टील और हर चीज है। तो मैंने इतना लंबा सेटअप क्यों किया ये अब आप समझेंगे। तो 2005 की बात है, यहां पर एक आदमी चलता हुआ आया मार्च के महीने में। ये जो आदमी आया यहां पर, इसने एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स रेंट पे लिया इसी डायमंड बैंक में। इस बंदे का नाम कार्लोस हेक्टर फ्लोमिंबोन। सो कार्लोस ने यहां पर एक डिपॉजिट बॉक्स रेंट पे लिया, उसने सारा पेपर वर्क किया एकदम ऑर्डर में, कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं, और बैंक भी देख पा रहा था, जितने टेलर्स थे जो रिसेप्शन पे थे जो अंदर थे उन्होंने देखा ये बंदा एकदम वेल मैनर्ड, बढ़िया सूट पहना हुआ है, और डायमंड डिस्ट्रिक्ट का बिजनेसमैन सिर्फ दिख नहीं रहा बातों में भी है इसके। ही वाज टॉल, 6'3" का बंदा, ग्रे हेयर थे इसके, ग्रे बाल थे, और उम्र 55 से 60 के बीच में। इंग्लिश जो ये बोल रहा था, अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा था, और बेसबॉल कैप था, एंड बड़ा ही विगरसली फ्रेंडली इंसान कि आए और बात करे। वो होता है ना कि आप देखते हैं बैंक में कुछ जो टेलर्स होते हैं वो कोई कोई चेहरे को पहचान जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो हमारा कस्टमर है बड़ा फ्रेंडली है, अच्छे से बात करता है, और टेलर्स जो अगर मुझे सुन रहे हैं कोई तो उनको कोई ऐसा कस्टमर नजर आता है तो खुश हो जाते हैं कि हाँ यार ये बंदा ठीक है, एंड अल्टीमेटली अटेंशन उस पर जाती है, एंड वही इनके साथ था। सो एवरी टेलर इन द बैंक उनके लिए तो ये फेवरेट कस्टमर था, और कार्लोस भी ऐसा ही था, एक बेहतरीन अखलाक रखने वाला इंसान, डेली बैंक जाता था डेली, और उसने बाकायदा कुछ जमा भी कराया था तो ऑब्वियसली दिख रहा था कि डायमंड मर्चेंट है ये। अंदर जाता था बैंक के अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड ना सिर्फ ये बैंक के अंदर जा रहा था हर रोज या एक दो दिन छोड़ के, मगर इसके साथ वो गिफ्ट्स भी ले जाता था, ये लो चॉकलेट। एंड ऐसा नहीं कि उसके बक्से में कुछ ओ चॉकलेट में नशा था क्या, नहीं नहीं नहीं, जेन्युइन चॉकलेट्स, और ऐसी सस्ती वस्ती चॉकलेट नहीं भाई, महंगी हाई एंड चॉकलेट्स ले जाता था जो कि वो टेलर्स को, सिक्योरिटी गार्ड्स को, अंदर हथियारबंद जो लोग खड़े थे उनको, हर किसी को चॉकलेट देता था, गिफ्ट देता था, एंड ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन के बाद आता था। तो जब भी इसकी एंट्री होती थी सबकी नज़रें इस पर होती थी, सब स्माइल करते थे, ये सबकी तरफ स्माइल करता। सो यू कैन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ अटेंशन ही वॉज गेटिंग। और एक टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि कार्लोस का बैंक में आना बिल्कुल ऐसा था कि जैसे बैंक की लॉबी में रखा हुआ एक फर्नीचर। मतलब कौन ध्यान देता है फर्नीचर पे, नोबडी केयर्स, राइट? क्या आप किसी बैंक में जाते तो ये बोलते हैं कि अरे ये फर्नीचर तो मैं कल आके दोबारा देखूंगा भाई, कुछ तो बात है फर्नीचर में, ऐसा नहीं बोलते आप, बिकॉज फॉर यू इट्स नथिंग। आप अपने काम से आए, अपने काम से काम रखते हैं, आपके लिए एक लॉबी में पड़ा पौधा जो बैंक में लगा हुआ है, यू डोंट रियली केयर अबाउट इट। सो कार्लोस आफ्टर 1 ईयर, बिकॉज एक साल तक वो लगातार जाता रहा,

Thankfully, Carlos became a furniture. ये तो आता रहता है, समझ रहे ना? So he became that for the bank. और जो चॉकलेट वो दे रहा था, it was out of kindness. And ultimately हुआ ये कि साल भर बाद और दो महीने, साल और दो महीने बाद, he became a loyal customer. और इस बैंक का जो Antwerp के डायमंड डिस्ट्रिक्ट के इस बैंक का हिसाब किताब था, वो ऐसा था कि बैंक एक टेयर ट्रस्ट प्रोग्राम लेके आया था 2005 में, और इस प्रोग्राम के जरिए वो उन लोगों को मौका देते थे जो उनके बहुत ही लॉयल कस्टमर्स हैं, कि उनको सहूलत ज़्यादा दी जाए तो उनको एक कार्ड इशू किया जाता था, एक वेलकम किट दी जाती थी, और इस वेलकम किट में एक चाबी होती थी, इट वॉज एन एक्सेस कार्ड, कि वो इसमें एनरोल करेंगे क्योंकि वो लॉयल कस्टमर हैं तो वो बैंक में वॉल्ट तक कभी भी जा सकते हैं, रिगार्डलेस कि बैंक खुला है कि बंद है. और कार्लोस ऑफ कोर्स उसको एनरोल कर दिया गया था बैंक में, क्योंकि ये बैंक का वन ऑफ द लॉयल डायमंड ट्रेडर्स में से एक था. Antwerp एक कंपेरेटिव डायमंड क्वार्टर है, तो टॉप टियर जो मर्चेंट्स होते हैं, जो मिलियंस एंड डॉलर्स को हैंडल करते हैं, तो उनकी इन्वेंट्री को, उनके उनके भरोसे को देखते हुए उनको दे दिया जाता है ये मौका, और पहले तो बहुत दिया जाता था. तो स्टैंडर्ड बैंकिंग जो आवर्स होते हैं, कि मान लो अगर बैंक सुबह के 9 बजे से 2 बजे बंद हो रहा है, 4 बजे बंद हो रहा है, उसके बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि डायमंड की डीलिंग तो कभी भी हो सकती है भाई, कभी भी हो सकती है. तो क्या पता उनको इंटरनेशनल फ्लाइट शेड्यूल्स के हिसाब से डीलिंग करनी हो, इमीडिएट ट्रेड डील्स क्रैक करनी हो, तो वो ये कर सकते हैं, मगर उसके लिए उन्हें पहले लॉयल कस्टमर बनना पड़ेगा, एंड कार्लोस वॉज वन ऑफ देम. एंड कार्लोस के पास जब भी मौका आया कि वो लॉयल कस्टमर बन गया, तो आपके जहन में क्या आ रहा होगा अभी? हाँ, कार्लोस अंदर गया, चोरी करी. नहीं, दैट इज वेरी रॉन्ग. कार्लोस एकदम से बहका नहीं. क्या होता है कि जब आप कोई चीज करने के लिए जाते हैं, यू काइंड ऑफ टेक अ टर्न, एक शार्प टर्न, तो गाड़ी भी पलट सकती है, तो वो शार्प टर्न नहीं ले रहा था. होता है ना, आप सिग्नल पे खड़े हैं, आपको यू टर्न मारना है, तो गाड़ी को स्लो मोड़ते हैं. अगर आप बिल्कुल स्पीड देके 80 की स्पीड में यू टर्न लेना चाहेंगे, यू कैन नॉट टेक इट. वैसे ही कार्लोस ने किया. कार्लोस ने सीधा नहीं किया, अब तो मैं चोरी करूंगा, अब छोड़ूंगा नहीं. नहीं, कार्लोस को जब ये लॉयल्टी प्रोग्राम में एनरोल किया गया और वो एक्सेस कार्ड दिया गया, तो कार्लोस इस वक्त जाने लगा बैंक में शाम के 6 बजे 7 बजे, समटाइम्स एट 11, एंड जाता बाहर निकलता, जाता बाहर निकलता. मगर फिर एक वीकेंड आया, मार्च की 7 तारीख 2007, यानी जो वीकेंड था थोड़ा सा अलग था. कार्लोस जो था वो सिंपली चलता आया बैंक की तरफ, एंड इट वॉज अ फ्राइडे, शाम का वक्त था, बिल्डिंग गया, वो कार्ड जो उसके पास था स्वाइप किया, सिस्टम ऑब्वियसली उसे रिकग्नाइज कर चुका था, उसकी क्रेडेंशियल्स के हिसाब से उसे ऑथराइज्ड एंट्री दी गई, और अपने आप सारे के सारे पैरामीटर्स, सारे लॉक्स अपने आप खुल गए. उसके बाद वो सीधा अंदर गया सबट्रेनियन सेफ डिपॉजिट वॉल्ट एरिया में, और इतने दिनों से जो वो चाबी बनाने की कोशिश कर रहा था वो बना चुका था. अंदर जाने के बाद ही वॉज एंटायरली अलोन, अकेला था वो. कोई फिजिकल टूल्स की जरूरत नहीं, कोई फोर्स एंट्री नहीं, किसी किस्म की तोड़ा फाड़ी नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं, कुछ नहीं. उसने वॉल्ट खोला, 1,20,000, ये नंबर याद रखिएगा, 1,20,000 कैरेट ऑफ डायमंड्स बैग में रखे, वही कार्ड से एग्जिट लेके बाहर निकल गया. जब ये फ्राइडे को हो चुका था सब कुछ 2007 में, तो कोई अलार्म नहीं बजा. क्यों बजेगा अलार्म? कस्टमर था, लॉयल कस्टमर, वो आया, कैमरे ने देखा भी, सबने देखा भी, ही वेंट इनसाइड, बाहर आके चला गया. पूरे के पूरे वीकेंड पर पुलिस वाले, कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड विद गन्स जो बाहर खड़े हुए थे, सब लोग, इवन जो बैंक के अंदर थे, वो उस चीज को गार्ड कर रहे थे जिसे वो खाली करके चला गया है. अंदर कुछ नहीं है और सब गार्ड कर रहे हैं वीकेंड तक. मंडे मॉर्निंग जब बैंक रीओपन हुआ, तो बेल्जियन पुलिस को बुलाया गया, क्योंकि उनकी आंखें खुली, और बेल्जियन पुलिस जब वहां पहुंची तो उनके कुछ भी समझ में नहीं आया कि हैं कैसे.
मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, इसकी सिक्योरिटी आप समझ गए थे ना। तो ये लोग इतने शर्मसार हो चुके थे कि इन्हें समझ में नहीं आया कि यार, क्योंकि मेरी आपकी तरह इन्होंने भी बहुत कहानियां सुनी थी कि लोगों ने टनल बनाई, टनल से बैंक के अंदर आए, चोरी चकारी करी, भाग गए, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। ये बंदा सीधा आया, कैमरे के सामने चलता हुआ अंदर गया, खोला, बाकायदा कार्ड लगा के साइड में पुलिस वाला खड़ा हुआ है और निकल गया। एक चीज ये बंदा और जानता था कार्लोस, इसे पता था कि बेल्जियम जो है वो शेंगेन एरिया में आता है। शेंगेन एरिया में जो कंट्रीज आती है उनका थोड़ा सिस्टम अलग होता है, यानी कोई फिजिकल बॉर्डर चेक पॉइंट्स, पासपोर्ट कंट्रोल्स कुछ नहीं होता, कोई कस्टम की सर्च नहीं होती। तो ही कैन ट्रेवल बाय लैंड, तो अगर वो गाड़ी से निकलेगा और पड़ोस की कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड जाना चाहता है, कोई मसला नहीं है। वो आराम से डायमंड लिए सूटकेस में डाले, जेब में डाले, उसकी मर्जी, और रेंटल कार लेके वो घूम रहा था और क्रॉस कर रहा था इंटरनेशनल बॉर्डर्स आराम से। अब आप सोचेंगे 1,20,000 कैरेट के डायमंड, तो इट साउंड्स रियली बिग, बट इन रियलिटी इनका वजन ज्यादा नहीं है, 25 किलो है ना, एंड काफी आसानी से हाइड किए जा सकते हैं। तो ये गोल्ड और कैश तो है नहीं, डायमंड्स एयरपोर्ट पे मेटल डिटेक्टर्स ट्रिगर नहीं कर पाते इनकेस यू डोंट नो, और कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं कि आप सीरियल नंबर है, कुछ है, कोई मैकेनिज्म है ना, डायमंड के अंदर कौन सा बिल्ट इन ट्रैकिंग सिस्टम लगाएगा कोई, कुछ भी नहीं। कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड किया जो उसे रिकॉर्ड करना था। 60 घंटों तक सिक्योरिटी वाले गार्ड कर रहे हैं एक जगह पे, मशीन्स के हिसाब से सब कुछ चंगा सी, सब बढ़िया है, मगर कुछ भी बढ़िया नहीं है। अलार्म ट्रिप नहीं हुआ, कैसे ट्रिप होगा, ट्रिप करने के लिए कुछ हो तो सही। दिस बिकेम अ जोक। आप अपने आप को उनके जगह पर रख के देखिए, क्या आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जिसपे अल्टीमेट सिक्योरिटी है, मतलब आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं दुनिया उसके बारे में कह रही है कि भाई कहीं भी चोरी कर लो, यहां नहीं कर सकते, और सुबह आप पहुंचते हैं ऑफिस में और आप देखते हैं कि भाई है। 2007 की इन्वेस्टिगेशन जब ये हुई तो ये तक बताना मुश्किल था कि चोरी हुई कब, ये ही नहीं समझ में आ रहा कि हुई कब। टोटल 28 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ डायमंड्स वर गॉन। 7 दिन तो ये समझने में लगे कि हुआ कैसे, क्या हुआ। शर्म के मारे ना तो पुलिस वाले ना बैंक वाले किसी से बात करने वाले थे, बिकॉज दे डिड नॉट नो आंसर क्या दें। 12 मार्च को किसी से पूछा गया, भाई क्या चक्कर है यहां पे, कौन आया था, कैसे आता है, कुछ नहीं बता पा रहे थे वो। यहां पे कार्लोस ने क्या किया था, ही यूज्ड हिज चार्म, चॉकलेट्स एंड ऑफ कोर्स दोस्ती। ये ओवर फ्रेंडली बन जाना, वो जब डेली डेली बैंक आ रहा था ऐसा दोस्त बन गया कि वो दोस्ती उसके लिए ब्लाइंड स्पॉट बन गई। जैसे लोग होते ना आपसे जुड़ जाते हैं, आप बोलते हैं नहीं यार ये तो नहीं कर सकता है, ना ना ना ये तो नहीं करेगा। बैंक वालों के लिए कार्लोस बिल्कुल वैसे ही हो गया, कहता नहीं नहीं नहीं सर कार्लोस नहीं कर सकता, सर कोई भी नाम लीजिए कार्लोस नहीं कर। एंड दे वर अंडर दिस इंप्रेशन कि ये तो नहीं करेगा। एंड कार्लोस की बहुत तेज खोपड़ी थी, कार्लोस को पता था कि अगर वो अगले दिन नहीं आया तो सीधा शक उस पर जाएगा। कार्लोस आफ्टर स्टीलिंग ऑल द डायमंड्स फिर भी बैंक आया और बैंक आके पूछा क्या हुआ यहां पर, इतनी पुलिस क्यों है। पता नहीं कार्लोस सर, पता नहीं कैसे डायमंड चोरी हो गए। एंड 2-3 दिन और आया सप्रेस करने के लिए कंडीशन को, और उसके बाद आना बंद कर दिया। 14 मार्च को जाके एक स्केच बना, अलग अलग लोगों ने जवाब दिए कि यहां पे ये फेवरेटिज्म है, ये फेवरेटिज्म है, ये फेवरेट कस्टमर है, और चेहरे बनाए गए। और एक चेहरा तैयार किया जो मिला जुला चेहरा था सबकी बताने पे, और पुलिस वालों ने इनाम लिखा, 2.6 मिलियन डॉलर्स का इनाम रखा गया। एक खातून थी डोमिनिक, वो स्पोक्स पर्सन थी और उन्होंने इनाम रखा था। बैंक वाले बयान देने से मना कर रहे थे लेकिन दूसरी अथॉरिटीज ने आगे आके बयान दिया।
18 मार्च को एक इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स जो थे उन्होंने हिम्मत करी और बैंक के बिहाफ पे, क्योंकि बैंक तो शॉक में था, सत्ते में था, उसके समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं, तो उन्होंने बताया कि ये सच है, एक इंसान ने चाम और चॉकलेट यूज करके खाली कर दिया है वॉल्ट। जो सिक्योरिटी पर्सनल थे जो काम कर रहे थे बैंक की सिक्योरिटी पर, उनमें से एक बंदा था जिनका नाम था ब्रूस शेनियर, और ब्रूस ने अभी बंदा पकड़ा नहीं गया है, कार्लोस अभी कहाँ है, किधर है, वो कार्लोस है भी कि नहीं लोगों को नहीं पता है, और उन्होंने इसे बैंक की सिक्योरिटी में एक चैप्टर बना दिया, चैप्टर ताकि लोगों को सिखाया जा सके, चैप्टर का नाम सोशल इंजीनियरिंग। पे थोड़ी डेवलपमेंट हुई, 4 अप्रैल 2007 को फ्रैंकफर्ट में एक एलीजे मिशाली करके एक बंदे को पकड़ा गया, ये पता लगा पुलिस को कि ये बंदा जो है रेंटल कार में इधर से उधर घूम रहा है, उसे पकड़ा, कोई सबूत नहीं, छोड़ना पड़ा। एन ये साल जाता रहा, धीरे धीरे केस कोल्ड होता रहा, लेकिन मीडिया पब्लिक सब हंसती रही, बैंक वाले अपने आप पे हंस रहे थे और बैंक वालों पे उसके इंस्टीट्यूशन वाले हंस रहे थे। फिर कुछ महीनों बाद एक चीज हुई, वो ये कि पासपोर्ट पे जब उन्होंने चेक करने की कोशिश करी तो उन्हें अपने हाल पे और भी बुरी हंसी आ रही थी, बिकॉज कार्लोस कोई था ही नहीं। वो जो पासपोर्ट था इस बंदे ने अर्जेंटीना में किसी से चुराया था, वो बंदे का पासपोर्ट भी कहीं और खोया था, और चुराने के बाद वो यहां पे आके बैंक में गया, पासपोर्ट से अकाउंट खोल लिया। एंड इन दोज डेज 2005-2006 के दौरान ज्यादा डिटेल्स नहीं मांगते थे, कोई केवाईसी कोई ऐसा कुछ नहीं होता था, यू सिंपली गिव योर पासपोर्ट, अगर आपके पास है जमा करने के लिए कुछ तो आप बड़े साहब हैं, आप अकाउंट खोल सकते हैं। एन अकाउंट खुल गया था। ये जब पता लगा तो इन लोगों के आंसू भी सूख चुके थे तब तक। कोर्ट रूम तक जब बात पहुंची तो एक पूरा कागज तैयार किया गया सजा देने के लिए, सामने एक खाली चेयर, कोई वर्डिक्ट नहीं, खाली चेयर, और जज साहब को सुनाना पड़ा कि अरेस्ट के बाद इस बंदे को 5 साल की जेल दी जाएगी और पूरा भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन सामने खाली चेयर को वर्डिक्ट सुनाया जा रहा था, बेल्जियम के कानून के पास कोई जवाब नहीं था। 41 ब्लू डायमंड्स, $28 million, 120,000 कैरेट ऑफ डायमंड वॉज गॉन। पुफ, कोई मैजिक नहीं, कोई ब्रेक थ्रू नहीं, कोई लॉक नहीं तोड़ा, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन गायब। एक अखबार ने छापा था, नथिंग वॉज ब्रोकन, एवरीथिंग वॉज ब्रोकन। बैंक ने गुस्से में आकर अपने रूल बुक में लिटरली, इन अदर वर्ड्स, ये शामिल कर दिया था कि कस्टमर कितना भी अच्छा हो, कर्टेसी गई भाड़ में। एंड लिटरली एवरीबॉडी वाज सो अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स, क्योंकि ये केस सॉल्व ही होके नहीं दे रहा था। एंड वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो डायमंड्स हैं ऑफकोर्स वो इतने प्रेशियस हैं कि कहीं पर ही बेचे जाएंगे तो हमें तो पता लग ही जाएगा, पर किसी को नहीं पता लग रहा था, किसी को नहीं। एंड आपको एंडिंग की तलाश है ना, लेट मी गिव यू एन एंडिंग, आज तक नहीं पकड़ा गया है वो बंदा, वो असलियत में कौन था नोबडी नोज। एक नाम सामने आया था, यशुदा निशाकी नाम का बंदा, एक नाम अमेरिका ने जारी किया था, मगर ही वॉज नेवर कन्विक्टेड, कभी पकड़ा नहीं गया। जो अरेस्ट वारंट्स थे, जो उसे पकड़ने के लिए सजा देने के लिए कागजात थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं, एक्सपायर। 2019 में जो पनिशमेंट उसे मिलनी थी, ट्रायल पूरा होना था, वो भी एक्सपायर्ड है। अब आई डोंट नो, मैं से जीनियस बोलूं ना बोलूं, आई जस्ट डोंट नो। वो जो डायमंड्स हैं
जो चोरी हो चुके हैं आज भी बैंक इंतजार कर रहा है कि कहीं ना कहीं बेचेगा और पकड़ा जाएगा। उनके हिसाब से वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये कह रहे हैं कि डायमंड्स वो लेके गया है 1,20,000 कैरेट बहुत होता है, वो कहीं बेचेगा।

0: उसे पकड़ लेंगे, उसको तो कुछ भी नहीं मिला, डायमंड लेके चला गया।
1: बट दरअसल 28 मिलियन डॉलर्स का नुकसान तो हुआ ही है। अब वो उन डायमंड्स का क्या कर रहा है, किधर बेच के पकड़ा नहीं गया है, वी डोंट नो। बट एज इफ नाउ 20 साल हो चुके हैं एंड अभी भी ये जो इतना बड़ा धब्बा और इतना बड़ा धक्का वो बैंक को दे के गया है, वो आज भी इतिहास की, इवन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी कही जाती है। क्योंकि एक बंदे ने कोई सुपर प्लान, कोई सुपर पावर, कोई मैजिक, कोई कानून के क्या कहते हैं उसको, कानून को नहीं, थोड़ा टेक्निकली थोड़ा है ऑफकोर्स चोरी करी है, मगर ऐसे नहीं कि टीम बनाएंगे, जमीन में गड्ढा खोदेंगे, ऊपर निकलेंगे, वोल्ट के चोरी करेंगे और भाग जाएंगे। ही जस्ट सिंपली केम एंड उसने ये दिखा दिया, ये साबित कर दिया कि सिक्योरिटी आप कितने भी बड़ी कर लीजिए, इंसानों में जो दिमाग में सिक्योरिटी होती है उसका लॉक तोड़ना बहुत आसान है। एंड दैट इज वॉट ही प्रूव्ड। दिस इज अ स्टोरी एंड लेट मी टेल यू वन मोर फैक्ट, इसका कोई भी पेज नहीं है, विकिपीडिया पेज नहीं बना आज तक, क्योंकि इतनी शर्म आई बैंकों के, उन्होंने कोई पेज बनाने नहीं दिया। आज भी लोग वहां जाते हैं, ये किस्सा बहुत मशहूर है बेल्जियम में, जब भी यहां पे लोग जाते हैं दे वांट टू डिस्कवर, आज भी वो डायमंड्स बाकी, एक एक एक चीज भी नहीं मिली है उन्हें 20 ईयर्स डाउन। तो ये कहानी अब आपके हवाले है, आप बताइएगा आपका क्या कहना है। आई डोंट नो इफ इट वॉज शॉकिंग फॉर यू या क्या रिएक्शन होगा, पर मुझे जानना जरूर है। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। डू लेट मी नो कैसा लगा आज का आपका किस्सा, आपको ये किस्सा आपको कैसा लगा। एंड मैं देख रहा था क्या कहेंगे लोग, आई रियली वॉन्ट टू नो। बाकी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, भाई सुपर स्टोरी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। समझ नहीं आ रहा बैंक वालों पर हंसूं या रोऊं, यही बैंक वालों का हाल है भाई, उन्हें भी नहीं पता कि मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। वो कह रहे हैं कि इंटरपोल सर्च नहीं हुआ, भाई सर्च हुई, 20 साल हो गए भाई, कितना सर्च करेंगे, वो भी थक गए, उन्होंने बोला ठीक है जान दो भाई हमारा मत खराब कर दिया इस आदमी ने। तो ऐसा भाई, इट्स बीन 20 ईयर्स, 2005 की बात है ये। एक और मैसेज आया दानियाल साहब का, लिखते हैं दानियाल काशिफ साहब की स्टोरी सुन के मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर ने जहर खा लिया खा लेना चाहिए, उनके पास तो टीम थी, ये तो कल्ला ही कल्ला ले गया सब। खादिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया फोटो भेजने के लिए। बाकी मैसेज में कुछ दिन पढ़ दूँ, एक और मैसेज पढ़ ही देता हूँ, चलो हम हैं तो अभी। मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, अमेजिंग स्टोरी, समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे एक इंसान डीप प्लान एंड सब फेक। भाई ऐसे ही होता है ये, मैं बताऊं, कुछ लोग दिमाग से खेल जाते हैं, कुछ लोग ओवर द टॉप सोचते हैं ना, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, कोई ऐसा निकल के आता है बीच में से, सिंपल तरीके से सब लूट के ले आता है। क्या ये तो नटवर लाल का बाप निकला? जी हाँ, मैं मानता हूँ भाई ये उनका नटवर लाल है, बेल्जियम वालों का। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड इवनिंग, आज का मैसेज ज़रा लॉन्ग है लेकिन आपके लिए खास है कबीर भाई, आपकी स्टोरीज़ वाकई बहुत कमाल की होती हैं और अंदाज़े बना का तो क्या ही कहना, जिस अंदाज में आप स्टोरी सुनाते हैं वो तो लाजवाब है। स्टोरी आप सुना रहे होते हैं लेकिन वो स्टोरी हमारे माइंड में ऐसे चल रही होती है जैसे कोई फिल्म के कैरेक्टर्स बन रहे होते हैं, सीन्स चल रहे होते हैं। इट इज़ सो अमेजिंग ये सब स्टोरी सुनने के अंदाज़ की वजह से, रियली थैंक्स अ लॉट, जो आप हर शाम बेहतरीन बना देते हैं स्टोरी से, और जिस तरह आप स्टोरी सुनाते हैं उसमें वाकई मेहनत लगती है और आपकी एक एक बारीक से बारीक बात तक बयां करते हो, वाकई कमाल है। बहुत सारा प्यार मोहब्बत और दुआएं भाई, दिस इज़ अ लॉट, थैंक यू सो मच। मैं भाई इमोशनल कर दिया यार आपने, यार क्या कह गए यार आप, थैंक यू वकास भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, दिल धड़का दिया जोर से भाई ने यार कॉल उठा लेता हूँ फिर ज़रा जिंगल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, कैसे हैं?
0: बढ़िया भाई एकदम, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह
2: भाई, आपकी स्टोरी मैंने सुनी, मुझे अपना किस्सा की याद आ गया।
0: अपना किस्सा याद आ गया है?
2: जी।
0: क्या याद आ गया भाई?
2: भाई हुआ कुछ यूं कि मैं ग्रीस में था, तो एक जन जाना तबीयत कुछ खराब हुई।
0: हाँ।
2: तो मैं हॉस्पिटल में गया,
0: ठीक है,
2: तो वहाँ पे मेरे साथ जाना एक और मेरा जाना वो पाकिस्तानी था, तो उससे जाना वो बातचीत हुई, मुझे पूछने लगा कि हाँ भाई साहब काम का आगे पीछे, और वहां से हमारी दोस्ती स्टार्ट होगी।
0: ठीक है,
2: दोस्ती क्या चला एक दूसरे को जाना। तो

0: नंबर जो है ना वो उसका ले लिया, बोला कोई काम का जो है ना वो कुछ हो तो बताना उसको, मैंने काम तक लगवा दिया।
1: अच्छा,
0: तो भाई एक महीने तो उसने काम सही किया, दूसरे महीने में उसने ऐसा मुझे जो है ना वो किया, जैसे कहते हैं ना जब भी बोलो वो आधा किलो चीनी मुंह में लेके फिर उसके बाद बोलता था, पहले चीनी भी शायद लेके बोलता
1: था। अच्छा,
0: तो भाई हुआ कुछ यूं के दूसरे महीने मुझे बोलता है कि भाई जो है ना मेरी अम्मी बहुत बीमार है यार, कुछ जो है ना पैसे चाहिए, इस बार की सैलरी मुझे चाहिए और नेक्स्ट मंथ की तुम ले लेना।
1: अच्छा,
0: मैं बोला उसने क्या किया, बॉस से भी एडवांस ली और मुझे बॉस पूछता है कंफर्मेशन के लिए कि वो मोहम्मद को पूछ रहा है कि क्या, तो मैंने कहा हाँ उसकी अम्मी बीमार है। बोला ओके, 550 यूरो लिया मेरा और 2250 यूरो लिए बॉस से।
1: भाई साहब, अच्छा
0: भाई
1: आपकी कॉल भी उड़ गई किसी से।
0: और जब तो मैं शाम को घर आया मुझे बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ तो पार्सल भेजने, तो भाई जो वो मिलते हैं, मैं बोला ओके बोला चलो कोई बात नहीं, लंच करके फिर उसके बाद वापस जाना मिलते हैं। घर गया कोई नहीं आया, काम पे नहीं आया, लंच के बाद आया ही नहीं। भाई साहब अब मैं सोच रहा हूँ कि करूँ क्या, बॉस बोलता है वो किधर गया, मैं बोला यार मुझे क्या मालूम, मैं बोल रहा था मैं जो वो अम्मी बीमार है वो गया और उसके बाद बोल रहा था मैं आ रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। अच्छा शाम हो गई, बॉस काले कर रहा है बंद, मैं काले कर रहा हूँ बंद, आज के दिन तक वो बंदा नजर नहीं आया।
1: तो उसका एड्रेस नहीं था आपके पास, एड्रेस वेड्रेस है नहीं है?
0: ओ भाई जिधर का था ना, जिधर का स्थान में मैंने उसने वो बताया था कि हाँ ये जो है ना मेरा उस जगह पे घर है।
1: हाँ।
0: तो जब हमने घर वो गए तो उसका जो अब्बू था ना वो सब्जी बेचता।
1: अरे भाई साहब, मैं तो खामखा ही बेल्जियम की कहानी सुना रहा था।
0: वो हाँ। भाई वो बोला कि वो जब वो लड़के गए ना उनके घर तो वो कम कहे उसका अब्बा उसको ज्यादा गालियां दे।
1: ये देखो भाई, ये लेकिन ये सच बता रहा हूँ, अगर ये पूरे फ्लो में लिख दिया जाए ना बहुत बेहतरीन कहानी है सुनाने के लिए, एंटरटेनिंग तो है। मुझे दुख है इस बात का कि आप दोनों के साथ धोखा किया उसने, पर एंटरटेनिंग तो कहानी है भाई। ये तो अभी तक नहीं पता उसका कहाँ पर है, उनके वाले साहब को पता होगा, नहीं पता।
0: तो भाई सही में फिर उसके बाद मैंने अपनी सैलरी से बॉस को भी दिए।
1: हाँ।
0: डबल।
1: अरे यार।
0: ये डबल डबल मेरे साथ काम हुआ।
1: पर उनके वाले
0: था ना।
1: हाँ।
0: तो भाई मुझे तो वो बंदा याद आ गया, मैं बोला यार दुनिया वो पब्लिक पूछ रही है हंसू या रो, मुझे सच में रोना आ गया।
1: पर उनके वाले साहब को भी नहीं पता वो कहाँ पर है?
0: नहीं भाई, उसने वो वाले साहब बोला, उसने जब हम गए तो उसके वालिद ने ना एक अखबार लेके आया बाहर।
1: ठीक है।
0: तो उसने बोला भाई मैंने 5 साल पहले इस बंदे का इश्तहार वो अखबार में दे दिया कि भाई इसके साथ मेरा कोई लिंक नहीं है।
1: अरे भाई ओरे भाई, ये तो बहुत सॉलिड कहानी है भाई। ये
0: भाई
1: तो
0: बोला कि तुम लोग नहीं आए।
1: हाँ।
0: बोला ये कुछ दिन पहले कश्मीर से कुछ लड़के आए थे।
1: हाँ।
0: तो उसको मैंने वो जो ना उनका वो क्या नाम है कुछ जो ना उनके साथ भी कुछ ऐसा ही लफड़ा बना हुआ था, तो बोला कि मेरे साथ एक बार नहीं काफी बार हुआ उस जो ना ये काम हुआ वो उसी की वजह से लोग डर में आते हैं, तो इसलिए मैंने जो ना ये जो ना मेरे पास प्रूफ है
1: ये तो
0: भी मिले मार दो।
1: ये तो ये कहानी तो भाई मतलब सिर्फ आपके लिए थी भाई, मैं समझ नहीं आ रहा, मैंने आपके दुखों को थोड़ा सा हरा कर दिया क्या हुआ है, लेकिन ये कहानी आपके लिए थी भाई, ये तो कहानी जरूर आपके लिए। थैंक यू सो मच, ये शेयर करके हमने एंटरटेन कर दिया, थैंक यू भाई, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत प्यार बहुत प्यार। तो भाई ने जो कहानी सुनाई है भाई, ये बहुत सॉलिड कहानी थी यार, ये तो कमाल की कहानी थी, ये तो मुझे लिख के दे देते यार, थोड़ा सा बता देते फिर कहानी को थोड़ा सा फ्लो में लेके सुनाते, ये भी सुनाने वाली कहानी थी। खैर, जो आज आपने कहानी सुनी है ना, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये ऐसी कहानी है कि मैं समझ नहीं पाया मैं उसको हीरो बोलूँ, जीनियस बोलूँ, विलन बोलूँ, आई हैव नो क्लू, आई डोंट नो व्हाट टू से, व्हाट टू बिलीव, पता नहीं। तो ये पहली मरतबा ऐसे कहानी में हुआ है कि मैं उसको कैटेगराइज नहीं कर पा रहा हूँ, कैटेगोरिकली मैं उसे कहीं रख नहीं पा रहा हूँ, एंटी हीरो है, हीरो है, जीनियस है, यू डिसाइड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: भाई तो आज की कहानी ने बहुत सारे जख्मों को वापस जगा दिया है, ये मेरे समझ में आ रहा है। मैं एक दो मैसेज पढ़ लेता हूँ जरा, एंड प्लीज प्ले योर जिंगल्स। ओके, मेरा वाला ये देखो, मेरा जब कोई ऐसे बोलता था मैं, बड़ी स्वीट स्वीट बात है ये लीजिए बिल्कुल आपके लिए।

Sabas, Carlos Sabas. फरद भाई ने लिखा है, क्या कह रहे फरद भाई, कबीर भाई क्या बात है, स्टोरी तो लाजवाब थी भाई, कहाँ से लेकर आते हो ऐसी स्टोरी भाई? मैं बताऊँ, मुझे रीले भी ऐसे होने लगे भाई, कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ता है कहानी ढूंढने के लिए मालिक। कह रहे कबीर भाई क्या बात है, कार्लोस की तो जय हो, बैंक वाला तो दिन रात जय जयकार कर रहे होंगे, पैसे लेके भाग गया भाई, डायमंड लेके भागा है लड़का। कह रहे भाई ऑनलाइन सुन रहा हूँ, इतना नेटवर्क खराब है, हाँ आजकल हो रहा है। कह रहे क्या 28 million dollars ला के क्या करूँगा उनसे, सोच ही रहा हूँ मैं भाई, हम सोच भी नहीं पाते, मुझे तो पता भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, वालेकुम अस्सलाम। और एक मैसेज आया है हया कुरैशी जी का, उनका कहना है वेरी फनी स्टोरी, ठीक है जो भाई ने कॉल करके सुनाई स्टोरी एंड कर दिया है ना, जबरदस्त कहानी थी इनकी भी, और थैंक यू सो मच कि आपको जो है मेरा वाला जिंगल भी अच्छा लगता है, थैंक यू थैंक यू, दैट्स इट्स अ लॉट टू मी। और हमारी असरा बहन जो है वो कह रही हैं बहन लिखती है, मेरे को ऐसा अर्जेंटली थोड़ा कार्लोस बनने का है बहन ये किधर करने का है, लेकिन मेरे को बताओ, मेरे को भी कार्लोस बनने का है। एक और मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम, ये लिखते हैं भाई इसे पूछो उसका नाम ताहिर तो नहीं है, अरे भाई ताहिर बदनाम हो जाएंगे चार्ली भाई, ऐसा मत करो भाई। कह रहे हैं 16 साल की दोस्ती में जो उसने चूना लगाया है भूल नहीं सकता, लेकिन कसम है कि जिन क्या जिस दिन हाथ आया फिर अपना आखिरी दिन समझो, अरे भाई

0: चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं और इन चीजों से बच के रहें। आज की कहानी आपको बचाने के लिए है, हंसाने के लिए है और बताने के लिए कि ऐसा हर जगह होता है, देसी हो विदेशी हो। यूसुफ भाई कहते हैं अच्छी सी स्टोरी, एक बात वो कैमरा आने के बाद उसका स्केच बनाया तो पकड़ा कैसे नहीं गया, रियली इज जीनियस। फातिमा इन इंडिया टुडे, शी लिसन फ्रॉम इंडिया थ्रू ऐप। फातिमा को बहुत सारा प्यार, और पकड़ा इसलिए नहीं गया स्केच के बाद भी क्योंकि वो बंदा एक तो पहनता था एक बेसबॉल कैप, ठीक है, ऊपर से वो थोड़ा सा नज़रें उसकी ऐसी रहती थी, होता नहीं 6 फुट का आदमी है, उसकी नज़रें नहीं दिख रही, शक्ल नहीं दिख रही। तो आप साइकोलॉजी समझिए कि अगर मैं आप पे बेइंतहा भरोसा करता हूँ, है ना, तो जब मुझे आपके बारे में बताना होगा ना, तो मैं आपको डेली देख रहा हूँ ना, तो फिर भी मुझे आपके फीचर्स इतने वो नहीं होंगे क्योंकि मेरे दिल में कहीं ना कहीं आपके ऊपर अभी भी यकीन है कि नहीं यार ये नहीं कर सकता, समझ रहे हैं आप। तो वो इतना भरोसा जीत चुका था कि पीपल वर नॉट रियली कमिंग फॉरवर्ड के चलो इसे पकड़वा देते हैं। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर द स्टोरी, नो प्रॉब्लम। और एक मैसेज आया है, भाई मेरे को ऐसी मूवीज चाहिए देखने के लिए। अच्छा, मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखते हैं, नेवर ट्रस्ट। नहीं, ट्रस्ट तो कर लेना चाहिए लेकिन ये बैंक वालों को नहीं करना चाहिए। एक मैसेज है मलिक वकास साहब का, लिखते हैं तारीफ होनी चाहिए जो बनती है, जिस उम्र में बच्चों को स्टोरीज सुनानी थी उस उम्र में आपने अपनी स्टोरीज का दीवाना बना लिया है, कुछ तो जलवा और अट्रैक्शन होगा ना। मेरा भाई यार, थैंक यू सो मच, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू मेरे भाई, बहुत बहुत बहुत सारा प्यार मलिक वकास साहब को। जफर इकबाल साहब कह रहे हैं मेरे पास है, बेल्जियम जा रहा हूँ मैं, वापस लौट रहा हूँ, डायमंड मेरे पास है। जफर भाई हमने भी दो दे जाओ, दो बस दो दे जाओ ना बैग में से, तो जफर भाई। खादिम हुसैन साहब कह रहे हैं हिंदी में कहते हैं एक्सीलेंट, हिंदी में एक्सीलेंट कहते हैं खादिम भाई, क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, लगवा दिया चूना ना भाई तुमसे, लगवा दिया, अच्छा खासा चल रही थी लाइन, लगवा दिया चूना।
0: हाँ भाई,
1: अरे बाबा एक डायमंड नहीं देगा अभी तक अपन ने।
0: हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना भाई, चंपा देख रहे हैं आप,
1: लेकिन भाई एतबार से मार गया वो। खेल गया मैं, जिस वक्त आपने बोला ना कि आप लोग सोचोगे कि अब चोरी करेगा, उस वक्त इसने पूरे मुतमईन करके ना फिर इसने बजाई है
0: पूरा पूरा निचोड़ दिया पूरा। और ये देखो कि चोरी करने के बाद 2 दिन और आया है वो
1: इतना मुतमईन।
0: हाँ यार, ये होता है,
1: कहीं ना कहीं तो उसको अपनी कहानी पता लगी होगी,
0: पता नहीं भाई कहाँ है किधर है वो आई डोंट नो, पर मजे में हो गए क्योंकि पकड़ा तो नहीं गया 20 सालों से, ये तो पक्का है।
1: सबसे बड़ा माइंड गेम उसमें जो खेला है ना,
0: हाँ,
1: कि पासपोर्ट वाला,
0: हाँ,
1: चेंज वाला,
0: हाँ
1: भाई वो एंड लेवल था पासपोर्ट की बारी आएगी, पकड़ लिया होगा उन्होंने, ठीक है 5-6-7 साल ठीक है, उसका सजा में बाकी होगा काम, चेंज डिले गया, लेकिन वो जब आपने बताया ना कि अभी तक पकड़ा नहीं गया, पासपोर्ट भी चेंज था, तो भाई मैं दिमाग लगा गया बंदा, इसने पहले से पता नहीं कितना टाइम सबर किया, और सबसे बड़ी बात कि उसके सबर की दाद है
0: भाई, डेढ़ साल समझ रहे, 1.5 साल सबर और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसने खुद भी अमाउंट रखा ना अकाउंट खोलने के लिए, ऐसे तो रख नहीं सकते, तो उसने उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है कि चलो ठीक है थोड़ा सा लुटा देता हूँ, और 1.5 साल तक आना महंगे चॉकलेटें देना ये कोई हलवा नहीं है भाई, बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट किया है उसने।
1: वो पिछले दिनों ना सोहा मैम ने ना सुबह एक टॉपिक रखा था कि चॉकलेट पे ना आपको अपना पूरा वो देना है, बहस बतानी है।
0: हाँ।
1: तो मैं उनको वो चीज कहा, मैं आपको भी बताऊंगा कि मैं ना वैसे मैं खुद भी चॉकलेट का शौक रखता हूँ।
0: हाँ।
1: लेकिन मुझे पहली बार पता चला कि चॉकलेट को कड़वी टॉफी भी कहा जाता है।
0: कड़वी टॉफी भी कहा जाता है?
1: हाँ, कड़वी टॉफी।
0: अच्छा, ये कौन सी गोले पे कहा जाता है?
1: लोकल बच्चे वगैरह कहते हैं कड़वी टॉफी,
0: टॉफी मैंने खट्टी टॉफी सुना था।
1: रीजन बता दो ना, मैंने एक बार डाइजेस्ट पढ़ा था, मेरी बड़ी सिस्टर है तो वो जरा डाइजेस्ट वगैरह पढ़ती थी, मैं उस वक्त स्कूल सिस्टम में था, 6th के 7 की बात है, तो वो डाइजेस्ट पढ़ा था, तो उसमें ना एक बच्ची ने अपनी कहानी डिस्क्राइब की हुई थी, ठीक है, तो वो बता रही थी कि मैं जरा उन दिनों ये सीन था कि उससे अगवा होते थे,
0: ओके,
1: ठीक है, और वो अगवा कैसे होते थे कि वो इसी तरह कुछ ना कुछ उनको मीठी चीज दी जाती थी, क्योंकि बच्चे तो है, बच्चे उन्होंने चीज देखनी है, रैपर वाली उन्होंने फटाफट लेनी और खा लेनी है।
0: हाँ।
1: यदि मुझे चॉकलेट मिली थी तो मैं ना वैसे इसको कड़वी टॉफी बोलती थी, और मुझे ये अच्छी नहीं लगती थी इतनी।
0: हाँ।
1: क्योंकि इसको खाने के बाद जो जना 5-7 मिनट बाद मुंह में कड़वाहट सी फील होती है ना हल्की फुल्की, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, तो मैंने नहीं खाई और मैं बच गई।
0: आप...
1: उसके बाद

0: कुल मिला के ये कहना चाह रहे हो अगर आप उस बैंक में काम कर रहे होते तो आप पे असर नहीं होता उसका, ऐसा कहना चाह रहे हो क्या?
1: भाई हम कहां काम करते हैं, हम वो वाली बात है, देश के लिए बंदे, वो देखी थी ना जट एंड जूलियट, उसकी पांजा नाम है ना जिसका, जो सिंगर है, और वो था ना वो पते थे, वो जो लेके घूमता है डंडा,
0: मैं सोच रहा हूँ एक दिन चॉकलेट पे मैं कुछ ना कुछ सवाल या फिर कहानी लेके आऊंगा। मेरे पास एक कहानी है एक्चुअली, मैं बैक ऑफ माय माइंड लेकिन तैयार नहीं है, पर उसके ऊपर मैं कहानी जरूर सुनाऊंगा
1: आपको। एक बंदे का नाम मैं बताऊंगा, जिस तरह आप इन्फॉर्मेटिव चीजें या इन्फॉर्मेटिव कहानियां बनाते हो ना, हमारा पाकिस्तान का एक बंदा है, मीन्स की उसकी स्टोरी अगर आप देखना सही
0: आपको मजा आएगा।
1: मुझे आज मैंने उसकी एक स्टोरी सुनी है, वो जो कभी ऐसा हुआ आपके साथ किसी जगह पे गया और बोला यार इधर तो मैं पहले भी आया हूँ, या कोई बंदा ऐसा मिला हो कि यार जिसको आपने देखा और बोला यार शायद मैं आपसे पहले भी मिला हूँ?
0: भेजना, मुझे भेजना, मैं अच्छे से देख लूंगा, फिर अपने आप देख लूंगा मैं, ठीक है?
1: तो उसने बैठ कर जगह बताया था मेरे को थोड़ी देर पहले, मैं वही सुन रहा था।
0: ठीक है, लिंक भेजना, लिंक भेजना जरूर।
1: ओके ओके, पहले पहुंच रहे,
0: ओके,
1: मजा आया,
0: जजाक अल्लाह मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।
1: तो कुछ नहीं मिला खैर, लेकिन मजा बहुत आया।
0: थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू सो मच, मजा आना चाहिए। थैंक यू, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और भाई की बात जरा, एक और कॉल है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: बढ़िया भाई, आप सुनाइए क्या हाल है भाई के?
2: स्टोरी बहुत बढ़िया है भाई, कबीर भाई आज की।
0: थैंक यू मेरा भाई,
2: आप उसको हीरो का अवार्ड दो आज, कंफ्यूजन में दो, क्यों पकड़ा नहीं गया ना?
0: पकड़ा जाता तो वो नहीं
2: पकड़ा जाता तो उसको बाद में सोचने वाली गुंजाइश थी, अभी तो वो हीरो है।
0: वही मैं कन्फ्यूज बनेगा, क्या बोलूं इसको बेचारे को, मैं विलन बोलूं क्या बोलूं?
2: हीरो है वो, पकड़ा नहीं गया ना कबीर भाई।
0: हाँ, ऐसे ऐसे लोग एंटी हीरो की कैटेगरी में जरूर आते हैं।
2: जैसे अनिल कपूर नहीं करता वो एक फिल्म में।
0: कौन सी मूवी?
2: रूप की रानी चोरों का राजा में।
0: अच्छा, ये सारे के सारे पिक्चर याद कर लेते हैं पहले, रूप की रानी चोरों का राजा। चलो मजा आया ना गाने सुन के, बस यही बड़ी बात है, ये
2: नहीं, बहुत बढ़िया आज मजा आ गया।
0: और आप बताइए भाई, कैसे सब? बढ़िया,
2: बस अल्लाह का एहसान है।
0: जज़ाकअल्लाह मेरे भाई कि आज आपने लाइव सुन ली। मैसेज कर दीजिएगा, भेज दूंगा जहाँ भेजना चाहे फिर भेज।
2: मैसेज मैंने ऑलरेडी किया आज, मैं थोड़ा आज मैसेज दे के आप हंसा भी होगा, मैंने आज वीकेंड कर दिया था।
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं भाई, अभी
2: फिर मैंने वापस डिलीट करके वो चेंज किया फिर मैसेज।
0: अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, बोल सकते हो, कोई बात नहीं, एडवांस में वीकेंड भी आपको।
2: वो क्या हो गया, कल है ना वीकेंड, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं भी सोच रहा यार ऐसा ही कोई चीज आदमी का थोड़ा चेला चपाड़ी बन जाता हूँ तो मेरी भी लाइफ बन जाए।
0: अच्छा, ऐसे आदमी ढूंढ रहे हो?
2: देखो यादाश्त भी काम नहीं कर रही, देखो कल तो भी क्या ना, आज ही कर दिया मैंने। काम कर करके कुछ बन नहीं रहा कबीर भाई।
0: अरे नहीं, कार्लोस बनने की जरूरत नहीं भाई, ईमानदारी से काम करते रहो, भागने की जगह नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है? ओके मेरा भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और ये नियाज भाई क्यों कॉल कर रहे हैं? नियाज भाई व्हाट्सएप की कॉल पे कॉल कर रहे हो। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, अरबाज भाई कह रहे हैं सर माशाल्लाह स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, 2005 में तो मैं सिर्फ एक साल का था, अगर थोड़ा बड़ा होता तो मैं उसका शागिर्द होता। वाह वाह शेरा वाह। जकी भाई वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, जस्ट ट्यून्ड इन एंड स्टोरी जरूर भेजिएगा, मैं जरूर भेजूंगा, नॉट ए प्रॉब्लम। एक मैसेज है, ब्लू डायमंड इज नाउ इन एफएम 107, रोज सुनाता है। आतिफ भाई मुझे ब्लू डायमंड क्या है मेरा भाई, आपके भाई का ब्लू डायमंड। अभी मैं कॉल लेने पाऊंगा माजदत के साथ क्योंकि अजान का वक्त होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, मैं सईद से, थैंक यू सो मच। तबसु मैंने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कार्लोस कार्लोस ही नहीं था, चॉकलेट से फिसल गया, सब फिसल गए सब बैंक वाले, इसलिए कोई हद से ज़्यादा अच्छा बने तो यू मस्ट डाउट, ब्रिलियंट स्टोरी एंड नरेशन। बहन मुझे लिटरली डर लगता है शरीफों से आजकल। मैं क्या बताऊँ, मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाए कोई ज़्यादा शरीफ होने लग जाता ना, सो आई स्टार्ट डाउटिंग देम कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है, इसकी वायरिंग में कुछ दिक्कत है भाई, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। जमीरती रंजा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। दानिश भाई कह रहे हैं कि अगर प्लान्स बनाते रहें तो एक प्लान सक्सेसफुल होगा जो लॉन्ग टाइम सक्सेस देगा। दानिश भाई क्यों मुझे बहका रहे हो और अपने आप को बहका रहे हो? ये बताओ पहले तो। और मैसेज है, नियाज भाऊ के पास क्रेडिट नहीं है, ये आपको कैसे पता? हुसैन भाई, ये नियाज भाई आपने नहीं बताया है? और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम नियाज भाई, मैं थोड़ी देर में कॉल करूँगा इंशाल्लाह अजान के बाद। मोहम्मद बिलाल भाई, थैंक यू सो मच। ओके सो अभी सिर्फ एक गाना और उसके बाद फिर छोटा सा ब्रेक है, सो आई विल गो ऑन शॉर्ट लिटिल ब्रेक। लेकिन अभी अरे लाडो MC Square.

0: करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: दोस्तों लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है स्टे सेफ ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
3: Absolute cinema.
4: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

سرتاج رفتار رشميت كور شيء بچ کے بعد 30 منٹ تیزی سے چلے

और जिस हिसाब से रफ्तारबाजी जो है वो पंजाबी में रैप कर लेते हैं, हैरानी बात ये है कि ये मलयाली हैं, केरला से हैं ये, टेक्निकली इनको पंजाबी का पी भी नहीं आना चाहिए, लेकिन भाई अपना पंजाबी में भी हरियाणवी में भी रैप कर लेते हैं भाई, टैलेंट है भाई, टैलेंट है।

0: शाबाश कदर कल्चरल विलेज फाउंडेशन कदर ने कंक्लूड कर लिया अपना 2026 का समर कैंप. पूरा एक हफ्ता चला है. कल्चरल आर्टिस्टिक और साइंटिफिक एक्टिविटीज हुई हैं जिसमें 190 से भी ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और डिफरेंट एज ग्रुप्स. एक कॉल आ रही है उसके बाद मैं जरा आगे बढ़ता हूँ. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
0: हां भाई भाई कितना बढ़िया है. क्या क्या क्या
1: शरीफ कार्लोस.
0: कार्लोस भी नहीं था भाई, उसका नाम ही नहीं पता लोगों को. कार्लोस की तो नाम की पर्ची फटी है.
1: चलो तुम शरीफ तो हो ना तुम
0: बात. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आपका प्लान है कार्लोस बनने का?
1: तुम्हारा वो वाला, तुम वो वाले शरीफ हो जिनसे तुम्हें डर लगता है.
0: हाँ जब भी तो भाई साहब आपसे कितना डर लगता है मैं क्या बताऊँ. पब्लिक को लगता है, मुझे छोड़िए.
1: नहीं नहीं, अरे किसी को
0: डर
1: नहीं लगता. मोहब्बत
0: बट रही है. हाँ कल से, कल एक बहुत भारी चेंज होने वाला है. मेरे पास दरअसल ना एक कहानी है जो मैं भरा बैठा हूँ सुनाने के लिए, पर मैं सुना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसमें डिटेल्स हैं जो हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं है. वरना मैं अगर वो बता दो ना भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाएंगे. मैं इतना बेताब हो रहा हूँ ना, मैं इस पर वीडियो बनाना पड़ेगा.
1: क्या होगा
0: भाई,
1: डिपोर्टेशन
0: होगी.
1: नहीं वो देखो तुमने जो है ना, अब तुम्हें वो कहानी सुनानी पड़ेगी. हाँ. तो मसला नहीं, रिपोर्ट होगा फिर.
0: मैं पता है वो सोच रहा हूँ, मैं किसी तरीके से ट्विस्ट करके कोशिश करूंगा. मैं आज बैठूंगा अभी इस कहानी पे जो मैं कल सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मैं ट्विस्ट कर पाया. क्या
1: टेम्परिंग नहीं पसंद भाई?
0: टेम्परिंग करनी पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी. कोई चारा नहीं है मेरे पास, नहीं तो मुझे फिर वो कुछ और ही सुनानी पड़ जाएगी. मुझे पर ये बताओ ये शाम में कैसे खाली हो जा रहे हो आजकल?
1: अबे भाई बस क्या बताऊं, प्यार जो करता हूँ ना बताता मैं इनको, नौकरी से प्यार करता हूँ.
0: क्या बात है, क्या बात है शेरा. बहुत सही जा रहे हो.
1: क्या करूँ, रोजी रोटी का सवाल है मेरे जान.
0: अरे रे रे रे
1: रे कप्तान को बता दा अपना असली रंग.
0: ते ते ते, ला ला.
1: ये वही मेरे साथ ना आजकल क्लोजिंग चल रही है तो भाई
0: बस. अच्छा.
1: वही वाली बात है. वैसे तो आप ना गा रहा हो, और वैसे तो आप क्यों मसला नहीं है, वो कर लेगा ये कर लेगा. कोई बट रहा होता है ना.
0: हाँ.
1: तो हम सब में सेल में लास्ट में होते हैं, और जब कोई अगर छुट्टी मांग लो कोई और काम है तो ऐसा लगता है कलेजा मांग लिया, कड़ी नहीं मांग लिया हमारा.
0: दिमाग बहुत लगाना पड़ता है. ये मुझे लगता है कि बैंक्स में और आपके वाली फील्ड में ये एंड ऑफ द मंथ बड़ा भारी पड़ता होगा. नहीं, बहुत ज्यादा ही दिमाग लगाना पड़ता होगा.
1: यार मसला बताऊं क्या है, हम जो है ना वो होल एंड होल सप्लायर है, मतलब पूरा कतर हमारा कस्टमर है.
0: हाँ.
1: ठीक है ना.
0: हाँ.
1: और हमारे कुछ कस्टमर बड़े वो है, वो कस्टमर अल्लाह करे सुन ले तो उनको मैं वो कर दूंगा अगर वो मुझे मिल गया तो.
0: सप्रेस करें गुस्से को, सप्रेस करें गुस्से को. शांति लंबी सांस.
1: नहीं हो पाया. नहीं हो पाया. शांति दीदी आ जाएगी.
0: अच्छा.
1: शांति दीदी आज 8 बजे
0: आएंगी. ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा. बाकी अपना ख्याल रखिए, ख्याल रखें. और आपके लिए फिर से सलाम मैसेज आए हैं 2-3. तो ये नादिर भाई हैं. हाँ क्या
1: भाई, मिल लो यार कसम से भाई, स्ट्रेस निकालना है मैंने, बहुत जोर से आ रहा है. मुझे मिल लो. नहीं मिलना मुझसे, बहुत जोर से करना है, स्ट्रेस आ रहा है.
0: भाई जितने सलाम कर रहे हैं पार्टी बनाइए और उसके बाद फिर मिलते हैं, यही करना पड़ेगा. ठीक है
1: भाई, कर ले भाई कुछ.
0: नहीं करेंगे यार.
1: हाँ. क्या बोलूंगा पानी में.
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं करते हैं, इसका जुगाड़ निकालना पड़ेगा. काफी सारे लोग अब कह चुके हैं, अब तो मुझे भी लगने लगा है नहीं भाई ये अभी तो मिलना ही पड़ेगा. ऐसा वाला सीन हो चुका है.
1: तुम उठा नहीं पाओगे, तुम्हें पता एक बात.
0: क्या हूँ, क्या हूँ?
1: हिंट दे रहा हूँ ये. मैं तुम्हें ना आसान नंबर ना प्यारे लब्जों में बता रहा हूँ, कर लो कुछ वरना तुम उठा लिया जाओ.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा भाई.
1: तुम उठा लिया जाओगे, तुम अम्मी की दुआओं के चक्कर में रुके हुए हो.
0: अल्हम्दुलिल्लाह.
1: मुझे लग रहा है
0: मोहम्मद भाई भी कह रहे हैं सलाम तला भाई को. ये मैसेज आया आपके लिए और बाकी थैंक यू सो मच
1: मोहम्मद भाई. ये मैं बता रही हूँ, फिर नहीं बोलना कि खबर ना हुई बाद में.
0: हाँ.
1: मैं उठा लूंगा इसको, बता रहा हूँ. ठीक है ना.
0: हाँ.
1: मैं बता रहा हूँ, मैं मैं उठा लूंगा.
0: नहीं नहीं उठा
1: नहीं, वार्निंग दे रहा हूँ आज ही लास्ट. नहीं नहीं वार्निंग है लाइव.
0: डन डन डन डन, नहीं भी उठाने की नौबत नहीं आएगी. मैं खुद
1: नहीं
0: नहीं नहीं अरे भैया मोटिवेशन मत दो किसी को यार.
1: मेरे चक्कर में पाबलो उड़ जाए, मेरा काम हो जाए.
0: नहीं नहीं भाई ऐसी ऐसी आप बात दूर कोई और ले जाएगा दिक्कत हो जाएगी. पर देखते हैं इंशाल्लाह. मैं करता हूँ ये प्लान. डन हो गया.
1: बहरहाल भैया मजा आ गया.
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई.
1: कल वाली कहानी, कल वाली
0: नहीं, कल वाली पे भी आएगा. कल वाली पे भी आएगा. डन है. कल वाली
1: सही आया मजा.
0: अभी आने वाले कल वाली पे भी आएगा. इंशाल्लाह इंशाल्लाह.
1: चल भाई चल.
0: ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. ओके अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. और भाई की बात जो मैं पढ़ रहा था, पढ़ देता हूँ. तो ये जो कल्चर विलेज का तारा काम बता रहा था आपको, यहाँ पे पूरा जो समर कैंप हुआ है वो अपने इख्तिताम पे पहुँच चुका है. और ये 5 से शुरू हुआ था, 29 को ख़त्म हो चुका है. प्रोग्राम जो था 11 स्पेशलाइज कैंप्स थे जो अक्रॉस कतारा फैसिलिटीज़ में लगाए गए थे. हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की गई थी जो बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप कर सकें, इंटेलेक्चुअलिटी ला सकें, प्रैक्टिकल स्किल्स दे सकें. और इनमें गाइड करने वाले कई सारे स्पेशलिस्ट थे जो कल्चरल बैकग्राउंड से थे, आर्ट साइंस मीडिया और हेरिटेज की साइड से. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट हैपेंड. एंड इसके अलावा जो कतर टॉय फेस्टिवल है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है. इन केस यू हैवंट नोटिस्ड और हैवंट बीन देयर, अभी भी टाइम बिल्कुल नोक पे आ गया मामला. टॉय फेस्टिवल 2026 को जिसको ऑर्गेनाइज किया है कतर कैलेंडर ने इन कोलेब्रेशन विद द स्पेस टून ग्रुप, इसको एक्सटेंड करके 4 अगस्त कर दिया गया है. तो अभी भी मौका है, वरना अभी मैं कह रहा होता कि हो गया ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी है. और यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए और भी चीज़ें रखी गई हैं ताकि फेस्टिवल को और भी इन्जॉय कर सकें. इफ़ यू हैवेंट बीन देयर, कहाँ जाना है बता देता हूँ. दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी DECC. और ये फेस्टिवल आगे बढ़ेगा भी. यंग एडल्ट्स किड्स उनके लिए इन्फ्लेटेबल्स, स्टूडियोज़, प्री स्कूल जोन्स अलग से बनाए गए हैं और हर रोज़ एंटरटेनमेंट के लिए स्टेज तैयार है. अभी भी मौका है, ये एक्सटेंशन मिला है, फ़ायदा उठाएं. 4 अगस्त से पहले पहले यहाँ पे चले जाएं. इट्स वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके अलावा जो कतर फैमिली कंसल्टिंग सेंटर है विफाक, उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज अवेयरनेस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद कतर यूनिवर्सिटी, जिसका मकसद है जो न्यूली मैरिड स्टूडेंट्स हैं फैमिली वेलबींग को प्रमोट किया जाए, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. क्योंकि ये अगर कंट्री कर रही तो सोच लीजिए कंट्री कितनी सीरियस है अपनी हेरिटेज को लेके, अपने कल्चर को लेके, अपनी जो बेसिक चीज़ है जो कि फैमिली वैल्यूज़ हैं. इट्स जस्ट अमेजिंग. मैं बड़ा खुश होता हूँ कतर कुछ ऐसा स्टेप लेता है. एंड इसके अलावा कतर नेशनल लाइब्रेरी भी जो है उन्होंने अनाउंस किया एक मंथ लॉन्ग प्रोग्राम, इसमें लगातार वर्कशॉप्स होने वाली हैं, इसमें फैमिली एक्टिविटीज़ हैं, कम्युनिटी इवेंट्स हैं. और ये पूरे महीने अगस्त में रहेगा. इसमें टारगेट किया जाएगा एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को, लाइब्रेरियंस को, आर्टिस्ट को, बच्चों को और लाइफ लॉन्ग ये जो लर्नर्स हैं इनके साथ साथ. जो मेन हाईलाइट है दैट इज़ ऑन 15th of August, जब स्टार्टअप वर्कशॉप होगा. इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केट वैलिडेशन और अर्ली स्टेज फंडिंग के बारे में बात की जाएगी. और 7th समर लाइब्रेरी कैंप ये रन करेगा 2 अगस्त से लेकर टिल द एंड ऑफ द ऑगस्ट. सो 2 से 31 तक ये जारी रहेगा. इसे फीचर करेंगे आर्ट्स, क्राफ्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए और टीनेजर्स के लिए. सो बी अ पार्ट ऑफ दिस एज वेल. बाकी आज कहा गया था बारिश का नहीं हुई, कल पता नहीं होगी नहीं होगी. कहा गया भाई आज और कल, देखो अब पता नहीं. गर्मी तो बढ़िया करके चल रही है. वसीफ भाई क्या कह रहे हैं, आई लिसन ओनली 60%, उसके बाद काम आ गया. आपका वो इंटेंस पॉज मेड मी मोर इंटेंस. भाई मेरा भाई वसीफ भाई देता हूँ मैं कहानी भेजता हूँ. स्टूडेंट लेट हाजिर है. रे क्या बंदा, इसकी बाकी चक्कर में चेक करूँगा. देखो कॉम्पिटिशन भेजा है मुझे हमजा भाई ने. पाकिस्तान में कोई स्टोरी टेलर है सोशल मीडिया पर, भाई ने कॉम्पिटिशन भेज दिया है मुझे. भाई इनके 3 मिलियन है यार, मैं कहाँ इनके आगे. पर मैं सुन लूँगा ज़रूर. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये मैसेज किया है नौशाद आफ्ताब आलम साहब ने, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. और कहानी मिल जाएगी, टेंशन फ्री हो जाओ, टेंशन फ्री. बाकी ताजी मैं सबसे पहले प्ले करूंगा बूम शाकर लगा. मोहम्मद भाई कह रहे हैं भाई कुछ देर में अपने आप आ जाएगा, बट सबसे पहले
2: आ गया मैं. हाँ जल्दी से कर दो अब लाइट्स, कैमरा, एक्शन, जहां भी जाओ
0: बनता है कि पब्लिक
2: जैसे मैं माइकल जैक्सन.
0: हाँ जी वॉल्यूम बढ़ा गया बंटा, सीधा माइकल जैक्सन.
2: आगे ले दोस्त, एक महीना के गैप तक कौन बनाना है, किसको ऐसे करना बोल, ये बोल के पलटा.

Magali! क्या बनाया है गाना यार, क्या गाना बनाया है? 46 मिनट हो गए।

शाबाश शाबाश। आज कुछ इंटरनेशनली जो मार्क दिन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जरा सोचिए, आज मैं बताऊं आपको, आज रेन डे है। अगर इत्तफाकन आज बारिश हो जाती तो क्या बात हो जाती यार, क्या बात होती। वैसे कहा तो था कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कि आज और कल हो सकता है चांसेस हैं कब तक कुछ एरियाज में बूंदाबांदी हो जाए, बट दे डिडंट यूज द वर्ड बूंदाबांदी। उन्होंने ड्रॉपलेट्स श्रॉपलेट्स कुछ नहीं बोला था भाई, सीधा बारिश बोली थी। पार्टली क्लाउडी अभी वेदर है, तो दुआएं करते रहें। टेम्परेचर का हाल ऐसा है कि 56% ह्यूमिडिटी का लेवल है और टेम्परेचर राइट नाउ

35 डिग्री सेल्सियस. आई होप इंशाल्लाह तो हो. बाकी आज रेन डे है, टेक्निकली कैलेंडर पे मार्क किया गया. आज लज़ानिया डे है, इसका नाम भी मुझे यहाँ लेना आया है. लज़ानिया डे, ये कैसी स्पेलिंग है यार, एल ए एस ए जी एन ए, कौन इसे लज़ानिया पढ़ेगा. तो आज लज़ानिया डे है और आज इंटरनेशनल टाइगर डे, शेर का दिन है आज, और मरीन वीक है. एंड इसके अलावा लव पार्क्स डे, पार्क में जाके, वैसे हमारे यहाँ जो कुछ लोग पार्क को पारिक बोलते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं. पारिक जा रहे हो, पारिक घूम के आऊँगा मैं, पारिक के दिन है आज. तो पार्क्स डे, और आज है, हैं ये क्या है, चाइनीज सेक्रीफाइस परचेस डे. ये क्या होता भाई, हमें क्या करना, हमें कौन सा वहाँ जाना, जिस तरह से जा रहे हैं उसका पता क्यों पूछूँ मैं. और आज है लिपस्टिक डे, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तमाम ख्वातीन को, ये ख्वातीनों को ये मुबारक हो, लिपस्टिक डे आज. 666-22107 नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं लिपस्टिक डे पे. नहीं, ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, बारिश वारिश होगी, कितने चांसेस लग रहे हैं भाई, क्या लग रहा है. 666-22107 पे ज़रूर इन्फॉर्म कर दें. आई वुड लव टू नो कि आपके क्या ख्याल आते हैं इस चीज़ पर. बाकी ताजी मैं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं, मुझे कुछ छोटा सा ही चलाना पड़ेगा. किधर है, किधर है, किधर है, ओके मिलते हैं इस गाने के बाद. जाना नहीं, और ट्रैफिक हाल बता दीजिएगा, और आपको क्या लगता है बारिश होगी कि नहीं होगी भाई. घड़ी कसूती बात हो जाएगी भाई अगर बारिश होगी. हमारे थोड़े व्हाट्सएप है, इसमें घाल दो मैसेज.

जी रफ्तार भाजी और साथ में रश्मीत कौर, बड़े घना कसूता ला कैसे भाई। ये भैया भी सुन लो, मैसेज आ गए हैं दो तीन। तब उसमें बहन भी ये कह रहे हैं कहीं ना हो रही बारिश। बहन मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूँ, मैं तो कल की खबर बता रहा हूँ, कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने लिखा था कि हो सके है बारिश कहीं जगहों पे, लेकिन मन ने भी नहीं लग रहा। हम सब अभी लिखते हैं भाई कहाँ से लग रहा है बारिश, भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा, लोग तो मेरे पीछे पड़ गए, मैं थोड़ी मौसम में भागूं, कल बोला गया था मैं तो भाग रहा हूं। तो आपसे चाहूंगा इजाजत और इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। कल तो वीकेंड है भाई, कुछ बहुत तगड़ी कहानी ढूंढनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा ना, एक कहानी है मेरे पास तो सुना नहीं पा रहा हूँ मैं, तो सोच रहे हो कल कुछ बड़ी ऐसी कहानी ढूंढ के लाते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए वीकेंड स्पेशल होगी कहानी इंशाल्लाह। बट फॉर नाउ इजाजत चाहूंगा, 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन, एंड फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मां सलामत।

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के

0: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: हवा के झोंके आज

0: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा शो जहां पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
1: द रिक्वेस्ट शो
0: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इलाज सिर्फ दवा नहीं,
2: परहेज और रोजमर्रा की देखभाल भी जरूरी है। प्रोग्राम हेल्थ गाइड में डॉक्टर फौजिया शफीक देती हैं वाज़े रहनुमाई,
1: मिथ्स की खोल, प्रैक्टिकल टिप्स, हर उम्र के लिए सेहत के मशवरे,
2: कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ।
3: FM 107 पर पेश करते हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।

0: कर रहे हैं कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे और गर्मी का मौसम है और इसमें हमें छोटे छोटे मेजर्स अपना कर अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। इसमें हम पानी का ख़ास ख्याल रखना है और इसके अलावा अपनी जो डाइट है उसे आप बैलेंस रखिए और उसमें यह कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। जैसे हम मुख्तलिफ मौजूआत अपनाते हैं और आज भी एक तरह कुछ मुख्तलिफ मौजू अपनाने जा रहे हैं और जैसे हम कह सकते हैं कि जो डिजीज इज़ चीपर एंड हेल्थ इज़ एक्सपेंसिव। अब ये क्या है कि बीमारियां जो हैं वो सस्ती हो सकती हैं और जो अब सेहत है, सेहत को बरकरार रखना और सेहतमंद रहना जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसी पर हम बात करेंगे और इस आज का ये प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्डेड है और आप के जो सवालात हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, मगर मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम जो ऐसे सवालात डॉक्टर से करूं इस हवाले से कि जो आपके जहनों में आ सकते हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़खर शाहिद जो कि बेरियाट्रिक सर्जन हैं बेरियाट्रिक नेशनल सेंटर HMC में। वेलकम करूंगी अपने तमाम लिसनर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
1: जी वेलकम सलाम, बहुत शुक्रिया
0: जी डॉक्टर साहब। कुछ मुख्तलिफ सा टॉपिक है, सबसे पहले तो ये कि बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे साथ हैं और हमेशा की तरह बहुत सारे लिसनर्स जो हैं वो इंतज़ार करते हैं कि आप हमें कुछ नई चीज़ बताएंगे कोई वेट लॉस के बारे में, क्योंकि ग्लोबल एक इशू है। मगर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा इशू है और आप हमें बताएंगे कि ये है क्या।
1: जी तो देखें, आपको पता है मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है, जिसे कहते हैं ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। तो जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें सारी बीमारियों की एक किस्म की झलक देनी पड़ती है, क्योंकि एक ओबेसिटी या मोटापा सेंटर में है और सारी बीमारियां इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। जब भी आप इसको, आपको एक बीमारी को ख़त्म करना है तो आप सारी बीमारियों को आस्ता आस्ता ख़त्म कर सकते हैं
0: जी।
1: और इन सब के बीच में क्योंकि मोटापा है तो हम इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो बाकी चीज़ें खुद बहुत कवर हो जाएंगी।
0: जी ठीक है, तो डॉक्टर साहब थोड़ी शुरू में थोड़ी हम एग्जाम्पल देते चलें कि क्यों ऐसा है। जैसे हमने कहा आपने ये टॉपिक जो है बहुत यूनिक सा है
1: जी,
0: तो इस पर जो बात करनी है तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी ये है क्या।
1: जी इसका मैं इस तरह बताता हूँ आपको कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जब ये टीवी स्क्रीन्स नहीं थी, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स नहीं थे, तो होता ये था कि लोग घर में खाना बनाते थे, पैदल चल के मस्जिद जाते थे, पैदल चल के काम पे जाते थे और उसके अलावा अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, दोस्तों से मिलते थे, शाम को गैदरिंग्स होती थी। तो ये उनकी पूरी रूटीन में क्या क्या कवर हो गया, एक तो ये कि खाना हेल्दी हो गया क्योंकि घर पर बनाए, दूसरा ये कि वो चल के जा रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं तो उसमें एक्सरसाइज आ जाती है, और तीसरा ये कि जब वो अपने रिश्तेदारों से अपने दोस्तों से रेगुलरली मिलते हैं तो उससे उनका स्ट्रेस कम होता है और उनको लगता है बेहतर फीलिंग होती है। और इसमें क्या कितना खर्चा हो गया, कोई खर्चा नहीं, कोई महंगाई नहीं है, लेकिन उस ज़माने में अगर आपको कोई भी बीमारी लगनी है तो इसका मतलब ये कि बहुत महंगी जाके कोई गज़ा कोई ले रहा है जो कि अच्छी नहीं है, या कोई बहुत महंगी गाड़ी ले ली और उसके ऊपर चल के उस पर बैठ के जाता है और वो ज़्यादा चलता नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे ये था कि सेहत सस्ती थी और बीमारी महंगी थी। लेकिन आजकल के दौर में क्या है कि जो जितना भी फास्ट फूड हमें अभी अवेलेबल हो गया, जितनी शुगरी ड्रिंक्स हमें अवेलेबल हो गई हैं, टीवी एक ऐसी स्क्रीन जिसके आगे 8-8 घंटे लोग बैठे रहते हैं
0: और अट्रैक्शन बहुत है,
1: अट्रैक्शन बहुत है इन चीज़ों,
0: बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, मैं सबको कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये टीनेजर से ही शुरू हो रहा है काम, तो आप देखेंगे इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं और आपकी एफर्ट नहीं हो रही, लेकिन बीमारी आपके पास आई जा रही है जो है। और लेकिन अब इसको अगर आपको आ जाती है बीमारी और अब आपने उसको ट्रीट करना है तो आप सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर्स के पास, आप उसके हैवी बिल्स देते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसके अलावा जब डॉक्टर आपको कहते हैं आप जिम ज्वाइन करें उसकी उसके अलहदा पैसे आप देते हैं, उसके बाद वो आपको कहता है कि आप ये फलानी जो है आप रिजीम फॉलो करें 3 महीने 6 महीने, उसके अलहदा आप पैसे देंगे। तो ये सारी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं जबकि आप ये सब प्रिवेंट कर सकते थे, आप चाहते तो आप को ये सारा जो खर्चा है ये भी बच जाता, आपकी बीमारियां भी बच जाती अगर आप बेसिक्स पे रहते जैसे पहले ज़माने में होता था। तो ये दौर ऐसा आ गया है कि

0: बीमारी आना बहुत सस्ता हो गया है और अपने आप को सेहतमंद रखना बहुत महंगा हो गया है।
1: जी ठीक। और ये छोटे छोटे ऐसे तरीके हैं जो अपनाए जा रहे हैं, तो इससे जैसे जो बीमारी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है।
0: जी
1: ठीक। और बिल्कुल सबसे जो पहली बात आपने ये कि फास्ट फूड या आजकल जो होम डिलीवरीज का चक्कर है,
0: मैं
1: वो टाइमिंग्स का
0: जी मैं आपको बताता हूँ आजकल की क्या रूटीन आती है। तो सुबह उठ के जो सबसे पहले तो ये कि जो लोग सुबह उठते हैं इनकी रात की नींद ही नहीं पूरी हुई होती, क्योंकि वो लेट नाइट सोए होते हैं और कोई ना कोई मेडिसिन लेके सोए होते हैं, तो उनकी नींद पूरी नहीं होती। उठते साथ वो कॉफ़ी पहले स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो शुगर वाली कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो वो एक ऑलरेडी एक हाई कैलरी ड्रिंक हो जाती है। उसके बाद जब वो काम से वापस आते हैं तो सबसे पहले टीवी लगाते हैं और बैठ जाते हैं, और शाम तक वो जो है ना टीवी और ये चल रहा होता है और उसमें जो है कोई मूवमेंट नहीं होती। उसके बीच में वो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, वो उसी बेड के ऊपर जहाँ टीवी देख रहे हैं वहीं बैठ के खाते हैं, और रात को फिर उसी बेड पे दोबारा ऑर्डर करते हैं और वही खाते हैं, उसमें उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। उसके बाद जब रात को सोने का टाइम आता है तो वो फिर रात भर जागते हैं, उस टाइम वो कहीं कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, तो उनको होता है कि सुबह काम पर भी जाना है, अब सोने के लिए वो नींद की मेडिसिन लेते हैं। तो इससे आपको आपकी बॉडी में मल्टीपल चेंजेस आती हैं, आपका सोने का रिदम भी ख़राब हो जाता है, आपकी बॉडी में अनहेल्दी जो है वो फूड जा रहा होता है, आपकी जो डाइट है वो तो ऑलरेडी ख़राब हो गई, नींद भी ख़राब हो गई, लेकिन ओवरऑल जो है ये आपकी सेहत को इफ़ेक्ट करती है, और स्लोली स्लोली उसको जो पता चलता है कि वो कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला होता जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्यों हम कहते हैं डिजीज़ जो है बहुत चीपर है, क्योंकि इतनी चीज़ें आपने बता दी, मगर ये कि जो बीमारियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हमारे अंदर आ रही हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं?
0: जी तो सबसे पहले तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसे हम नॉर्मली हर रोज़ डिस्कस करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या है कि बैठे रहना, हरकत ज़्यादा ना करना, जंक फूड खाना, और उसके इससे सबसे पहले क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है शुगर की जो है ना प्रोसेसिंग वो वीक हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, उससे सबसे पहले आपको डायबिटीज़ होने का चांस होता है, और आजकल तो वो छोटे छोटे बच्चों को भी हो रही है। उसके बाद आस्ता आस्ता ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, तो ब्लड प्रेशर शुगर के साथ ब्लड प्रेशर अक्सर आप देखेंगे कि लोगों को होती है। उसके बाद क्योंकि इतनी मूवमेंट नहीं है, हरकत नहीं है, ब्लड फ्लो इतना अच्छा नहीं होता, तो उनको जॉइंट की प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं, और स्क्रीन टाइम के साथ रिसर्च अब बता रही है कि जितना ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम है उतना स्ट्रेस और एंगजाइटी के में आप मुब्तला हो सकते हैं। तो ये तीन चार बीमारियां तो आपको उस इकट्ठी आने का चांस होता है।
1: और बिल्कुल सबसे पहले ये कि अब इसके जो मदर ऑफ डिजीज़ हैं वो तो ओबेसिटी है
0: जी,
1: और उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, और स्पेशली जैसे कि आपके जो प्रोग्राम है, हमारे लिसनर्स जो हैं वो भी बहुत कहते हैं कि हमें उसी पर बात करनी है, क्योंकि जो मोटापा है या ओबेसिटी है उसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जैसे एनजाइटी की आपने बात की
0: जी,
1: और जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स, वो सारी की सारी इसमें होती हैं। तो इसकी क्या मतलब इसमें हम थोड़ा ऐड ज़रूर करना चाहेंगे कि किस तरह से ये तमाम जो डिजीज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं आहिस्ता आहिस्ता।
0: जी तो सबसे पहले तो ये कि यूजुअली जो लोग इस लाइफस्टाइल को जी रहे होते हैं उनको तब तक अवेयरनेस नहीं आती जब तक कि उनको पहला अटैक नहीं आता। ठीक है।
1: अच्छा।
0: अटैक क्या होता है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अपने करीबी दोस्तों को भी जानता हूँ, कल एक दोस्त से मिला तो उसको जो फर्स्ट अटैक होता है वो एक आता है एंग्जाइटी का अटैक। एंग्जाइटी अटैक ये होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाना, सर में एक्सट्रीम दर्द हो जाना, और उसके अलावा एक फीलिंग आती है कि आप समझते हो कि आपकी दुनिया ख़त्म हो रही है। ये क्या हुआ, बैठे बैठे जी टीवी देख रहे थे तो हमें ये क्यों हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा सारे ब्लड टेस्ट करते हैं जी, सारे ब्लड टेस्ट किए, आपने देखा शुगर बहुत हाई है और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई आया है, और हार्ट की जो एंजाइम्स हैं जिससे हार्ट अटैक होने का चांस वो भी हाई है। अब वो कहते हैं ये कैसे हो गया भाई, एकदम से मुझे ये सब कैसे हो गया, तो ये प्रोसेस तो पिछले 5-6 सालों से चल रहा था ना, तो आपने नहीं नोट किया, आपको तो अब वो अब उसका होता है कि अब मैं इसकी सारी ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ, तो अब वो जो है ना एक महंगे ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल पे जाना शुरू हो जाएगा।
1: ठीक है जी। जैसे डायबिटीज जो है वो आपने कहा कि उसमें ज़्यादा शुगर एकदम से ज़्यादा आई है, या बाकी जो टेस्ट हैं वो भी, इसमें एज का बात हम करेंगे कि जो किस एज में क्या हो सकता है
0: जी।
1: या
0: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो वैसे ओबेसिटी और डायबिटीज़ है ना, इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जो 60% जो ओबेसिटी या मोटापा है ना, वो जेनेटिक रीज़न उसकी कही जाती है कि अगर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली फैमिली मेंबर्स में को मोटापा है तो वो आपको आएगा।

0: आएगा और डायबिटीज के बारे में भी यही रिसर्च कहती है। ठीक है, तो जिनके अभी जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है, जो बच्चे देखते हैं अपने पेरेंट्स को इंसुलिन लेते हुए या मेडिसिन लेते हुए, तो उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनमें चांस है आने का। और ऐसा होता है कि आजकल हम उनको 15-16 साल की उम्र में ही डायबिटिक देख रहे हैं, उनकी शुगर बहुत हाई है और उनको बिल्कुल पता नहीं होता कि ये क्या हो गया एकदम से।
1: और इसमें टाइप 2 जो है इतने बहुत छोटी यंग एज में भी टाइप 2 डायबिटीज,
0: ये टाइप 2 की ही मैं बात कर रहा हूँ जी, कि टाइप 2 उनको होती है उनके लाइफस्टाइल की वजह से।
1: यही बिल्कुल यही स्टडीज थी, और वैसे भी कि जो यंग हैं, यंग जनरेशन, उसमें टाइप 2 होने के जो चांसेस हैं बहुत कम होते हैं।
0: जी जी बिल्कुल ऐसे ही,
1: और अब मेरा ख्याल है ज्यादा तो टाइप 2 है क्योंकि एनवायरमेंटल है।
0: देखिए टाइप 2 जब कोई भी हमारे पास बच्चा आ जाता है 15-16-17 साल का जो है, तो सबसे पहले उसका मैं क्या देखता हूँ, मैं उसका वेट देखता हूँ, तो वेट ऑलरेडी उसका बहुत ज्यादा होता है। और अभी मैं आपको बताऊँ, आप यकीन नहीं करेंगी, ज्यादातर बच्चे जो है वो 100 kg प्लस है। ठीक है, 100 kg प्लस हैं लड़के लड़कियां, इधर कतर की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अब आपने उनको क्विक फिक्स चाहिए होता है
1: जी,
0: क्विक फिक्स के हमें जल्दी से पतला कर दें, जल्दी से हमें कोई ऐसा मैजिक सोल्यूशन दें, कोई ऐसी टैबलेट दें, हमें कोई ऐसा इंजेक्शन दे दें, हमारी कोई ऐसी सर्जरी कर दें कि हम एक महीने में 50 kg कम कर दें, तो बहुत मुश्किल है
1: जी।
0: ठीक है, ये सब करना, लेकिन इनको हम यही बताते हैं कि देखो वजन आने में कितना टाइम लगा, 4 साल लग गए, 5 साल लगे ना, तब एक महीने में चला नहीं जाएगा। फिर भी हमारे पास सारे ट्रीटमेंट्स हैं
1: जी,
0: बट मैं समझता हूँ कि डायबिटीज
1: यंग एज में, जैसे हम यंगस्टर्स की बात करें, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अगर आप उन्हें बताते हैं कि अच्छा ये है, तो वो कहीं और जाके ट्रीटमेंट जो है वो भी शुरू कर देते हैं। इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे, मगर जी जो जो बेसिक इशू है उसको पहले एड्रेस करना ज़रूरी है
0: जी। अब ये है कि देखें, हम इन बच्चों को ट्रीटमेंट दे देते हैं, विद इन 6 months उनका सारा वेट हम लोग रिड्यूस करवा देते हैं।
1: अच्छा।
0: वो बिल्कुल बिल्कुल विद इन 5 to 6 months उनका सारा वेट रिड्यूस हो जाता है और वो बहुत खुश होते हैं अपने रिजल्ट्स के साथ। उनकी सारी डायबिटीज़ या जो भी इशूज़ है, स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर, सब खत्म, वो कोई टैबलेट नहीं लेते। लेकिन 2 साल बाद वो हमारे पास वापस आ जाते हैं वेट, वही वेट लेके वापस, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा जो पहले था।
1: अच्छा,
0: तो इसका मतलब कि जो वजह हम जो उसकी वजह थी मोटापे की, वो हमने नहीं ट्रीट की, हमने तो उसको पेशेंट को ट्रीट किया, और वजह क्या थी, उसका लाइफस्टाइल
1: जी।
0: अगर वो वापस अब उसी लाइफस्टाइल में जा रहा है जहां वो घर पे बैठा है, बाहर से खा रहा है, ठीक है, तो उसका सारा वजन वापस आ जाता है। तो बहुत जरूरी है कि एजुकेशन भी दी जाए कि आप जब वजन कम कर लेंगे तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, आपको थोड़ी एक्सरसाइज, अच्छा खाना खाना है, तभी ये मेंटेन रहेगा। तो जैसे मैंने बताया ना कि मैजिक पिल नहीं है
1: जी, मेहनत तो करनी है
0: जी, मेहनत आपको करनी है। हम आपकी सिर्फ इतना हेल्प कर रहे हैं कि आपका वेट रिड्यूस करवा देंगे ताकि आप इतने हो जाएं कि आप एक्टिविटी कर सकें, मेहनत कर सकें, अपने डिसीजंस ले सकें डाइट के बारे में। क्योंकि जब बंदा बहुत ज़्यादा ओबीज होता है ना, मुश्किल होता है उसके लिए एक्सरसाइज करना, वॉक करना, जॉइंट पेन्स होती हैं और सांस जल्दी फूल जाती है। तो वजन कम करवा दिया, अब अपनी लाइफ को खुद ही सेट करना है, लेकिन वो वापस उसी लाइफस्टाइल में चले जाते हैं तो वापस आ जाते हैं हमारे पास।
1: ठीक, इसमें लोग सब जैसे ओबेसिटी की बात करें, बाकी जो डिजीज़ हैं वो तो बिल्कुल उसे ही उसकी वजह से ही होती हैं, मगर जैसे आपने ट्रीटमेंट की बात की, तो आप किस तरह से, जैसे आपने कहा 6 months में कम कर देते हैं, उसमें सर्जरी है, टैबलेट्स हैं, या किस तरह से, और एज वाइज भी ज़रूर बताइएगा कि एज पर भी ये ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है।
0: जी बिल्कुल, देखें 14 साल से प्लस जितने भी बच्चे हैं हम उनको ट्रीट करते हैं
1: जी।
0: ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वाइड 11 साल प्लस पे वो लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, 11 से 12 साल का बच्चा या बच्ची है तो वो वेट लॉस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल होता है यूरोप अमेरिका में, लेकिन यहाँ पे कतर में हम लोग 14 प्लस पे स्टार्ट करते हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन ऐसा है कि हर प्रॉब्लम की एक रूट कॉज होती है, जैसे जेनेटिक कॉज है ना, अब एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें एक बच्चा है वो खाता है, उसका पेट फुल नहीं होता, वो खा ही जाता है, वो 200 किलो 250 किलो तक हो जाता है 16-17 साल की उम्र में।
1: अच्छा।
0: तो हम उन्हें फिर जो है जेनेटिक काउंसलर के पास भेजते हैं, जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, बट ये रेयर केस है। ज़्यादातर जो है वो लाइफस्टाइल का ही इशू है। हम उन्हें सबसे पहले ऑफर करते हैं मेडिकेशंस, ठीक है, और उसके बाद मेडिसिंस में आपको पता है वेट लॉस इंजेक्शंस आजकल बहुत मशहूर हैं, सेलिब्रिटीज ले रही हैं, और ज़ेम्पिक हो गई, मंजारो हो गई, उससे उनका काफ़ी हद तक वजन कम हो जाता है, और उसके बाद वो अपनी लाइफस्टाइल के साथ उसको मेंटेन करते हैं
1: जी।
0: और जब ये फेल हो जाए तो फिर हम उन्हें, हमारे पास बैलून है, एक बैलून ऐसी चीज़ है जो आप कैप्सूल लेते हैं, आप स्टमक में चला जाता है, उससे आप फुल की फीलिंग रहती है आपको हर वक्त, आपको अलग

0: तक है, आपने हर वक्त खाना खाया हुआ है, चार से पांच महीने वो बैलून आपके अंदर रहता है और आपका काफी 25 से 30 किलो वजन कम हो जाता है, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो हम रखते हैं वो सर्जरी है। सर्जरी कभी भी हम पहला ऑप्शन नहीं देते, सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन सर्जरी ही है आज तक।
1: अच्छा जी, तो इसमें भी एज पर डिपेंड करता है कि नहीं?
0: जैसे मैंने,
1: जैसे आपने कहा 14 प्लस को भी सर्जरी
0: जी,
1: अगर जरूरत पड़े तो कर
0: बिल्कुल,
1: देते हैं।
0: बिल्कुल 14 की हमने की है, 14-15 की हम कर रहे हैं रेगुलरली। देखें, अगर बच्चा बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है ना, तो उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, ठीक है, उसके हार्मोन्स अफेक्ट होंगे, उसकी बोन्स अफेक्ट होंगी, तो हम उसका वेट लॉस जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, वो 20-25 साल की उम्र में पहुंचे तो उसकी कोई, उसको कोई डिफॉर्मिटी ना हो, उसको कोई बीमारी ना रहे। अब हम उसको इग्नोर करेंगे या हम उसको कहेंगे 18 साल की उम्र में आना हमारे पास, तो 4-5 साल में तो उसका और बेड़ा गर्क हो जाएगा।
1: ठीक ठीक, क्या इस वजह से ये जो ट्रीटमेंट किया जाता है ये डॉक्टर साहब, इसमें आपने इंजेक्शंस की बात की, उस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स की बहुत बात की जाती है बार बार, जैसे कि आपने नाम लिया ओज़ेम्पिक है, मंजारो, तो इसमें क्या ऐसा है आपके पास जो पेशेंट्स हैं या कुछ इस तरह के केसेस जो हैं वो आते हैं?
0: जी बिल्कुल, देखें हर चीज़ का साइड इफेक्ट, हर चीज़ का साइड इफेक्ट है, कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, इवन के पेनाडोल भी जो आप सर दर्द के लिए ले रहे हैं उसका भी साइड इफेक्ट होता है अगर ज़्यादा ले लें। तो ये इंजेक्शंस बेसिकली, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आपकी बॉडी में GLP रिसेप्टर्स होते हैं, GLP पेप्टाइड्स होती हैं, जो ये मेडिसिन उनको इन्हेंस कर देती हैं, और इन्हेंस करने से क्या होता है कि दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है, और दूसरा ये कि आपका जो दिमाग में एपेटाइट सेंटर है जो आपको बताता है कि आपने खाना खा लिया, अब आप फुल हो गए, अब आप छोड़ दें, ये उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है जी।
1: अच्छा।
0: तो इससे क्या होता है कि हर वक्त आपने हफ्ते में एक बार ये इंजेक्शन स्किन के नीचे ले लिया, तो आपको ना भूख नहीं लगेगी, आप कुछ थोड़ा सा खाएंगे आप फुल हो जाएंगे, तो आप जो है ना, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप हमेशा फुल हैं, आपको भूख नहीं लगेगी। तो इससे जो है इवेंचुअली 1 महीने 2 महीने 3 महीने में, और इसके साथ आपको अच्छी डाइट, थोड़ी हाई प्रोटीन डाइट और थोड़ी सी वॉक करें, पानी ज़्यादा पिएं, तो आपका वजन कम हो जाता है। साइड इफेक्ट्स वहाँ आते हैं जहाँ लोग डॉक्टर्स एडवाइस नहीं फॉलो करते, खुद ही से बाहर से इंजेक्शंस ले लेते हैं, कभी किसी से कहीं से, खुद ही से डोज बढ़ा लेते हैं। अब ये जो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर इंडिकेशन है, या जो कहेंगे कि जिस सूरत में ये इंजेक्शन हम नहीं देते, जिनमें थायराइड कैंसर का या फैमिली हिस्ट्री हो, या थायराइड का प्रॉब्लम हो, थायराइड के नोड्यूल्स हो, तो क्योंकि ये एक जो है इसकी थायराइड की ना कैंसर करने में इसका कोई थोड़ा डाटा आया था अमेरिका में, इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बाकी सब ले सकते हैं। नौजिया, वॉमिटिंग, ये छोटे डेली बेसिस पे थोड़े से सिम्टम्स होते हैं, पहले 2-3 दिन फिर वो रिजॉल्व हो जाते हैं। और पेनक्रियाटाइटिस एक ऐसी इसकी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए तो आपको ये मेडिसिन स्टॉप करनी पड़ती है, और उसके बाद वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं।
1: ठीक,
0: तो ये इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं।
1: तो इसमें डॉक्टर साहब, जैसे कि बाकी भी जो कंप्लेन करते हैं कि उनके जो थिनिंग ऑफ हेयर हो गई है, या जैसे कि बहुत ज़्यादा उन्हें चक्कर आते हैं, मतलब इस तरह से भी, तो वो क्यों, जैसे आपने कहा कि पानी ज़्यादा पिए या कुछ, तो उसकी भी कोई खास वजह है?
0: देखें, आप किसी भी तरीके से अपना वजन कम करेंगे ना, वो डाइट हो गई, वो एक्सरसाइज हो गई, या आपने खाना छोड़ दिया, और या आपने सर्जरी करा लिया, आपने इंजेक्शन ले लिए, तो ये बालों पर इफेक्ट आता है, ठीक है। इसमें ये इंजेक्शन की वजह से नहीं है, ये सर्जरी की वजह से नहीं है, ये आपकी बॉडी का रिएक्शन है। बॉडी जब वेट लूज करती है तो वो बालों की ग्रोथ को रोक देती है और बाकी बॉडी की तरफ ज्यादा तवज्जो देती है, जिसकी वजह से बाल पतले हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल है। जैसे ही आपका वजन रुक जाएगा, आप वापस खाना खाना शुरू हो जाएंगे, तो वो वापस आना शुरू हो जाते हैं, ये टेम्परेरी होता है, लेकिन इसमें किसी इंजेक्शन का कोई रोल नहीं है, ये आपका वेट लॉस का प्रोसेस है जिसकी वजह से ये होता है। और दूसरी जो आप बता रही थी चक्कर आते हैं, इसकी वजह है सिर्फ डिहाइड्रेशन।
1: अच्छा, डिहाइड्रेशन,
0: डिहाइड्रेशन, क्योंकि जब आपको भूख नहीं लगती ना, पानी भी नहीं पीते, आपका ध्यान ही नहीं जाता कि पानी भी चाहिए, मुझे प्यास ही नहीं लग रही, तो इसलिए लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि एक पानी की बोतल 1 या 1.5 लीटर की अपने पास रखें, उसका सिप लेते रहें पूरा दिन, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल के, तो वो अपना अपनी नमकियात पूरी रखें।
1: ठीक है डॉक्टर, इसमें जब डोज होती है, जैसे जैसे वेट जो है वो एडजस्ट करते हैं?
0: जी वो इंजेक्शंस की एक सबसे पहले जो डोज होती है वो बहुत छोटी होती है, और वो होती है सेंसिटाइज करने के लिए आपको, मतलब आपकी बॉडी को उसका आदत, उसकी आदत लगाने के लिए। तो हम जो फर्स्ट डोज 1 महीने की देते हैं ना, वो बहुत छोटी होती है ताकि अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो पहले से ही पता चल जाए, और उससे भी लोगों का वेट लॉस हो जाता है, हालांकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि उससे ज़्यादा वेट लॉस होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो उसी बेसिक छोटी सी डोज के ऊपर

0: तीन चार महीने रहते हैं और उसी से ही उनका वेट लॉस हो जाता है. तो हम हर जो है एक महीने बाद या डेढ़ महीने बाद ना डोज जब देखते हैं कि वो उसका उसका वेट रुक गया है और उसको भूख लगना शुरू हो गई है, इसका मतलब वो डोज जो है वो यूज टू हो गया उस डोज के, तो हम उसकी डोज डबल कर देते हैं. मतलब अगर 2.5 थी तो 5 हो जाएगी, इसी तरह 0.5 थी तो 1 mg हो जाएगी. तो हम ना उसकी डोज अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हम बढ़ा देते हैं.
1: ठीक ठीक. तो डॉक्टर, जो डायबिटीज के लिए भी ये जो इंजेक्शन हैं वो दिए जाते हैं
0: जी,
1: तो उसमें क्या उसकी रिजीम होती है, किस तरह से आप
0: डायबिटीज के लिए जो हम ये जी देते हैं वेट लॉस इंजेक्शन जो दे रहे हैं?
1: जी जी जी.
0: अच्छा, ये बड़ा ना ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, तो मैं नहीं चाहता कि लोग सुन के इसको कोई ट्राई करने की कोशिश करें. हम देखते हैं कि डायबिटिक बंदे की,
1: ये तो है कि अगर कंसल्ट कोई आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो तभी.
0: जी बिल्कुल. नहीं, आपको डॉक्टर को अपनी शुगर का ट्रेंड बताना है, आपका 3 महीने के शुगर का टेस्ट का दिखाना है, आपको वो ये भी बताना है कि आप इंसुलिन की कितने यूनिट्स ले रहे हैं, उसके साथ टैबलेट्स कितनी ले रहे हैं. क्योंकि जो वेट लॉस इंजेक्शन है ना, ये शुगर को इंसुलिन से भी ज़्यादा जल्दी कम करते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट्स को पहले हम ये वेट लॉस इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं और साथ में उनकी शुगर की जो इंसुलिन है वो सेम रखते हैं लेकिन टैबलेट छुड़वा देते हैं. ठीक है, लेकिन उसके बाद हम उनकी ऐसी डोजिंग करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं कि वो आस्ता आस्ता इंसुलिन और डायबिटीज़ की मेडिसिन ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ वेट लॉस इंजेक्शन रह जाता है. और उसके बाद कुछ अरसे बाद जब उसका वजन कम हो जाता है, उसका जो HbA1c या शुगर नॉर्मल हो जाती है, तो हम स्लोली उस वेट लॉस इंजेक्शन को भी लोअर डोज पे लेके आना शुरू हो जाते हैं. क्योंकि इंसुलिन तो आपको रोज रात को लगानी है, लेकिन डायबिटीज का जो वेट लॉस का इंजेक्शन है वो हफ्ते में एक बार लगाना है. तो इस तरह जो है ना मैनेज करते हैं. थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है लेकिन सिर्फ एक स्पेशलिस्ट और अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट ही ये करते हैं हम लोग.
1: ठीक ठीक. डॉक्टर, किस हद तक ये जो इंजेक्शन वगैरह हैं वो सक्सेसफुल हैं, इसे आप क्या समझते हैं? बाकी हम आगे बैलूनिंग पर भी चलेंगे कि वो
0: जी,
1: क्या
0: जी,
1: है, मगर इसमें बाजार है, बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं और यहाँ पर तो खास तौर पर ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इशू है, पूरी दुनिया में ही है, मगर ये कि यहाँ पर भी जैसे फास्ट फूड और हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. जी
0: देखें, इन इंजेक्शंस का जो अभी टाइम शुरू हुआ है ना, ये बहुत अर्ली है अभी, इनके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. सिर्फ वज़न नहीं, इवन कैंसर के अंदर और उसके अलावा पॉलीसिस्टिक जो औरतों में बेचारियों में प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे नज़र आना शुरू हो गए इन इंजेक्शंस के, क्योंकि आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को ये बैक टू नॉर्मल करते हैं. ठीक है, तो आप जो है अभी हम बहुत अर्ली फेज़ में, अभी तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन है ना, अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है ना वो जब लॉन्च होगी तो वो ऐसे ही है कि समझे आपने वेट लॉस सर्जरी करा ली, वो इंजेक्शन उस वेट लॉस सर्जरी के बराबर की वेट लॉस देगा आपको. तो इवेंचुअली क्या होगा, अब बहुत सारे लोग हैं, मैंने आपको बताया कि वो जिम जाते हैं, डाइट करते हैं, लेकिन महीने 2 महीने बाद कहते हैं यार कुछ हो ही नहीं रहा. तो इस इंजेक्शन के थ्रू हम उनको वेट लॉस इनिशिएट करवाते हैं और उसके बाद वो अपने लाइफस्टाइल के साथ वो बैलेंस कर लेते हैं. और हमारे पास रश लगा हुआ है जो है ना पेशेंट्स का, जितना फायदा हो रहा है उनको
1: जी,
0: बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं.
1: तो इसमें जो है यहाँ पर जो उसमें और भी मुख्तलिफ डिजीज़ के साथ आते हैं या सिर्फ मोटापे की वजह से ही आपके पास आते हैं?
0: ऐसा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं डायबिटिक्स हैं
1: जी,
0: ठीक है, और हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ मोटापे की वजह से. क्योंकि जब आप यंग जनरेशन की बात करेंगे ना तो बहुत सारे लोग उनमें इतनी बीमारी नहीं है, सिर्फ वो मोटापा है. तो अब जो है ना वेट लॉस इंजेक्शन क्यों जो है एक फैशन बन गया
1: जी,
0: मुझे चाहिए, मुझे 1 महीने में 20 किलो कम करना जी, मुझे चाहिए. फिर उनका सवाल होता है जी मेरा कितना वजन कम होगा इस महीने? तो मैंने कहा मैं आपको नहीं बता सकता, जो आइडियली 5-10-15 किलो कहा गया है, हर बंदा डिफरेंट है. उनका पहला सवाल यही होता है कि मुझे ये इंजेक्शन चाहिए और इसमें मेरा के 1 महीने में कितना वजन कम हो जाएगा, या मैं ये सर्जरी कर दें मेरा 1 महीने में कितना वजन कम हो जाएगा. तो हर तरह का पेशेंट हमारे पास है. हमारे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिनकी शादी आ रही है 2 महीने बाद 3 महीने बाद जी जी, उनको चाहिए कि 3 महीने में हमारा वेट लॉस हो जाए बस. है हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं और ये सब पॉसिबल है. तो लेकिन आई थिंक के अभी जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ है. जब लोगों को इसकी ज्यादा अवेयरनेस आएगी, उनको पता चलेगा, आई थिंक बहुत सारे लोग जो है ना इसको अडॉप्ट करेंगे.
1: जी डॉक्टर, इसमें ये है कि फिर उसे लगाते रहना है या कब इसको खत्म भी कर सकते हैं?
0: जी आप, आपको मिनिमम 6 महीने से लेके 8 महीने तक तो आपको लगाना है. ठीक है, उसके बाद आपको टेपर करना होता है. टेपर ये है कि आप 10 दिन में एक लो डोज लगा ली, महीने में 3 बार, उसके बाद महीने में 2 बार, करते करते आप 1 साल जब हो जाएगा ना फिर आप उसको स्टॉप कर देंगे. ठीक है, लेकिन तब जब आपका गोल वेट अचीव हो

0: इसमें डॉक्टर साहब यही जब बिल्कुल एक टारगेट होता है कि अच्छा इतने टाइम में हमने काम करना है, तो उसकी वजह से कुछ और साइड इफेक्ट होते हैं बाकी पूरी बॉडी के जो हमारे सिस्टम्स हैं उन पर, क्योंकि इतनी जल्दी तेजी से वजन कम करना तो वैसे तो अनहेल्दी होता है। तो आप क्या कहते हैं
1: इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं बहुत तेजी से वजन कम करने के। सबसे पहले तो ये कि विटामिन डेफिशिएंसीज, क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि हम इंजेक्शन भी लें और हम खाएं भी ना, ठीक है, ताकि हमारा एक हफ्ते में अगर 2 किलो कम होना है तो हमारा 5 किलो एक हफ्ते में हो जाए। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो है ना विटामिंस की आस्ता आस्ता कमी होना शुरू हो जाती है। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारा आयरन, जो जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बनता है और उसकी वजह से भी डिजीनेस होती है क्योंकि ब्लड कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट विटामिंस है, विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, B12, ये सारे विटामिंस हमारी बॉडी में ना एक खास रोल प्ले करते हैं। कोई हमारी इम्यूनिटी में अच्छा काम करता है, कोई हमारी बॉडी की हेल्थ या एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है, तो ये ना लेजी हो जाते हैं, फिर वो ऐसे एक सीट पर बैठते हैं और वैसे थके हारे कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि आप कुछ खा ही नहीं रहे आप ना विटामिन की। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, जितना फास्ट आप वेट लॉस करेंगे ना आपके पित्त में पथरी बनने का चांस होता है।
0: अच्छा,
1: ठीक है, जिसके लिए बाद में आपको सर्जरी करानी पड़ जाती है क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे ना तो पित्त जो है वो काम नहीं कर रहा होता, तो उसमें जितना भी बाइल पड़ा होता है वो आस्ता आस्ता पत्थर बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं यही कहूंगा कि विटामिंस की कमी लोगों को व्हील चेयर तक ले गई है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जी ये है कि वो अनहेल्दी हम वेट जो है ना वो अपना कम कर रहे होते हैं और जैसे हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल अलग होता है और जो है ये जो काम हम कर रहे होते हैं इसमें बिल्कुल। अब हिस्ट्री भी लेते हैं तो उसमें ये भी है कि जो गॉल स्टोन्स हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनकी ये वेट लॉस की हिस्ट्री होती है
1: बिल्कुल ऐसे ही
0: और डाइटिंग कर रहे हैं अन मतलब कुछ कवर नहीं है
1: जी बिल्कुल
0: कंसल्टेशन नहीं है
1: तो बगैर नॉलेज के जब कोई भी आप काम करेंगे ना तो ऐसे साइड इफेक्ट्स आएंगे और बाद में डॉक्टर बताएगा आपको कि इस वजह से हो गया। तो हमेशा ये मोटापा भी ना इसको एक बीमारी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही कर लूंगा। अगर आप किसी अच्छे प्रोफेशनल को एक दफा दिखा लेंगे ना तो काफी नॉलेज मिल जाएगा आपको और आप अच्छा हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं।
0: ठीक है, तो उसमें आपने देखा जैसे हम यंग एज की बात करें टीनेजर्स हैं क्योंकि उन्हें तो ये सारी चीज़ें जो फास्ट फूड है, तो क्या वो आप जैसे बताते हैं आप के पास कंसल्ट करने के लिए आते हैं तो उस पर अमल भी करते हैं या नहीं?
1: सच्ची बात बताऊं तो नहीं करते।
0: अच्छा जी, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा ना
1: जी। तो इसलिए जो है ना अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि आखिरी हल हम सर्जरी होता है
0: जी।
1: फिर ज्यादातर हम सर्जरी ही करते हैं। ठीक है, अब सर्जरी में ना हम लोग जबरदस्ती वेट लॉस करवा देते हैं क्योंकि हम लोग आपके सिस्टम ही ऐसा बना देते हैं कि खाना खा ही नहीं सकते आप। ठीक है, वो आपका स्टमक छोटा कर देते हैं तो आप बर्गर मंगाएं, कोई चिप्स मंगवाएं, थोड़ा सा खाएं पेट फुल हो जाएगा और बाईपास में क्या होता है कि आप थोड़ा सा खा भी लें वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो हमें और लेकिन ये हम उन्हीं को ऑफर करते हैं जिनके मोटापे की वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं।
0: ठीक, इसमें डॉक्टर साहब ये मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि क्यों आप जो वेट लॉस है दूसरे तरीकों से भी जैसे कि कर सकते हैं कोई एक्सरसाइज की और जो डाइट की या कुछ, मगर ये फौरन इस तरह के जो मेजर्स हैं क्यों किए जाते हैं
1: जी?
0: जैसे आपने बात की जो यंग जनरेशन है उसमें जो ग्रोथ है कम हो जाती है, ये ज़रा मैं पूछना चाहूँगी पेरेंट्स सुन रहे हैं या टीनेजर्स ये सब, तो क्यों ऐसा आप करते हैं
1: जी? तो हम क्यों इनको ऑफर करते हैं?
0: जी ऑफर करते हैं
1: क्योंकि एक तो ये कि मैं
0: वैसे भी हो जाता है या हो सकता है, हो जाता है तो नहीं हो सकता है
1: जी,
0: कि हम डाइट करें, हम एक्सरसाइज करें, हम ये करें, मगर ये जो शॉर्ट अपनाए जाते हैं वेज तो वो क्यों
1: जी? जब बेरियाट्रिक सर्जरी आई थी ना तो बिल्कुल ऐसे ही लोग हमें क्वेश्चन करते थे और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे, कहते थे क्यों आप लोग जब डाइट और एक्सरसाइज से हो रहा है काम। तो मैंने कहा अगर डाइट और एक्सरसाइज से काम हो रहा था तो ओबेसिटी 70% पे क्यों चली गई
0: जी?
1: तो हर 2 में से 1 बच्चा मोटा क्यों है? ठीक है,
0: हर साल बल्कि 10 ईयर्स पे भी जो हो रहे हैं न्यू डेवलपमेंट्स ट्रीटमेंट के अलावा जो सारी चीजें हैं उसमें ये देखा जाता है कि फिर भी ओबेसिटी जो ज्यादा होती चली
1: नहीं आप ओबेसिटी मोटापा ना एक ऐसी चीज है कि ये सारी जिंदगी ना ये ईमान की तरह आपको ना पकड़ के रखना पड़ता है, यानी आप थोड़े पतले

0: ना, फिर आप मोटे हो जाएंगे, फिर आप थोड़े पतले होंगे, फिर आप मोटे। अब मुझे जो 40 से 50 की उम्र में लोग मेरे पास आते हैं ना, वो ये सब कर चुके हुए हैं, उन्होंने अपना वजन कम किया, वो बहुत पतले हो गए, वापस मोटे हो गए, फिर कहते मैंने दोबारा भी किया, मैं फिर वापस आ गया। ये ऐसी बीमारी है, इसको बीमारी की तरह ही ट्रीट करना है, मैं इसलिए आपको कह रहा था। तो हम उसे, हम अब ये फील्ड बनी इसलिए कि हम उन लोगों को हेल्प कर सकें जो इसकी बीमारी के अंदर जो है ना वो बहुत गहरे फंस चुके हैं, क्योंकि जितनी देर मोटापा रहेगा ना, हार्ट अटैक का चांस रहेगा, किडनी का चांस डैमेज होने का चांस रहेगा, आपकी जो है लीवर, फैटी लीवर जो बहुत बड़ा मसला है, जो पूरी बॉडी के हार्मोन्स कंट्रोल करता है, वो उसका चांस रहेगा। तो ये सारी बीमारियां खत्म करने के लिए बहुत बेहतर है कि एक छोटी सी सर्जरी करा लो जाके और खत्म कर दो ये सब कुछ।
1: ठीक है, मगर वो सब खत्म तो नहीं हो जाता ना, उसमें भी तो आपको केयर करनी जरूरी है। जैसे आपने कहा कि कुछ सालों के बाद वापस आते हैं, और ये कि ओबेसिटी के साथ ही बार दफा उससे भी ज्यादा
0: 90% हम लोग पेशेंट को हेल्प कर देते हैं, लेकिन नथिंग इज 100%। जैसे मैंने कहा कोई मैजिक पिल नहीं है, हर चीज में 10-15% का एक मार्जिन रह जाता है। तो जब हम कोई भी वेट लॉस सर्जरी करते हैं, अब मैं आपको तो एक मिसाल देता हूँ, बहुत सारी लड़कियां मेरी बहनें जो है ना सुन रही होंगी, तो स्पेनिश लाटे दिन की 3-3, 4-4 पीती हैं सर्जरी के बाद, ठीक है, अच्छा भला वेट लॉस हो रहा है, 10 किलो गिर गया एक महीने में, 20 किलो टोटल हो गया। अब जी फोन आता है कि वो भी मेरा वजन रुक गया, मैं डाइट पूछता हूँ तो मैं तो कुछ खाती नहीं, ठीक है, आप नहीं कुछ खाती, कुछ पीती होंगी, वो स्पेनिश लाटे पीती हैं जी, कितनी दिन की 3 पीती हूँ क्योंकि खाना नहीं खाया जाता, तो वो स्पेनिश लाटे जो है ना उसमें 1000 कैलोरी है, ठीक है, और अब आपने 2-3 पी ली तो आपने तो समझे कि आपने दिन में 6 रोटियां खा ली, एक अच्छे भले आदमी का खाना खा लिया ना आपने, तो कहाँ से वजन कम होगा, क्योंकि सर्जरी में खाया नहीं जाता, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिया जाता है।
1: अच्छा,
0: आप पी सकते हैं,
1: ठीक है,
0: और वो स्लोली स्लोली सिप करते करते, इवन एक भी आपने स्पेनिश लाटे पी ना, आपका वजन अफेक्ट होता है, उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, उसके अंदर जो दूध होता है उसके अंदर फैट होता है, कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना उसकी।
1: ठीक ठीक,
0: तो मेरे पास बहुत मिसाल है ऐसे दूसरी नेशनलिटीज की,
1: वो सिर्फ कैपुचिनो ले ली कुछ इस तरह से और कुछ खाया नहीं
0: जी, वो उसमें सिरप्स होते हैं, कैरेमल सिरप्स होते हैं, ये सारे सिरप्स हाई फ्रुक्टोज हाई कैलोरी होते हैं, वो कहती हैं हम तो कुछ नहीं खाते, लेकिन असल में कैलोरीज तो ले ली ना आपने, एनर्जी ले ली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम 90% उनकी हेल्प कर देते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत अपने आइडियल वेट पे चले जाते हैं, विद इन 3-4 मंथ 60-65 किलो पे चले जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर वो, क्योंकि साइकोलॉजिकली आदत होती है ना पहले इतना खाने की, इतने अपनी क्रेविंग्स होती हैं, आपके टेस्ट बड्स वेट कर रहे होते हैं, मैंने ये नहीं खाया बड़े अरसे से, तो इवेंचुअली आपकी आदतें वापस आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप फिर भी आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी शुगर के लोग इंजेक्शन छोड़ देते हैं, इंसुलिन छोड़ देते हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियां छूट जाती हैं, आपकी जो है बहुत सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ज्यादा लोगों की सर्जरी तो सिर्फ हम लोग बैक पेन और जॉइंट्स की वजह से करते हैं, क्योंकि आप 1 किलो वजन कम करें ना तो आपके जॉइंट से 4 किलो वजन का स्ट्रेस कम होता है।
1: सही।
0: इसका मतलब आपने 4 किलो अपने का प्रेशर हटा दिया अपने जॉइंट्स के ऊपर से।
1: ठीक।
0: तो इस तरह जब वजन कम होता है ना तो वो चलना फिरना वॉक करनी आसान हो जाती है उन लोगों के लिए।
1: ठीक है। इसमें डॉक्टर ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे आप डाइट की बात करते हैं, अभी आप सिर्फ पी सकते हैं खा नहीं सकते, तो उसमें आप जो स्केड्यूल बताते हैं पेशेंट्स को, वो क्या किस तरह से आप करते हैं कि वो क्या लें, किस डाइट कौन सी डाइट पर जाएं, और इसके अलावा फॉलो अप कितना जरूरी है?
0: जी, तो सबसे पहले तो ये कि हम लोग जब भी एक पेशेंट को अपने सेटअप में पहली बार देखते हैं तो वहाँ से ही हमारा डाइटिशियन उनके साथ जो है ना जुड़ जाता है, इवन वो इंजेक्शन के लिए हो या सर्जरी के लिए हो या बैलून हो, कोई भी चीज़ है, क्योंकि डाइटिशियन बहुत ज़रूरी है, उसको डाइट इज ऑलवेज 90%। अगर आपने डाइट को नहीं रोका और आप हर तरीके को अपना लेंगे ना, फिर आप रुक जाएंगे। तो हम लोगों के जो सर्जरी और बैलून या फिर इंजेक्शन का प्रोटोकॉल ये है कि हम फर्स्ट 2 वीक्स या 2-3 वीक्स में उनको लिक्विड डाइट पर रखते हैं। लिक्विड डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप योगर्ट है, सूप्स हैं, जूसेस हैं, तो जितनी जो आपकी आती है ना ड्रिंकेबल चीज़ें हैं, लबन है, तो जेली बना के खा सकते हैं आप, तो ना उसका हमारा प्रोटोकॉल है, बुक्स बनी हुई हैं। तो उसके बाद जब 2 वीक्स ख़त्म हो जाते हैं ना, तो हम उनको मैश डाइट एडवाइस करते हैं, जैसे कि आप जो भी खाएंगे ना आप मैश्ड खाएंगे, जैसे या कीमे की फॉर्म में खाएंगे, मैश पोटैटो हो गए, चिकन खाया तो उसको मैश कर दो, उसको बॉयल करके मैश कर दो, पका के मैश कर दो, फिश को मैश कर दो, क्योंकि वो स्वेलोइंग में आसानी होती है। उसके साथ आप सूप्स पी सकते हैं
1: जी।
0: और फिर जब 1 से 1.5 महीना या 6 वीक्स गुजर जाते हैं ना, फिर हम उनको कहते हैं कि आप अब नॉर्मल खाना खा सकते हैं, लेकिन हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट रखनी है आपने, और उसके लिए भी हमारी जो है डाइट प्लान्स बने हुए हैं।

0: बिल्कुल, वो जो डाइट प्लान है, थोड़ा सा मैं अपने लिसनर्स के लिए, अपने लिए भी क्या है, जैसे हाई प्रोटीन है तो जैसे अपनी डाइट, जैसे एशियन हमारा जो वे ऑफ ये खाने का जो तरीके हैं उसमें थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है।
1: जी जी बिल्कुल, देखिए हमारा ना सबसे, मुझे तो अपना जो वे ऑफ ईटिंग है ना उसमें सबसे बड़ा डिफेक्ट ये लगता है कि हम लोग ज्यादातर ना रोटी खाने वाले लोग हैं
0: जी,
1: ठीक है, और हमारे रोटी में बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं और जो भी सालन जो तेल में बनते हैं वो भी हाई कैलोरी है। यानी एक टाइम पे रोटी सालन खा लिया ना तो पूरे दिन का एक किस्म का आपने ना ऑलरेडी एक टाइम पे खा लिया। तो इसलिए जब भी डाइटिंग करते हैं ना, आपने सुना होगा लोग कहते हैं मैंने रोटी छोड़ दी, मैंने चावल छोड़ दिए, क्योंकि बेसिकली रोटी में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। डिपेंड करता है, इंडियंस की रोटी थोड़ी छोटी होती है, हमारी जरा बड़ी होती है ना। तो डाइटिंग में या प्लान्स में यही होता है कि हम सब कुछ रखते हैं उसके अंदर, लेकिन हम क्वांटिटी कम कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि उनको कोई विटामिन डेफिशिएंसी हो या फिर वो ऐसी चीज़ को मिस करके बाद में उसकी तरफ दोबारा जाएं
0: जी।
1: तो अगर हम उनको रोटी अलाउ भी करते हैं ना तो हम कहते हैं छोटी एक ही रोटी खाएं, ठीक है। अच्छा। और राइस जो है वो उसके ग्राम्स बताते हैं 100-150 इतने का आप ले लें, और जो कुकिंग स्टाइल है वो हम वेरी लो ऑयल होना चाहिए और उसमें वर्जिन ऑयल
0: जी भून के,
1: आप सब खाएं, आप चिकन खाएं, मटन खाएं, आप फिश खाएं, लेकिन सिर्फ आपने ये चीजें कम करनी है कि उसके साथ आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, आपने उसकी ऑयल कम रखनी है, उसके अंदर जो है चपाती अगर आप ले रहे हैं तो वो एक लें, छोटी लें, और पानी ज्यादा पिए। तो इस तरह की चीजें ना हमारी हर बंदे के स्टाइल के लिहाज से हम लोग टेलर करते हैं उसको,
0: ठीक है।
1: फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करें, सैलड्स खाने से पहले सैलड, अरबी रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा आप जाके ऑर्डर करते हैं ना तो पहले सैलड आ जाता है, वो सैलड खाते हैं उसके बाद भूख ही नहीं होती आगे कुछ खाने की, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये
0: मेन डिश है,
1: तो मेन डिश है अभी भाई। तो घर में भी ना मैंने यही किया हुआ है, मैं पहले सैलड का बोल रखता हूँ, सैलड खाता हूँ, उसके बाद जो भी खाना है वो थोड़ा सा खा के मैं उठ जाता हूँ।
0: ये तो बिल्कुल सही बात है, इसी तरह से ही होना चाहिए, मगर ये है कि फिर थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है कि क्या
1: ये ना मेहनत का काम है थोड़ा सा
0: जी। ठीक ये डॉक्टर साहब, इसमें बैलूनिंग की हम बात करेंगे कि क्या उसमें क्या करते हैं
1: जी।
0: जी
1: गैस्ट्रिक बलून जो है ना,
0: क्योंकि ज्यादातर जो है इंजेक्शन पे बहुत ही ज्यादा जोर है, क्योंकि हर एक रीचेबल है ना, तो को पहुंच सकते हैं वहां तक,
1: बिल्कुल,
0: इसलिए। मगर ये कि बलूनिंग, अब जैसे स्पेशलाइज आपकी फील्ड आ गई कि सर्जन जो हैं उनका काम है, एक तो ये आपने कहा, लिसनर्स आप भी सुन रहे हैं कि इसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि जितना वजन हम एक साल में या सिक्स मंथ्स में हम कम करते हैं या कर सकते हैं, मगर इस तरह के जो तरीके हैं, सर्जरी है या इंजेक्शंस हैं उसमें कम, उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो हमारी हेल्थ जो इश्यूज हैं, लाइक क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो रही हैं उसमें, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाती हैं, मतलब मेडिसिन वगैरह भी बहुत कम हो जाती हैं उसमें जी। डॉक्टर साहब बैलूनिंग का हमें बताइए कि वो क्या करते हैं।
1: डिफरेंट तरह के गैस्ट्रिक बैलून्स होते हैं और इनको गैस्ट्रिक बैलून इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टमक में छोड़ दिए जाते हैं। दो तीन तरीके होते हैं, या तो एंडोस्कोपी करके छोड़ दिया जाता है स्टमक में
0: जी।
1: या और उसके में जो है एनेस्थीसिया देना पड़ता है, और आजकल नए बैलून्स आए हैं वो एक कैप्सूल के अंदर बंद होता है, और वो कैप्सूल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो कैप्सूल आप स्वेलो करते हैं ऑफिस में, डॉक्टर के ऑफिस में, और उसके बाद वो स्टमक में हम उसकी, इसके साथ एक छोटी सी वायर होती है या रस्सी होती है, हम उसको खींचते हैं तो वो कैप्सूल खुल जाता है। उसके बाद हम उसके अंदर कोई 500 से 600 ml जो है ना पानी या कोई लिक्विड होता है हमारे पास, हर कंपनी हमें एक सेपरेट लिक्विड देती है।
0: अच्छा।
1: वो उसके अंदर फिल करते हैं, वो बैलून भर जाता है। अब ये बैलून हम आपके अंदर छोड़ देते हैं फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 months। अब क्योंकि आपके आधे स्टमक में ये बैलून पड़ा हुआ है तो उसका मतलब आपके बाकी स्टमक जो है वो आधा रह गया, मतलब पहले आप अगर एक पूरी प्लेट खाते थे तो अब आप आधी खाएंगे, ठीक है, पानी भी पिएंगे ना तो वो फुल ही आपको फुल की फीलिंग आएगी। और इसका ये बेनिफिट है कि आपको कोई इंजेक्शन नहीं लेना, आपको कुछ इंजेक्ट नहीं करना, कोई नोजिया वॉमिटिंग साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, मसल लॉस नहीं हो रहा, आप अपने काम पे रोज जा सकते हैं, आपको कोई फटीग नहीं हो रही, डिजीनेस नहीं हो रही, क्योंकि आप खाएंगे सब कुछ बस थोड़ा खाएंगे, पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन वेट लॉस की जहां बात है ना, उसमें इसका वेट लॉस इतना ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू इंजेक्शंस, क्योंकि इसमें जो है बैलून में फिर भी लोग कुछ ना कुछ स्क्वीज कर ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत वेट लॉस हुआ है और हर स्टोरी डिफरेंट है।
0: तो इसमें जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी है तो वो हमारे स्टमक में है तो पेशेंट को फीलिंग नहीं आती या कुछ, क्या मतलब?
1: पहले जब ये बैलून स्टार्ट हुए थे ना तो उसमें आते थे बैलून थोड़े हैवी होते थे, वो उन पेशेंट्स को फीलिंग आती थी क्या कुछ पड़ा हुआ स्टमक में, लेकिन अब चेंज हो गया, अब नए

0: फॉर्म के बलून्स आ गए हैं, ये बहुत लाइट होते हैं, बल्कि लोग भूल जाते हैं कि बलून डाला हुआ, जब तक कि उनको खाना खा के फुल की फीलिंग नहीं आती। और इसी तरह ना 4 to 5 months में ये जेल डिसॉल्व हो जाती है, वो पानी अंदर ही स्टमक के अंदर खुल जाता है और वो जो है ना जिस्म से निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें इवेंचुअली जो है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हमने आज तक देखी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई थी भी तो बहुत बहुत रेयर, कोई माइनर होगी। और दूसरा ये कि पहले जो है वो एंडोस्कोपी करके निकालना पड़ता था, अब हम उसे वो खुद ही निकल जाता है।
1: अच्छा जी, वो कैसे?
0: वो डिसॉल्व हो जाता है ना,
1: डिसॉल्व
0: हो जाता है और स्टूल के जरिए निकल जाता है।
1: कि कितने टाइम में? कितना?
0: 4 to 5 months में।
1: 4 to 5 months
0: और इतनी देर में लोगों का 30-35 kg कम हो जाता है।
1: तो आप किन लोगों को ये रिकमेंड करते हैं?
0: हम लोग देखें ओबेसिटी में, आपको पता है कि क्लास ऑफ ओबेसिटी होती है, ओवरवेट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बीएमआई के मुताबिक, ठीक है जी। 29 प्लस हैं तो आपकी क्लास 1 ओबीज हो गए, बीएमआई 29 प्लस हैं तो इसमें हम लोग इन्हीं लोगों को ऑफर करते हैं जो थोड़े लो बीएमआई है लेकिन ओबीज हैं, ठीक है। मतलब मॉर्बिड ओबेसिटी वो है जिसमें आप बहुत ज्यादा यानी बीएमआई 35-36 प्लस है, यानी आपका वेट 140-150 है, तो उसमें ना हमें पता है वेट लॉस तो होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसको कम से कम 60-70 किलो कम करना है ना, तो उसके लिए हम बलून नहीं डालते। जिसने 10-20-25 किलो कम करना है हम उसको बलून डाल देते हैं। दूसरा ये जो लोग कहते हैं कि उनको थायराइड का इशू है, एक तो वो इंजेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है, और वो कहते हैं हमने सर्जरी नहीं करानी, हमें डर लगता है, या हमें नहीं चाहिए हमें सर्जरी नहीं करानी, हमें नॉन सर्जिकल ऑप्शन चाहिए, तो उन लोगों के लिए नॉन सर्जिकल ऑप्शन आ जाती है।
1: ठीक ठीक। और वैसे तो सुनने में जैसे आप बता भी रहे हैं तो लग भी ऐसे रहा है कि शायद कुछ कम कॉम्प्लिकेशंस हैं।
0: जी जी,
1: सर्जरी की बात करें हम तो सर्जरी तो एक खुद जो है वो कट होगा, ये होगा, इस तरह से है।
0: सच्ची बात बताऊं तो सर्जरी में भी कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है वैसे, जो है हम लोग एक महीने में कम से कम 80-90 सर्जरीज करते हैं, ठीक है, 80-90 सर्जरीज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं हमारे पास एक या दो पेशेंट ही वापस आता होगा पर मंथ, उसके अलावा हम अब इसका मतलब ये है कि 1% 200 में से एक आदमी को कोई कॉम्प्लिकेशन होगी।
1: ठीक ठीक, इस तरह से। और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं?
0: देखें कॉम्प्लिकेशन जो में आती है माइनर और मेजर। माइनर यही है कि वो नौजिया वोमिटिंग थोड़ी ज्यादा देर चल जाती है उनको, तो वो वाइटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर हम उनको जो है वाइटामिंस एडमिट करके देते हैं। कभी कभी उसमें चांस होता है कि आपको जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कि वो स्टमक टाइट हो जाता है, ब्लॉकेज हो सकती है, वो बहुत रेयर है, लेकिन अगर हो जाए तो उसमें हम फिर उसकी सेपरेट ट्रीटमेंट करते हैं। रिफ्लक्स की प्रॉब्लम कभी कभी होती है, कुछ लोगों का एसिडिटी बढ़ जाती है उसके बाद, क्योंकि स्टमक छोटा हो गया लेकिन एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था उनके अंदर, तो उसकी भी सेपरेट ट्रीटमेंट होती है। और क्यों बहुत सारे लोग डिहाइड्रेशन जब उनको होती है तो वेन्स क्लॉटिंग का चांस होता है उसमें ना, उसमें डीवीटीज और वेन्स क्लॉटिंग का चांस होता है, तो वो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप पानी ज्यादा पिए। इस तरह की माइनर कॉम्प्लिकेशन है, मेजर कॉम्प्लिकेशन एक ही है, वो है लीक, और वो होता है फर्स्ट 1 month ऑफ सर्जरी में, और वो भी लेस देन 1% लोगों में होता है, इसका जो स्टेटिस्टिक्स है।
1: ठीक है,
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान है।

0: सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिना जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
0: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: ये लिसनर्स, आज हम बात कर रहे हैं कि जो किस तरह से जो ओबेसिटी है उसके साथ साथ जो हम ज़्यादातर जो डिज़ीज़ की बात कर रहे हैं या फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इसमें कौन सी जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो डॉक्टर साहब हमें डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल की वजह से ये तमाम मुश्किलात अपने आसपास जो हैं वो ले आते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने सर्जरी की बात की तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि कितनी टाइप्स की होती हैं सर्जरी। बाज़ आम लेमैन की ज़बान में कहते हैं, अच्छा ये जो स्टमक है उसे छोटा कर दिया, उसे टाई कर दिया है या उसे कट कर दिया है, या कुछ आम पब्लिक को ये पता है, तो आप हमें बताइए कि कितनी टाइप्स की होती है, क्या क्या आप सर्जरी में करते हैं और सबसे बेहतर कौन सी हो सकती है?
1: जी देखें, सबसे बेहतर सर्जरी वही है जिसके साइड इफेक्ट कम है, ठीक है जी, और वेट लॉस सबसे ज़्यादा
0: जी, ठीक है।
1: तो सर्जरी में ना हमारे पास स्टार्ट यहाँ से होता है कि आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरीज भी हो रही हैं। एंडोस्कोपिक क्या होता है कि वो आपके मुंह से कैमरा डालते हैं, ठीक है, और अंदर जाके ना स्टमक को स्टिच करना शुरू कर देते हैं। वो अंदर से जब स्टिचिंग शुरू करते हैं तो स्टमक का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी, यानी एक एंडोस्कोपी के जरिए। आप कोई पेट में सर्जरी नहीं की, कोई कट नहीं लगा, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने ये ना अपना स्टमक छोटा करवाया हुआ है, सिर्फ आपको पता होगा या आपके डॉक्टर को पता होगा,
0: ठीक है।
1: तो ये ऐसे ही काम करता है जैसे कि आपने स्टमक को छोटा कर दिया सर्जरी के जरिए, लेकिन इसमें ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चलती, लेकिन इनिशियली आपका पहले एक साल डेढ़ साल में आपका वजन सारा कम हो जाता है, और इसको आराम से आप ये स्टिचिंग निकाल सकते हैं एंडोस्कोपी करके, वापस रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लीस्ट कॉम्प्लिकेशन वाली सर्जरी है, लेकिन इसका थोड़ा सा फेलियर रेट है, क्योंकि कभी कभी स्टिचेस लूज हो जाते हैं तो स्टमक वापस खुल जाएगा, तो वो वापस बंदा खाना शुरू हो जाता है, तो वो कोई पता नहीं एक महीने बाद हो जाए या वो साल बाद हो। तो ये थोड़ा सा इस पर ना अभी काम हो रहा है, इस पर रिसर्च हो रही है, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज में ये कर रहे हैं लोग।
0: अच्छा,
1: बाकी आ जाती हैं सर्जिकल चीज़ें, तो सर्जिकल में हमारे पास स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या अरबी में यहाँ पे तकमीम गस्मेदा के नाम से जानी जाती है, और उर्दू में हम स्लीव ही कहते हैं, गैस्ट्रिक स्लीव ही कहते हैं इसको। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे के सुला देते हैं
0: जी।
1: पहले हमने उसकी सारी प्रिपरेशन की होती है, यानी उसकी चेकअप, ब्लड टेस्ट, ये सब हमें पता होता है। तो हम उसके अंदर ना स्टमक में एक ट्यूब डालते हैं।

0: और वो ट्यूब के अंदर एक बैलून होता है, ठीक है, वो 50 ml to 100 ml उसकी कैपेसिटी होती है। उस ट्यूब के साथ साथ जो है ना, हम जो स्टमक का बड़ा सारा पेट वाला पार्ट है ना, जो ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं इसको, वो हम निकाल देते हैं। वो रफली 75-80% होता है स्टमक का, ठीक है। ये वो पार्ट होता है जहाँ से हंगर हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि हमें भूख लगाते हैं गैस्ट्रिन के नाम से। और इसमें ये वो भी पार्ट होता है जिसमें ज्यादातर खाना जाके पड़ा होता है। तो जब ये पार्ट निकाल देते हैं, सर्जरी 15-20 मिनट में खत्म हो जाती है, ठीक है,
1: ठीक है।
0: उसके बाद पेशेंट जो है वो ज्यादा खा नहीं सकता, ठीक है, स्टमक का साइज बहुत छोटा हो जाता है, यानी उसने एक नवाला लिया, दो नवाले लिए, तो बस इतना ही है। उसको 2 घंटा वेट करना पड़ेगा, जब ये नीचे जाएगा फिर वो अगला खाना खाएगा। तो एक तो ये होगी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, इसका वेट लॉस सबसे ज्यादा और कॉम्प्लिकेशन सबसे कम है, और ये मोस्ट कॉमनली पूरी दुनिया में किया गया प्रोसीजर है। हमारे अपने अगर 100 केस करते हैं तो उसमें से 60-70 स्लीव्स ही होती हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: बाद में आते हैं हमारे पास बाईपासेस। बाईपासेस डिफरेंट टाइप के हैं, हमारे पास मिनी बाईपास है, रूएन वाई बाईपास है, सबके लिए डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं। और एक नया बाईपास है जो सैडी कहते हैं उसको, जो कि थोड़ा सा नीचे के साइड, हम छोटी आंत को थोड़ा सा एंड में कनेक्ट कर देते हैं। मिनी बाईपास ये होता है कि आप 2 मीटर, 1.5 से 2 मीटर की आंत को बाईपास करके स्टमक के साथ अटैच कर देते हैं। तो जब आप खाना खाएंगे ना, तो खाना वो पहले 1.5 से 2 मीटर में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट 3 मीटर में जाएगा, और उसकी वजह से वहाँ कम होती है एब्जॉर्प्शन। तो जो फर्स्ट 2 मीटर में एब्जॉर्प्शन होती है ना, वो स्किप हो जाती है। तो उस पर ये बेनिफिट होता है लोगों को कि ये लॉन्ग टर्म चलता है, सारी जिंदगी के लिए चलता है, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है।
1: ठीक है।
0: और शुगर के लिए ये बेस्ट है, डायबिटीज के लिए नंबर 1 प्रोसीजर है।
1: इसमें डॉक्टर, जैसे एब्जॉर्प्शन है उसमें विटामिंस और मिनरल्स वो भी तो इफेक्ट होते होंगे ना?
0: जी,
1: कि एब्जॉर्प्शन जो है वहाँ पर होती।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे विटामिंस हैं जो स्टमक में से ही एब्जॉर्प्शन उनकी शुरू हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो हम उनको लोगों को जो डेफिशिएंसी आती है ना, वो विटामिन B12 और आयरन की है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि ये जो है स्टमक से इनके हार्मोन्स बनते हैं जो इनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम लोग हर 3 से 6 महीने बाद इनके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और अगर लो है तो हम उनको सप्लीमेंट कर देते हैं IV, लेकिन वैसे इनको सारी जिंदगी ओरल सप्लीमेंट लेना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: ओरल सप्लीमेंट, एक टैबलेट जिसमें आयरन भी हो, उसमें मैग्नीशियम, ये सारे कैल्शियम वगैरह सब वो उनको सारी जिंदगी लेने पड़ेंगे, ये इसका एक ड्रॉबैक है।
1: ठीक है,
0: ठीक है। तो बेशक नॉर्मल हैं विटामिंस, नहीं नॉर्मल, बॉडी अडॉप्ट कर जाती है।
1: डॉक्टर, इसमें जैसे कि है कि खाना नहीं खा सकते, तो क्या कोई इतराज होता है उन्हें पेशेंट्स को या कुछ, कि क्यों हमारी लाइफस्टाइल या लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो गई है?
0: कुछ पेशेंट्स होते हैं वो रिग्रेट करते हैं।
1: जी,
0: वो कहते हैं कि खाया नहीं जा रहा, दिल करता है ये फलानी चीज खाने का, नहीं खा सकते, तो रिग्रेट करते हैं। लेकिन ये रिग्रेट 1 महीना चलता है।
1: अच्छा।
0: जब आप 25 किलो वजन कम हो जाता है ना जब, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और अभी तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने मुझे आके कहा हो कि 3-4 महीने बाद कि ये मैंने गलत करवा लिया, मुझे नहीं करवानी चाहिए थी। क्योंकि उनका कम अज कम इतना वेट कम हो जाता है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, तो वो बहुत खुश होते हैं अपनी अपने आप से और उनकी फैमिली। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी शादियां होने वाली होती हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम इफेक्ट हो रहा होता है जॉइंट पेन्स की वजह से, उनका काम बेहतर हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं वो हर तरह के फ़ायदे से जो है ना, वो नहीं कहते कि हमारी, हाँ वो नहीं खा सकते लेकिन टेस्ट कर सकते।
1: अच्छा।
0: हमारे पास एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी स्लीव की थी आज से 5 साल पहले, आज तक वो कहते हैं कि मैं पूरा बर्गर नहीं खा सकता। मैं 2-3 bites लेता हूँ या हाफ तक मैं पहुंच गया हूँ, मैं पूरा नहीं खा सकता। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि, अब वो इतना स्लिम है, उसने कभी नहीं कहा कि मैंने क्यों करा ली, क्योंकि जरूरी नहीं है आप इतना ज्यादा खाएं।
1: जी।
0: आप टेस्ट करें।
1: पर बिल्कुल बात है कि आप आई आंखों से तो देख के शायद आपको लगे कि, मगर ये कि जैसे प्रैक्टिकली खाते हैं तो खा नहीं सकते ना।
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं उतने खाने पर ही।
0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: और यही जो ट्रीटमेंट है उसका जो बिल्कुल अहम पॉइंट है वो यही है। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे हमने बात की कि डिजीज इज चीपर एंड द हेल्थ इज एक्सपेंसिव, अब हमें समझ आई
0: कि ये है क्या।
1: जैसे कि आपने हमें बताया कि बिल्कुल ये जो इतनी सारी चीज़ें डिजीजेस हैं, हम बनाते अपने अंदर डालते चले जाते हैं, मगर जब हेल्थ की तरफ आते हैं तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने आप को हेल्दी रखा जा सके।
0: जी डेफिनेटली, क्योंकि ये सर्जरीज, बैलून्स, इंजेक्शंस, ये सब भी एक कॉस्ट पे आ रही है ना।
1: जी।
0: तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, इनकी काफी प्राइस देनी पड़ जाती है इनको, इनका जो बेनिफिट लेने के लिए।
1: ठीक। और लिसनर्स, आपने भी सुना कि मैं भी

0: प्रोग्राम शुरू कर रही थी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी बात के कैसे कि डिजीज इज चीपर एंड द हेल्थ इज एक्सपेंसिव, क्योंकि आमतौर पर यही होता है कि बीमारियां हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़र्चा भी होगा, ये भी होगा, मगर ये कि अब पूरा सिनेरियो जो है अब समझ में आया। जी डॉक्टर, कोई मैसेज देना चाहेंगे?
1: जी, मेरा यही मैसेज है कि जब भी आपको कोई जहन में शक आए या कोई आपको लगे कि आपको कोई फलाना मसला शुरू हो रहा है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से रजू करें, उसके ऊपर बैठे नहीं, उसको इंतज़ार मत करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा है कि वो सालों साल अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहते हैं जब तक कि वो लेट हो जाता है। आप अपनी अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर थोड़ा खर्चा करें और डॉक्टर्स को दिखाएं, सप्लीमेंट्स लें, मेडिसिंस लें, और जितना जल्दी डॉक्टर से आप रजू करेंगे उतना कम आपको जो है उसके ऊपर इलाज की ज़रूरत पड़ेगी।
0: ठीक, और जो लाइफस्टाइल है वो कैसा रखें ये भी आप बताएं।
1: लाइफस्टाइल सब समझदार है माशाल्लाह से, सबको पता है कि क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हैं, हम क्यों इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे हैं। मैं यही एडवाइस करूंगा कि 10,000 स्टेप्स का गोल रखें। आप बैठे टीवी देख रहे हैं, आप उठें, आप हरकत करें और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले 10,000 स्टेप्स आपने किए हों। इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, इसमें एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगी, इसमें आप किसी से मिलेंगे, आपकी सोशल लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी, आप बाहर निकलेंगे, आपका स्ट्रेस भी कम होगा, तो सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें
0: इंशाल्लाह। और सामिन मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर फ़ख्र शाहिद जो कि बेरियाट्रिक सर्जन हैं और फौजिया शफीक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये कि किस तरह से हमने एक्टिव रहना है। अल्लाह हाफिज़।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: स्टेडियम के अंदर का माहौल ऐसा था जैसे हवा में हर दिल की धड़कन जमी हुई हो। लंदन का अजीम और तारीखी सेंटर कोर्ट, साल 2004 का विंबलडन फाइनल, दुनिया के सबसे अजीम और शानदार टेनिस एरिनाज में से एक, करीब 20,000 से ज्यादा चीखते हुए और चिल्लाते हुए शायकीन से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ रोशनियों का एक समंदर था और ग्रास कोर्ट की ठंडक के बावजूद हर तरफ मौजूद शायकीन के जोश से माहौल गर्म हुआ हुआ था। नेट के एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे अजीम और लगातार दो बार की डिफेंडिंग चैंपियन खड़ी थी, सेरेना विलियम्स, जिसे पूरी टेनिस की दुनिया अपना आइडियल मानती थी, और दूसरी तरफ खड़ी थी एक 17 साल की लंबी, पतली और शर्मीली लड़की। उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बस एक संजीदगी और बेपनाह फोकस था। स्टेडियम के अंदर का माहौल ऐसा था जैसे वक्त एक लम्हे के लिए थम गया हो। लंदन का तारीखी सेंटर कोर्ट दुनिया के सबसे मशहूर टेनिस एरिनाज में से एक है और वो रोशनियों से जगमगाता रहता था। साल 2004 और विंबलडन का फाइनल अपने अहम तरीन लम्हात में दाखिल हो चुका था। हजारों शायकीन अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे, हर नजर कोर्ट के बीच खड़ी दो लड़कियों पर जमी हुई थी। ग्रास कोर्ट की खुशबू, कैमरास की चमक धमक, रोशनियां और शायकीन की खामोशी मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा कर रही थी जहां हर सेकंड तारीख लिखी जा रही थी। एक तरफ खड़ी थी सेरेना विलियम्स, दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बेस्ट खिलाड़ियों में से एक। वो दो मर्तबा विंबलडन की चैंपियन रह चुकी थीं और उस वक्त टेनिस की दुनिया पर उनका राज था। उनके सामने खड़ी थी एक 17 साल की लंबी, पतली और पुरअज़म लड़की। उसका नाम था मरिया शरपोवा। साथियों, बहुत से लोग उसे एक टैलेंटेड यंग प्लेयर समझते थे, लेकिन किसी ने भी ये अंदाजा नहीं किया था कि ये जवान लड़की आज दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस स्टेज पर एक नई तारीख लिखने वाली है। मरिया के चेहरे पर ना कोई डर की निशानी थी और ना ही प्रेशर का निशान, सिर्फ एक गहरा फोकस था। वो फोकस जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होता है जिन्होंने बचपन से मुश्किलात का सामना किया हो और जिन्होंने अपने ख्वाबों के लिए हर कुर्बानी देना सीख ली हो। जब मरिया ने पहली सर्व के लिए बॉल हवा में उछाली तो पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। बॉल उनके रैकेट से निकली और बिजली की रफ्तार से कोर्ट के दूसरे हिस्से में जा गिरी। सेरेना ने जवाब दिया, लेकिन मरिया के हर शॉट में एक अजीब सी ताकत थी। उसकी आवाज, उसका जोश और उसका कॉन्फिडेंस हर पॉइंट के साथ बढ़ता जा रहा था। दुनिया देख रही थी कि एक टीनेजर किसी आम मैच में नहीं बल्कि टेनिस की एक असीम चैंपियन के सामने अपनी पहचान बना रही थी। और फिर वो लम्हा आया जिसका इंतजार हर एथलीट करता है। मैच का आखिरी पॉइंट मरिया ने अपनी पूरी ताकत लगाई, बॉल कोर्ट में लगी और सेरेना उस तक नहीं पहुंच पाई। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, फिर सेंटर कोर्ट तालियों और शोर से गूंज उठा। मरिया का हाल कुछ यूं था कि वो घुटनों के बल कोर्ट पर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने के नहीं थे बल्कि उन सालों की मेहनत, तन्हाई, दर्द और कुर्बानियों के थे जो उन्होंने इस एक लम्हे के लिए दी थी। वो उठी और सीधा स्टैंड्स की तरफ देखा जहां उनके वालिद यूरी खड़े थे। एक बेटी और बाप के दरमियान वो नजरों का रिश्ता था जिसमें सालों की मेहनत और उम्मीद छुपी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम कतर, मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर पर आपका पसंदीदा शो विमेन इन स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खातून एथलीट की कहानी की जो सिर्फ टेनिस चैंपियन नहीं बनी बल्कि दुनिया भर की लड़कियों के लिए हिम्मत और हौसले की मिसाल बन गई। ये कहानी है मरिया शरिपोवा की। साथियों, मुझे जरा ये बताइएगा कि आपके ख्याल में एक चैंपियन को चैंपियन बनाने वाली सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उसकी मेहनत, उसका टैलेंट, یا مشکلات کے دور میں مشکلات کا حوصلے سے سامنا کرنا. اپنی رائے ضرور ہمیں میسج کیجیے گا 666-222-107 پر, یا آپ چاہیں تو ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں جو کہ ہے FM 107 قطر. ساتھیوں, مریا شاریپووا کی کہانی صرف گرینڈ سلیم ٹرافیز اور ٹینس ریکارڈز کی کہانی نہیں ہے, یہ کہانی ہے ایک ایسی بچی کی جو دنیا کے ایک دور دراز علاقے سے نکلی اور جس نے ثابت کیا کہ خواب دیکھنے کے لیے حالات کا بہترین ہونا ضروری نہیں ہوتا. کبھی کبھی سب سے مشکل حالات ہی انسان کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے ہیں جو اسے دنیا سے مختلف بنا دیتی ہیں. مریا کا سفر رشیا کے سائبیریا علاقے سے شروع ہوا جہاں زندگی آسان نہیں تھی. 19 اپریل 1987 کو پیدا ہونے والی مریا ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں محنت اور صبر روز کی زندگی کا حصہ تھے. ان کے والد یوری اور والدہ یلینا نے زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھیں. نیوکلیئر حادثے کے بعد ان کا خاندان اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا بسا تھا. سائبیریا کی سخت سردیاں, کم وسائل اور مشکل حالات مریا کے بچپن کا حصہ تھے, لیکن انہی مشکلات سے زندگی میں ایک چھوٹی سی بچی کے اندر ایک بڑا خواب جنم لے رہا تھا. جب مریا صرف 4 سال کی تھی تو ان کے والد نے انہیں پہلی بار ٹینس ریکٹ دیا. شروع میں تو صرف ایک کھیل ہی تھا, یہ ایک مشغلہ تھا, لیکن آہستہ آہستہ ایک جنون بنتا چلا گیا. مریا اکثر بال کو دیوار سے ٹکراتی اور دوبارہ ہٹ کرتی. جہاں دوسرے بچے کھیل اور مستی میں وقت گزارتے, وہاں مریا ریکٹ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر رہی تھی. ان کے والد نے جلدی محسوس کر لیا بھائی کہ مریا کے اندر کچھ خاص بات تو ہے. انہیں پتا تھا کہ اگر اس ٹیلنٹ کو صحیح ٹریننگ مل جائے تو یہ بچی کچھ بڑا کرے گی. لیکن اس خواب کو پورا کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا. جب مریا 6 سال کی ہوئی تو یوری نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا. وہ اپنی بیٹی کو لے کر امریکہ چلے گئے تاکہ اسے دنیا کی بہترین ٹینس ٹریننگ مل سکے. فلوریڈا کا سفر صرف ایک ملک بدلنے کا سفر نہیں تھا, بلکہ ایک ایسے خواب کا سفر تھا جہاں ہر قدم پر مشکل کھڑی تھی. امریکہ میں ان کے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں تھے, انہیں انگریزی زبان نہیں آتی تھی, اور سب سے مشکل بات یہ تھی کہ مریا کی والدہ ویزا کے مسائل کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں آ سکی تھی, جس کی وجہ سے ایک چھوٹی سی بچی کو اپنی ماں سے دور رہنا پڑا. یوری نے اپنی بیٹی کے خواب کو اپنا خواب بنا لیا. وہ دن رات محنت کرتے, چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے اور ممکن کوشش کرتے کہ مریا کی ٹریننگ جاری رہ سکے. یہ وہ وقت تھا جس نے مریا کے اندر صرف ٹینس کی سکلز نہیں بلکہ زندگی کا سب سے بڑا سبق پیدا کیا. انہوں نے یہ سیکھا کہ کامیابی صرف ٹیلنٹ سے نہیں ملتی, اس کے لیے صبر, ڈسپلن اور قربانی دینی پڑتی ہے, اور یہی قربانیاں آگے چل کر اس لڑکی کو دنیا کے سب سے بڑے ٹینس سٹیج تک لے جانے والی تھی. ساتھیوں, فلوریڈا پہنچنے کے بعد مریا شاریپووا کی زندگی بالکل بدل گئی. ایک چھوٹی سی بچی جو سائبیریا کے ٹھنڈے علاقے سے آئی تھی, اب ایک نئے ملک, نئے کلچر اور نئے ماحول میں اپنے خواب کے لیے تیاری کر رہی تھی. لیکن یہ سفر کسی فیری ٹیل کی طرح آسان نہیں تھا. ہر دن ایک امتحان تھا, ہر پریکٹس ایک نیا چیلنج تھی. مریا نے فلوریڈا کی مشہور ٹینس اکیڈمی میں ٹریننگ شروع کی. یہاں دنیا بھر سے ٹیلنٹڈ بچے آتے تھے جو پروفیشنل ٹینس پلیئرز بننا چاہتے تھے. ہر بچہ اپنے اندر ایک خواب لیے ہوئے تھا, لیکن مریا کا خواب ان سب سے الگ تھا. ان کے پاس صرف ٹیلنٹ نہیں تھا, ان کے پیچھے ایک پوری کہانی تھی. ایک ایسے باپ کی کہانی جس نے اپنی بیٹی کے لیے اپنی ہر آسانی قربان کر دی. اکیڈمی کی زندگی بہت سخت تھی بھائی. صبح جلدی اٹھنا, فٹنس ایکسرسائز کرنا, گھنٹوں تک کورٹ پر پریکٹس کرنا اور اپنی ہر کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنا, مریا کے روز کی روٹین کا حصہ بن گئے تھے یہ سب. ٹینس صرف ان کے لیے ایک کھیل نہیں رہا تھا بلکہ ان کی پوری زندگی بن چکا تھا. بھائی, جب دوسرے بچے پریکٹس کے بعد آرام کرتے تو مریا اپنے شاٹس کو بہتر بنانے کے لیے مزید وقت کورٹ پر گزارا کرتی تھی. ان کے والد یوری ہمیشہ ان کے ساتھ ہی کھڑے رہتے تھے, کبھی کوچ کی طرح, کبھی دوست کی طرح, اور کبھی ایک ایسے سہارے کی طرح جو ہر مشکل وقت میں انہیں یاد دلاتا تھا کہ ہار مان لینا कोई ऑप्शन नहीं है भाई, नो नॉट अ चांस। लेकिन एकेडमी में मरिया के लिए हर चीज आसान नहीं थी। वो एक ऐसे खानदान से आई थी जहां पैसा और सहूलियात बहुत लिमिटेड थे। कई दफा तो दूसरे बच्चे उनके कपड़ों और उनके बैकग्राउंड की वजह से उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। वो उन्हें एक आउटसाइडर समझते थे। लेकिन मरिया ने जवाब लफ्जों से नहीं दिया, उन्होंने जवाब अपने रैकेट से दिया। हर बार जब वो कोर्ट पर उतरती, उनके अंदर एक अजीब सी भूख होती थी। वो साबित करना चाहती थी भाई कि इंसान की पहचान उसकी हालत नहीं बल्कि उसकी मेहनत से होती है। यही सोच आहिस्ता आहिस्ता उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। मरिया फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ मेंटली भी मजबूत होती चली गई। उन्होंने सीखा कि प्रेशर के वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है और मुश्किल वक्त में अपने मकसद पर फोकस कैसे रखे रहना है। साथियों, टेनिस की दुनिया में सिर्फ पावरफुल शॉट्स काफी नहीं होते। एक चैंपियन बनने के लिए दिमाग, सबर और फैसला करने की सलाहियत बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और ये मरिया में ये तमाम क्वालिटीज वक्त के साथ साथ पैदा होती चली गई। भाई जब वो अपनी टीन एज में पहुंची तो उनकी परफॉर्मेंस ने कोचेज और एक्सपर्ट्स की तवज्जो हासिल करना शुरू कर दी। उनकी लंबी हाइट, पावरफुल सर्व्स और एग्रेसिव स्टाइल उनकी पहचान बन गया। वो कोर्ट पर एक ऐसी खिलाड़ी नजर आती थी जो हर पॉइंट के लिए पूरी जान लगा दिया करती थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में मरिया ने प्रोफेशनल टेनिस में कदम रखा। ये फैसला बहुत बड़ा था क्योंकि प्रोफेशनल टेनिस की दुनिया में हर मैच एक जंग की तरह महसूस होता है। सामने दुनिया की बेहतरीन तरीन प्लेयर्स होती हैं, कैमरास की नजर होती है और हर गलती का हिसाब होता है। लेकिन मरिया के लिए ये नया नहीं था, नॉट एट ऑल। वो बचपन से ही भाई मुश्किलात का सामना करती आ रही थी। उनका सफर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ता चला गया। छोटे छोटे टूर्नामेंट से लेकर बड़े इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स तक मरिया हर मैच के साथ सीखती गई। हर हार ने उन्हें मजबूत बनाया और हर जीत उनका यकीन बढ़ाती चली गई। साथियों, 2003 में मरिया ने अपना पहला WTA टाइटल जीता। ये उनके करियर का एक बहुत अहम मोड़ था। अब दुनिया उन्हें सिर्फ एक यंग टैलेंट नहीं समझ रही थी, नो, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर देख रही थी जो फ्यूचर में टेनिस की दुनिया पर अपना नाम लिख सकती थी। लेकिन मरिया को अभी एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना था। दुनिया उनके खेल के साथ साथ उनकी शख्सियत, उनकी लुक्स और उनकी शोहरत पर भी बात करने लग गई थी। कुछ लोग उन्हें सिर्फ एक ग्लैमरस यंग एथलीट समझते थे, लेकिन मरिया जानती थी कि उन्हें अपनी पहचान सिर्फ एक चीज से बनानी है, अपने खेल से। देखिए, उनका मकसद ये साबित करना था कि वो सिर्फ मीडिया की दिलचस्पी नहीं बल्कि एक असल चैंपियन है। वो रोज अपनी फिटनेस पर काम करती, अपनी टेक्निक्स को बेहतर बनाती और जहनी फोकस को मजबूत करती थी। उन्हें ये बात पता थी कि दुनिया में बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग हिस्ट्री लिखते हैं जो मुश्किल वक्त में भी रुकते नहीं हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर, और शो का नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स, जहां हम हर कहानी को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि फील करते हैं।

0: Women in Sports, RJ Safa ke saath, sirf FM 107 par, Dil Se Desi.
1: और फिर क्या होना था भाई? फिर आया 2004 का वक्त. ये वो साल था जब मरिया शरिपोवा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी. विंबलडन का नाम टेनिस की दुनिया में एक ख्वाब की तरह लिया जाता है. ग्रास कोर्ट, पुरानी रवायतें और दुनिया के सबसे बड़े चैंपियंस. हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है कि एक दिन वो विंबलडन की ट्रॉफी अपने हाथ में उठाए. मारिया भी इसी ख्वाब के साथ लंदन आई थी, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये 17 साल की लड़की हिस्ट्री के सबसे बड़े लम्हों में से एक लम्हा क्रिएट करने वाली है. टूर्नामेंट के बाद मरिया ने एक के बाद एक मुश्किल मुकाबले जीते. उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया. हर मैच के साथ दुनिया उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो देने लगी. और फिर वो दिन आ ही गया, विंबलडन का फाइनल. सामने थी सरीना विलियम्स, दुनिया की नंबर वन प्लेयर्स में से एक. एक तरफ तजुर्बा, शोहरत और पूरी कामयाबियां थी, दूसरी तरफ एक यंग लड़की का हौसला था, मेहनत और वो यकीन जो सालों की कुर्बानियों से पैदा हुआ था. जब मरिया कोर्ट पर उतरी तो बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये मैच सरीना के लिए आसान होगा, लेकिन मरिया के जहन में कोई डर नहीं था. उन्होंने पहले पॉइंट से ही अपना इरादा क्लियर कर दिया था. हर सर्व में ताकत थी, हर रिटर्न में जज्बा था, हर मूवमेंट में यकीन था. और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया समझने लगी कि आज यहाँ सिर्फ एक टेनिस मैच नहीं हो रहा, आज एक नई चैंपियन पैदा हो रही है. साथियों, विंबलडन 2004 का वो फाइनल सिर्फ मरिया शरिपोवा का करियर का एक मैच नहीं था, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का इम्तिहान था. सामने थी सरीना विलियम्स, एक ऐसी चैंपियन जिन्होंने दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को हराया था और जिनके नाम से ही मुख्तलिफ प्लेयर्स पर प्रेशर आ जाया करता था. लेकिन मरिया के लिए सिर्फ एक मुश्किल मुकाबला नहीं था, ये वो मौका था जिसका ख्वाब उन्होंने बचपन से देखा था. मैच शुरू हुआ और मरिया ने पहले ही लम्हे से अपना कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू कर दिया था. उनकी पावरफुल सर्व और एग्रेसिव स्टाइल ने सरीना को हैरान कर दिया. हर शॉट के लिए उनका यकीन

गया। वो सिर्फ बॉल को हिट नहीं कर रही थी, वो दुनिया को एक पैगाम दे रही थी कि एक लड़की जिसके पास सिर्फ हौसला और हिम्मत है, वो दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन के सामने खड़ी हो सकती है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि सरीना जैसी चैंपियन के खिलाफ खेलना ही किसी भी यंग प्लेयर के लिए बहुत बड़ी प्रेशर की बात होती है, लेकिन मरिया ने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा। उन्होंने हर पॉइंट को एक नया चैलेंज समझा और पूरी तवज्जो के साथ खेला। जब आखिरी पॉइंट खत्म हुआ और मरिया ने जीत हासिल की तो पूरा सेंटर कोर्ट तालियों से गूंज उठा। 17 साल की मरिया शरिपोवा विंबलडन चैंपियन बन चुकी थी। ये लम्हा सिर्फ ट्रॉफी जीतने का नहीं था, नो, एक ऐसी कहानी का स्टार्ट था जो साइबेरिया से शुरू हुई थी। एक ऐसी बच्ची की कहानी जो अपनी माँ से दूर रही, जिसके वालिद ने अपनी जिंदगी बेटी के ख्वाब के नाम कर दी और जिसने हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लिया। मरिया कोर्ट पर घुटनों के बल बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो आंसू खुशी के भी थे और उन तमाम यादों के भी जो उनके जहन में फ्लैशबैक कर रही थी। वो लम्हा जब उनके पास कुछ नहीं था, जब उन्होंने तन्हाई महसूस की, जब उन्हें सिर्फ एक चीज पर यकीन था और वो थे उनके ख्वाब। जब उन्होंने ट्रॉफी उठाई तो दुनिया भर के लोगों ने एक नई टेनिस सुपरस्टार को देखा। मरिया शरिपोवा अब सिर्फ रशिया की एक यंग प्लेयर नहीं थी, वो एक ग्लोबल नाम बन चुकी थी। साथ ही विंबलडन की इस जीत के बाद मरिया का सफर और भी तेज हो गया। लेकिन चैंपियन बनना और चैंपियन रहना दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब उनके सामने नए चैलेंजेस थे, दुनिया की नजर उन पर थी। हर टूर्नामेंट में लोग उनसे जीत की उम्मीद किया करते थे। हर मैच में प्रेशर पहले से ज्यादा हो गया था। भाई, मरिया ने इस प्रेशर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने इसे अपनी मोटिवेशन बना लिया। 2006 में उन्होंने US ओपन जीता और साबित किया कि विंबलडन की कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं थी, वो असल में दुनिया की बेहतरीन प्लेयर्स में से एक बन चुकी थी। फिर 2008 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल भी जीता और अपनी पोजीशन और भी मजबूत कर ली। साथ ही उनकी पर्सनैलिटी भी दुनिया भर में मशहूर होने लगी। टेनिस कोर्ट्स पर उनकी एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल्स और कोर्ट के बाहर उनका कॉन्फिडेंस उन्हें एक अलग पहचान दिला रहा था। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन मरिया के लिए शोहरत का मतलब सिर्फ कैमरास और एडवर्टाइजमेंट नहीं था। वो हमेशा अपने खेल को सबसे ऊपर रखा करती थी। उनका डिसिप्लिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। मैच से पहले वो अपने आप को मेंटली तैयार कर लिया करती थी। उनके लिए हर टूर्नामेंट एक नया सफर होता था। वो इस बात से तो फुल्ली अवेयर थी भाई कि कल की जीत आज की मेहनत की गारंटी नहीं होती। साथ ही 2012 में मरिया ने फ्रेंच ओपन जीत कर एक और अजीम कारनामा अंजाम दे दिया। इस जीत के साथ उन्होंने करियर ग्रैंड स्लैम मुकम्मल कर लिया, यानी उन्होंने टेनिस के चार सबसे बड़े टूर्नामेंट्स यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन सब जीत लिए। साथियों, ये अचीवमेंट्स तो भाई दुनिया के कुछ ही बेहतरीन टेनिस प्लेयर्स को हासिल होती है। मरिया ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्रास कोर्ट की चैंपियन नहीं, बल्कि हर सरफेस पर अपनी सलाहियत दिखाने वाली खिलाड़ी हैं। लेकिन भाई, हर कामयाब कहानी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, और मरिया शरिपोवा की जिंदगी में भी ऐसा वक्त आया जब उन्हें अपने करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान देना पड़ा, यानी कि 2008 में उनकी राइट शोल्डर में शदीद इंजरी हुई। टेनिस प्लेयर के लिए शोल्डर सिर्फ जिस्म का एक हिस्सा नहीं होता, बल्कि उनके खेल की बुनियाद होता है। सर्व, पावर और कंट्रोल सब इसी पर तो डिपेंड करते हैं। डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज के बाद मरिया को लंबा वक्त कोर्ट से दूर रहना पड़ा। दुनिया के कुछ लोगों ने सोचा कि भाई शायद उनका करियर अब खत्म हो गया है, जैसा हर कोई सोचता है नॉर्मली। एक वक्त था जब वो दुनिया की टॉप प्लेयर थी और अब वो दोबारा शुरू से सफर तय करने पर मजबूर थी। लेकिन भाई, मरिया शरिपोवा की कहानी कभी हार मान लेने की कहानी नहीं थी। उन्होंने रिहैबिलिटेशन के मुश्किल दिन गुजारे, घंटों तक एक्सरसाइजेस की, अपनी बॉडी को दोबारा तैयार किया और अपने खेल को बदलने की कोशिश की। उन्होंने अपने सर्व्स और टेक्निक्स पर दोबारा काम किया। जहां बहुत से लोग मुश्किल वक्त में टूट जाते हैं, मरिया ने

वापसी का जरिया बनाया। इसी दौरान उन्होंने एक और पहलू दुनिया के सामने रखा। मरिया ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और अपना कैंडी ब्रांड शुगर पॉफ शुरू किया। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि एक प्रोफेशनल एथलीट कैंडी बिजनेस क्यों शुरू कर रही है भाई, लेकिन मरिया ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी सोच सिर्फ टेनिस कोर्ट तक महदूद नहीं थी। उन्होंने अपने ब्रांड को एक कामयाब बिजनेस बनाया और दिखाया कि एक एथलीट अपने करियर के साथ साथ बिजनेस और लीडरशिप में भी कामयाब हो सकती है। साथियों, मरिया शरीपोवा की ये जर्नी उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो समझते हैं कि इंसान की पहचान सिर्फ एक काम से होती है। मरिया ने दिखाया कि अगर आप में सीखने का जज्बा हो ना, तो आप जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन अभी उनकी जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान बाकी था भाई, एक ऐसा इम्तिहान जिसने उनकी शोहरत, उनके करियर और उनके हौसले को दोबारा चैलेंज करना था। तो भाई, साल 2016 में मरिया शरीपोवा की जिंदगी का वो साल था जो उनके करियर के सबसे मुश्किल चैप्टर्स में से एक बन गया। एक ऐसी खिलाड़ी जो दुनिया की नंबर वन प्लेयर रह चुकी थी, जिसने ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हुए थे, जिसने हर मुश्किल का सामना करके अपनी पहचान बनाई थी, अब एक नए इम्तिहान के सामने खड़ी थी। मरिया ने अनाउंस किया कि उनका डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया है और वजह थी एक दवा। मरिया का ये कहना था कि वो दवा वो कई सालों से अपने डॉक्टर के मशवरे पर ले रही थी और उन्हें मालूम नहीं था कि इस दवा को बैन लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ये खबर आते ही दुनिया भर में हलचल मच गई। मीडिया ने इस मामले को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। कुछ लोगों ने तो सवाल भी उठाए, कुछ ने तनकीद की और कुछ ने ये समझा कि शायद मरिया शरीपोवा का करियर अब खत्म हो गया है। एक एथलीट के लिए ऐसा वक्त बहुत मुश्किल होता है। सालों की मेहनत, शोहरत और कामयाबी एक पल में सवालों के दायरे में घिर जाती है और मरिया के लिए भी ये आसान वक्त नहीं था भाई। लेकिन जिस तरह उन्होंने बचपन से मुश्किलात का सामना किया था, उसी तरह उन्होंने इस दौर का भी सामना किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल की, अपनी फिटनेस पर काम जारी रखा और अपने आप को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी। आखिरकार उन पर 15 महीने की पाबंदी लगा दी गई। ये 15 महीने किसी भी एथलीट के लिए बहुत लंबा वक्त होते हैं। कोर्ट से दूर रहना, कॉम्पिटिशन से दूर रहना और अपने नाम के साथ जुड़ी हुई तनकीद सुनना आसान नहीं होता साथियों। लेकिन मरिया ने इस वक्त को जाया नहीं किया। उन्होंने अपनी तालीम पर तवज्जो देना शुरू कर दी, बिजनेस के बारे में सीखना और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोग्राम्स में शिरकत की। वो सिर्फ एक प्लेयर के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर भी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो दिन आया जब मरिया दोबारा टेनिस कोर्ट पर वापस आई। जब वो रैकेट लेकर कोर्ट में उतरी तो दुनिया एक बार फिर उन्हें देख रही थी। कुछ लोग तो उनकी हार का इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन मरिया के लिए ये वापसी सिर्फ मैचेस जीतने के लिए नहीं थी, ये अपने आप को दोबारा साबित करने का सफर था। उन्होंने ये दिखाया कि असली चैंपियन वो नहीं होता जो कभी भी गिरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो गिरने के बाद दोबारा खड़ा होता है, संभलता है। साथियों, मरिया शरीपोवा का सफर हमें ये सबक देता है कि जिंदगी में हर किसी के सामने मुश्किलात आती हैं। कभी इंजरीज, कभी तनकीद, कभी नाकामी और कभी ऐसे फैसले जो इंसान के लिए बहुत मुश्किल बन जाते हैं। लेकिन असल कामयाबी ये है कि इंसान उन हालात का सामना किस तरह करता है। आज जब हम मरिया शरीपोवा के करियर को देखते हैं तो सिर्फ उनकी 5 ग्रैंड स्लैम ट्रॉफीज नजर नहीं आती, हमें एक ऐसी लड़की नजर आती है जिसने बहुत कम उम्र में घर से दूरी देखी, मुश्किल हालात देखे, प्रेशर देखा और फिर भी अपने ख्वाबों का पीछा नहीं छोड़ा। मरिया शरीपोवा ने टेनिस की दुनिया में सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं बनाए बल्कि एक नई सोच पैदा की। उन्होंने दिखाया कि एक फीमेल एथलीट कोर्ट पर सिर्फ परफॉर्मेंस देने वाली शख्सियत नहीं होती, वो एक लीडर हो सकती है, एक एंटरप्रेन्योर हो सकती है और अपनी पहचान खुद बना सकती है। उनके बिजनेस का सफर भी उनकी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा रहा। उनके बिजनेस के जरिए उन्होंने साबित किया कि स्पोर्ट्स के बाद भी एक एथलीट अपने लिए नया रास्ता बना सकता है। उन्होंने अपने ब्रांड को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाया बल्कि अपनी क्रिएटिविटी और बिजनेस की सोच का इजहार किया। साथियों, ये बात जान लें कि आज की यंग जनरेशन के लिए ये बहुत अहम है। दुनिया बदल रही है और आज की लड़कियां सिर्फ एक फील्ड तक महदूद नहीं है, वो स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकती हैं, एजुकेशन में भी, बिजनेस में भी और हर उस जगह जहां उनका दिल

0: नाम लिखवा गई। और भाई यही तो स्पोर्ट्स की खूबसूरती है। स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि असल मुकाबला दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होता है। हर दिन अपने कल से बेहतर बनना ही असल जीत होती है। और भाई शायद मरिया शरीपोवा की सबसे बड़ी विरासत यही है कि उन्होंने हजारों लाखों लड़कियों को ये हिम्मत दी कि वो अपने ख्वाब देख सकती हैं और उन ख्वाबों के लिए मेहनत भी कर सकती हैं। तो भाई उसे सिर्फ एक मौका और भरोसा चाहिए, क्योंकि जब एक लड़की को अपने पर फैलाने का मौका मिलता है ना, तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती बल्कि अपने आस पास की दुनिया भी बदल डालती है। मरिया ने ये साबित किया कि ताकत का कोई जेंडर नहीं होता, हौसले का कोई जेंडर नहीं होता और ख्वाबों का भी कोई जेंडर नहीं होता। तो भाई आपको मरिया शरीपोवा की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? उनका बचपन, उनकी विंबलडन की जीत, उनकी कमबैक की स्टोरी या उनकी बिजनेस का सफर? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमें मैसेज करने का नंबर है 666-22107 या चाहें तो हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो किया जा सकता है, जिसका हैंडल है FM107 कतर। साथियों FM107 कतर पर विमेन इन स्पोर्ट्स के इस खास शो से मैं आपकी होस्ट सफा आपसे इजाजत चाहती हूँ। याद रखिए, हर बड़ा ख्वाब पहले एक छोटी सी उम्मीद होता है और हर कामयाब इंसान के पीछे बहुत सी अनकही कहानियां होती हैं। मेहनत करते रहिए, अपने ख्वाबों पर यकीन रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए भाई, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का क्या ही ख्याल रखेगा। और इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
5: दोस्तों, घर की हिफाजत आपके हाथों में है, एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तवज्जो दें। हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं। एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है। इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें। एयर कंडीशन की सफाई में लापरवाही ना करें। अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता है। ये ब्लॉकेज गर्म हवा का रास्ता रोकता है, जिससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर आग लग सकती है। हर 2-3 महीने में फिल्टर की सफाई करें और एक दफा एसी का ओवरऑल चेक जरूर करवाएं। बिजली के लोड का ख्याल कीजिए। अक्सर लोग मार्केट से सस्ता और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस या एक्सटेंशन ले आते हैं, जो एयर कंडीशनर का लोड बर्दाश्त नहीं करते। ये छोटी सी गलती शॉर्ट सर्किट या स्पार्क बन सकती है। हमेशा सिर्फ सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें। एसी से पानी टपकता है, वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। याद रखें, हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं। अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।

0: आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dilsi Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए।

0: शहरत
1: नहीं,
0: वक्त।
1: हाँ
0: वक्त, टाइम इज लाइफ, वक्त ही जिंदगी है। जिस पर आप अपना वक्त खर्च करते हैं, हकीकत में आप अपनी जिंदगी उसी पर खर्च कर रहे होते हैं। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि हम अपने वक्त का हिसाब करें। क्या हमारा बेहतरीन वक्त हमारे वालिदैन को मिल रहा है? क्या हमारे बच्चों को हमारी बेहतरीन तवज्जो मिलती है? या फिर हम अपनी सारी मुस्कुराहटें, सारी तवानाई और सारी मोहब्बत बाहर तकसीम करके घर को सिर्फ थकन ही थकन वापस लेकर आते हैं? समझने कराम, ये आज के मुआशरे का एक बड़ा अलमिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतरीन हो। जिस हदीस में बहुत बड़ा मेयार दिया गया। हालांकि अगर आज आप देखें तो बाज़ लोग दफ्तर में बहुत खुश अखलाक होते हैं, दोस्तों में इंतहाई मकबूल होते हैं, लेकिन घर वापस आते ही खामोश, चिड़चिड़े और सख्त मिजाज बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी तमाम जज्बाती तवानाई बाहर खर्च कर चुके होते हैं। घर को वो सिर्फ और सिर्फ आराम की जगह समझते हैं, खिदमत की जगह नहीं। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर को ही इंसान के अखलाक का असल इम्तिहान करार दिया है। तो सामिन इकराम, ये बात जान लीजिए कि हर इंसान की एक बुनियादी जरूरत होती है। ये जरूरत सिर्फ मोहब्बत में महदूद नहीं, बल्कि ये एहसास कि मैं अहम हूँ, इम्पोर्टेंस। अब गौर कीजिए, कभी किसी छोटे से कैफे या दुकान पर जाएं और वहाँ का मालिक आपका नाम याद रखता हो, आपकी पसंद जानता हो, आपकी चाय में कितनी चीनी पसंद है ये भी जानता हो, आप दोबारा वहाँ जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ चाय नहीं मिलती, वहाँ आपको अटेंशन भी मिलती है, वहाँ आपको अहमियत मिलती है। अगर एक अजनबी की मामूली तवज्जो हमें खुश कर सकती है, तो ज़रा सोचिए वो शौहर कितना खुश होगा जिसकी बीवी उसकी बात गौर से सुनती है। वो बीवी कितनी मुतमईन होगी जिसका शौहर उसके एहसासात को समझता है। वो बच्चा कितना पुरएतमाद होगा जिसके वालिदैन उसकी छोटी छोटी बातों को भी अहमियत देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इसका बेहतरीन नमूना है। सामने कराम, एक सहाबी थे अबू उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये बड़े मशहूर सहाबी हैं। तो उनके बचपन का एक वाकया है, जब वो एक नन्ही सी चिड़िया पालते थे और चिड़िया से काफ़ी मोहब्बत थी उनकी। जब वो चिड़िया मर गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गम को मामूली नहीं समझा। आप जब भी उनके यहाँ से गुजरते तो मोहब्बत से फरमाते, या अबा उमैर मा फ़अलन नुगैर, ए अबू उमैर तुम्हारी नन्ही चिड़िया का क्या हाल है। समय कराम, ये एक बच्चे के एहसास को अहमियत देने का अंदाज था। ये हमें सिखाता है कि ताल्लुकात मजबूत करने के लिए कभी कभी मुस्कुराहट, सवाल, तवज्जो काफ़ी अहमियत रखता है। तो आज के मौजू पर हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। प्रोग्राम के इस मरहले पर जितनी हमारी गुफ्तगू हुई है उसका खुलासा अगर हम दो टोक अल्फाज में कहें तो ये होगा कि अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा बनाइए। दूसरों को खुश करना अच्छी बात है, मगर अपनी शनाख्त, अपना वक्त और अपने उसूल खोकर नहीं। सबसे पहले अपने रब का हक, फिर अपने घर वालों का हक और फिर बाकी दुनिया। इंशाल्लाह प्रोग्राम के अगले हिस्से में मज़ीद गुफ्तगू होगी। बस एक छोटे से वक्फे के बाद हमारी मुलाकात होती है। जुड़े रहिए हमारे साथ।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम बैक सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम तफहीमुल कुरान में। आज के इस हलके के पहले हिस्से में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि इंसान अपनी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने, खुद को साबित करने और हर एक के लिए बेहिसाब कुर्बानी देने में ज़ाया न करे। अब सवाल ये है कि अगर हम ताल्लुकात को मुतवाजन बनाना चाहते हैं तो फिर एक अच्छा, पुख्ता और गहरा ताल्लुक बनता कैसे है? सामीन

0: शहादत के बाद जब उन्हें कफन देने का वक्त आया तो सिर्फ एक चादर मुयस्सर थी। अगर उसे उनका सर ढांपा जाता तो पांव खुल जाते और अगर पांव ढांपे जाते तो सर नजर आने लगता। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर को चादर से ढांप दो और पांव पर इज़खिर घास रख दो। सहाबा किराम जब अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सब याद किया तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने फरमाया, मुसअब इब्न उमैर मुझसे बेहतर थे मगर उनके कफन के लिए भी पूरा कपड़ा न था। पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुनिया को बहुत कुशादा कर दिया। मुझे डर है कि कहीं हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया ही में तो नहीं दे दिया गया। ये कहते कहते वो रोने लगे, इतना रोए कि सामने रखा हुआ खाना भी न खा सके। समझ कराम, ये दुनिया से नफरत का खौफ नहीं था, ये अल्लाह ताला से मोहब्बत का खौफ था। उन्हें डर था कि कहीं दुनिया की आसाइशें हमें आखिरत से गाफिल न कर दें। यही वजह है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नेमत मिलने पर खुश जरूर होते थे लेकिन उसके साथ अल्लाह के सामने जवाबदही को भी याद रखते थे। सामने किराम, ये हदीस हमसे ये सवाल करती है, क्या हम खाना खाते वक्त कभी अहले गज़ा को भी याद करते हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं? क्या नए कपड़े पहनते वक्त हमें उन लोगों की याद आती है जिनके पास पहनने को मुनासिब लिबास भी नहीं? अगर ये एहसास जिंदा रहे तो नेमत इंसान को अल्लाह से दूर नहीं बल्कि अल्लाह के करीब कर देती है। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: जेन ज़ी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कदर 2026 मेरे यानी दुहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे बास्केटबॉल के एक स्टार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल रहमान साद कतर के मशहूर बास्केटबॉल गार्ड में से एक हैं और अल अरबी क्लब की नुमाइंदगी करते हैं। उनकी पैदाइश दोहा में हुई और उन्होंने बहुत ही कम उम्र से ही बास्केटबॉल में अपनी सलाहियतों का इजहार करना शुरू कर दिया था। कोर्ट पर उनकी सबसे बड़ी खूबी है बॉल हैंडलिंग, तेज रफ्तार और प्रेशर के दौरान सही फैसला करना। उन्होंने अपने करियर के आगाज अल अरबी क्लब से किया, बाद में अल गराफा और मिस्र के जमालिक क्लब के लिए भी खेला, जिससे उन्हें बैनुल अक्वामी तजुर्बा हासिल हुआ। आज वो दोबारा अल अरबी क्लब के अहम खिलाड़ी के तौर पर टीम को मजबूती फराहम कर रहे हैं। साथ ही साथ कतर की कौमी बास्केटबॉल टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं और फीबा एशिया मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उनकी डिफेंसिव एटीट्यूड और बॉल को कंट्रोल करने की जो सलाहियत है वो कोचेज और फैंस दोनों को पसंद आया। और अब्दुल रहमान डिसिप्लिन और टीम स्पिरिट को बहुत अहमियत देते हैं और नौजवान खिलाड़ियों के लिए मिसाल समझे जाते हैं। कतरी बास्केटबॉल लीग में उनका तजुर्बा अल अरबी क्लब के लिए कीमती असासा है और उनसे हर सीजन बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जाती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Dil se, desi.
3: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
3: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM।
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की,
0: स्पोर्ट्स की। FM 107 पर हर गाना हिट, हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैन लिसनर्स, हमने पहले बात की कि जो एक्सरसाइज है वो क्यों ज़रूरी है और हमारे जो नौजवान हैं या बच्चे हैं उनके लिए एक्सरसाइज क्या अहमियत रखती है। आज हम एडल्ट अफराद के लिए वर्जिश की अहमियत पर बात करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है या मसरूफ़ ज़िंदगी है उनकी, ऑफिस का काम है, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, और टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने हमारी जो जिस्मानी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कम कर दिया है, जिसके नतीजे में कई सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। बाकायदा एक्सरसाइज दिल के मसाइल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और मोटापे के ख़तरे को कम करती है। रोज़ाना 30 मिनट की वॉक यानी तेज़ चहलकदमी भी सेहत पर बहुत ही मुस्बत असरात मुरतब करती है। वर्जिश सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जहनी सेहत के लिए बेहद फ़ायदा मंद है। जिस्मानी सरगर्मी के दौरान ऐसे कीमियाई मादे खारिज होते हैं जो हमें खुशी देते हैं और बिल्कुल रिलैक्सेशन और सुकून का एहसास पैदा करते हैं, जिससे जहनी दबाव, बेचैनी और जो अफसुर्दगी है उसमें कमी आ सकती है। वो अफराद जो बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं उनमें तवानाई ज़्यादा होती है और वो रोज़मर्रा काम बेहतर अंदाज में सर अंजाम दे सकते हैं। वर्जिश के लिए ज़रूरी नहीं कि हम जिम जाएं या जिम जाना लाजमी हो। तेज़ वॉक, सीढ़ियाँ चढ़ना, इसी तरह साइकिलिंग करना, गार्डनिंग करना या घर के काम भी हमारी जो जिस्मानी एक्टिविटी है उसी में शुमार होते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज का

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ इको स्विच ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन एवरीडे चॉइसेस की जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। भाई, हमारा आज का टॉपिक है इको फ्रेंडली ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यानी ऐसे स्किन केयर, मेकअप और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स, सस्टेनेबल पैकेजिंग और लो वेस्ट प्रोडक्शन के साथ बनाए जाते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम सब यूज करते हैं साथियों, लेकिन कभी आपने सोचा है कि भाई एक फेस वॉश, शैम्पू बॉटल या लिपस्टिक, इनका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या होता होगा? इको स्विच हमें याद दिलाता है कि रियल ब्यूटी सिर्फ आउटर ग्लो नहीं होता, बल्कि रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस में भी होता है। साथियों, जरा सोचिए ना, आपका बाथरूम का

0: आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ ब्यूटी इंडस्ट्री के हिडन फुटप्रिंट का, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। साथियों, ग्लोबल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हर साल बिलियंस ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर बॉटल्स का एनुअल प्लास्टिक वेस्ट मिलियंस ऑफ टन्स तक एस्टिमेट किया जाता है। एक एवरेज ब्यूटी प्रोडक्ट पैकेजिंग को डिग्रेड होने में आप कह लें कि 100 से 500 साल तो लगभग लग ही जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्यूटी इंडस्ट्री का कार्बन प्रिंट एविएशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ कंपेयर किया जाता है ड्यू टू मास प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड ग्लोबल शिपिंग। अच्छा, इको स्विच का यहाँ आइडिया बड़ा सिंपल है, ब्यूटी को सस्टेनेबल बनाना। देखिए, जब हम इको फ्रेंडली ब्यूटी प्रोडक्ट्स चूज करते हैं ना, तो हम प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल पोल्यूशन और वाटर कॉन्टेमिनेशन रिड्यूस करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर 25% कंज्यूमर इको ब्यूटी प्रोडक्ट्स अडॉप्ट करें तो ग्लोबल पैकेजिंग वेस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है, और वो भी स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक ट्यूब्स और बॉटल्स में। अच्छा, अगर एक रिलेटेबल एग्जांपल लेना डेली लाइफ की, तो जरा सोचिए, सुबह आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, ठीक है, फेस वॉश किया, मॉइस्चराइजर यूज किया, सनस्क्रीन यूज की, वगैरह वगैरह, अल्लम गल्लम, ठीक है। हर प्रोडक्ट एक प्लास्टिक कंटेनर में आता है कि नहीं, जो कुछ महीनों बाद जब वो खत्म हो जाता है प्रोडक्ट, तो आप उस कंटेनर के साथ क्या करते हैं, लेकर घूमेंगे तो नहीं, आप उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। अब इको स्विच अप्रोच ये कहती है कि अगर आप सेम रूटीन इको फ्रेंडली फॉर्मेट में शिफ्ट करें ना, जैसे रिफिलेबल कंटेनर्स या सॉलिड बार्स, तो भाई सेम रूटीन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। चलिए, अब कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हम सब फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज ये, सॉलिड ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करें, जैसे सॉलिड शैम्पू बार्स और सोप्स। दूसरा, रिफिलेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स चूज करें जहां पॉसिबल हो। तीसरा, ग्लास या रिसाइक्लेबल पैकेजिंग वाले ब्रांड्स प्रेफर करें। चौथा, मल्टीपल पर्पस प्रोडक्ट्स यूज करें ताकि ओवर कंजम्पशन कम हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रुएल्टी फ्री और नेचुरल इंग्रेडिएंट लेबल्स चेक करें। साथियों, देखिए, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि ब्यूटी का मतलब ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करना नहीं, बल्कि स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट चूज करना है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग मिनिमलिस्ट स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, उनका वेस्ट आउटपुट और स्पेंडिंग दोनों कम हो जाती है और उनकी रूटीन ज्यादा कंसिस्टेंट होती है। तो भाई, आखिर में इको स्विच का सिंपल मैसेज ये है कि भाई, ब्यूटी सिर्फ मिरर में नहीं बल्कि हमारी चॉइसेस में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। हर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो हम चूज करते हैं, वो प्लेनेट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप होता है। तो भाई, अगली बार जब आप ब्यूटी प्रोडक्ट चूज करें, तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा। इज दिस प्रोडक्ट गुड फॉर मी एंड द प्लेनेट? इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर ग्लो सिर्फ स्किन का नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी का भी होता है। बने रहिए हमारे साथ ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
2: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 seconds of

0: बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है बच्चों के साथ हुस्ने सुलूक। बच्चे सोसाइटी का मुस्तकबिल होते हैं, उनके साथ प्यार सब्र और रहमत का रवैया अख्तियार करना बहुत जरूरी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि बच्चों के साथ नरमी से पेश आए और उनकी तरबियत प्यार के साथ करें। अक्सर लोग बच्चों की गलतियों पर सख्ती करते हैं, लेकिन असल में उन्हें समझाना और उनका हौसला बढ़ाना ज्यादा जरूरी होता है। प्यार भरा रवैया बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करता है और उनकी शख्सियत को बेहतर बनाता है। जब हम बच्चों के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो हम एक मजबूत और मेहरबान माशरा कायम करते हैं। आज का अमल ये है कि किसी बच्चे के साथ वक्त गुजारें, उसकी बात सुने और उसे अप्रिशिएट करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.
1: One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
1: One step to 2030.
2: दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो है कैशलेस सोसाइटी. क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ फिजिकल पैसा खत्म हो जाएगा? ये सवाल है आज का. देखिए आज के जमाने में जब हम शॉपिंग करते हैं, बिल पे करते हैं या किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो अक्सर हम कैश यूज कर ही लेते हैं या शायद नहीं करते. बहुत से लोग बिल्कुल कैश यूज नहीं करते, कार्ड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल वॉलेट है या फिर ऑनलाइन पेमेंट पे भी काम चल रहा है. और ये इतना ग्रो कर रहा है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम कैशलेस सोसाइटी की तरफ मूव कर चुके हैं या कर ही रहे हैं. अब कैशलेस सोसाइटी होती क्या है? कैशलेस सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर फिजिकल पैसा जैसे नोट है, कॉइन्स है, उनका यूज या तो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है. इस सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन डिजिटल होता है, जैसे क्रेडिट, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट है, गूगल पे है, एप्पल पे है और भी चीजें, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, QR कोड सिस्टम, क्रिप्टो करेंसी. इसका मतलब है कि पैसा सिर्फ डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और हर पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू होगा. आज की दुनिया में डिजिटल पेमेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट्स की वैल्यू 2030 तक ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है, जो ये बताती है कि लोग कैश से दूर हो जा रहे हैं. इस चेंज के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, जैसे कन्वीनियंस. कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से आप टैप करें और पेमेंट हो जाएगा. वहीं स्पीड, कैश देना और चेंज लेने में वक्त लगता है जबकि डिजिटल पेमेंट सेकंड्स में हो जाता है. वहीं टेक्नोलॉजी ग्रोथ देखा जाए तो स्मार्टफोन्स और इंटरनेट ने हर किसी को डिजिटल पेमेंट का के काबिल बना ही दिया है. और कितनी ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग का जो हमारा चार्म है जिसके चलते हम आपको पता ही है कि डिजिटल पेमेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं, वो काफी कॉमन हो चुका है. वहीं पे कुछ कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो वहाँ ऑलमोस्ट कैशलेस इकोनॉमी या सोसाइटी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जैसे स्वीडन. यहाँ ज्यादातर ट्रांजेक्शन्स जो है वो डिजिटल होते हैं और कुछ शॉप्स कैश एक्सेप्ट करती भी नहीं है. वहीं अगर मैं बात करूँ तो चाइना की, तो मोबाइल पेमेंट्स जैसे उनके अपने वी चैट पे बहुत ही कॉमन है. उसके अलावा साउथ कोरिया और सिंगापुर, यहाँ पे भी डिजिटल वॉलेट्स और कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स वाइडली यूज्ड होते हैं. ये कंट्रीज फ्यूचर का एक ग्लिम्स दिखाती हैं. कैशलेस सोसाइटी के एडवांटेजेस भी हैं. कैश चोरी हो सकता है लेकिन डिजिटल पेमेंट में फ्रॉड डिटेक्ट और कंट्रोल किया जा सकता है. वहीं पर कैश इलीगल एक्टिविटीज में यूज होता है क्योंकि वो ट्रेस नहीं हो पाती, जबकि डिजिटल पेमेंट इसे कंट्रोल कर सकता है. वहीं पर बेटर रिकॉर्ड्स आप रख सकते हैं, हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है, जैसे बजटिंग है, एक्सपेंस है, ट्रैकिंग, ये सब कुछ आसान हो जाता है. वहीं पर नो काउंटिंग मनी, नो वेटिंग, सिर्फ टैप और क्लिक एंड डन. वहीं बात की जाए तो डिजिटल ट्रांजेक्शन ट्रेसेबल होते हैं, इसलिए टैक्स इवेजन कम होता है. वहीं अगर मैं बात करूं तो कैशलेस सोसाइटी के डिसएडवांटेजेस भी हैं. हर चीज की तरह इसके भी कुछ रिस्क हैं, जैसे डिजिटल डिवाइड. हर किसी के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं होता, इससे कुछ लोग सिस्टम से बाहर हो रहे हैं. वहीं पर डिजिटल पेमेंट का मतलब है कि आपकी हर ट्रांजेक्शन ट्रैक हो सकती है, प्राइवेसी इश्यूज आ गया. वहीं पर हैकिंग और डेटा ब्रीचिंग का खतरा भी बढ़ जाता है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क तो बढ़ ही गया. उसके अलावा अगर इंटरनेट या सिस्टम स्लो डाउन हो जाए तो पेमेंट पॉसिबल नहीं होती. जब लोग फिजिकल कैश नहीं देते तो कभी कभी ज्यादा हम खर्च भी करने लग जाते हैं, तो इससे ओवर स्पेंडिंग भी हो जाती है. अब फ्यूचर कैसा होगा? दोस्तों 2030 तक पेमेंट्स और भी एडवांस्ड हो जाएंगे. कुछ और नए ट्रेंड्स

0: आएंगे जिसमें मोबाइल वॉलेट ज्यादा यूज होंगे बायोमेट्रिक पेमेंट्स फिंगरप्रिंट्स एआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी फ्यूचर में पेमेंट इतनी सीमलेसली हो सकेगा कि आप सोच भी नहीं सकते जैसे अभी आप किसी भी राइड पे जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कितना आसान होता है आपके लिए खटाक से पेमेंट करना तो भाई यही कुछ दौर आने वाले वक्त में भी आप एक्सपीरियंस करेंगे ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है सवाल कि क्या कैश बिल्कुल खत्म हो जाएगा जवाब है कि कुछ कंट्रीज में कैश ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है लेकिन ग्लोबली अभी भी बहुत लोग जो हैं वो कैश प्रेफर करते हैं रियलिटी ये है कि पूरी दुनिया एक जैसी तो नहीं है कुछ जगह टेक्नोलॉजी फास्ट अडॉप्ट हो रही है और कुछ कंट्रीज में थोड़ा स्लो इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर कैशलेस होगा लेकिन नो कैश शायद हर जगह पॉसिबल नहीं डेली लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट नजर आएगा वॉलेट्स की जगह फोन इम्पोर्टेंट होंगे बैंक ब्रांच की जगह मोबाइल एप्स इम्पोर्टेंट होंगे लाइन में खड़े होने की जरूरत कम हो जाएगी स्मॉल वेंडर्स भी डिजिटल पेमेंट यूज करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोसाइटी को बैलेंस मेंटेन करना होगा टेक्नोलॉजी भी यूज हो और ट्रेडिशनल मेथड्स भी अवेलेबल हो क्योंकि हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता ना जी हाँ कैशलेस सोसाइटी के एक्साइटिंग फ्यूचर का पार्ट तो है ये हमें स्पीड कन्वीनियंस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी हैं चाहे प्राइवेसी का हो एक्सेस का हो सिक्योरिटी का हो इसीलिए कहना सही होगा कि फ्यूचर कैशलेस की तरफ जा रहा है लेकिन पूरी तरह से कैश खत्म हो शायद ये कॉन्सेप्ट अभी दूर है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम टेक्नोलॉजी को समझें और उसे स्मार्टली अडॉप्ट करें आखिर में सवाल ये नहीं करें कि कैश खत्म होगा या नहीं सवाल ये है कि हम नए सिस्टम के लिए कितने रेडी हैं या नहीं फिलहाल इसी हाना पर मैं आपसे इजाजत लूंगी मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते हो FM 107 दिल से देसी One step to 2030.
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: Are you ready? Friday 9 p.m. लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको टॉप 10 काउंटडाउन सबसे जबरदस्त गाने लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
3: Scam alert. यार बिजनेस करना ना आसान तो नहीं है, लेकिन बिजनेस का लाइसेंस मिल पाना बड़ा आसान है। ये इस तरह का भी फ्रॉड आजकल आपके लिए बहुत आम हो गया है और आप

आपको या किसी को भी चूना लगाना बहुत ही आसान हो गया है स्कैमर्स के लिए, इसलिए जरूरी है कि स्कैमर से बचा जा सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, एफएम 107 पे इस्तकबाल आप सभी का और आप सुन रहे हैं फ्रॉड अवेयरनेस। वेल दोस्तों, ये वो शो है जहां पर आपको स्कैम और नए तरीके के फ्रॉड के बारे में मैं यानी कि फजील करता हूं अलर्ट। एक नया स्कैम है, मिसाल के तौर पे आप समझिए कि आपको कोई बिजनेस करना है, इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है और कतर गवर्नमेंट बहुत ही आसान कर रही है कि आप आसानी से कतर में बिजनेस कर सके, इसलिए रजिस्ट्रेशन से लेकर रिन्यू करने तक, लाइसेंस के रिन्यू करने तक डिस्काउंटेड फी के नाम पे आपके साथ स्कैमर स्कैम कर रहे हैं। काम कैसे करता है, हो सकता है आपके पास कोई चिट्ठी आए, हो सकता है आपके घर पे कोई पेपर रखा हो मिसाल के तौर पे, और एक सेल्स वाले ना आपके दरवाजे के नीचे से खिसका के चले जाते हैं, या हो सकता है सोशल मीडिया पे आपके पास पोस्ट आया हो जिस पे लिखा हो कि डिस्काउंट रेट पे आप अपना बिजनेस लाइसेंस आसानी से पा सकते हैं, फुल्ली आपके ऊपर ये बिजनेस हो जाएगा, आपके नाम पे ये बिजनेस हो जाएगा, लाइसेंस आपका बन जाएगा, वो भी कम से कम पैसे में। लेकिन ये कॉल्स, ये पोस्ट या कहें ये जो पेपर होते हैं, ये बहुत ही आसानी से फंसाने का तरीका है। उसके अलावा आपको वादा भी बहुत किया जाता है कि तुरंत अप्रूवल हो जाएगा, 5 दिन या 2 दिन के अंदर काम हो जाएगा, इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, और आपको ये सर्टिफिकेट तक देते हैं, लेकिन ये सब फेक होता है। और ये फेक सर्टिफिकेट तब होता है जब आप करते हैं पेमेंट। किस तरह की टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ये फेक गवर्नमेंट सील का इस्तेमाल करते हैं, लोगोस का इस्तेमाल करते हैं, बोगस कंसल्टेंसी फर्म बनाते हैं जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आपको काउंटरफीट लाइसेंस सेल करते हैं, कुछ ऑफिसेस का जो वेबसाइट है उनका इस्तेमाल करते हैं, कुछ फेक और स्कैम कर देने वाली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, और एक तरह का सेटअप ऐसा होता है प्रॉपर इनका कि आप इसमें फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, 100, 150, 200 कतरी रियाल लिया जाता है, फिर आपको एक एनवेलप बनाकर भेजा जाता है या कहीं एक लेटर बना के भेजा जाता है कि इन सारे डॉक्यूमेंट को आप हमें दीजिए, तब आपका बिजनेस अकाउंट जो है वो खुल पाएगा। अब होता यह है कि बिजनेस ओपन कराने के लिए, लाइसेंस के लिए कई पेपर्स दिखाने पड़ते हैं। उन पेपर्स का इस्तेमाल करते हुए हो सकता है कि वो बंदा जो आपको स्कैम करना चाहता है वो आपको 1 या 2 पेपर दिखाएगा ताकि आपको अपने भरोसे में ले सके। जैसे ही आप भरोसे में आते हैं वो आपसे कहता है कि इसके लिए या आगे लाइसेंस के लिए उन्हें 2,000, 1,500 या 2,500, 3,000, 4,000, 8,000 कतरी रियाल की जरूरत है। आप पेमेंट करते हैं और वही आपके साथ हो जाता है स्कैम, और वो पेमेंट आपको ऐसे पार्टी ऐप से करना चाहते हैं, ऐसे थर्ड पार्टी ऐप से करवाना चाहते हैं जिसको पकड़ पाना आसान बिल्कुल नहीं है, जिसे ट्रैक कर पाना आसान बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में इस तरह के स्कैम से बचना बहुत जरूरी है। क्या रेड फ्लैग्स हैं? कोई भी ऑफिशियल ईमेल नहीं होता ऐसे लोगों का, कोई डोमेन नहीं होता, कोई वेबसाइट नहीं होती, लिमिटेड स्लॉट्स का प्रेशर आपके ऊपर लगातार डालते रहते हैं, डिस्काउंट रेट सिर्फ 2 दिन है या 1 दिन है लाइसेंस बिजनेस का ओपन कराने के लिए, इस तरह की जानकारी आपको देते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट करें या रजिस्टर करें, किसी भी तरह का वेरिफिकेशन नहीं होता, जो फ़ोन नंबर होता है वो फेक होता है, उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लोकल म्यूनसिपैलिटी का ये फेक नाम लगातार लेते रहते हैं। लेकिन इन सब से बचा भी जा सकता है, कैसे, इस पर बात करते हैं। वेल, हमेशा आपको वेरीफाई करना होगा ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल्स को कि क्या इस तरह के डिस्काउंट चल रहे हैं बिजनेस के लाइसेंस ओपन कराने के लिए। कभी भी कैश ना दें या फिर पर्सनल अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर ना करें, थर्ड पार्टी ऐप से ट्रांसफर अकाउंट में ना करें, लोकेशन पे जाएं। जब भी आपको बिजनेस लाइसेंस खुलवाना हो तो डायरेक्ट लोकेशन पे जाएं, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे। मिसाल के तौर पे जो बिजनेस आपका बिजनेस लाइसेंस बनवाना चाह रहा है उसका भी बिजनेस लाइसेंस होगा, उससे कहिए कि आप CR नंबर या अपना बिजनेस लाइसेंस भेजें, उसे ऑफिशियली चेक करें, और किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी अगर आपको लगे तो साइबर क्राइम की यूनिट को, अथॉरिटीज को बिल्कुल जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। तो दोस्तों, इस हफ्ते था ये नए स्कैमर्स का एक नया तरीका आपको स्कैम करने का, लेकिन आपको हमेशा सतर्क और होशियार रहना है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए स्कैम को लेकर बात करते हुए। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।

0: कतर में आकर एक्सपेक्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है। सुनिएगा जरूर इकोनॉमिक लेंस, इकोनॉमिक लेंस हर सैटरडे 1:30 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। सिर्फ एफएम 107 पर।
1: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदी। आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। भाई ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफ गोल क्या है, कितना टाइम अवेलेबल है और किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है जब आप ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोस बिल्ड करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट एपिसोड होने जा रहा है, एंड तक जरूर सुनिएगा। इस एपिसोड में मैं बहुत से ऐसे पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इनमें से कोई भी पार्ट मिस नहीं करना चाहिए। भाई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस, मैं हूँ आपका दोस्त सरवर मिर्जा, आपका फाइनेंशियल गाइड फॉर अ हैप्पी लिविंग। और दोस्तों इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107।
0: कतर में आकर एक्सपेक्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम ब्रश अप करेंगे, जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या हमें ध्यान रखना है उसके हवाले से। सबसे पहले एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बार बार सिक्योरिटीज का लेना और बेचना, गोल मार्केट टू आउट परफॉर्म करना। दूसरा पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, किसी मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करना, गोल मार्केट परफॉर्मेंस को लो कॉस्ट पर मैच करना। तीसरा डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैनेजर क्लाइंट की तरफ से डिसीजंस लेता है, उन इन्वेस्टर्स के लिए सुइटेबल है जो हैंड्स ऑफ इन्वेस्टिंग चाहते हैं। और आखिर में नंबर 4 पे नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी मैनेजर सिर्फ एडवाइस देता है, फाइनल डिसीजंस इन्वेस्टर के होते हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड उन सब लोगों के लिए है जो खुद से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ काम करना चाहते हैं। अगर आप एक डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर हैं तो ये एपिसोड आपको गाइड करेगा कि आप अपना पोर्टफोलियो खुद कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और अगर आप किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ काम करना चाहते हैं तो आज के पॉइंट्स आपको ये समझने में मदद देंगे कि क्या आपके फाइनेंशियल प्लानर वाकई आपके लिए सही काम कर रहे हैं या सिर्फ बातों में आपका वक्त जाया कर रहे हैं, क्या उन्हें अपना सब्जेक्ट ठीक से आता भी है।

या नहीं, ये आप खुद जान पाएंगे अगर आप ये एपिसोड ध्यान से सुने। तो भाई मैं आपको ले चलता हूँ कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस के जरिए। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। पोर्टफोलियो बिल्ड करने से पहले कुछ जरूरी बातें समझ लें तो बेहतर होगा। किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को चूज करने से पहले कुछ चीजें समझना जरूरी होती हैं, जैसे कि आपके पास कितना वक्त बाकी है अंदाजन अपने लाइफ गोल तक पहुंचने के लिए। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। मसलन अगर आप 58 साल के हैं और रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 2 साल का वक्त है। लेकिन अगर आप 25 साल के हैं और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास तकरीबन 35 साल का वक्त है। वहीं दूसरा नंबर आता है जनाब, आपको पैसे एक ही वक्त में चाहिए या धीरे धीरे। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप अपने बच्चों की शादी के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो आपको एक ही वक्त में लमसम अमाउंट चाहिए होगा। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के बाद कैश फ्लो के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पैसा एक ही साथ नहीं बल्कि रेगुलरली इनकम के तौर पर चाहिए होगा। ये दोनों सिचुएशंस में स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होगी, इसलिए ये समझना जरूरी है कि आपके पास कितना टाइम है, आपको पैसा एक साथ चाहिए या कैश फ्लो के तौर पर। इन्वेस्टमेंट टेन्योर के मुताबिक कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, तो उनपे बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट को टेन्योर के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करें। कोई क्रिस्टल क्लियर गाइडलाइन नहीं है, सबसे साफ और क्लियर बात यह है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस और दूसरों की लाइफ से जो सीखा है उसके बेसिस पर 0 से 3 ईयर्स तक शॉर्ट टर्म, 3 से 10 ईयर्स तक मिड टर्म और 10 ईयर से ज्यादा लॉन्ग टर्म। ये क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि पोर्टफोलियो में जो आइटम्स आप चूज करते हैं वो आपके टेन्योर पर डिपेंड करते हैं। चलिए दोस्तों अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जब आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको ये पैसा कब चाहिए। अक्सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कैश फ्लो का कंसेप्ट नहीं होता क्योंकि आपको पैसा एक ही वक्त में चाहिए होता है। एक मिसाल से समझते हैं। अगर आपको घर की रिपेयरिंग करनी है तो जैसे ही काम शुरू होता है आपको पूरा पैसा एक साथ चाहिए होता है। अगर आपकी बेटी की शादी 2 साल बाद है तो आपको उस वक्त पूरा पैसा चाहिए होगा। वहीं अगर आपका बेटा कॉलेज जा रहा है और आपने फीस के लिए पैसा रखा है तो भी आपको एक वक्त में ही वो पैसा चाहिए होगा। तो जब भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो आपको ये मानकर चलना चाहिए कि पूरा पैसा एक ही वक्त में चाहिए होगा, इसलिए कैश फ्लो प्लानिंग का यहाँ कोई रोल नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आप बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: दोस्तों, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले सेफ्टी ऑफ कैपिटल, आपके पैसे की हिफाजत। भाई, आप अपना पैसा किसी ऐसे एसेट में नहीं लगा सकते जहां रिस्क ज्यादा हो। आप किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन, पर्सन या स्कीम में पैसा नहीं लगा सकते जहां से पैसा वापस मिलने का भरोसा ना हो, और शॉर्ट टर्म में आपके पास एडजस्ट करने का वक्त नहीं होता है। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट का टाइम भी कम होता है, इसलिए कैपिटल की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहीं अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, यानी आसानी से पैसा ना, आपको ये पैसा जल्दी चाहिए होता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल में। आप पैसा ऐसे इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगा सकते जो लॉन्ग टर्म के लिए लॉक हो जाए। अगर आप पैसा 5 साल के लिए लॉक कर देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए काम का नहीं होता, जैसे NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम या रियल एस्टेट वगैरह। ये दोनों लिक्विड होते हैं और वक्त पर पैसा निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए लिक्विडिटी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत जरूरी होती है। नंबर 3 पे वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो यही है, यानी कि एसेट प्राइसेस का ऊपर नीचे होना। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपको ऐसे एसेट्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए जो वोलेटाइल हों। मिसाल के तौर पर आपने गोल्ड खरीदा, 1 महीने बाद या 1 साल बाद उसकी प्राइस बढ़ भी सकती है और गिर भी सकती है। कमोडिटीज भी कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स भी वोलेटाइल हो सकते हैं। तो अगर आप इन एसेट्स में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि स्पेकुलेशन कर रहे हैं। स्पेकुलेशन का मतलब अंदाजा लगाना कि शायद प्राइस बढ़ेगी, लेकिन अगर आपका लाइफ गोल सर के ऊपर है तो आप अंदाजों पर अपना पैसा रिस्क में नहीं डाल सकते। आपको किसी को पैसा देना है, किसी जरूरत को पूरा करना है, तो वॉलेटिलिटी से बचना जरूरी है। नंबर 4 पर है साहब टैक्स एफिशिएंसी, यानी आप कितना काम टैक्स देकर ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। अगर आप सिर्फ 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टैक्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका गोल 2 साल बाद का है तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चूज करें जो बैंक FD से बेहतर टैक्स एफिशिएंसी देते हों, जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स या टैक्स बॉन्ड्स। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में भी टैक्स का एंगल जरूर देखें। और 5वें नंबर पे है साहब रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, यानी मुनाफा कितना होगा। सब लोग चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा रिटर्न मिले, लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है? जवाब है नहीं। अगर आप लो वोलेटिलिटी वाला इंस्ट्रूमेंट चूज करते हैं, हाई लिक्विडिटी चाहते हैं और कैपिटल की सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि रिटर्न थोड़ा कम होगा। अगर कोई फाइनेंशियल प्लानर आपको कहता है कि 3 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, तो या तो वो रिस्क ले रहा है या आपको स्पेकुलेशन की तरफ ले जा रहा है। सही अप्रोच ये होगी कि आप पैसा बैंक FD, लिक्विड फंड या डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाएं, जहां वोलेटिलिटी 0 हो, लिक्विडिटी 100% हो और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। रिटर्न कम हो सकता है, लेकिन आपका गोल सिक्योर रहेगा, और ये सबसे जरूरी बात है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पे। भाई मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती हैं जो 3 से 7 साल के दरमियान होती हैं, लेकिन मैं इसे 10 साल तक एक्सटेंड करना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री ने हमें दिखाया है कि कभी कभी 10 साल तक भी मार्केट्स स्टैग्नेंट रहती हैं, ना ऊपर जाती हैं ना नीचे आती हैं। तो अगर आप अपने किसी लाइफ गोल के लिए मीडियम टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको संभल कर चलना होगा। आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट अगले कुछ सालों में क्या करेगी। वहीं मीडियम टर्म प्लानिंग क्यों मुश्किल है? ये सबसे ट्रिकी प्लानिंग होती है, चाहे आप खुद से कर रहे हो या किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ। आपको बेस्ट जजमेंट लेना होता है। आपको नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। अगर आपका गोल है बेटा या बेटी की एजुकेशन और आपको 5 साल में फीस और खर्चे देने हैं तो ये मैनेजेबल है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 7 साल बाद शादी करनी है तो ये प्लानिंग और भी ट्रिकी हो जाती है। भाई आप एक्सेलरेटर दबाएंगे तो शायद आउटकम मिले, शायद ना मिले। वहीं अगर आप ब्रेक दबाएंगे तो पैसा ग्रो नहीं करेगा और इन्फ्लेशन आपका पैसा खा जाएगा। तो बीच का रास्ता लेना जरूरी है। मीडियम टर्म पोर्टफोलियो बनाते वक्त ये चीजें याद रखें। वोलेटिलिटी, आप थोड़ी वोलेटिलिटी अफोर्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से ज्यादा लेकिन लिमिटेड। लेकिन पूरी इक्विटी में पैसा डालना रिस्की हो सकता है। सेफ्टी ऑफ कैपिटल, सेफ्टी अब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब वोलेटिलिटी से ज्यादा कंसर्न ये है कि आपने किस स्कीम, स्टॉक, बॉन्ड या इंस्टीट्यूशन में पैसा लगाया है। मीडियम टर्म में वक्त जल्दी निकल जाता है तो गलत चॉइस का टाइम नहीं होता। वहीं बात करें अगर लिक्विडिटी की, तो आपको हर वक्त पैसा नहीं चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट में हाईली लिक्विड होने की जरूरत नहीं। अगर आप 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और पहले 5 साल पैसा लॉक कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन ULIPs जैसे प्लान्स जो 5 साल के लिए लॉक करते हैं, मीडियम टर्म के लिए सुइटेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है और 54EC बॉन्ड्स में पैसा लगाया है टू सेफ टैक्स, तो वो ठीक है क्योंकि वो 5 साल बाद पैसा दे देते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन की, तो 5 से 7 साल में परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इसलिए आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर लेना पड़ेगा, लेकिन 60-70% इक्विटी लेना रिस्की हो सकता है अगर मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया तो आपका गोल मिस हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: बात करें अगर बेस्ट अप्रोच की बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बेस्ट होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, थोड़े अग्रेसिव फंड्स, थोड़ा डेट फंड और थोड़ा बैंक एफडी। ये सब मिलकर आपका पैसा सेव भी रखेंगे और ग्रो भी करेंगे ताकि आप अपना लाइफ गोल अचीव कर सकें। तो ये आज के प्रोग्राम का हमारा तीसरा और आखिरी एलिमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कम से कम 10 साल या उससे ज्यादा का वक्त। अगर आप 10 साल से कम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टेक्निकली आप उसे लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, लेकिन वक्त कम है और रिस्क ज्यादा। भाई स्टॉक मार्केट्स को जो वक्त चाहिए होता है, माइक्रो इकोनॉमिक चेंजेस को एडजस्ट होने में वक्त लगता है। जैसे रियल एस्टेट का साइकिल 8 साल का होता है, स्टॉक मार्केट का साइकिल अनप्रिडिक्टेबल होता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी कभी कभी बदल सकती हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, डायरेक्ट स्टॉक्स, पीएमएस, ईटीएफ्स या यूएलआईपीज, एक चीज सब में कॉमन है और वो ये कि ये सब टाइम मांगती हैं। दोस्तों इस बात को भी समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आसान क्यों है। भाई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना आसान है, लेकिन मीडियम टर्म ट्रिकी होता है। लॉन्ग टर्म में वक्त आपका दोस्त बन जाता है। भाई अगर आपका एडजस्टमेंट ठीक है या आपके फाइनेंशियल प्लानर की अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए वक्त के साथ करेक्शन हो जाता है। जो लोग लॉन्ग टर्म में पैसा खोने देते हैं वो अक्सर इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखते। अगर आप थीमेटिक फंड्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 2005, 6, 7 में लोगों ने किया था, तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म में भी ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सेंटर लाइन पर रहते हैं जैसे लार्ज कैप फंड या हाइब्रिड फंड 60 या 40 या 40 या 60 के हिसाब से, तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले टैक्स एफिशिएंसी, बार बार फंड स्विच करना या निकालना टैक्स इनएफिशिएंसी क्रिएट करता है। अगर आपने सही फंड चूज किया है तो उसमें बने रहिए। इंटरनेट पर रिटर्न्स चेक करना या दोस्तों से कंपेयर करना, ये सब अवॉइड करें। पेशेंस रखें और अपने डिसीजन पर टिके रहिए। नंबर दो पे इमोशनल डिसिप्लिन। लॉन्ग टर्म में इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। पैनिक में आकर फंड स्विच करना या निकालना नुकसानदेह हो सकता है। नंबर तीन पे प्रोडक्ट सिलेक्शन। भाई यूएलआईपीज आज के जमाने में म्यूचुअल फंड्स के कई मामलात में बेहतर साबित हो रही है, जैसे लोअर टैक्स स्ट्रक्चर, इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन, बोनस पे आउट्स, फोर्स्ड डिसिप्लिन। आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है जो आपको इमोशनल डिसीजन से बचाता है। ये सब चीजें आपके हक में काम करती हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है। आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तभी काम करेगा जब आप सही सिलेक्शन करें, डिसिप्लिन के साथ बने रहें और वक्त को अपना दोस्त बनाएं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट में कामयाबी का राज क्या है? भाई जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइम इज द की, वक्त आपका सबसे बड़ा दोस्त है। टैक्स एफिशिएंसी इज द की, जितना टैक्स बचा सके उतना आपका रिटर्न बढ़ता है। और सिलेक्शन इज द की, सही इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब आपके पोर्टफोलियो की सक्सेस का बुनियाद है। अगर आप इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो चाहे आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म किसी भी इन्वेस्टमेंट में हो, आप आसानी से अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं बिना किसी बड़ी मुश्किल के। और वहीं हर इन्वेस्टमेंट में कुछ बातें हमेशा याद रखिए। सेफ्टी ऑफ कैपिटल, पैसों की हिफाजत, आपका पैसा सिक्योर जगह पर होना चाहिए, ये सबसे

आप इन बुनियादी बातों को समझ लें तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सिर्फ एक फाइनेंशियल प्लान नहीं, एक पावरफुल टूल बन जाएगा आपकी लाइफ गोल को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको ये समझने में मददगार साबित हुआ होगा कि पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया जाता है और किस तरह से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। ये सब कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट के टेन्योर पर डिपेंड करता है। अगर इस एपिसोड ने आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए एक डायरेक्शन दिया है तो हमें जरूर अपना फीडबैक भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, 666-22-107। भाई, आपके मैसेज का मुझे इंतजार रहेगा। तो आज के लिए सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। तो तब तक अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Midnight Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.
1: Tu mujhse itna dur hai, ab kar liya kabool hai. Andar se tu bhi jaanti, tera dil wanna go away. Par tu jaane mein majboor hoon, main tera mashkoor hoon. Tu samjhe mujhe abhi, tu jaise koi noor hai. कोहिनूर है तू एक फितूर है तू इतने फासले पर फिर भी कुछ सुकून

पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन किराम, अल्लाह ताला ने हर इंसान की आजमाइश एक जैसी नहीं रखी। किसी को तंगदस्ती देकर आजमाया जाता है और किसी को फरावानी देकर। बाज़ लोग ये समझते हैं कि माल और दौलत सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनदी की अलामत है, जबकि कुरान और सुन्नत हमें बताते हैं कि फ़क्र भी आजमाइश है और मालदारी भी आजमाइश है। आज हम एक ऐसे सहाबी का वाकया सुनेंगे जिन्हें दुनिया के बेशुमार नेमतें मिली मगर उनका दिल हमेशा आखिरत की फिक्र से लरजता रहा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु अशरा मुबशरा में से थे, यानी वो 10 खुशनसीब सहाबा जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी। एक दिन आप रोजे से थे, इफ्तार का वक्त आया, आपके सामने खाना पेश किया गया। आमतौर पर रोजादार पूरे दिन की भूख और प्यास के बाद इफ्तार का इंतजार करता है, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खाने की तरफ देखा, फिर अचानक एक और मंजर उनकी आंखों के सामने आ गया। वो थे मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु। मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु मक्के के सबसे खुशहाल नौजवानों में शुमार होते थे। कीमती लिबास, खुशबू, आराम व आसाइश, हर नेमत उन्हें हासिल थी। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके वालिदैन ने उन्हें घर से निकाल दिया। नेमतें छिन गईं मगर ईमान न छूटा। फिर मदीना हिजरत की, इस्लाम की दावत दी और ग़ज़वा उहुद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा उठाते हुए शहादत का अजीम मकाम पाया। शहादत के बाद जब उन्हें कफन देने का वक्त आया तो सिर्फ एक चादर मुयस्सर थी। अगर उसे उनका सर ढांपा जाता तो पांव खुल जाते और अगर पांव ढांपे जाते तो सर नजर आने लगता। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर को चादर से ढांप दो और पांव पर इज़खिर घास रख दो। सामने कराम, जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ये सब याद किया तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने फरमाया, मुसअब इब्ने उमैर मुझसे बेहतर थे मगर उनके कफन के लिए भी पूरा कपड़ा न था। पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुनिया को बहुत कुशादा कर दिया। मुझे डर है कि कहीं हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया ही में तो नहीं दे दिया गया। ये कहते कहते वो रोने लगे, इतना रोए कि सामने रखा हुआ खाना भी न खा सके। समझ कराम, ये दुनिया से नफरत का खौफ नहीं था, ये अल्लाह ताला से मोहब्बत का खौफ था। उन्हें डर था कि कहीं दुनिया की आसाइशें हमें आखिरत से गाफिल न कर दें। यही वजह है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नेमत मिलने पर खुश जरूर होते थे, लेकिन उसके साथ अल्लाह के सामने जवाबदही को भी याद रखते थे। सामने कराम, ये हदीस हमसे ये सवाल करती है, क्या हम खाना खाते वक्त कभी अहले गज़ा को भी याद करते हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं? क्या नए कपड़े पहनते वक्त हमें उन लोगों की याद आती है जिनके पास पहनने को मुनासिब लिबास भी नहीं? अगर ये एहसास जिंदा रहे तो नेमत इंसान को अल्लाह से दूर नहीं बल्कि अल्लाह के करीब कर देती है। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।

FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

इंसान थुड़दिला पैदा किया गया है। जब उस पर मुसीबत आती है तो घबरा उठता है, और जब उसे खुशहाली नसीब होती है तो बुखल करने लगता है। मगर वो लोग इस ऐब से बचे हुए हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करने वाले हैं, जिनके मालों में साइल और महरूम का एक